मिडवेव 238.09 मीटर यानी 1260 किलो हर्ट्स पर और एफएम बैंड 100.2 मेगा हर्ट्स पर ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। आज शुक्रवार है, शक संवत 1948 के आषाढ़ मास की पांचवी तिथि, तदनुसार 26 जून सन 2026। इस समय प्रातः के 5:57 हुए हैं। हमारी आज की प्रातःकालीन सभा आरंभ होती है।

0: मीडियम वेव और एफएम बैंड पर हम आकाशवाणी के अंबिकापुर केंद्र से बोल रहे हैं। 6 बजने वाले हैं कुछ पलों में हिंदी समाचार, हम आकाशवाणी दिल्ली से रिले करेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं नवीन सक्सेना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में संयुक्त राष्ट्र महासचिव की वित्तीय मामलों की विशेष सलाहकार नीदरलैंड्स की महारानी मैक्सिमा से मुलाकात की। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि मुलाकात के दौरान उन्होंने इस बात की चर्चा की कि भारत की डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना किस प्रकार वित्तीय सेवाओं को अधिक सुलभ और किफायती बनाकर जीवन की सुगमता बढ़ा रही है और लोगों को व्यापक स्तर पर सशक्त बना रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत पूरे विश्व में साझेदार देशों के साथ अपना अनुभव साझा करने के लिए प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल से 29 तारीख तक सेशल्स के राजकीय दौरे पर रहेंगे। वो सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री ने अंतिम बार 2015 में सेशल्स का दौरा किया था। भारतीय रक्षा बलों का एक दल और भारतीय नौसेना के 2 जहाज भी समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक हार्मनी से द्विपक्षीय सहयोग के सभी पहलुओं पर समीक्षा करेंगे। श्री मोदी वहां की राष्ट्रीय सभा को भी संबोधित करेंगे और भारतीय प्रवासी समुदाय के सदस्यों से बातचीत करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और ब्रिटेन के बीच मुक्त व्यापार समझौता अब तक भारत द्वारा किए गए सबसे व्यापक समझौतों में से एक है। लंदन में भारत वैश्विक मंच के ब्रिटेन भारत सप्ताह कार्यक्रम में श्री गोयल ने कहा कि इस समझौते से दोनों देशों के बीच करीब 48 अरब पाउंड के वार्षिक व्यापार को और बढ़ावा मिलेगा।
2: The United Kingdom Free Trade Agreement has...
3: भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौता हमारे उद्योगों को नई दिशा दे रहा है। दोनों देशों के उद्योग वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में साथ काम करेंगे। ये समझौता दोनों अर्थव्यवस्थाओं को मजबूती प्रदान करेगा। भारत और ब्रिटेन मिलकर वैश्विक स्तर पर नई संभावनाएं पैदा करेंगे।
2: And together becoming a force multiplier.
1: गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में आज नई दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की 10वीं शीर्ष स्तरीय बैठक होगी। बैठक में केंद्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों और मादक पदार्थों की रोकथाम से जुड़ी एजेंसियों के प्रतिनिधि मादक पदार्थों की तस्करी और दुरुपयोग से निपटने के प्रयासों को मजबूत करने पर चर्चा

0: चर्चा करेंगे।
1: गृहमंत्री मादक पदार्थों के नियंत्रण पर 2026 से 2029 का दृष्टि पत्र जारी करेंगे। ये दस्तावेज नशीले पदार्थों की मांग और आपूर्ति में कमी लाने और मादक पदार्थों के खतरे से निपटने की योजना प्रदान करेगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने उम्मीदवारों के लिए नीट यूजी की पुनर्परीक्षा की उत्तर कुंजी को चुनौती देने की विंडो खोल दी है। मेडिकल कॉलेज में दाखिले की ये परीक्षा इसी महीने 21 तारीख को आयोजित हुई थी। एनटीए ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि उत्तर कुंजी अब neet.nta.in पर उपलब्ध है। उम्मीदवार 28 तारीख तक प्रति प्रश्न ₹200 शुल्क देकर प्रश्नों को चुनौती दे सकते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के दान में हेराफेरी के मामले में कड़ी कार्रवाई करते हुए 8 नामजद आरोपियों और अन्य अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध पहली प्राथमिकी दर्ज की है। ट्रस्ट के सदस्य कृष्ण मोहन की लिखित शिकायत पर दर्ज प्राथमिकी में अविनाश शुक्ला, अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा, मनीष कुमार यादव, करुणेश पांडे, रमाशंकर मिश्रा, सुभाष श्रीवास्तव और श्रीराम शंकर यादव उर्फ टिन्नू के साथ साथ अन्य अज्ञात आरोपियों के नाम शामिल हैं। वेनेजुएला की नेशनल असेंबली के अध्यक्ष जॉर्ज रोड्रिगेज ने कहा है कि देश में दो शक्तिशाली भूकंपों से मृतकों की संख्या बढ़कर 188 हो गई है, जबकि 1520 लोग इसमें घायल हुए हैं। फीफा फुटबॉल विश्व कप में कुरासाओ ने आइवरी कोस्ट को और इक्वाडोर ने जर्मनी को हरा दिया है। प्रतियोगिता में इस समय जापान का मुकाबला स्वीडन से और ट्यूनिशिया का मुकाबला नीदरलैंड से जारी है। आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने बांग्लादेश को 5 विकेट से हरा दिया है। पहले बल्लेबाजी करते हुए बांग्लादेश ने निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट पर 136 रन बनाए थे। जवाब में भारत ने केवल 16 ओवर और 5 गेंद में 5 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: मीडिया वेव और एफएम बैंड पर ये आकाशवाणी अंबिकापुर है। सुबह के 6:05 हुए हैं। आइए सुनते हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना। आराधना कार्यक्रम की आइए शुरुआत करते हैं देश वंदना से और सुनते हैं समूह स्वरों में ये देश भक्ति रचना।

देशगान में अभी आपने समूह स्वरों में ये देशभक्ति वंदना सुनी। आइए अब सुनते हैं जगजीत सिंह के स्वर में कृष्ण भजन।

बाट निहारे घनश्याम, नैना नीर भरे। जगजीत सिंह के स्वर में अभी आपने ये कृष्ण भजन सुना। आइए अब सुनते हैं आराधना कार्यक्रम में ये भक्ति रचना। आवाज मनन रुदास की है।

0: तो बालाजी महाराज के धाम से भक्तों की टोली आप अपने घर वापस चली जाती है। तो वो भगत ने अपनी सहेली के पास जाती है और कहती है कि बहन, मैंने बालाजी महाराज के दर्शन किए, आत्मा को शांति मिली। तो उसकी वो सहेली उस भगतनी को कहती है कि बहन, मुझे भी बालाजी महाराज की याद आती है। और इस वचन के द्वारा वो सहेली उस भगतनी को क्या बताती है?
1: वो मन नहीं

नरेंद्र कौशिक के स्वर में अभी आपने बालाजी महाराज की भक्ति से परिपूर्ण ये भक्ति रचना सुनी। इसी के साथ ही भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना अब यहीं संपन्न होता है। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर हम आकाशवाणी के अंबिकापुर केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 6:30 हुए हैं। आइए सुनते हैं विचार बिंदु। इसमें आज का शीर्षक है सपनों से हकीकत तक। संकलन और वाचन स्वर पूनम उपाध्याय का है।

कहा जाता है कि इंसान की असली पहचान उसके आज से नहीं बल्कि उसके सपनों से होती है, क्योंकि हम जो आज हैं वह हमारे बीते हुए कल का परिणाम है, और कल हम क्या बनेंगे यह हमारे आज देखे गए सपनों पर निर्भर करता है। सपने एक छोटा सा शब्द लेकिन अपने भीतर पूरी दुनिया समेटे हुए है। यही सपने कभी आंखों में चमक बनते हैं, कभी दिल की धड़कन बनते हैं, और कभी जीवन जीने की सबसे बड़ी वजह बन जाते हैं। मगर सपने देखना आसान है पर उन्हें सच करना कठिन, और इसी खूबसूरत यात्रा का नाम है सपनों से हकीकत तक। हर व्यक्ति के जीवन में कुछ न कुछ पाने की चाह होती है। बचपन में हम आसमान में उड़ते पक्षियों को देखकर उड़ने का सपना देखते हैं। किताबों में बड़े लोगों की कहानियां पढ़कर कुछ बनने की इच्छा जगती है, और धीरे धीरे यही इच्छाएं हमारे जीवन का लक्ष्य बन जाती हैं। लेकिन सपना केवल इच्छा ही नहीं होता, सपना वह आग है जो इंसान को चैन से बैठने नहीं देती, वह आवाज जो हर दिन यही कहती है तुम्हें अभी बहुत आगे जाना है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने बहुत सुंदर बात कही थी, सपने वो नहीं जो आप नींद में देखते हैं, सपने वो हैं जो आपको नींद ही नहीं आने देते। यह शब्द केवल प्रेरणा नहीं बल्कि जीवन का सत्य है, क्योंकि जब कोई सपना दिल में उतर जाता है तब वह केवल ख्याल नहीं रहता, वह हमारे अस्तित्व का हिस्सा बन जाता है। लेकिन हर सपना अपने साथ एक संघर्ष लेकर आता है। रास्ते आसान नहीं होते, कभी हालात साथ नहीं देते, कभी कभी खुद ही विश्वास हम खो बैठते हैं। कई बार ऐसा लगने लगता है कि यह सपना सिर्फ सपना ही बनकर रह जाएगा, मगर याद रखिए, जीवन की सबसे बड़ी जीत वही होती है जो सबसे कठिन रास्तों से होकर गुजरती है। सोचिए अगर थॉमस एडिसन हजारों बार असफल होने के बाद हार मान लेते तो शायद दुनिया रोशनी से नहीं जगमगाती। अगर कल्पना चावला ने यह सोच लिया होता कि छोटे शहर की लड़की अंतरिक्ष तक नहीं पहुंच सकती, तो करोड़ों बेटियों को सपने देखने की प्रेरणा

0: नहीं मिलती। सपनों को हकीकत में बदलने के लिए सबसे पहले जरूरत होती है खुद पर विश्वास की। दुनिया आपको तभी पहचानती है जब आप खुद को पहचानते हैं। फिर आता है मेहनत का दौर। सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। हर बड़ी उपलब्धि के पीछे अनगिनत रातों की मेहनत, अनदेखे संघर्ष और अनगिनत त्याग छिपे होते हैं। लोग अक्सर सफलता देखते हैं लेकिन उसके पीछे की कहानी नहीं देख पाते। जीवन बिल्कुल एक बीज की तरह है। जब बीज मिट्टी के अंदर दबता है, अंधेरे में रहता है, बारिश सहता है, समय का इंतजार करता है, तब कहीं जाकर एक विशाल वृक्ष बनता है। उसी तरह इंसान भी कठिनाइयों से गुजर कर ही मजबूत बनता है। संघर्ष कभी आपको रोकने नहीं आते बल्कि आपको उस सफलता के लायक बनाने आते हैं जिसकी आपने कल्पना की है। कई बार हम दूसरों को देखकर अपने सपनों को छोटा समझने लगते हैं। हमें लगने लगता है कि शायद हम में वह क्षमता नहीं है। सच्चाई यह है कि हर इंसान के भीतर एक अनोखी शक्ति छिपी होती है। फर्क केवल इतना है कि कोई उसे पहचान लेता है और कोई डर के कारण उसे कभी बाहर ही नहीं आने देता है। सपनों की दुनिया बड़ी खूबसूरत होती है लेकिन उसे हकीकत में बदलने के लिए अनुशासन जरूरी है। हर एक दिन खुद को बेहतर बनाना पड़ता है। हर सुबह एक नए विश्वास के साथ उठना पड़ता है। छोटी छोटी कोशिशों को कभी छोटा मत समझिए क्योंकि बूंद बूंद से ही सागर बनता है। और जब कभी आपका सपना पूरा होता है, सच होता है, तब उसकी खुशी शब्दों में बयान नहीं की जा सकती। वह सिर्फ आपकी जीत नहीं होती। जब आपने हार कर भी खुद को संभाला था, वह उन आंसुओं की जीत होती है जो आपने चुपचाप बहाए थे। याद रखिए, दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। असंभव केवल हमारी सोच होती है। जब सोच बदलती है तो रास्ते बदलते हैं। जब रास्ते बदलते हैं तो किस्मत बदलती है। सपने हमें केवल सफलता नहीं देते, हमें जीना सिखाते हैं। वे हमें बताते हैं कि जिंदगी केवल सांस लेने का नाम नहीं बल्कि अपने भीतर छिपी संभावनाओं को पहचान कर उन्हें साकार करने का नाम है। इसलिए सपनों को मरने मत दीजिए, उन्हें संभाल कर रखिए। अगर आंखों में सपने हैं, दिल में जुनून है और कदमों में हिम्मत है तो दुनिया की कोई ताकत आपको आपकी मंजिल तक पहुंचने से रोक नहीं सकती है। और शायद जिंदगी की यही खूबसूरत परिभाषा होगी, एक सपना देखना और उसे अपनी मेहनत से हकीकत में बदल देना।
1: सपनों से हकीकत तक, इस विषय पर अभी आप सुन रहे थे विचार बिंदु। संकलन और वाचन स्वर पूनम उपाध्याय का था। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर हम आकाशवाणी के अंबिकापुर केंद्र से बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं रामचरितमानस का गायन। मुख्य गायक कलाकार हैं ए हरियानन और संगीत संयोजक हैं सतीश भाटिया।

अयोध्या की राजसभा में श्री राम लक्ष्मण के पराक्रम की कथा सुनाते हुए राजा जनक के दूत कहते हैं, श्री राम ने बिना प्रयास शिवजी के धनुष को वैसे ही तोड़ डाला जैसे हाथी कमल की डंडियां तोड़ देता है। परशुराम ने जो क्रोध के साक्षात अवतार हैं बहुत आंखें दिखाई, किंतु श्री राम का प्रताप देख अंत में वे भी नतमस्तक हो गए और जाते हुए अपना धनुष भी दे गए। दोनों भाइयों के तेज तथा प्रताप की गाथा सुन अयोध्या की राजसभा में हर्षोल्लास की लहर दौड़ गई। सभासदों ने राजा जनक के दूतों को भांति भांति के पुरस्कार दिए। राजा दशरथ ने कुल गुरु वशिष्ठ के यहां जाकर पत्रिका उन्हें दी और दूतों को वहां बुलाकर सारी कथा कह सुनवाई। हर्ष प्रकट करते हुए वशिष्ठ जी ने आशीर्वचन कहे और महाराज को बारात सजाने को कहा। ये शुभ समाचार जब रनिवास में पहुंचा तो वहां भी आनंद का वातावरण

0: ए हरिहरन के स्वर में आप सुन रहे थे रामचरितमानस का गायन। संगीत संयोजक थे सतीश भाटिया। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर हम आकाशवाणी के अंबिकापुर केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम खेती की बात। जानकारी का विषय है उन्नत बीजों का चुनाव कैसे करें।
1: किसान भाइयों, खेती की बात में आज हम बात करेंगे उन्नत बीजों का चुनाव कैसे करें इस विषय पर। किसान भाइयों, सबसे पहले हमको यह ध्यान रखना पड़ता है कि हमारा जो बीज जिसका उपयोग हम अपनी खेतों में करने वाले हैं वह अत्यधिक लाभदायी हो। तो उन्नत बीजों का चुनाव करते समय कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना पड़ता है, जैसे बीज की गुणवत्ता। बीज अन्य फसल के बीजों और खरपतवारों के बीजों से पूर्णतया मुक्त होना चाहिए। फसल के बीजों में अन्य फसल के बीज अगर मिल जाएं तो उनके वृद्धि करने का ढंग, खाद और पानी आदि की आवश्यकता अलग होती है। उनके पकने और काटने का समय भी अलग हो सकता है। अतः अंत तक भूमि से मुख्यतः पोषक तत्वों और नमी आदि के लिए अन्य फसलों के पौधे मुख्य फसलों के साथ प्रतियोगिता करने लगते हैं और इस प्रकार मुख्य फसलों के पौधों की उपज कम करते हैं। इसी प्रकार खरपतवार के पौधों मुख्य फसल की उपज कम करते हैं और साथ ही साथ उनके गुणों को भी कम करते हैं। बीज में नमी का प्रतिशत, बीजों की अंकुरण क्षमता का बीज में उपस्थित नमी की मात्रा से सीधा संबंध होता है। बीज अगर अधिक सूखे हैं तो बीज के अंदर उपस्थित भ्रूण की मृत्यु हो सकती है और अगर अधिक नमी है तो बीज पर अनेक फंगस रोगों के लगने से उनकी अंकुरण क्षमता नष्ट हो सकती है। बीजों को भंडार में रखते समय 10-15% तक नमी रहना चाहिए। बीज की परिपक्वता। किसान भाइयों, खेत से फसल जब दूधिया या मुलायम गुम्फावस्था में काटी जाती है तो उससे प्राप्त होने वाले बीज पूर्णतः परिपक्व नहीं होते हैं। जो फसल सख्त गुम्बावस्था में काटी जाती है उससे प्राप्त बीज परिपक्व होते हैं। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि बीज आवश्यकता से अधिक परिपक्व न हो, क्योंकि इस कारण बीजों में अंकुरण कम होता है। बीज की अंकुरण क्षमता। किसान भाइयों, बीज की मात्रा प्रति इकाई क्षेत्र निश्चित करने के लिए यह आवश्यक है कि कृषक को यह ज्ञात हो कि जो बीज वह बोने वाला है उसकी अंकुरण क्षमता क्या है। कृषक यदि बीजों की अंकुरण क्षमता ज्ञात किए बिना ही बीज खेत में बो रहे हैं तो उन्हें यह निश्चित नहीं होता कि बीजों का अंकुरण

0: खेत में कैसे होगा। अतः बीज की अंकुरण क्षमता के आधार पर ही बीज बोने की मात्रा निर्धारित की जाती है। बीजों की अंकुरण क्षमता बढ़ाने के लिए बीज की प्रसुप्ति अवस्था को कुछ इस प्रकार नष्ट कर सकते हैं। बीजों के आवरण को खुरच कर, बीजों के कठोर आवरण को खुरच कर नष्ट करने से पारगम्यता बढ़ जाती है। आलू के बीजों को रेत में डालकर हिलाने, अम्ल या अल्कोहल के हल्के घोल से उपचारित करने से बीजों का आवरण कमजोर हो जाता है, जिससे बीजों में वायु और पानी का प्रवेश सुगमता पूर्वक होता है। प्रकाश उपचार। कुछ बीजों के अंकुरण के लिए प्रकाश की आवश्यकता होती है। प्रकाश की लाल किरणों से बीजों के अंकुरण में सहायता मिलती है। अतः जिन बीजों के अंकुरण के लिए प्रकाश आवश्यक हो उसको प्रकाश का उपचार देना आवश्यक है। तापमान उपचार। किसान भाइयों, बीजों का अंकुरण बढ़ाने के लिए बीजों को कभी कभी न्यूनतम और अधिक ताप पर रखना पड़ता है। इस प्रकार से बीजों की प्रसुप्ति अवस्था नष्ट हो जाती है। तापमान का उपचार करते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि तापमान का अंतर 15 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक नहीं हो। दबाव उपचार। किसान भाइयों, कुछ बीजों का अंकुरण अधिक दबाव का उपचार देकर भी बढ़ा सकते हैं। उदाहरण के लिए सुसर्ण में बीजों पर 8 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान में जलीय दबाव की सहायता से 2000 वायुमंडल के बराबर दबाव डालने पर काफी सीमा तक अंकुरण बढ़ाया जा सकता है। रासायनिक उपचार। किसान भाइयों, विभिन्न रसायनों जैसे पोटेशियम नाइट्रेट के 0.1% के घोल में, गंधक और नमक के अम्ल हल्के घोल में या जिब्रेलिक अम्ल के घोल के उपचार से भी बीजों की प्रसुप्ति अवस्था को नष्ट कर सकते हैं। आलू में प्रसुप्ति अवस्था तोड़ने के लिए इसके कंदों को बोने से पूर्व इथाइलिन डाइक्लोराइड या थायो यूरिया के घोल में डुबाना पड़ता है। किसान भाइयों, इस तरह से कुछ छोटे छोटे बातों का ध्यान रखकर हम अपनी आमदनी बढ़ा सकते हैं।
1: उन्नत बीजों का चुनाव कैसे करें, कार्यक्रम खेती की बात में आप सुन रहे थे। इस विषय पर जानकारी मीडियम वेव और एफएम बैंड पर हम आकाशवाणी के अंबिकापुर केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण।

सुबह 7 बजे लोकगीतों के कार्यक्रम गूंजे जंगल में आज हम आपको सुनवाएंगे अमृत मिंज और साथियों के गाए सादरी लोकगीत, रामेश्वर किरकेटा और साथियों के गाए रिंजा कर्मा गीत और भोला मिंज और साथियों के गाए डोमकच कर्मा गीत आप सुन सकेंगे। सुगम संगीत के कार्यक्रम में 7:15 पर आज सुनिएगा मेहदी हसन की गाई गजलें। जनसंपर्क से प्राप्त समाचार और पुराने फिल्म संगीत का कार्यक्रम नमस्कार सरगुजा पेश करेंगे सुबह 7:30 पर। इनसे मिलिए कार्यक्रम हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से रिले करेंगे। बातों और गीतों का कार्यक्रम गुंजन सुनिएगा सुबह 9 बजे। आज सुबह 10 बजे छत्तीसगढ़ के स्कूल शिक्षा मंत्री श्री गजेंद्र यादव से विशेष भेंट वार्ता हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से रिले करेंगे।

नए तरानी कार्यक्रम पेश करेंगे सुबह 10:25 पर। श्रोताओं के समीक्षात्मक पत्र और ईमेल पर आधारित चिट्ठी पत्री कार्यक्रम का प्रसारण होगा सुबह 11:05 पर। एनसीईआरटी और सीआईटी द्वारा प्रायोजित शैक्षणिक

एक ही शीर्षक से ले गए फिल्मी गीतों का कार्यक्रम चयन पेश करेंगे 12:30 पर। महिलाओं के लिए गर्ग हुसैन कार्यक्रम प्रसारित करेंगे 2:10 पर। ईमेल की गूंज पेश करेंगे 1:40 पर। और गीत गंधा कार्यक्रम आप सुनेंगे 2:30 पर। हमारी तीसरी सभा में शाम 5:00 सुनिएगा प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोट। भजन संध्या का प्रसारण होगा 5:05 पर। युवा श्रोताओं की युवाणी शाम 5:30 और ग्रामीण श्रोताओं की चौपाल 7:20 पर। इंस्टा फरमाइश सुनिएगा आज रात 8:00। इसी के साथ ही कार्यक्रम विवरण समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी अंबिकापुर है। संस्कृत समाचार अब हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

0: उद्घाटितं वर्तते। NTA इत्यनेन घोषितं यत् उत्तरकुञ्जिका www.neet.nta.in इत्यत्र उपलभ्यते। छात्राः अस्य मासस्य 28 दिनाङ्कपर्यन्तं प्रतिप्रश्नं 200 रूप्यकशुल्कं दत्त्वा प्रश्नान् आह्वानं कर्तुं शक्नुवन्ति। यदि आह्वानं स्वीकृतं भवति तर्हि एतत् शुल्कं पूर्णतया प्रतिदेयं वर्तते। सर्वकारेण औद्योगिक व्यापारिक द्रव अनिल इन्धनस्य आपूर्ति विषये सर्वाणि क्षेत्रीय प्रतिबन्धनानि दूरीकृत्य पश्चिम एशिया संकटात् पूर्वं प्रचलित स्तरं यावत् आपूर्तिं पुनः स्थापितं वर्तते। वेनेजुएला देशस्य कार्यवाहक राष्ट्रपतिः जॉर्ज रोड्रिगेज़ः घोषितवान् यत् द्वयोः शक्तिशाली भूकम्पयोः मध्ये मृतानां संख्या 88+100 अभवत्। सहस्रशः जनाः घातिताः, 200+ जनाः अद्यापि भूकम्पग्रस्ते प्रदेशे एव परिलग्नाः सन्ति। इति वार्ताः।
1: मीडियम वेव और एफएम बैंड पर हम आकाशवाणी के अंबिकापुर केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 7 बजे हैं, लोकगीतों के कार्यक्रम गूंजे जंगल में। आइए पहले सुनते हैं अमृत मिंज और साथियों के स्वर में चाले कर्मा गीत।

अमृत मिंज और साथियों के स्वर में अभी आपने चाले कर्मा गीत सुना। गुंजी रंगल कार्यक्रम में आइए आप सुनते हैं रामेश्वर केरकेटा और साथियों के स्वर में रिंजा कर्मा गीत।

कार्यक्रम के अंत में आइए सुनते हैं भोला मिंज और साथियों के स्वर में डोमकेच कर्मा गीत।

भोलामिन जोल साथियों के गाए इसी डोमकेज कर्मा गीत के साथ ही लोकगीतों का कार्यक्रम गूंजे रंगल समाप्त होता है। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर हम आकाशवाणी के अंबिकापुर केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 7:15 हुए हैं। लीजिए पेश है सुगम संगीत का कार्यक्रम। आज इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं मेहदी हसन की गाई गजलें। कार्यक्रम की पहली गजल आइए सुनते हैं मेहदी हसन के स्वर में। शब्द रचना तस्लीम फाजली की है और संगीत निर्देशन नौशाद का है।

मेडियाजन के स्वर में अभी आपने अहमद फराज का लिखा गीत सुना। कार्यक्रम की अंतिम गजल आइए सुनते हैं मेडियाजन की आवाज में।

मैरी हसन की गाय इसी गज़ल के साथ ही सुगम संगीत का कार्यक्रम अब समाप्त होता है। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर हम आकाशवाणी के अंबिकापुर केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोता, हम आपको एक बार फिर से याद दिला दें, आज सुबह 10 बजे छत्तीसगढ़ के स्कूल शिक्षा मंत्री श्री गजेंद्र यादव से ली गई विशेष भेंट वार्ता का प्रसारण हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से रिले करेंगे। ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है।

0: मीडियम वेव और एफएम बैंड पर हम आकाशवाणी के अंबिकापुर केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 7:30 हुए हैं। आइए सुनते हैं जनसंपर्क से प्राप्त समाचार और पुराने फिल्म संगीत का कार्यक्रम नमस्कार सरगुजा।
1: जनसंपर्क से प्राप्त सूचना
2: और पुराने फिल्मी गीतों पर केंद्रित कार्यक्रम
3: नमस्कार सरगुजा।
4: नमस्कार सरगुजा।

कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोता साथियों को कल्पना सिन्हा का नमस्कार। श्रोताओं, जंगली हाथियों की गतिविधियों और उनके संभावित विचरण क्षेत्रों की सटीक जानकारी देने वाला विशेष कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोठ प्रतिदिन शाम 5 बजे आपके अपने 4 आकाशवाणी केंद्रों अंबिकापुर, रायपुर, बिलासपुर और रायगढ़ से प्रसारित हो रहा है। ये कार्यक्रम FM रेडियो चैनलों पर भी उपलब्ध है, जिसे आप आसानी से रेडियो सेट, मोबाइल फोन या गाड़ियों में चलते फिरते भी सुन सकते हैं। साथ ही सोशल मीडिया पर भी इसकी पहुंच है, ताकि हर जानकारी हो आपके हाथ में। इस कार्यक्रम से मिली जानकारी के कारण हाथी प्रभावित क्षेत्रों के लोग सुरक्षित रास्ते अपनाकर अपने घर सुरक्षित लौट रहे हैं। अब जंगल या गांव के किसी भी हिस्से में निकलने से पहले हाथियों की सही स्थिति जानने का सबसे भरोसेमंद माध्यम है हमर हाथी हमर गोठ। सुनते रहिए, सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए। हमर हाथी हमर गोठ, जहां हर सूचना है आपकी सुरक्षा के लिए। और इसी जानकारी के बाद आइए सुनते हैं इस कार्यक्रम का पहला गीत लता मंगेशकर और मुकेश की आवाज में। फिल्म का नाम है धरती कहे पुकार के, शब्द मजरूह के हैं और संगीत निर्देशन लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का है।

लता मंगेशकर और मुकेश की आवाज़ में अभी आपने सुना फिल्म धरती कहे पुकार के का ये गीत। और अब आइए नजर डालते हैं आज के कुछ मुख्य समाचारों पर। एकीकृत बाल विकास परियोजना राजपुर अंतर्गत आंगनबाड़ी केंद्र चंद्रगढ़ आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं आंगनबाड़ी केंद्र उदेनुपारा आंगनबाड़ी सहायिका के पद रिक्त होने से उक्त पद पूर्ति हेतु आवेदन आमंत्रित किया गया है। इच्छुक आवेदिकाओं द्वारा 6 जुलाई 2026 तक महिला एवं बाल विकास विभाग के ऑनलाइन पोर्टल https://www.ebharti.in पर आवेदन किया जा सकता है। नियुक्ति से संबंधित विस्तृत दिशा निर्देश एवं नियम शर्तें संबंधित परियोजना कार्यालय के सूचना पटल पर अवलोकन किया जा सकता है। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी की अध्यक्षता में जिला जल एवं स्वच्छता मिशन की बैठक कलेक्टर कार्यालय के सभा कक्ष में आयोजित की गई। बैठक में जिला पंचायत की मुख्य कार्यपालन अधिकारी सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। बैठक में जल जीवन मिशन के अंतर्गत संचालित कार्यों, पेयजल योजनाओं, जल संरक्षण गतिविधियों तथा ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल उपलब्धता को सुदृढ़ बनाने संबंधी विभिन्न विषयों पर विस्तृत समीक्षा की गई। बैठक में भरतपुर खड़गवां एवं मनेन्द्रगढ़ विकासखंडों में जल जीवन मिशन के तहत संचालित योजनाओं की प्रगति का आकलन किया गया। कलेक्टर ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि जिले के प्रत्येक ग्रामीण परिवार तक सुरक्षित एवं स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने के लक्ष्य को सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ पूरा किया जाए। उन्होंने जल जीवन मिशन अंतर्गत CIRP इम्प्लीमेंटेशन प्लान, सोलर संयंत्र स्थापना एवं भुगतान, एकल जल प्रदाय योजनाओं,

तथा विभिन्न वित्तीय प्रस्तावों का अनुमोदन करते हुए कार्यों में गति लाने के निर्देश दिए। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत निर्माणाधीन सड़कों के कारण क्षतिग्रस्त हो रही पेयजल पाइपलाइनों का मामला प्रमुखता से सामने आया है। इस पर कलेक्टर ने लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अधिकारियों को समन्वय स्थापित कर तत्काल सुधार कार्य सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि सड़क निर्माण के दौरान जहां भी पेयजल पाइपलाइन को नुकसान पहुंचाया गया है उसकी भरपाई संबंधित ठेकेदार द्वारा की जाएगी। ऐसे मामलों में जिम्मेदार ठेकेदारों को नोटिस जारी करने तथा आवश्यकता अनुसार उनकी भुगतान राशि रोकने की कार्यवाही भी की जाए। इस जानकारी के बाद आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत मुकेश की आवाज में। फिल्म का नाम है सरस्वती चंद्र।

फिल्म सरस्वती चंद्र का गीत अभी आपने सुना मुकेश की आवाज में। अगली सूचना है, सरगुजा संभाग एवं उत्तर छत्तीसगढ़ के रेल यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। भारतीय रेलवे मंत्रालय ने ट्रेन संख्या

प्रश्न है, सरगुजा संभाग एवं उत्तर छत्तीसगढ़ के रेल यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। भारतीय रेलवे मंत्रालय ने ट्रेन संख्या 22407 और 22408 अंबिकापुर हजरत निजामुद्दीन एक्सप्रेस के संचालन को साप्ताहिक से बढ़ाकर द्विसाप्ताहिक सप्ताह में 2 दिन करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। इस निर्णय का पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री ने स्वागत करते हुए इसे क्षेत्र के लाखों यात्रियों के लिए जनहितैषी कदम बताया है। मंत्री ने कहा कि अंबिकापुर हजरत निजामुद्दीन एक्सप्रेस उत्तर छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा के रूप में कार्य करती है। दिल्ली सहित देश के विभिन्न हिस्सों में शिक्षा, रोजगार, व्यवसाय, चिकित्सा एवं अन्य आवश्यक कार्यों के लिए यात्रा करने वाले लोगों की संख्या लगातार बढ़ रही है। ऐसे में ट्रेन की आवृत्ति बढ़ाने की मांग लंबे समय से की जा रही थी, जिसे केंद्र सरकार और रेलवे मंत्रालय ने गंभीरता से लेते हुए पूरा किया है। उन्होंने कहा कि ट्रेन के सप्ताह में 2 दिन संचालन से यात्रियों को अधिक सुविधा और विकल्प उपलब्ध होंगे, विशेष रूप से विद्यार्थियों और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं, व्यापारियों, नौकरी पेशा लोगों तथा गंभीर बीमारियों के उपचार के लिए बड़े शहरों की यात्रा करने वाले मरीजों को इसका सीधा लाभ मिलेगा। इससे यात्रा की प्रतीक्षा अवधि कम होगी और क्षेत्र की राजधानी दिल्ली सहित अन्य प्रमुख शहरों से बेहतर रेल संपर्क स्थापित होगा। इस सूचना के बाद आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत मोहम्मद रफी की आवाज में। फिल्म का नाम है जीने की राह। शब्द आनंद बख्शी के हैं और संगीत निर्देशन लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का है।

0: मोहम्मद रफी की आवाज में अभी आपने सुना फिल्म जीने की राह का गीत। और अब कार्यक्रम का अगला समाचार है रामगढ़ महोत्सव 2026 से संबंधित। आषाढ़ माह के प्रथम दिवस के अवसर पर आयोजित होने वाले रामगढ़ महोत्सव 2026 की तैयारियां प्रारंभ हो गई हैं। विगत वर्षों की भांति इस वर्ष भी राम वनगमन पर्यटन परिपथ स्थल एवं विश्व की प्राचीनतम नाट्यशाला रामगढ़ में 29 एवं 30 जून 2026 को दो दिवसीय रामगढ़ महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। महोत्सव के सफल आयोजन हेतु मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत सरगुजा को नोडल अधिकारी तथा सहायक आयुक्त आदिवासी विकास विभाग सरगुजा को सहायक नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। जिला प्रशासन द्वारा आयोजन की समुचित तैयारियां एवं व्यवस्थाओं के लिए विभिन्न विभागों के अधिकारियों को अलग अलग दायित्व सौंपे गए हैं। पार्किंग वाहन व्यवस्था ट्रैफिक रूट चार्ट कानून ब्लड ग्रुप व्यवस्था हेतु पुलिस अधीक्षक जिला सरगुजा विभागीय प्रदर्शनी से संबंधित स्टॉल हेतु जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी अपर कलेक्टर सरगुजा एवं अनुविभागीय अधिकारी राजस्व उदयपुर को प्रोटोकॉल कारकेट कानून व्यवस्था मंच पर साज सज्जा होर्डिंग मंच की डिजाइनिंग फ्लैक्स बैनर एवं डेकोरेशन मंच पर अतिथियों के बैठने की व्यवस्था नियत स्थल पर मंच एवं ग्रीन रूम का निर्माण बैरिकेटिंग टेंट कुर्सी आदि की संपूर्ण व्यवस्था विकास प्रदर्शनी हेतु पृथक से टेंट एवं स्टॉल की व्यवस्था हेतु लोक निर्माण विभाग के कार्यपालन अभियंता कार्यक्रम स्थल पर साउंड माइक एलईडी एवं जनरेटर की व्यवस्था हेतु लोक निर्माण विभाग के कार्यपालन अभियंता ईएमएम अंबिकापुर को जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसी प्रकार रामगढ़ महोत्सव के कार्यक्रम स्थल पर राष्ट्रीय शोध संगोष्ठी एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम तथा अतिथियों हेतु फूलमात्रा फूलमाला एवं बुके की व्यवस्था हेतु उद्यानिकी विभाग के उपसंचालक ग्रीन रूम एवं मंच के सामने अतिथि दीर्घा में स्वल्पाहार की व्यवस्था और भोजन की व्यवस्था हेतु जिला खाद्य अधिकारी प्रबंधक जिला नागरिक आपूर्ति निगम प्रबंधक मार्क फेड प्रबंधक वेयरहाउस को जिम्मेदारी सौंपी गई है।
1: क्या हुआ?
2: हाय, गम का फसाना बन गया। अच्छा
1: अच्छा जी,
2: एक बहाना बन गया। अच्छा
1: अच्छा

किशोर कुमार और लीना चंदावरकर के स्वर में अभी आपने सुना फिल्म मनचली का गीत। कलेक्टर एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने शासकीय बाल संप्रेक्षण गृह बालक अंबिकापुर का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान संस्था की आधारभूत सुविधाओं, सुरक्षा व्यवस्थाओं तथा बच्चों के रहन सहन, स्वास्थ्य एवं शिक्षा संबंधी व्यवस्थाओं का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने संस्था भवन की सभी खिड़कियों, निकास मार्गों तथा सुरक्षा व्यवस्था का परीक्षण किया। उन्होंने भवन की आवश्यक मरम्मत कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र पूर्ण कराने के निर्देश दिए हैं। साथ ही किशोर न्याय बोर्ड के प्रवेश द्वार की सुरक्षा को और अधिक मजबूत बनाने के लिए वहां कंटीले तार लगाने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए हैं। और इस समाचार के बाद आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अंतिम गीत हेमंत कुमार की आवाज़ में। फिल्म का नाम है 16 साल।

0: हेमंत कुमार के गाए फिल्म सोलवा साल के इस गीत के साथ ही नमस्कार सरगुजा कार्यक्रम समाप्त होता है। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर हम आकाशवाणी के अंबिकापुर केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 8 बजने वाले हैं कुछ पलों में समाचार, हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं जागृति शर्मा। मुख्य समाचार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीदरलैंड्स की महारानी मैक्सिमा ने भारत में डिजिटल सार्वजनिक व्यवस्था से हुए क्रांतिकारी परिवर्तन पर चर्चा की। सरकार ने वाणिज्यिक एलपीजी आपूर्ति को पश्चिम एशिया संकट से पहले के स्तर पर बहाल किया, सभी प्रतिबंध हटाए। अयोध्या में श्रीराम जन्मभूमि के दान में हेराफेरी के मामले में 8 नामजद और कई अज्ञात लोगों के विरुद्ध पुलिस में मामला दर्ज। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने कहा, ईरान संघर्ष के आर्थिक प्रभाव और ऊर्जा की बढ़ती कीमतों के बावजूद भारत वैश्विक आर्थिक विकास का प्रमुख चालक बना हुआ है। फीफा फुटबॉल विश्व कप में इक्वाडोर ने जर्मनी को 2-1 से हराकर नॉकआउट दौर में प्रवेश किया। और महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में मैनचेस्टर में शेफाली वर्मा के शानदार प्रदर्शन की बदौलत भारत ने बांग्लादेश को 5 विकेट से हराया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नीदरलैंड्स की महारानी मैक्सिमा से मुलाकात की। बैठक के दौरान भारत की डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना आधारित क्रांति से अधिक सुलभ और किफायती बन रही वित्तीय सेवाओं पर चर्चा की गई। उन्होंने कहा कि इस प्रयास से जीवन की सुगमता बढ़ रही है और बड़े पैमाने पर लोग सशक्त बन रहे हैं। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि उन्हें नीदरलैंड्स की महारानी मैक्सिमा से मिलकर प्रसन्नता हुई, जो संयुक्त राष्ट्र महासचिव की वित्तीय स्वास्थ्य संबंधी विशेष अधिवक्ता और वित्तीय समावेशन के लिए एक दीर्घकालिक वैश्विक आवाज भी हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत विश्व स्तर पर साझेदार देशों के साथ अपने अनुभव साझा करने के लिए प्रतिबद्ध है। महारानी मैक्सिमा संयुक्त राष्ट्र महासचिव की वित्तीय स्वास्थ्य संबंधी विशेष अधिवक्ता के रूप में भारत की यात्रा पर हैं। विदेश मंत्रालय ने कहा कि अपनी यात्रा के दौरान महारानी मैक्सिमा ने विभिन्न पृष्ठभूमि के लोगों से वित्तीय सेवाओं के साथ उनके अनुभवों और वित्तीय व्यवस्था से संबंधित उनकी चुनौतियों के बारे में बात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल से 29 तारीख तक सेशल्स के राष्ट्रीय दौरे पर रहेंगे। वे सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में विशिष्ट अतिथि होंगे। प्रधानमंत्री ने अंतिम बार 2015 में सेशल्स का दौरा किया था। भारतीय रक्षा बलों का एक दल और नौसेना के 2 जहाज भी समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रपति डॉ पैट्रिक हार्मनी से द्विपक्षीय सहयोग के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा करेंगे। श्री मोदी वहां राष्ट्रीय सभा को भी संबोधित करेंगे और भारतीय प्रवासी समुदाय के सदस्यों से बातचीत करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और ब्रिटेन के बीच मुक्त व्यापार समझौता अब तक भारत द्वारा किए गए सबसे व्यापक समझौतों में से एक है। लंदन में भारत वैश्विक मंच के ब्रिटेन भारत सप्ताह कार्यक्रम में श्री गोयल ने कहा कि इस समझौते से दोनों देशों के बीच करीब 48 अरब पाउंड के वार्षिक व्यापार को और बढ़ावा मिलेगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के दान में हेराफेरी के मामले में कड़ी कार्रवाई करते हुए 8 नामजद आरोपियों और अन्य अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की है। ट्रस्ट के सदस्य कृष्ण मोहन की लिखित शिकायत पर दर्ज प्राथमिकी में अविनाश शुक्ला, अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा, मनीष कुमार यादव, करुणेश पांडे, रमाशंकर मिश्रा, सुभाष श्रीवास्तव और श्रीराम शंकर यादव उर्फ टिन्नू के साथ साथ अन्य अज्ञात आरोपियों के नाम शामिल हैं। लखनऊ संभाग के आयुक्त विजय विश्वास

पंत की अध्यक्षता वाले विशेष जांच दल ने मंगलवार को सरकार को अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट सौंपी थी, जिसमें कड़ी सिफारिशें की गई थी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते। टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने औद्योगिक और वाणिज्यिक एलपीजी उपभोक्ताओं के लिए गैर घरेलू एलपीजी की आपूर्ति पर सभी क्षेत्रीय प्रतिबंध हटा दिए हैं। एक रिपोर्ट।
4: एलपीजी की आपूर्ति को पश्चिम एशिया संकट से पहले के स्तर पर बहाल कर दिया गया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा कि संकट के दौरान निलंबित थोक एलपीजी की आपूर्ति को पूर्व स्तर से 50% तक बढ़ा दिया गया है। इससे वाणिज्यिक और औद्योगिक उपभोक्ताओं को महत्वपूर्ण राहत मिली है। यह बहाली एलपीजी आपूर्ति की स्थिति में हाल ही में हुए सुधार के बाद की गई है। इस बीच सरकार ने पीएनजी कनेक्टिविटी के विस्तार की प्रतिबद्धता दोहराई है। नीतिका गुप्ता, आकाशवाणी समाचार, नई दिल्ली।
3: अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने कहा है कि ईरान संघर्ष के आर्थिक प्रभाव और ऊर्जा की बढ़ती कीमतों के बावजूद भारत वैश्विक आर्थिक विकास का प्रमुख चालक बना हुआ है।
5: अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की संचार निदेशक जूली कोजेक ने कहा है कि मजबूत घरेलू मांग के समर्थन से भारत की अर्थव्यवस्था अनुकूल बनी हुई है। मुद्रा कोष ने वित्त वर्ष 2026-27 में भारत की अर्थव्यवस्था के 6.5% की वृद्धि दर का अनुमान बरकरार रखा है। ये अनुमान अप्रैल में किए गए संशोधन के अनुरूप है। सुश्री कोजेक ने कहा कि वर्तमान वित्त वर्ष की पहली तिमाही में भारतीय अर्थव्यवस्था ने उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन किया है। उन्होंने कहा कि IMF पश्चिम एशिया युद्ध विराम और डमरू मध्य के फिर से खुलने को वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए सकारात्मक मानता है। उन्होंने बताया कि तेल की कीमतें अपने उच्चतम स्तर से नीचे आ गई हैं, लेकिन युद्ध से पहले के स्तर से लगभग 10% अधिक हैं। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
3: सरकार ने पासपोर्ट आवेदन शुल्क में वृद्धि की है। 36 पृष्ठों वाले नए पासपोर्ट या पासपोर्ट को फिर से जारी करने के लिए अब ₹2,500 शुल्क देना होगा। विदेश मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार पासपोर्ट संशोधन नियम 1 जुलाई से प्रभावी होंगे।
6: पासपोर्ट की नई शुल्क संरचना के अंतर्गत तत्काल श्रेणी में 36 पृष्ठों वाले नए पासपोर्ट या पासपोर्ट को फिर से जारी करने की लागत ₹5,000 होगी। 60 पृष्ठों वाले साधारण पासपोर्ट या पासपोर्ट को फिर से जारी करने की लागत ₹3,500 होगी और तत्काल श्रेणी के पासपोर्ट के लिए ये लागत ₹6,000 होगी। वर्तमान में 36 पृष्ठों वाले पासपोर्ट की लागत ₹1,500 और 60 पृष्ठों वाले पासपोर्ट की लागत ₹2,000 है। खोए या क्षतिग्रस्त 36 पृष्ठों वाले पासपोर्ट के बदले में नया सामान्य पासपोर्ट जारी कराने के लिए ₹5,000 का शुल्क देना होगा। वहीं खोए या क्षतिग्रस्त 60 पृष्ठों वाले पासपोर्ट के बदले में नया सामान्य पासपोर्ट जारी करने के लिए ₹6,000 का शुल्क लिया जाएगा। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमीशा।
3: गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में आज नई दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की 10वीं शीर्ष स्तरीय बैठक होगी। बैठक में केंद्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों और मादक पदार्थों की रोकथाम से जुड़ी एजेंसियों के प्रतिनिधि मादक पदार्थों की तस्करी और दुरुपयोग से निपटने के प्रयासों को मजबूत करने पर चर्चा करेंगे। गृह मंत्री मादक पदार्थों के नियंत्रण पर 2026-29 का दृष्टि पत्र जारी करेंगे। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय मेरा युवा भारत के माध्यम से आज राष्ट्रीय नशा मुक्ति प्रतियोगिता की शुरुआत करेगा। ये प्रतियोगिता नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर शुरू की जाएगी। विकसित भारत के लिए नशा मुक्त युवा अभियान के अंतर

0: गति से आयोजित किया जा रहा है। देश भर के युवा इस ऑनलाइन प्रतियोगिता में 15 जुलाई तक भाग ले सकेंगे। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने उम्मीदवारों के लिए नीट यूजी की पुनर्परीक्षा के उत्तर कुंजी को चुनौती देने के लिए विंडो खोल दी है। पुनर्परीक्षा 21 जून को आयोजित की गई थी। एनटीए ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि उत्तर कुंजी www.neet.nta.in पर उपलब्ध है। उम्मीदवार 28 तारीख तक प्रति प्रश्न ₹200 शुल्क देकर प्रश्नों को चुनौती दे सकते हैं। चुनौती स्वीकार होने पर यह शुल्क वापस कर दिया जाएगा। केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कल नई दिल्ली में आपातकाल के 50 वर्ष पूरे होने पर वर्ष भर आयोजित कार्यक्रमों के समापन समारोह में भाग लिया। ये कार्यक्रम 1975 में घोषित आपातकाल के दमनकारी दौर को याद करने और लोकतांत्रिक मूल्यों को सुदृढ़ करने की गतिविधियों की श्रृंखला का समापन समारोह था। इस अवसर पर श्री शेखावत ने आपातकाल के दौरान लोकतंत्र पर आए संकट का उल्लेख किया।
1: 25 जून 1975 को जो भारतीय लोकतांत्रिक इतिहास की सबसे वेदनापूर्ण दर्दनाक रात्रि थी, उस काल रात्रि को जब संविधान की आत्मा पर ग्रहण लगाने का प्रयास किया गया, न केवल संविधान के मुख पर कालिक पोतने का काम हुआ, अभी तो संविधान की आत्मा, नागरिकों की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की आजादी और नागरिकों के मौलिक अधिकार, उन सबको एक महत्वाकांक्षी शासक की अति महत्वाकांक्षा के चलते हुए स्थगित कर दिया गया।
0: कृषि और किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज उत्तराखंड के रुद्रपुर में खेत बचाओ अभियान कार्यक्रम में किसानों से बातचीत करेंगे। इस दौरान श्री सिंह कृषि क्षेत्रों का दौरा करेंगे, फसलों की स्थिति का जायजा लेंगे और किसानों से कृषि संबंधी विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करेंगे। वेनेजुएला की नेशनल असेंबली के अध्यक्ष जॉर्ज रोड्रिगेज ने कहा है कि भूकंप से मृतकों की संख्या 188 हो गई है, जबकि 1520 लोग इसमें घायल हुए हैं।
2: वेनेजुएला में कल आए दो शक्तिशाली भूकंपों से चारों ओर तबाही का मंजर फैला हुआ है। मलबे में अभी भी 200 से अधिक लोग फंसे हुए हैं। राजधानी कराकास में भूकंप में लगभग 3000 परिवार बेघर हुए हैं। वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने आपात स्थिति घोषित कर दी है। अगले आदेश तक कक्षाएं और गैर आवश्यक गतिविधियां स्थगित कर दी गई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वेनेजुएला में आए भीषण भूकंप से हुई तबाही पर गहरा दुख व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि भारत सभी प्रभावित लोगों के साथ एकजुटता से खड़ा है। श्री मोदी ने वेनेजुएला को हर सहायता का आश्वासन दिया। राष्ट्रपति रोड्रिगेज ने भारत की ओर से सहायता की पेशकश पर आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इस मुश्किल घड़ी में यह भारत और वेनेजुएला के बीच मजबूत संबंधों को दर्शाता है। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
0: आज देश के विभिन्न हिस्सों में आशुराए मुहर्रम पूरी श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है। ये दिन पैगंबर मोहम्मद के पोते हजरत इमाम हुसैन और उनके साथियों की शहादत की याद दिलाता है। फीफा फुटबॉल विश्व कप में अमेरिका के न्यू जर्सी में इक्वाडोर ने जर्मनी को 2-1 से हराकर बड़ा उलटफेर करते हुए नॉकआउट दौर में प्रवेश कर लिया है। इससे पहले आइवरी कोस्ट ने कुरासाओ को 2-0 से हराकर पहली बार प्रतियोगिता के नॉकआउट दौर में जगह बनाई है। आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने बांग्लादेश को 5 विकेट से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए बांग्लादेश ने निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट पर 136 रन बनाए। जवाब में भारत ने 17वें ओवर में 5 विकेट पर विजयी लक्ष्य हासिल कर लिया। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं नवीन सक्सेना।
3: धन्यवाद जागृति। आज प्रकाशित अखबारों ने अलग अलग खबरों को अपनी सुर्खी बनाया है। पंजाब केसरी ने प्रथम पृष्ठ पर सचित्र शीर्षक दिया है, वेनेजुएला में भूकंप से तबाही, 10,000 लोगों के मरने की आशंका, अब तक 200 से ज्यादा शव बरामद। नवभारत टाइम्स की खबर है, वेनेजुएला में डबल भूकंप, पत्र लिखता है लोगों को भूकंप से कुछ ही सेकंड पहले एंड्रॉयड फोन पर चेतावनी मिली थी। हिंदुस्तान ने अपने संपादकीय पृष्ठ पर वेनेजुएला का दर्द बयां किया है, भूकंप ने न केवल वेनेजुएला में भारी तबाही मचाई है बल्कि वैज्ञानिकों और नगर नियोजकों को नए सिरे से सोचने पर मजबूर कर दिया है। दुनिया में जिन क्षेत्रों में तीव्र भूकंप की आशंका है वहां विशेष सावधानी रखने की जरूरत है। ऐसे इलाकों में ऊंची और कमजोर इमारतों से बचना चाहिए। श्रीराम मंदिर में चढ़ावा चोरी मामले पर जनसत्ता के शब्द हैं, नकदी और कीमती सामान गिनने में शामिल 8 प्राथमिकी। दैनिक भास्कर ने पासपोर्ट नियम में संशोधन को सुर्खी बनाया है। पासपोर्ट के नियम बदले, 14 साल बाद बड़ी फीस, 1 जुलाई से पासपोर्ट बनवाना ₹1,000 महंगा होगा। दैनिक जागरण की खबर है, पासपोर्ट नागरिकता का प्रमाण पत्र नहीं है, सरकार के दावे ने बढ़ाई NRC की जरूरत। लोकसत्ता ने भी सरकार का वक्तव्य दिया है, पासपोर्ट विदेश यात्रा

0: श्रोताओं नमस्कार, इनसे मिलिए कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। श्रोताओं, हमारे छत्तीसगढ़ की माटी बहुत ही उपजाऊ है। इस माटी पे हम धन धान्य जैसे कई चीजों को उपजता देखते हैं। छत्तीसगढ़ धान का कटोरा है, साथ ही हम इसे लोकगीत का भी एक बहुत मधुर केंद्र मानते हैं। हमारे छत्तीसगढ़ से कई ऐसे कलाकारों ने जन्म लिया है जिनकी ख्याति आज छत्तीसगढ़ से बाहर भी देखने को मिलती है, सुनने को मिलती है। और जब हम हमारे छत्तीसगढ़ के लोकगीतों, गीत परंपरा, त्योहारों की बात करते हैं तो एक मधुरता हमारे छत्तीसगढ़ के गीतों में मिलती है। और श्रोताओं, जब हम बात करते हैं गीतों की, संगीत निर्देशन की, तो हमें आदत है ऐसे गीतों को सुनने की जिससे कि मन मुग्ध हो जाए। ऐसे ही मन मुग्ध होने वाली आवाज हमारे छत्तीसगढ़ में है और आज हमारे साथ स्टूडियो में भी है। सुनील सोनी जी का नाम आप सबने सुना है और इनके गीत आप गुनगुनाते भी हैं, हम भी गुनगुनाते हैं। कई त्योहारों, उत्सवों और सिनेमा तक में इनके गीतों की गूंज हमेशा सुनाई देती है। आज सुनील सोनी जी हमारे साथ हैं इस आकाशवाणी के स्टूडियो में। तो सबसे पहले सुनील जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: आप सभी ला जय जोहार, नमस्कार और स्नेही जन सभी जन ला मोर प्रणाम है
0: जी। तो सुनील जी, आज कार्यक्रम में आप आए हैं तो हम आपसे बातें करेंगे, पर उससे पहले हम आपसे चाहेंगे कि जिस तरह आपके मधुर गीतों को सुनने की हमारी आदत है, उस आदत को हम बरकरार रखें और इस कार्यक्रम की शुरुआत हम आपके एक मधुर गीत से करें।

ए बुरे पुरहिन खुल के बिराजे तोला झुमका, हाय हाय। ए बुरे पुरहिन खुल के बिराजे तोला झुमका, तोरे ककनी करना फूल झूले ना।

0: बहुत ही मधुर गीत और आपकी आवाज, वो आवाज जो हम कई सालों से सुन रहे हैं, अनवरत सुन रहे हैं और आगे भी सुनेंगे। तो सुनील सोनी जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हम सबसे पहले कार्यक्रम में आपके बारे में जानना चाहेंगे कि आपका इस संगीत का सफर कैसे शुरू हुआ।
1: बाल मंदिर से मैं गीत गात हूँ और हिंदी फिल्म के जतका ओ समय के जो बहुत प्रसिद्ध गीत रही ने किशोर

0: साहब के, रफी साहब के, लता मंगेशकर जी के, ये सब गीत से मोर शुरुआत हो है। और अगर विधिवत शास्त्रीय संगीत के शिक्षा ले हूं तो मैं 1984 में मोर प्रथम गुरु पंडित जागेश्वर प्रसाद देवांगन जी से मैं हारमोनियम वादन और शास्त्रीय संगीत के प्रवेश का प्रथम में भातखंडे महाविद्यालय मीरज से मोर पहला परीक्षा हुई और वहां से मोर संगीत के जो सफर है वो आज 2026 में आप सबके आशीर्वाद से, श्रोताजन, स्नेहीजन और गुरुजन और माता पिता के आशीर्वाद से आज भी अनवरत चलत है, जारी है, जिला आप मन बहुत प्यार देते हो।
1: जी जी, तो सुनील जी, हम जैसा जानते हैं कि बचपन से आपने गाने की ओर अपना रुख किया और आपकी रुचि थी गानों में, तो आप बताइए कि किन मंचों पे आपने शुरुआत की, जहां से जो आप मानते हैं कि एक मील का पत्थर रहा हो आपके बचपन में, जहां से आपको गायकी का जो एक सुरूर आपको जो लगा कि मुझे इस ओर जाना चाहिए।
0: मैं छत्तीसगढ़ी मंच में सोनहा अभियान से प्रारंभ कर रहे हूँ। दाऊ महासिंह चंद्राकर जी के एक टीम रही से सोनहा अभियान और एक टीम रही से पिनका पार से दाऊ रामचंद देशमुख जी के, और चंदेनी गोंदा में भी कुछ वर्ष मैं गुरुदेव हमारे जो खुमान साहु जी जो जिला मैं गुरुदेव मानता हूँ
1: जी जी,
0: तो उनकर सानिध्य में भी बहुत सारा संगीत के बारीकी जाने ला मिलिस
1: जी जी।
0: और शास्त्रीय संगीत की विधा में मैं पंडित जागेश्वर प्रसाद देवांगन जिनको मैं अपना पहला गुरु मानता हूँ, वो मेरे प्रथम गुरु रहे हैं और वहीं से मेरी प्रारंभिक शिक्षा शास्त्रीय संगीत की प्रारंभ हुई। उसके बाद मैं सुगम संगीत और गीत भजन में और लगातार जो पब्लिक जिला पसंद करते वो सब गीत मन लेकर के लगातार बने रहे हूँ। हाँ, एल्बम के माध्यम से 1990 में मोर पहली एल्बम आयरिस है और वहां से मुकुंद कौशल जी जो कि हमारे छत्तीसगढ़ के माने हुए कवि है, उनकर सानिध्य में हमें गुरुदेव ही माने रहे हूँ, तो आज तो हमारे बीच नहीं लेकिन बहुत अकन गीत मैं उखर मन के एल्बम में गाए हुए हूँ।
1: जी जी, तो सुनील जी, वो बचपन के कोई गीत है वो आपके जिससे आपको लगता हो कि इन गीतों को आज भी मैं गुनगुना दूं?
0: जय हो माँ बमलाई महिमा गजब है तोर दाई, जय हो माँ बमलाई महिमा गजब है तोर दाई। बमलेश्वरी मैया के एक भजन रही से जिला लगातार मंदिर में, मंदिर प्रांगण में वहां के शुरुआत रही से
1: जी।
0: और आप सबके बीच मुला बहुत सारा आशीर्वाद मिलिश।
1: जी जी, तो सुनील जी, जब हम बात करते हैं हमारे छत्तीसगढ़ की, छत्तीसगढ़ की परंपराओं की, गीतों की, यहाँ के जो छत्तीसगढ़ के लोक गीतों में आपको अगर हम गाने को कहा जाए तो आप किस ओर सबसे ज्यादा आपका रुझान होगा?
0: मोर पसंदीदा छत्तीसगढ़ी जो बोली भाखा है ओखर सबसे प्रिय मुला कर्मा अंग बहुत भात है
1: जी।
0: और कर्मा में मोर गीत मन अपन छत्तीसगढ़ के माटी एक कार्यक्रम रही से प्रहलाद सिंह कश्यप के परपोड़ी से,
1: अच्छा
0: उनकर सानिध्य में मोर एक गीत रही से जिला मैं मंच में गाऊ और मैं अपन पिताजी संग जुड़े रहा और उस समय मैं कोरस भी करूं गाना
1: जी।
0: और वो गीत रही से तेहा काबर मारे गोरी करे जामा लगे बान काबर मारे तेहा

0: কেকে মোলা দাদা মাতায় ডারে আহুচ কেকে গোরি কাবর মারে গোরি কাবর মারে গোরি করে জামা লাগে বান কাবর মারে।
1: जी जी बहुत खूबसूरत गीत है और आपकी आवाज ने बोल को और मधुर बना दिया है।
2: बस पिताजी लगातार मेरे संगीत के लिए लगे रहे हमेशा, गुरुजनों के पास सीखो, अपने से बड़ों से संगीत की बारीकियां जानो और लगातार अभ्यास करो। तो ये मेरे गुरु और मेरे माता पिता जो लगातार मेरे ऊपर आशीर्वाद दिए, ये उसी का परिणाम है जो मैं आप सभी को अपने संगीत से जोड़ पा रहा हूँ, अपने स्वरों को ईमानदारी से लगा पा रहा हूँ। कहीं कुछ ऐसे प्रभु इच्छा है जो आज तक आप सबके बीच बना हुआ।
1: जी जी जी सुनील जी, तो सुनील जी कार्यक्रम में हम एक छोटा सा अंतराल लेंगे और आपसे चाहेंगे कि आपकी पसंद का कोई एक हिंदी गीत हम सुने।

0: इनसे मिले कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और इस गीत के पहले हम बात कर रहे थे सुनील सोनी जी से, जो छत्तीसगढ़ के एक बहुत ही प्रसिद्ध गायक हैं, संगीत निर्देशन में भी इनका काफी योगदान है। तो सुनील सोनी जी, कार्यक्रम में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और कार्यक्रम में अब हम आपसे जानना चाहेंगे कि गायन की ओर से हम थोड़ा सा संगीत निर्देशन की तरफ चलते हैं, तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि संगीत निर्देशन के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ में अभी आपकी कौन कौन से जो है कार्य किए गए हैं।
1: संगीत निर्देशन में सबसे पहला मेरा जो फिल्म था वो माया, 2005 में हम इन गीतों को रिकॉर्ड किए थे
0: जी।
1: काने मा बाली गोरा गोरा गाल, गोरा गोरा गाल, ये ले तोर

0: ये बहुत ही प्रचलित हुआ गीत और लोगों को बहुत पसंद आई। इसमें के सभी गाने ये पीरित वाली रानी पिया दे मया पानी लगे है मुरबानी तोरे चितन मा एती तेती मा बे मतलब के वो तबाराला बजा डारे ना
1: जी। तो सुनील जी, जब गायन की बात होती है, जैसे आपने बताया कि छत्तीसगढ़ी फिल्मों में आपको कई बार अवसर मिले हैं, तो छत्तीसगढ़ी फिल्मों से आपको अवसर कब से मिलने शुरू हुए और अभी तक उन फिल्मों के बारे में आप बताएं जहां आपकी आवाज हम जिन फिल्मों में सुन सकते हैं।
0: जी, सन 2002 में मेरी पहली फिल्म की रिकॉर्डिंग हुई, झन भूलो माँ बापला, सतीश जैन जी की फिल्म, और वहां से प्रारंभ करते हुए आज 2026 में 100 से अधिक फिल्में हैं जिनमें मेरा संगीत और गायन है। और एल्बम अगर हम देखें तो 5000 से ऊपर एल्बमों में मेरे गीत संगीत हैं जिनको दर्शकों का प्यार मिल रहा है, वो लगातार सुन रहे हैं अपने कार में, अपने घर में जी। और जब मेरी छोटी छोटी बहनें जब इन गीतों को सुनती हैं सुबह सुबह एक पारिवारिक वातावरण में, जब वो लोग अपने मेरे गीतों को बजाते हैं तो मुझे हार्दिक खुशी मिलती है, एक सुकून मिलता है
1: जी जी।
0: और छत्तीसगढ़ी में दर्शक मन लग उठियाना चाहो कि जैसे हमार बोली भाखा, हमार खान पान, हमार रहन सहन, हमार पहरावा ओढ़ावा, हमार रिश्ते नाता, हर चीज में एक आरुकपन है, एक अमृतमय समा है, तो वही अमृतमय हमार गीत संगीत में भी है
1: जी जी।
0: और हमर कर्मा ददरिया चंदैनी पंडवानी, हमर लोक पुरोधा कलाकार मन के आशीर्वाद से जिखर माध्यम से मुला सीखे ला मिली, गुने ला मिली सुखर मन के कला ला, तो ये सब मोर आदर्श रहे हैं और ये सब गुरुजन के ही आशीर्वाद से मोर संगीत ला मैं निभा पात हूँ
1: जी। तो ये बहुत अच्छी बात अभी आपने बताई। तो आज सुनील जी, एक फिल्म थी भूलन द मेज
0: जी,
1: जिसे राष्ट्रीय स्तर पर भी काफी सराहा गया, 67वें नेशनल फिल्म अवार्ड में भी इस फिल्म की चर्चा रही, तो इसमें भी आपके गाए कुछ गीत हैं।
0: मेरे संगीत भी हैं इसमें, जिसमें हम लोगों ने शीर्षक गीत को कैलाश खेर जी से गवाया
1: जी।
0: ये मनोज वर्मा जी के निर्देशन में प्रथम छत्तीसगढ़ी फिल्म है जिसको 67वें राष्ट्रीय पुरस्कार और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया
1: जी।
0: और इसमें मीर अली साहब का एक गीत है
1: अच्छा।

0: मेरा संगीत है
1: जी।
0: और यहाँ की लगभग 200 से अधिक फिल्मों में मेरा गायन है
1: जी।
0: जी अभी लेटेस्ट में मायारू भौजी, महो दिलवाला तहु दिलवाली, इसके पहले मेरी फिल्म आई थी मोर छैया भुइया पार्ट टू, मोर छैया भुइया पार्ट थ्री, सुकवा
1: जी,
0: और अभी झनबुलो माँ बाप भाग दो में काम चल रहा है
1: जी।
0: और एक हमारी जो फिल्म है जो छत्तीसगढ़ में टॉप बिजनेस की, जिसको हम कह सकते हैं ले शुरू हो गए माया की कहानी।
1: अच्छा जी जी,
0: तो उसके भी गीत संगीत को बहुत प्रतिसाद मिला
1: जी जी। तो सुनी सुनी जब हम छत्तीसगढ़ की बात करते हैं तो यहाँ आप किस तरह देखते हैं कि जो हमारा संगीत का और फिल्म निर्देशन और संगीत निर्देशन जो क्षेत्र है वो कितना अभी जो है अनुकूल है?
0: यहाँ समृद्ध है हमारे कला
1: जी।
0: जी हाँ, के माटी में एक ऐसे धुन है जो बिहनिया से लेके रात्रि तक एक उत्सव के माहौल बनते हैं यहाँ के संगीत में, यहाँ के वाद्य मन में
1: जी।
0: और यहाँ की जो सरल स्वभाव है लोगन में, वो तो मैं कितो देवी देवता है हमार
1: जी।
0: जो कहीं ला समूचा विश्व में हमार यहाँ का हमार जो जनता जनार्दन है ये हमार देवी देवता के बराबर है, देवता धामी के बराबर है, जैन मन हमला सुनत है और ये आशीर्वाद सदा बने रहे कि हमारे छत्तीसगढ़ के गीत संगीत ला बहुत माया देते हैं
1: जी।
0: और आज विश्व में भी हमार छत्तीसगढ़ के महान गायिका तीजन भाई जी के पंडवानी आज समूचा विश्व में बगरे है और उखर मन के ख्याति जो जनता सराहना मिले है, तो ये बहुत बड़े बात है कि हमारे छत्तीसगढ़ के लोक कला ला नवा पहचान और बहुत सारा प्यार मिले
1: जी जी। तो सुनील सोनी जी, जैसे कि हमें ज्ञात है किशोर साहू राज्य अलंकरण सम्मान और फिल्म हांडा के लिए बेस्ट सॉन्ग ऑफ द छत्तीसगढ़ पुरस्कार भी आपको प्रदान किया गया था, इसके बारे में बताएं।
0: सबसे पहले तो संगीतकार के मैं बहुत बहुत हृदय से आभारी हूँ जो ये फिल्म से मुला जोड़ी, ओमी स्टाइलो के गीत और संगीत रही से
1: जी।
0: एक गोरीबो गोरीबो गोरीबो गोरीबो माया मुला तोर से भारी लागे लागे लागे लागे जब ले तला देखे रे मैं हो गये कोट नकस जटी जटी मैं देखे रे तोर दिखे थोथना बस तोर दिखे थोथना बस। ये गीत बहुत ही इंटरटेनिंग है और एमा बहुत सारा मंच में जब एला हमन प्रस्तुत करथन तो एमा जो आनंद मिलते और दर्शक मन के प्यार मिलते ये बहुत ही मतलब यादगार बना देते
1: जी।
0: और रही सवाल के राज्य सम्मान, राज्य अलंकरण पुरस्कार, किशोर साहू सम्मान जो मुला प्राप्त हुई उपराष्ट्रपति से और यहाँ के हमर मुख्यमंत्री साहब के हाथ से, तो ये जो ये मुरली बहुत यादगार पल जेल में भूल नहीं सकूं और आज मैं सब हमर गुरुजन माता पिता हो स्नेहीजन श्रोता जन मन के हृदय से आभारी हूँ कि ये जो आशीर्वाद है ये मोर कला पे बने रहे ताकि मैं अंतिम सांस तक संगीत ला निभात रहूं और पूरा हमर जो पारिवारिक जो हमारे रिश्ता नाता है छत्तीसगढ़ के जनता मन से वो सदा बने रहे, ओकर मन में नवा नवा गीत संगीत सृजन करके लात रहो
1: जी जी। सुनील जी, जब हम कभी हमारे छत्तीसगढ़ की जो पर्व त्योहारों का समय आता है तो उस समय भी आपके गीतों की धूम होती है, कभी हम सुनते हैं जैसे चलो चलो गिरोदपुरी धाम
0: जी।
1: और आवाज जो है इन गीतों में भी सुनने को मिलता है, तो हम चाहेंगे आपसे कि कुछ इस तरह के गीत हमें
0: अभी मोर हाल ही में पिछले वर्ष एक फिल्म आ रही से जेमा मोर परम पूज्य गुरु घासीदास बाबा के एक पंथी जिला बहुत माया दुलार मिलिस
1: जी।
0: सत्य नाम सत्य नाम सत्य नाम सार गुरु महिमाया पार

0: जी जी, बहुत बढ़िया, बहुत प्यारा गीत। तो इसके बारे में आप, जैसे हम भूलन द मेज फिल्म की बात हो रही है, तो जब इस फिल्म को वहां 67वें नेशनल फिल्म पुरस्कारों के लिए जब वहां पे इसका नाम आया फिल्म का, छत्तीसगढ़ के लिए काफी एक गर्व का विषय था। तो इस तरह हम देखें तो आपकी जो फिल्में हैं जिसमें भूलन द मेज है, चल हट कोनो देख ली, इश्क मरीज खरे, तो ऐसी ऐसी कितनी फिल्में हैं जो अभी जिसमें आपकी आवाज हम सुन सकते हैं?
1: 100 से अधिक है
0: जी,
1: और 100 से अधिक फिल्मों में

0: जी, तो सुनील जी, हमारी छत्तीसगढ़ की जो माटी है इसको जीवित रखने के लिए गीत संगीत कितना भागीदार होता है?
1: बिना साहित्य के संगीत अधूरा है
0: जी।
1: तो यहाँ के जो साहित्यकार मन है, उखर मन के गीत जो हमारे माटी से जुड़े हुए है, जैसे हमारे छत्तीसगढ़ के महान कवि लक्ष्मण मस्तूरिया जी
0: जी
1: और बाबूजी रामेश्वर वैष्णव जी, बद्री विशाल जी और छत्तीसगढ़ के पुरोधा खुमार लाल साव जी,
0: जी
1: दाऊ महासिंह चंद्राकर जी, दाऊ रामचंद देशमुख जी, और ये जो हमारे छत्तीसगढ़ के सब पुरोधा कलाकार मन है, उखर मन के जो अपन अभ्यास रही से, उखर मन के मेहनत रही से, ओ मल्ला हमन नवा पीढ़ी ला बिल्कुल जरूरी है कि हमारे नवा पीढ़ी मनोला सुने और अपन जीवन में उखर मन के प्रेरणा मान के अपन संगीत के अभ्यास में उमल्ला लगातार गुने और उखर मन के कार्यशैली भी पकड़े, ताकि हमारे छत्तीसगढ़ के माटी से हमारे नवा पीढ़ी जुड़े। जैसे मोर एक गीत है जिला मैं प्रेमचंद्राकर जी के माध्यम से फिल्म में गा रहे हूँ, जिला अपन बहुत प्यार दे,

0: इन गीतों में एक सी मिठास है जो सीधा कानों को भेदते हुए हृदय तक प्रवेश करती है। तो सुनिए जी, हर किसी के जीवन में कोई एक ऐसा क्षण होता है जो हमेशा के लिए यादगार बन जाता है। तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि वो पल, वो क्षण आपके जीवन में कोई ऐसा आया हो।
1: जी, 2004 में एक फिल्म आई थी भकला
0: जी,
1: जिनके गीतों को संगीत दिया था कल्याण सेन जी ने
0: जी,
1: और उसके जो निर्देशक, उसके प्रोड्यूसर राय सिंह ढिकोला जी,
0: जी
1: जिसको बाद में रिलीज किया दिनेश पटेल जी ने, उस फिल्म में मैं अनुराधा पोडवाल जी के साथ मदन शर्मा जी का एक गीत गाया था जिसको बहुत प्यार मिला। और उस फिल्म में लता मंगेशकर जी, जो हमारे महान गायिका हैं, जिनको मैं भगवान की तरह पूजता हूँ, माँ सरस्वती कहता हूँ, और तब से लेकर आज तक मेरा कोई डीपी भी चेंज नहीं हुआ
0: जी, जी।
1: मेरे व्हाट्सएप का डीपी भी आज वही है, माँ के साथ मेरा जो फोटो है उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हुए। वो पल मैं भूल नहीं पाऊंगा जब मैं स्वरलता स्टूडियो में हमारे विश्व की महान गायिका लता मंगेशकर जी का मुझे आशीर्वाद मिला और पूरा दिन भर हमने उनके साथ गुजारा और बहुत सारे फोटोग्राफ्स हैं घर में
0: जी।
1: लेकिन ये पल मैं कभी जिंदगी में नहीं भूल पाऊंगा, ये मेरे लिए धन्य हो गए, बहुत कीमती हैं
0: जी।
1: आज जब वो हमारे बीच नहीं है तो मुझे बहुत याद आते हैं और मैं अपने जीवन में उनको बहुत गुरु मानता हूँ, भगवान की तरह पूजता हूँ
0: जी। बहुत अच्छी बात है। और छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व आपने किया और लता मंगेशकर जी से आपकी मुलाकात हुई, ये वाकई में एक सौभाग्य की बात है
1: जी।
0: जी जी, तो सुनील सोनी जी, इनसे मिलिए कार्यक्रम में आज आप हमारे आकाशवाणी के स्टूडियो में आए, हमारे श्रोताओं से अपने अनुभव, अपनी बातें साझा की और बेशक ही हमारे श्रोता गीतों को सुनते रहे हैं, सुनते रहेंगे और आपके बारे में जो जानकारी आज उन्हें मालूम हुई है, आपके अनुभव जो उन्हें पता चल रहे हैं, ये बहुत खास रहेंगे। सुनील जी, आप आज आकाशवाणी आए और हमसे रूबरू हुए, हमारे श्रोताओं से रूबरू हुए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
1: आकाशवाणी से जाते जाते मैं दो पंक्ति हमारे श्रोताजन को कहना चाहूंगा।

0: इनसे मिलिए। इस कार्यक्रम में आप सुन रहे थे छत्तीसगढ़ के सुप्रसिद्ध गायक और संगीतकार श्री सुनील सोनी से रमाशंकर की बातचीत। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये रायपुर केंद्र है।
1: कार्यक्रम इनसे मिलिए अभी हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से रिले कर रहे थे। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर हम आकाशवाणी के अंबिकापुर केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 9 बज चुके हैं, आइए सुनते हैं बातों और गीतों का कार्यक्रम गुंजन।

बातों और गीतों के कार्यक्रम गुंजन में आज हमारे सभी श्रोता साथियों को नमस्कार। कल्पना सिन्हा की ओर से श्रोताओं, कार्यक्रम की शुरुआत में हमेशा की तरह कुछ लाइनें। अगर सब कुछ मिल जाएगा जिंदगी में तो तमन्ना किसकी करोगे, कुछ अधूरी ख्वाहिशें ही तो जिंदगी जीने का मजा देती हैं। जी हां श्रोताओं, कभी कभी जिंदगी का असली आनंद मंजिल में नहीं बल्कि अधूरे सफर को मुस्कुरा कर तय करने में छिपा होता है। हर अधूरा सपना हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है, इसलिए हमें उम्मीद का दामन कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। हमें ये याद रखना चाहिए कि जो चीज़ हमें चैलेंज करती है वही चीज़ हमें चेंज भी करती है। इसी बात पर आइए सुनते हैं कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाज़ों में फिल्म बरसात का ये बहुत ही प्यारा सा गीत।

0: कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाजों में अभी आपने सुना फिल्म बरसात का गीत। शब्द थे समीर के और संगीत था नदीम श्रवण का। और अब आइए सुनते हैं ये संदेश।
1: रुक जा, असली नोट से क्यों खेल रहा है
2: ब्रो? ये फटा है।
3: सुन, कते फते है पुराने नोट को
4: बैंक ब्रांच में एक्सचेंज कर सकते हैं।
2: वाओ, नया नोट मिलेगा?
3: हाँ, जिससे तू हमें पिज़्ज़ा पार्टी देगा।
4: आरबीआई कहता है स्मार्ट बनो, कूल रहो।
0: बात और गीतों का कार्यक्रम गुंजन इस समय आप आकाशवाणी के अंबिकापुर केंद्र से सुन रहे हैं। श्रोताओं, आज मुहर्रम है। मुहर्रम इस्लाम धर्म का एक अत्यंत महत्वपूर्ण और पवित्र महीना है। यह इस्लामी हिजरी कैलेंडर का पहला महीना माना जाता है और नए वर्ष की शुरुआत का प्रतीक है। मुहर्रम का विशेष महत्व इसकी 10वीं तारीख के कारण है, जिसे आशुरा कहा जाता है। इसी दिन 680 ईस्वी में करबला की ऐतिहासिक घटना हुई थी, जिसमें इमाम हुसैन और उनके साथियों ने सत्य, न्याय और मानवता की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया था। मुहर्रम केवल शोक का अवसर नहीं है, बल्कि यह साहस, त्याग, धैर्य और अन्याय के विरुद्ध संघर्ष का संदेश भी देता है। इस अवसर पर लोग इमाम हुसैन के बलिदान को याद करते हैं, धार्मिक सभाओं का आयोजन करते हैं और मानवता की सेवा का संकल्प लेते हैं। मुहर्रम हमें सिखाता है कि सत्य और न्याय की राह पर चलने के लिए हर कठिनाई का सामना दृढ़ता से करना चाहिए तथा समाज में प्रेम, भाईचारे और सद्भाव को बढ़ावा देना चाहिए।

0: जावेद अली और कैलाश खेर की आवाज़ में अभी आपने सुना फिल्म दिल्ली 6 का गीत, शब्द प्रसून जोशी के थे और संगीत एआर रहमान का था। श्रोताओं, हम आपको बता दें, आज सुबह 10 बजे छत्तीसगढ़ के स्कूल शिक्षा मंत्री श्री गजेंद्र यादव से ली गई विशेष भेंटवार्ता का प्रसारण किया जाएगा आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से। और अब आइए सुनते हैं ये संदेश।
1: चौपाल में नवा कार्यक्रम शुरू हुई सवे रविवार संझा के ठीक 7:30 बजे से।
2: हाँ, फरमाइशी कार्यक्रम हवे, संगी अपन फरमाइश भेजी और हमन गीत बजाबो।
1: कौन सा गीत?
3: सुघर गीत जैसे ए
4: तोरे खोपा मा चंदनी गोंदा।

0: बस हमर कार्यक्रम में मेल करी किसान वाणी अंबिकापुर 2026@gmail.com। जुलाई के पहला रविवार से कार्यक्रम शुरू हो ही।
1: चौपाल फरमाइश।

फिल्म परिंदा का ये बहुत ही प्यारा सा गीत आशा भोसले और सुरेश वाडकर की आवाजों में। खूबसूरत शब्द थे समीर के और संगीत था नदीम श्रवण का। श्रोताओं, हर साल 26 जून को अंतरराष्ट्रीय नशा निषेध दिवस मनाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य लोगों को मादक पदार्थों के सेवन और अवैध तस्करी से होने वाले गंभीर शारीरिक, मानसिक और सामाजिक दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करना है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 7 दिसंबर 1987 के अपने प्रस्ताव के द्वारा हर साल 26 जून को इस दिवस को मनाने का निर्णय लिया था। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य है नशा मुक्त समाज का निर्माण करना, नशे की लत से पीड़ित लोगों के प्रति सहानुभूति रखना और अवैध नशीली दवाओं की तस्करी के खिलाफ सख्त कदम उठाना है। आइए श्रोताओं, आज इस अवसर पर हम सभी ये संकल्प लें कि नशे से दूर रहकर स्वस्थ, सुरक्षित और सकारात्मक जीवन को अपनाएंगे। नशा केवल व्यक्ति के स्वास्थ्य को ही नहीं बल्कि परिवार, समाज और राष्ट्र की प्रगति को भी बाधित करता है। युवाओं की ऊर्जा और प्रतिभा तभी सार्थक हो सकती है जब वे नशे जैसी बुराइयों से दूर रहें। तो आइए हम सभी मिलकर जागरूकता फैलाएं, अपना योगदान दें और नशा मुक्त समाज के निर्माण में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें और दूसरों को भी स्वस्थ जीवन जीने के लिए प्रेरित करें।

0: सोनू निगम और श्रद्धा पंडित की आवाजों में अभी आपने सुना फिल्म संघर्ष का गीत, शब्द समीर के थे और संगीत जतिन ललित का था।
1: राहुल, ये अपनी डायरी में बार बार 230, 600 क्या लिख रहे हो? कोई लकी नंबर है क्या?
2: लकी ही समझो रिया, ये वो जादुई नंबर है जो मेरे बिजनेस को रातों रात पूरे अंबिकापुर में हिट कर देगा।
1: अच्छा, वो कैसे?
2: अरे बाबा, ये आकाशवाणी अंबिकापुर की पहचान है। यहाँ विज्ञापन देने का मतलब है अंबिकापुर का हर घर, हर दुकान और हर चौक चौराहा सिर्फ मेरी दुकान का नाम सुनेगा।
1: ओ, समझ गई, यानी 230-600। पर इस पर कॉल कैसे लगेगा?
2: बहुत सिंपल है, अंबिकापुर का STD कोड लगाओ 077774 और मिला दो 230-600।
1: अरे वाह, 077774 230-600, ये तो सच में लकी नंबर है। तो फिर देर किस बात की? अभी पधारो आकाशवाणी कार्यालय और अपने व्यापार को दो नई उड़ान।
2: बिल्कुल, आकाशवाणी अंबिकापुर, मेरे और आपके व्यापार की सफलता का सच्चा साथी।
0: श्रोताओं, रिमझिम रिमझिम और झमाझम बारिशों का मौसम लगभग दस्तक दे ही चुका है। बरसात का मौसम अपने साथ ठंडक और राहत तो लाता ही है, लेकिन श्रोताओं, कई बार आकाशीय बिजली और तेज तूफान जैसी प्राकृतिक आपदाएं भी लेकर आता है। बिजली गिरने से पहले श्रोताओं को संकेत दिखाई दे सकते हैं, जैसे अचानक काले बादलों का छाना, तेज गर्जना सुनाई देना, हवा का वेग बढ़ जाना और बालों का खड़ा होना और शरीर में झुनझुनाहट महसूस होना। ऐसे संकेत अगर हमें मिलते हैं तो हमें तुरंत सुरक्षित स्थान पर चले जाना चाहिए, क्योंकि ये हम पर बिजली गिरने का एक संकेत हो सकता है। बरसात के दौरान खुले मैदान, ऊंचे पेड़, बिजली के खंभे, टावर और जलाशयों से दूर रहें। गरज चमक के साथ उस समय मोबाइल को चार्जिंग पर लगाकर उपयोग में न लाएं और बिजली के उपकरणों से दूरी बनाए रखें। यदि घर से बाहर हो तो किसी पक्की इमारत या बंद वाहन में शरण ले लें। खेतों में काम कर रहे किसान तुरंत ही सुरक्षित स्थान पर पहुंच जाएं और साथ ही जलभराव वाले क्षेत्रों में जाने से बचें। साफ पेयजल का उपयोग करें और बच्चों का विशेष ध्यान रखें। थोड़ी सी सावधानी हमें बड़ी दुर्घटनाओं से बचा सकती है।

0: डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दो, डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दो, डीजे वाले बाबू
1: बेबी को बेस पसंद है।
2: इंस्टा फरमाइश आपकी पसंद मनभावन और ईमेल की गूंज के बाद हम आपके लिए लेकर आए हैं फरमाइशी फिल्मी गीतों का एक और कार्यक्रम इंस्टा फरमाइश। इसके लिए आपको करना है ये कि आकाशवाणी अंबिकापुर के इंस्टाग्राम पेज और फेसबुक पेज पर पोस्ट किए गए पोस्टर पर अपनी फरमाइश नाम और पता कमेंट सेक्शन में लिखना है। बस हो गया आपका काम खत्म और हमारा शुरू। फिर हम शामिल करेंगे आपको कार्यक्रम इंस्टा फरमाइश में, जिसे आप सुनेंगे हर

0: रात 8 बजे से 8:45 तक। तो देर किस बात की, आज ही अपने पसंदीदा गीत की फरमाइश भेजें और सुने कार्यक्रम इंस्टा फरमाइश।
1: बेबी को बेस पसंद है।
2: श्रोताओं, इस संदेश के पहले हमने आपको सुनवाया था अरिजीत सिंह की आवाज में फिल्म जैकपॉट का गीत। शब्द तुराज और अजीम सिराज के थे और संगीत निर्देशन शारिब तोशी का था। श्रोताओं, हर साल 26 जून को यातना पीड़ितों के समर्थन में संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। इस दिवस का उद्देश्य उन लोगों के प्रति संवेदना और समर्थन व्यक्त करना है जिन्होंने शारीरिक या मानसिक यातना का सामना किया है। संयुक्त राष्ट्र ने मानव गरिमा, स्वतंत्रता और मानव अधिकारों की रक्षा के लिए इस दिन को समर्पित किया है। यह अवसर हमें याद दिलाता है कि किसी भी प्रकार की यातना मानवता के विरुद्ध है और इसे समाप्त करने के लिए वैश्विक प्रयास आवश्यक है।

अलका याग्निक की आवाज में अभी आपने सुना फिल्म क्योंकि का गीत। शब्द समीर के थे और संगीत हिमेश रेशमिया का था।

0: राम राम हो विष्णु भैया,
1: राम राम विष्णु भैया।
0: ए दे भाई नगत, ए दे फट फट फट फट ट्रैक्टर में, ए दे राउर भीड़े ही।
1: कैसे कहिया विष्णु भैया, ए दे आगु तो ए दे वर्धमान ले खेत ला जोतत रहे।
0: हाँ
1: है नहीं।
0: हाँ।
1: बेरा हर ज्यादा लगे।
0: हाँ
1: मैं दे रेडियो कर कार्यक्रम ला सुने।
0: कौन कार्यक्रम ला?
1: ए दे किसान वाणी।
0: हाँ
1: तेकर में यदि जानकारी भेटाइस नहीं।
0: हाँ।
1: ये दे राउत ला हालू हालू बढ़िया लेहन खेती करना है नहीं तो नवा तकनीक ले खेती करी। अब यदि विशेषज्ञ मन कर जानकारी ला सुन पारे में।
0: हाँ।
1: आए?
0: हाँ।
1: तेकर में कहन की दे ट्रैक्टर ला बिसोहू बने राउर बिसोए के तो देखी राउर कर उपज नहीं बढ़ी नहीं।
0: हाँ।
1: ताहा
0: तो राउर ऐसे कहा थी कि ये दे सांझा 7:30 बजे रोज जे कार्यक्रम आयल किसान वाड़ी तेला सुन के।
1: हाँ।
0: ये दे बढ़िया बढ़िया तकनीक ला सीखे ही। ये तो महू तो सुनू भाई, ये दे आकाशवाणी अंबिकापुर कर ये सुघर कार्यक्रम किसान वाड़ी ला रोज 7:30 बजे ले 8 बजे कर बीच और मीडियम वेव 238.09 मीटर चाहे कही तो 1260 किलोहर्ट्ज पर नहीं। अब आज कर तो भाई कहता है कि ये दे FM में भी 100.2 MHz में भी एला है दे सुन सकते
1: हैं। हाँ, अभी तो शुरू है कि सा है।
0: हाँ, तो नागा तो देखी भाई अब माहू सुनू आकाशवाणी अंबिकापुर ले आए वाला कार्यक्रम खेती पाती ले जुड़ल कार्यक्रम
1: किसान वाड़ी।

श्रोताओं, चलते चलते हम पहुंच चुके हैं कार्यक्रम के अंतिम गीत की ओर, और इस गीत को सुनवाने से पहले एक और महत्वपूर्ण बात। जो लोग गिरकर भी संभल जाते हैं, अक्सर वही लोग इतिहास रच जाते हैं, और इसी बात पर हम आपको सुनवाते हैं ये गीत।

0: कुमार सानू और अनुराधा पौडवाल की आवाजों में अभी आपने सुना फिल्म दिल है कि मानता नहीं का गीत, शब्द समीर के थे और संगीत नदीम श्रवण का था। इसी गीत के साथ ही श्रोताओं, आज का बात और गीतों का कार्यक्रम गुंजन समाप्त करने की कल्पना सिन्हा को अनुमति दीजिए। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर हम आकाशवाणी के अंबिकापुर केंद्र से बोल रहे हैं। 9:55 होने वाले हैं थोड़ी देर में प्रादेशिक समाचार हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से रिले करेंगे।
1: यह आकाशवाणी रायपुर है, प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शशिकांत यादव।

और अब पेश है आपके आज के मुख्य समाचार। राज्य शासन ने विभिन्न नगरीय निकायों के लिए एल्डरमैन की नियुक्ति की। प्रदेश में परिवहन विभाग ने सभी बसों में वाहन लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस लगाना अनिवार्य किया और आज देश के विभिन्न भागों में मुहर्रम श्रद्धा और आस्था के साथ मनाया जा रहा है। अब समाचार विस्तार से। छत्तीसगढ़ में नगरी प्रशासन और विकास विभाग ने प्रदेश के विभिन्न नगरीय निकायों के लिए एल्डरमैन की नियुक्ति की है। विभाग द्वारा सरगुजा और रायपुर संभाग के नगरीय निकायों के लिए 200 से अधिक एल्डरमैन यानी मनोनीत पार्षदों की सूची जारी की गई है। नगरीय निकायों में एल्डरमैन मनोनीत पार्षद के रूप में कार्य करते हैं। वे निकाय की बैठक में भाग लेकर स्थानीय समस्याओं और विकास कार्यों पर सुझाव देते हैं, सड़क पानी सफाई जैसी नागरिक सुविधाओं से जुड़े मुद्दों को उठाते हैं। एल्डरमैन जनता और निकाय के बीच सहयोगी की भूमिका निभाते हैं। छत्तीसगढ़ में यात्री बसों की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए परिवहन विभाग ने सभी बसों में वाहन लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस यानी VLDT लगाना अनिवार्य किया है। परिवहन सचिव ने बस संचालकों को 15 दिन के भीतर बिना VLTD बसों वाली उपकरणों लगाने और बंद उपकरणों को चालू करने के निर्देश दिए हैं। नियमों का पालन नहीं करने वाले संचालकों पर मोटर यान अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी। छत्तीसगढ़ गृह निर्माण और अधोसंरचना विकास मंडल द्वारा आयोजित राज्य स्तरीय आवास मेला के अंतर्गत लकी ड्रॉ के विजेता हितग्राहियों को आज रायपुर में आयोजित एक समारोह में पुरस्कार दिए जाएंगे। इस समारोह में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और आवास मंत्री OP चौधरी मौजूद रहेंगे। इस मौके पर मंडल द्वारा आयोजित नवीन लोगो डिजाइन प्रतियोगिता के विजेता रचनाकार को 2.5 लाख रुपये की पुरस्कार राशि प्रदान की जाएगी। छत्तीसगढ़ के निजी विश्वविद्यालयों में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों और अभिभावकों के लिए निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग ने गाइडलाइन जारी की है। आयोग ने कहा है कि दाखिले से पहले विश्वविद्यालय की मान्यता, राजपत्र में प्रकाशन, संबद्धता और पाठ्यक्रम की मंजूरी की जांच जरूर कर लें। आयोग ने बताया कि निजी विश्वविद्यालय अपने कैंपस के बाहर अन्य संस्थानों को संबद्धता नहीं दे सकते। PhD में प्रवेश लेने वाले छात्र UGC के नियमों और शोध निर्देशक की योग्यता की भी पुष्टि करें। आयोग ने छात्रों से अपील की है कि भ्रामक विज्ञापनों से बचें और प्रवेश से पहले पूरी जानकारी प्राप्त करें। राज्य शासन ने डोंगरगांव नगर पंचायत का नगर पालिका के रूप में उन्नयन कर दिया है। नगरीय प्रशासन विभाग द्वारा इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गई है। जारी आदेश के अनुसार डोंगरगांव नगर पंचायत की सीमाएं ही डोंगरगांव नगर पालिका की सीमाएं होंगी। उप मुख्यमंत्री और नगरीय प्रशासन मंत्री अरुण साव ने कहा है कि नगर पालिका बनने के बाद डोंगरगांव में सड़क, नाली, पेयजल, स्वच्छता जैसी विभिन्न आधारभूत सुविधाओं के लिए विकास को गति मिलेगी। स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव से ली गई विशेष भेंटवार्ता का प्रसारण आकाशवाणी द्वारा अब से कुछ देर बाद किया जाएगा। यह कार्यक्रम सुबह 10 बजे से 10:25 तक प्रसारित होगा। प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी रायपुर द्वारा तैयार इस कार्यक्रम का प्रसारण छत्तीसगढ़ के सभी आकाशवाणी केंद्रों से किया जाएगा। आज देश के विभिन्न भागों में मुहर्रम श्रद्धा और आस्था के साथ मनाया जा रहा है। करबला में सत्य और न्याय की रक्षा के लिए पैगंबर मोहम्मद के नवासे हजरत इमाम हुसैन और उनके साथियों की शहादत की याद में मुहर्रम मनाया जाता है। इस मौके पर ताजिया निकाले जाते हैं और करबला के शहीदों के सर्वोच्च बलिदान की याद में मजलिसों का आयोजन किया जाता है। इधर छत्तीसगढ़ में भी मुहर्रम के मौके पर राजधानी रायपुर सहित कई शहरों में ताजिए निकाले जाएंगे। रायपुर के करबला में भी हजरत हुसैन की बड़ी कुर्बानी को याद करते हुए मजलिसों यानी धार्मिक बैठकों का आयोजन आज रात किया जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य शासन ने विभिन्न नगरीय निकायों के लिए एल्डरमैन की नियुक्ति की। प्रदेश में परिवहन विभाग ने सभी बसों में वाहन लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस लगाना अनिवार्य किया और आज देश के विभिन्न भागों में मुहर्रम श्रद्धा और आस्था के साथ मनाया जा रहा है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन 11:55 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।

मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 10 बजे हैं, अगला कार्यक्रम पुष्पी पलों में। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। प्रस्तुत है

छत्तीसगढ़ के स्कूल शिक्षा मंत्री श्री गजेंद्र यादव से ली गई विशेष भेंट वार्ता। ये प्रादेशिक समाचार एकांश की आकाशवाणी रायपुर की प्रस्तुति है।

0: श्रोताओं नमस्कार। प्रादेशिक समाचार एकांश के इस विशेष कार्यक्रम के साथ मैं विकल्प शुक्ला। श्रोताओं, छत्तीसगढ़ का स्कूल शिक्षा विभाग स्कूलों की दशा के साथ ही शिक्षा का स्तर सुधारने के लिए अनेक पहल कर रहा है। राज्य के स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव ने हाल ही में संभागीय संयुक्त संचालकों और जिला शिक्षा अधिकारियों की बैठक लेकर अनेक महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिए हैं। इनमें से एक दिशा निर्देश यह है कि अगले साल से स्कूलों का नया शैक्षणिक सत्र 1 अप्रैल से शुरू होगा और विद्यार्थियों को पाठ्य पुस्तक गणवेश भी 1 अप्रैल को ही दे दिए जाएंगे। इसके साथ ही स्कूलों में शिक्षकों की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए भी नई व्यवस्था लागू की जा रही है। श्रोताओं, इन सब विषयों पर बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं स्कूल शिक्षा मंत्री श्री गजेंद्र यादव। मंत्री जी, आकाशवाणी समाचार के इस कार्यक्रम में हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं।
1: धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।
0: मंत्री जी, जो नया शिक्षा सत्र है वो 16 जून से शुरू हो गया है छत्तीसगढ़ में, तो अधिक से अधिक बच्चे शिक्षा से जुड़े, कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित ना रहे, इसके लिए छत्तीसगढ़ शासन की ओर से, आपके विभाग की ओर से क्या प्रयास किए जा रहे हैं?
1: अभी हम लोगों ने कहा है कि जो बच्चा 16 जून से हम जो प्रारंभ किए हैं और जो कंटिन्यू अब्सेंट हैं, जो बच्चे अनुपस्थित हैं, प्रधान पाठक या संस्था प्रमुख उसमें विशेष फोकस करें। 30 जून तक देखें कि कौन बच्चा सबसे ज़्यादा अब्सेंट है, कौन बच्चा जो बिल्कुल नहीं आया हो, उन बच्चे को मार्क करें और हर हाल में हमको 30 जुलाई के पहले उस सारे बच्चों का फिर से एडमिशन कराना है। उसके लिए कल हम बैठक किए और बैठक में सारे जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि उन स्कूलों का आप चयन करें, चिन्हित करें, जहाँ ड्रॉप आउट बच्चे कितने हैं, कौन बच्चे जो लगातार अनुपस्थित हैं उनको चिन्हित करें और जाके वहाँ बात करें, उनके पालकों से बात करें, बच्चों से बात करें और वापस उनको स्कूल की ओर लाएं, ऐसा हम तैयारी कर रहे हैं।
0: मंत्री जी, आपने जिला शिक्षा अधिकारियों की एक बड़ी महत्वपूर्ण बैठक ली है और उसमें काफ़ी अहम दिशा निर्देश भी आपने उनको दिए हैं कि अगला शिक्षा सत्र जो है 2027-28 वाला, वो 1 अप्रैल से शुरू हो, और काफ़ी इसके बारे में हमारे श्रोताओं को विस्तार से बताएं।
1: देखिए, अभी तक हम लोग देखते थे कि सारे जो निजी विद्यालय हैं वो 1 अप्रैल से नया सेशन चालू करते हैं और हम लोग का भी पिछले बार का जो एग्ज़ाम है उसी पैटर्न में हुआ था, उसी तैयारी के आधार पे हम लोगों ने फरवरी में एग्ज़ाम लिया था। और चूंकि एक 10वीं बोर्ड का एक पेपर लीक होने के कारण फिर से री एग्ज़ाम लेना पड़ा, जिसके कारण हम थोड़ा पीछे हुए
0: जी।
1: हमारा टारगेट ये है 15 जून से स्कूल खुले। क्या होता है, 15 जून को जब स्कूल खुलता है
0: जी,
1: तो प्रवेश आते आते वो जुलाई चल देता है
0: जी।
1: और वो वास्तव में जो पढ़ाई रनअप होने की स्थिति में 15 जुलाई तक आ जाता है, तो 1-2 महीना हम ऐसे पीछे हो गए जाते हैं। 1 अप्रैल से स्कूल खुलेगा तो बच्चा मानसिक रूप से तैयार होगा, जितने उसके एडमिशन संबंधित और जितनी जो चीज़ हैं, जैसे हम यूनिफॉर्म देते हैं, साइकिल देते हैं, पुस्तक देते हैं, तो ये सब तैयारी हम 1 अप्रैल से करेंगे
0: जी।
1: तो वो अप्रैल में एडमिशन संसाधन और उपलब्धता सब होने के बाद
0: जी,
1: वो पढ़ाई का एक सेटअप प्रारंभ हो जाएगा
0: जी।
1: 16 जून का जब बच्चा आएगा तो जो पुराना सेटअप है उसमें सीधा पहले दिन से वो दौड़ना चालू होगा
0: जी।
1: तो जो 1 अप्रैल का हमको 15 दिन पूरी पढ़ाई के लिए मिलेगा और 16 जून से जो हम 15 जुलाई तक जो एडमिशन और जो काम में जो व्यस्त रहते हैं
0: जी,
1: वो पूरा 1 महीना पूरी तरह पढ़ाई में रहेगा। तो इस साल हम चूंकि अभी सेशन प्रारंभ हुआ है
0: जी,
1: हमने बैठक में कहा है कि कोर्स, सारे कोर्स हमको अनिवार्य रूप से सबको दिसंबर तक कंप्लीट करने हैं, जनवरी में रिवीजन करना है, फरवरी में एग्जाम करना है
0: जी।
1: और फरवरी में एग्जाम होगा तो हम हर हाल में 15 मार्च तक रिजल्ट घोषित कर देंगे
0: जी।
1: अभी से सारे जिलों को कहा गया है कि आप अनिवार्य परीक्षा समिति बनाएं, ताकि परीक्षा समिति

0: बनने से क्वेश्चन पेपर संधारण उसकी छपाई और उसके संचालन में दिक्कत ना हो
1: जी।
0: दूसरा जब परीक्षा समिति रहती है तो क्वेश्चन पेपर ही बनता है, मार्कशीट भी इजी बन जाता है, नहीं तो ज़्यादातर देखा जाता है कि वो अंकों को ही उपलब्ध नहीं करा पाते जिससे मार्कशीट मिलने में देरी होती है। तो ये सारी तैयारी हम अभी से करेंगे
1: जी।
0: तो हम दिसंबर तक कोर्स कंप्लीट करा पाएंगे, जनवरी में उनको रिविजन करा पाएंगे। ज़्यादातर क्या होता है कि हम थोड़ा लेट चलते हैं और ऐसा होता है कि फरवरी तक हमारा कोर्स कंप्लीट नहीं हो पाता जिससे कारण हमको अतिरिक्त क्लासेस लेनी पड़ती है। जब अतिरिक्त क्लासेस लेने की स्थिति में शिक्षक भी पूरी मन से तैयार नहीं हो पाता और बच्चे को भी बोझिल हो जाता है। तो हम लोगों ने तय किया है कि हर हाल में दिसंबर तक करना, जनवरी में रिविजन करना जिससे एग्जाम में कोई दिक्कत ना हो। और जब जनवरी में हम पढ़ाई कंप्लीट कर लेंगे, रिविजन कर लेंगे, फरवरी में एग्जाम करेंगे, मार्च में रिजल्ट घोषित हो जाएगा, तो 1 अप्रैल से आसानी से हम इसको प्रारंभ कर लेंगे।
1: मंत्री जी, हमें यह भी पता चला है कि आपने बैठक में जो है वो शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के लिए और शिक्षा का एक न्यूनतम स्तर निर्धारित करने के लिए एक मानक भी कुछ बताए हैं कि प्राथमिक स्तर के बच्चों को यहाँ तक का आना चाहिए, माध्यमिक स्तर के बच्चों को यहाँ तक का आना चाहिए, इसके बारे में बताएं कि वो मानक क्या हैं।
0: देखिए, मैं हमारा दुर्भाग्य है, जब 2009 में सरकार थी उन्होंने शिक्षा अधिकार कानून लाया, और शिक्षा अधिकार कानून तो अच्छी बात है लेकिन उन्होंने कई ऐसे चीज़ों को जोड़ दिया जो बच्चों के शिक्षा के स्टैंडर्ड को बढ़ाने के बजाय उसमें बच्चों की शिक्षा स्तर गिरते गया
1: जी।
0: जैसे एग्जाम नहीं लेना, बिना पढ़े पास करना, उससे जो यहाँ के जो बच्चे हैं उनका टैलेंट लगभग खत्म होने जा रहा था
1: जी।
0: तो वो हम लोगों ने ऐसा किया कि आज ये स्थिति है, शिक्षा का अधिकार लागू होने के बाद मिडिल स्कूल में जाएंगे, बच्चे को बोलते हैं कि पढ़ो तो एक मतलब पढ़ नहीं पाता। हाई स्कूल में पहुंचने वाले बच्चे को आप बोलोगे, नवमी बच्चे को इंग्लिश में कुछ लिखे तो लिख नहीं पाता
1: जी।
0: तो हमने बैठक में कहा है, पहले भी इसके पहले पिछले सत्र हम बैठक में बोले थे कि हमको हर हाल में जो मिडिल स्कूल तक के पढ़ने वाले बच्चे को उनको 20 तक का पहाड़ा कंठस्थ होना चाहिए, 12 खाड़ी आना चाहिए, उल्टा गिनती आना चाहिए, और धारा प्रवाह हिंदी को पढ़ना आना चाहिए 5वीं तक के बच्चे को
1: जी।
0: और मिडिल स्कूल के बच्चों को, 8वीं तक के बच्चों को 25 तक का पहाड़ा कंठस्थ होना चाहिए, और धारा प्रवाह इंग्लिश के सेंटेंस को उसको पढ़ना आना चाहिए। और उसके लिए हमने टास्क दिया है हिंदी पढ़ने वाले बच्चे को, हर हाल में सितंबर तक धारा प्रवाह हिंदी पढ़ने को आना चाहिए, और इंग्लिश पढ़ने वाले बच्चों को फरवरी 2027 तक उन बच्चों को इंग्लिश धारा प्रवाह पढ़ने के लिए आना चाहिए। और हमने कहा है कि प्राइमरी स्कूल, मिडिल स्कूल को विशेष रूप से फोकस करें,
1: बिल्कुल,
0: क्योंकि वो बेस है
1: जी।
0: अभी शिक्षा का अधिकार कानून आने से हमारा बेस लगभग उजड़ गया था
1: जी।
0: वापस हमको उसको मजबूत करना है, जब बच्चा बेस मजबूत रहेगा तो आगे शिक्षा उसको बहुत आसानी होगी, ऐसा हमने टास्क दिया हुआ है।
1: एक बात और है मंत्री जी, कि ये देखने में आता है कि ठीक है सुविधाएं हम देते हैं, हम एक ढांचा खड़ा कर देते हैं, लेकिन शिक्षक ही गैर हाजिर होते हैं स्कूल से। तो अब आपने ये भी एक व्यवस्था लागू करने की कोशिश आप कर रहे हैं कि बायोमेट्रिक हाजिरी होगी, ऑनलाइन होगी, VSK ऐप के माध्यम से होगी, और यदि अवकाश भी लेना होगा शिक्षकों को तो ऑफलाइन के बजाय ऑनलाइन ही आवेदन स्वीकार किए जाएंगे, इसके बारे में बताएं कि किस तरह से कसावट लाई जा रही है।
0: देखिए, हमने तो चूंकि छत्तीसगढ़ में माननीय विष्णु देसाई जी का सुशासन है, यहाँ पे चतुर्थ कर्मचारी जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का कर्मचारी से लेके मुख्य सचिव तक भी अपना अटेंडेंस भरते हैं
1: जी,
0: ऑनलाइन वो अपना अटेंडेंस करते हैं, बायोमेट्रिक से करते हैं। तो हमारा शिक्षक तो पढ़ा लिखा वर्ग है, शिक्षा का उजियारा समाज को दे रहा है
1: जी।
0: तो उनको भी जब शासन सुशासन चला रही है तो उसमें उनकी भी महत्वपूर्ण भूमिका रहनी चाहिए
1: जी।
0: तो हमने कहा है कि ऑफिशियल जितने क्लर्कल स्टाफ हैं
1: जी,
0: जो बीओ ऑफिस, डीओ ऑफिस, जेडी ऑफिस, वो बायोमेट्रिक अटेंडेंस करेंगे
1: जी।
0: और जितने फील्ड के जो हमारे शिक्षक हैं
1: जी,
0: वो VSK ऐप के माध्यम से अपना अटेंडेंस देंगे
1: जी।
0: उससे VSK ऐप हम जानते हैं कि जो सलाह जहाँ वो पढ़ाते हैं
1: जी,
0: उस परिसर के 50

0: के अवधि पे ही वो काम करेगा।
1: जी।
0: तो कब करेगा, मान लो वहाँ नेटवर्क भी नहीं है लेकिन आप उसमें अपलोड करोगे,
1: जी।
0: हम करेंगे,
1: जी।
0: तो वो समय भी आपको दिखाएगा कि आपने कितने बजे किया।
1: अच्छा।
0: तो उसमें जो कई लोग टाइम बे टाइम जाते हैं, नहीं जाते हैं, अपसेंट मार देते हैं,
1: जी।
0: उसमें कसावट आएगा।
1: जी।
0: दूसरी बात ये है कि उपस्थिति 100% रहेगी। ज्यादातर जगह शिकायत ये आती है कि शिक्षक किसी गांव का है, वो वहाँ पढ़ाने नहीं जाता,
1: जी।
0: वो कहीं दूसरी जगह अटैच रहता है।
1: जी।
0: अभी हमको ध्यान में आता है कि एवरेज हर जिलों में
1: जी।
0: जितने पद सेटअप स्वीकृत हैं
1: जी।
0: उससे डबल लोग वहाँ कार्यरत हैं।
1: अच्छा।
0: ये कौन लोग हैं? ये वही शिक्षक हैं जो स्कूल नहीं जाना चाहते
1: जी।
0: और ऑफिसों में अटैच हो जाते हैं, और बच्चों को जो मिलने वाली सुविधाएं हैं, जो शिक्षकों का जो लाभ मिलना चाहिए उससे वो वंचित हो जाते हैं। तो हमने अनिवार्य लागू किया है, जो जिस स्कूल में है वो उसी स्कूल में पढ़ाएगा।
1: जी।
0: और अटैच के लिए हमने कल बहुत कड़ाई से कहा है, चूँकि अब तो VSK ऐप में वो दिखता है कौन कहाँ से कर रहे हैं, बायोमेट्रिक्स दिखता है।
1: जी।
0: तो कल सारे DOs को अनिवार्य कहा है, और पहला और कल आखिरी वार्निंग दी गई है। इसके बाद अगर ये शिकायत आई तो संबंधित DOs के ऊपर हम कार्रवाई करेंगे।
2: एक बात और है मंत्री जी, कि स्कूल शिक्षा विभाग ने हाल ही में बच्चों में नैतिक मूल्य, राष्ट्रीय चेतना और भारतीय संस्कृति की समझ को विकसित करने के लिए कुछ दिशा निर्देश जारी किए हैं, जैसे राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत और अलग अलग तरह के जो मंत्रों का स्कूलों में वाचन किया जाएगा, इसके बारे में एक शेड्यूल भी बनाया गया है, इसके बारे में भी हमें बताएं।
0: देखिए, मैं बहुत स्पष्ट कह रहा हूँ, पहले हम लोग राष्ट्रगान गाते थे, फिर राष्ट्रगीत होता था। राष्ट्रगीत में जानबूझ के पिछली गवर्नमेंट तुष्टिकरण के लिए देश के सामने वंदे मातरम पूरा लाया नहीं। अभी माननीय हमारे देश के सचिव प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जब आह्वान किया कि वंदे मातरम के 150वीं वर्षगांठ हम मना रहे हैं, तो सारे स्कूलों में उसका गायन होना चाहिए। तो हमने माननीय मुख्यमंत्री श्रद्धा विष्णु देसाई जी के मार्गदर्शन में सभी स्कूलों में राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत, और इनके साथ हम 3 मंत्र दिए हैं। चूँकि सब स्कूलों हम जाते हैं, देखते हैं कि कोई भी कार्यक्रम प्रारंभ होने के पहले दीप जलाते हैं, तो दीप मंत्र हम कर रहे हैं
1: जी।
0: सरस्वती मंत्र करते हैं, गुरु मंत्र करते हैं, ये तो बिना बोले भी स्कूलों में किया जाता है
1: जी।
0: लेकिन उसको हमने कंपलसरी सबके लिए कहा है
1: जी।
0: उसमें दीप ज्योति परम ज्योति, बच्चों के अंदर आज जो तेजोमय होना चाहिए कहीं ना कहीं उसी कमी दिखती है
1: जी।
0: मैं ऐसा मानता हूँ कि ये मंत्र के प्रभाव से उनका तेजमय बढ़ेगा
1: जी।
0: सरस्वती वंदना करने से एक अच्छा भाव आएगा
1: जी।
0: क्योंकि हम शिक्षक मंदिर में जा रहे हैं और शिक्षा की देवी साक्षात सरस्वती है
1: जी।
0: तो वो बच्चों में पढ़ाई के प्रति, पुस्तक के प्रति एक भाव अच्छा रहेगा। गुरु मंत्र बोल रहे हैं, गुरु मंत्र में जो गुरु पढ़ाने जा रहे हैं, पहले एक समय था, आप सब ध्यान देंगे कि कोई गुरुजी बस से उतर के मेन रोड से, जैसे वो गांव की ओर आता था
1: जी।
0: तो राहगीर, जो जितने लोग राहगीर चलने वाले थे, रहते थे, चाहे खेतिहर, मजदूर, किसान, जिसके बच्चे नहीं पढ़ते थे
1: जी।
0: वो भी गुरुजी देख के उसको नमन करता था, प्रणाम करता था, नमस्कार करता था, एक भाव था
1: जी।
0: आज वो भाव में कहीं कहीं कमी आ रही है
1: जी।
0: ये गुरु मंत्र प्रतिदिन बच्चे हाथ जोड़ के जब बोलेंगे तो स्वाभाविक रूप से गुरु शिष्य का जो संबंध फिर से प्रगाढ़ होगा, फिर से एक भाव आएगा। आज देखिए, जब बच्चा हाथ जोड़ के गुरु मंत्र बोलेगा तो स्वाभाविक है कि बच्चे के मन में तो अच्छा आएगा ही, उसको देख के संबंधित शिक्षकों के मन में भी एक बड़ा एक सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। आज देखते हैं कई जगह, आप देखें कोई अश्लील कोई व्यवहार करते हुए एक न्यूज चैनल ने चलाया, कई जगह शिकायत आती है शिक्षक शराब के पहुंच जाते हैं, कई जगह शिक्षकों को हरकत अमानवीय रहता है
1: जी।
0: तो ये गुरु मंत्र बोलने से, सरस्वती मंत्र बोलने से, दीप मंत्र बोलने से एक सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। तो ये हमने ऐसा किया है कि इसको प्रार्थना के साथ करना
1: जी।
0: उसके बाद हमारे छत्तीसगढ़ में, देश में एक से एक महापुरुष हुए हैं जो उन्होंने देश के लिए, राष्ट्र के लिए, धर्म के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर किया है। हमने पूरे 12 महीने के 24 महापुरुषों का हमने चिन्हित किया है, संत रविदास।

0: आदिवासी हैं जिनके बारे में लोग जानते नहीं हैं, मन चंगा कठौती गंगा की बात उन्होंने कही, संत रविदास जी जीवनी हम पढ़ाएंगे, गुरु घासीदास जी की जयंती है, गहिरा गुरु हैं हमारे छत्तीसगढ़ के हैं, खूबचंद बघेल जी हैं, दाऊ कल्याण सिंह हैं जो जिन्होंने अपना सब कुछ दान दिया, भक्त माता राजीम हैं जिसको अनुयायी हमारे साहू समाज के लोग मानते हैं, ऐसे महापुरुष जो अवतरण हुए हैं उनकी जयंती हर महीने कोई ना कोई रहती है, तो उनका हर महीने दो महापुरुषों का बच्चे वाचन करेंगे। महापुरुषों का जीवन जैसे बच्चा बचपन से किसी इंस्पेक्टर को देखता है
1: जी,
0: तो उसके मन में आता है कि मैं आने आगे वाले समय में पुलिस बनूंगा, शिक्षक को देख के वो पुलिस बना, तो ऐसे ही हमारे देश के अलग अलग महापुरुष हैं
1: जी,
0: उनके जीवन को जब देखेंगे तो जीवन को देख के वो कुछ प्रेरणा लेंगे
1: जी।
0: ऐसा हमने कहा है कि पढ़ाई के साथ साथ महापुरुषों का जीवन भी वाचन होगा। सांध्य वेला में जब जब छुट्टी का समय होता है तो हमें सारे बच्चों का है राजगीत, चूंकि छत्तीसगढ़ महतारी है, धरती माता है, उनके गीत राजगीत हो, साथ ही साथ गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र का भी कुछ लोग जो विरोध कर रहे हैं, मैं करना चाहता हूँ कि अमेरिका के हम्बर्ड जो यूनिवर्सिटी ने कहा है कि प्रति सेकंड 1,10,000 ध्वनि तरंगे उत्पन्न करती है गायत्री मंत्र, और उन्होंने उसको कहा है सांध्य बेला में इसको अगर करा जाए, जो हम हिंदू संस्कृति में बोलते हैं नाद ब्रह्म जो बोलते हैं, जो संध्या कालीन जो समय होता है जब पूरी तरह धूप नहीं रहती, पूरी तरह संधेरा नहीं रहता, सांध्य अवसर में जो अगर गायत्री मंत्र का वाचन करे तो उसका बहुत सकारात्मक प्रभाव यूनिवर्स में पड़ेगा
1: जी।
0: उस नाते जब मैं बोल रहा हूँ हम्बर्ड यूनिवर्सिटी और वहाँ के वैज्ञानिकों ने जब शोध किया है
1: जी,
0: तो जब अमेरिका इसको एक्सेप्ट कर सकता है तो हमारे देश के जो गायत्री मंत्र का उद्भव तो हमारे ऋषि मुनियों की है, किसी धर्म का नहीं है, सनातन ये मंत्र है, वैदिक
1: जी,
0: मंत्र है
1: जी,
0: और ऐसा बोलना उचित नहीं है कि सिर्फ हिंदू धर्म का है, सभी का है, कोई अच्छा ही है उसको सबको ग्राह्य करनी चाहिए, तो उसमें एक बहुत सकारात्मक प्रभाव बच्चों के मन मस्तिष्क पड़ेगा। फिर पूरे विश्व में आज भारत ही है जो पूरे विश्व के सुख और शांति कल्पना करती है, इसलिए सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया का हम उसमें वो मंत्र बोला है। तो बोले का हेतु ये है बचपन से बाल अवस्था से
1: जी,
0: अगर हम बच्चों को मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, बौद्धिक रूप से और आध्यात्मिक रूप से हम उनको तैयार करेंगे, जब वो युवा बनेगा तो बहुत मजबूत रहेगा। हमारा प्लान ये है पढ़ाई में फोकस करना है
1: जी।
0: पढ़ाई के साथ साथ संस्कार भी रहे, शिक्षा भी रहे और जिस धरती में वो जन्म लिए हैं उस धरती के प्रति प्रेम भी रहे
1: जी।
0: तो ये सारी चीज़ों को समायोजन हमने हमारे प्रदेश के मुख्य माननीय विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में उनके निर्देशन में हम लोग कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि हमारा पढ़ा अच्छा बच्चा अच्छा इंग्लिश बोले, अच्छा मैथ्स भी आए, उल्टा गिनती आए, सीधा गिनती आए और साथ साथ कुछ मंत्रों का भी उनको ज्ञान रहे। आज मैं देखा हूँ एक इंटरव्यू में रामायण के किसी पार्ट को अगर दिल्ली की यूनिवर्सिटी के बच्चों पूछते हैं तो उनको मालूम नहीं रहता
1: जी।
0: कुछ मंत्रों के बारे में उनको मालूम नहीं रहता। तो मेरा ऐसा कहना है कि अगर हम पॉजिटिव चीज़ें लें तो उसका एक अच्छा प्रभाव पड़ेगा और बीच में हम भोजन मंत्र भी हमने जोड़ा है उससे मध्याह्न में
1: जी।
0: उसका हेतु है हम सब देखते हैं आज बच्चों में अनाज के प्रति कोई श्रद्धा भाव नहीं रहता
1: जी।
0: पहले हम जब भोजन करते थे तो प्रणाम करके भोजन करते थे, जिस थाली में हम भोजन करते थे उसमें हाथ नहीं धोते थे कि इसको हमने प्रणाम किया। आज बच्चे हम आप देखते हैं शादी पार्टियों में जाते हैं लोग भर थाली खाना लेते हैं आधा छोड़ देते हैं
1: जी।
0: जब वो मध्याह्न भोजन में हाथ जोड़ के जब वो सहना मंत्र बोलेगा तो उस बच्चों के मन में भोजन का भी सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, भोजन के प्रति अन्न के प्रति उसमें एक अच्छा ये रहेगा, उसका दुरुपयोग नहीं होगा
1: जी।
0: ये भाव हमारे अंदर है शिक्षक साथ संस्कार भी हो। संस्कार के लिए हम लोग कुछ वैदिक मंत्रों को हम किसी धर्म पंथ के हिसाब से नहीं, जो अनिवार्य आवश्यक है उसके हिसाब से हम उसको कर रहे हैं।
2: मंत्री जी एक बात और है कि आपने ये कोशिश की है कि स्कूलों में जो है शिक्षकों की उपस्थिति सुनिश्चित हो, लेकिन हम जैसा जानते हैं कि कई बार ये भी देखने में आता है कि जो स्कूल भवन है उनकी स्थिति बहुत अच्छी नहीं रहती।

0: और मानसून का आगमन हो गया है, मीडिया में भी खबरें आती हैं कि स्कूल जो है उसमें पानी टपक रहा है, तो जो स्कूलों की स्थिति है, जो स्कूल भवनों की जो स्थिति है, उनको सुधारने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं?
1: अभी हमने पहली बार स्कूल खुलने के 15 दिन पहले सारे जिलों को हमने 20 करोड़ की राशि मरम्मत के लिए जारी किया है। उसको इस संबंध में DOs को निर्देशित किया गया है कि जो पैसा मरम्मत के लायक है उसका उपयोग आप मरम्मत में करें
0: जी।
1: उसका उपयोग हो और सकारात्मक उपयोग हो। उसके अलावा अभी हम लोग इस बार भी 1300 स्कूल नए बिल्डिंग बनाने वाले हैं। अभी एक लिस्ट हम मंगाए हैं, संबंधित विधायक हैं, जनप्रतिनिधि हैं, उनके अनुशंसा पे आने वाले समय में जहाँ जहाँ अति आवश्यक है उन सारे भवनों को, अभी पिछले साल भी हमने लगभग 300 भवन दिया, इस साल भी हम नया भवन दे रहे हैं और आने वाले समय में कितने स्कूल ऐसे हैं जहाँ टॉयलेट नहीं है, टॉयलेट को चिन्हित करके कहाँ कौन सी आवश्यकता है, उन आवश्यकताओं को ध्यान में रख के आने वाले समय में धीरे धीरे करके जितनी भी समस्या है हम उसको दूर करने का प्रयास करेंगे।
0: एक सवाल और कि बच्चों को भी काफ़ी सुविधाएं शासन की ओर से दी जा रही हैं, जैसे निःशुल्क गणवेश है, पाठ्यपुस्तकें हैं, ये समय पर उपलब्ध हों, गुणवत्तापूर्ण हों, इसके लिए क्या कोशिश है?
1: देखिए अभी मैं बहुत स्पष्ट कह रहा हूँ, स्कूल 16 जून को खुला है, पूरे प्रदेश में यूनिफॉर्म पहुँच गया है।
0: अच्छा।
1: माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के निर्देश पे इस बार हम लोगों ने स्कूल खुलते ही बच्चों को यूनिफॉर्म हमने अनिवार्य दे दिया। कई जगह दोनों सेट दे दिए, कई जगह एक सेट दिए हैं, लेकिन पहले दिन उन बच्चों को यूनिफॉर्म मिला है। बुक भी, सरकारी स्कूल का बुक हर हाल में 30 जुलाई तक पूरे शासकीय स्कूलों का बुक हम पहले दे देंगे।
0: अच्छा।
1: और साइकिल की बात है तो साइकिल सभी बच्चों को नहीं देते, कुछ अनुसूचित जाति के बच्चों को हम देते हैं
0: जी।
1: तो वो भी साइकिल वितरण काम भी हम जुलाई में कर लेंगे। इनके अलावा मैं ये बताना चाहता हूँ, यूनिफॉर्म साइकिल तो हम दे ही रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री माननीय विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में पहली बार हम पूरे प्रदेश के हाई स्कूल हायर सेकेंडरी को स्मार्ट स्कूल में कन्वर्ट कर रहे हैं। ICT क्लास लैब हम बना रहे हैं, 22,000 कंप्यूटर लैब हम इस साल दे रहे हैं
0: जी।
1: और इस साल दिसंबर तक सारे स्कूलों में कम्प्लीट हो जाएगा
0: जी।
1: उसका लाभ ये होगा जो आपने VSK सिर्फ हम ऑनलाइन अटेंडेंट के लिए नहीं है
0: जी।
1: आने वाले समय में VSK अभी भी डाइट से जुड़ा है, सभी स्कूलों से ये जुड़ जाएगा, अभी नेटवर्किंग जुड़ जाएगा
0: जी।
1: तो आने वाले समय में सब जगह स्मार्ट क्लास है, LED लगा हुआ है
0: जी।
1: किसी स्कूल में मान लो सब्जेक्ट वाइज कोई टीचर नहीं पहुंच पाया
0: जी।
1: बच्चे खाली बैठे हैं तो उनका जो जैसे केमिस्ट्री क्लास है तो केमिस्ट्री क्लास को ऑनलाइन के रूप में वो बच्चों को जो स्मार्ट क्लासेस हैं उसमें उस पढ़ाई उसमें चलेगी। ये सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि ये है कि किसी के आने या नहीं आने से बच्चों के प्रभाव पढ़ाई में कोई भी प्रकार का प्रभाव दुष्प्रभाव नहीं पड़ेगा, पढ़ाई निर्बाध रूप से चलेगी। इसकी हम तैयारी कर रहे हैं, अभी चल रहे हैं, इस दिसंबर तक कम्प्लीट करने का हमारा प्रयास है। आने वाले समय में बहुत बेहतर शिक्षा व्यवस्था हम करेंगे।
0: एक अंतिम प्रश्न, जो शिक्षा का अधिकार है उसमें यह भी है कि जो गरीब पृष्ठभूमि के बच्चे हैं उनको अच्छे स्कूल में भी, मतलब उनको भी पढ़ने का अवसर मिले। छत्तीसगढ़ में भी इस दिशा में वो होता है, अभी पहला चरण हो गया है, दूसरा चरण होने वाला है। ये पारदर्शी तरीके से हो, प्रभावी ढंग से ये सब चीज़ें हों, तो वो गरीब बच्चों को भी अच्छे स्कूल में पढ़ने का मौका मिले, इसके लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?
1: अब इसमें तो सीधा लॉटरी सिस्टम है, जो एप्लीकेंट रहता है वैलिड एप्लीकेंट रहता है, जांच होता है कौन सही है गलत है, अगर उनका ये सही आता है, फॉर्म सही भरा रहता है तो उनकी लॉटरी लगती है। और जिसका भाग्य के ऊपर है लॉटरी, जिसको मिल गया वो उसमें शामिल हो जाता है।
0: मंत्री जी, हम जानते हैं कि बड़ा व्यस्त आपका समय रहता है, लेकिन उसके बावजूद आपने हमें खूब वक्त दिया, बहुत विस्तार से हमारे सारे सवालों के जवाब दिए और सारे विषयों पर बहुत विस्तार से हमारे श्रोताओं को जानकारी दी। हम आकाशवाणी समाचार की ओर से आपका हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। तो श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे छत्तीसगढ़ के स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव से हमारी यह बातचीत। अब हम आपसे विदा लेते हैं, नमस्कार।

0: अभी आपने सुना छत्तीसगढ़ के स्कूल शिक्षा मंत्री श्री गजेंद्र यादव से ली गई विशेष भेंट वार्ता। ये प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी रायपुर की प्रस्तुति थी। मीडियम वेव एफएम बैंड पर आकाशवाणी का रायपुर सरायपाली केंद्र है।
1: मीडियम वेव और एफएम बैंड पर हम आकाशवाणी के अंबिकापुर केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, आपको तापमान की सूचना दे रही। स्थानीय मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार पिछले 24 घंटों में अंबिकापुर नगर का अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। ये थी तापमान की सूचना। और अब एक नज़र आज के शेष कार्यक्रमों पर।

थोड़ी देर में आप सुनेंगे नए तराने कार्यक्रम। श्रोताओं, आज शुक्रवार और हर शुक्रवार को हम लेकर आते हैं श्रोताओं के समीक्षात्मक पत्रों और ईमेल पर आधारित कार्यक्रम चिट्ठी पत्री का सजीव प्रसारण। तो ये कार्यक्रम सुनिएगा 11:05 पर, दोपहर 12 बजे सुनिएगा NCERT और CIET द्वारा प्रायोजित शैक्षणिक कार्यक्रम उमंग। एक ही शीर्षक से लिए गए फिल्मी गीतों का कार्यक्रम चयन पेश करेंगे दोपहर 12:30 पर। कार्यक्रम खेती की बात का पुनः प्रसारण होगा दोपहर 1:05 पर। और ग्रामीण महिलाओं के लिए घर गोसाइन कार्यक्रम हम लेकर आएंगे दोपहर 1:10 पर। 1:40 पर पेश करेंगे श्रोताओं के ईमेल पर आधारित फिल्म संगीत का कार्यक्रम ईमेल की गूंज। गैर फिल्मी गीतों और गजलों का कार्यक्रम गीत गंदा पेश करेंगे दोपहर 2:30 पर। शाम 5 बजे सुनिएगा प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर घोट। भजन संध्या का प्रसारण होगा शाम 5:05 पर। और युवा श्रोताओं के लिए युवाणी कार्यक्रम हम लेकर आएंगे शाम 5:30 पर। फिल्म संगीत का कार्यक्रम माधुरी सुनिएगा आज शाम 6:30। ग्रामीण श्रोताओं के लिए चौपाल कार्यक्रम का प्रसारण होगा शाम 7:20 पर। इसमें ग्रीन इंडिया मिशन और नशा नाश की जड़, मादक पदार्थ विरोधी अंतर्राष्ट्रीय दिवस, इन विषयों पर होगी सामयिक चर्चा। इसके अलावा सुनिएगा क्रम आजकल, लोकगीत मंडी भाव और मौसम की जानकारी। रात 8 बजे पेश करेंगे सोशल मीडिया आधारित फरमाइशी कार्यक्रम इंस्टा फरमाइश। ईमेल की गूंज पेश करेंगे आज रात 9:30। रात 10 बजे सुनिएगा शास्त्रीय रागों पर आधारित फिल्म संगीत का कार्यक्रम राग प्रधान। और फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम मनभावन पेश करेंगे आज रात 10:30। श्रोताओं, ये थे हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले आज के शेष कार्यक्रम।

मीडियम वेव और एफएम बैंड पर हम आकाशवाणी के अंबिकापुर केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, आइए सुनते हैं नए फिल्मी गीतों का कार्यक्रम नए तराने। कार्यक्रम की शुरुआत में हम आपको सुनवा रहे हैं अरिजीत सिंह की आवाज में फिल्म छिछोरे का गीत। शब्द रचना अमिताभ भट्टाचार्य की है और संगीत निर्देशन प्रीतम का है। तो आइए सुनते हैं ये गीत।

0: डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दो, डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दो, डीजे वाले बाबू
1: बेबी को बेस पसंद है।
2: इंस्टा फरमाइश आपकी पसंद मनभावन और ईमेल की गूंज के बाद हम आपके लिए लेकर आए हैं फरमाइशी फिल्मी गीतों का एक और कार्यक्रम इंस्टा फरमाइश। इसके लिए आपको करना है ये कि आकाशवाणी अंबिकापुर के इंस्टाग्राम पेज और फेसबुक पेज पर पोस्ट किए गए पोस्टर पर अपनी फरमाइश, नाम और पता कमेंट सेक्शन में लिखना है। बस हो गया आपका काम खत्म और हमारा शुरू। फिर हम शामिल करेंगे आपको कार्यक्रम इंस्टा फरमाइश में, जिसे आप सुनेंगे हर रात 8:00 से 8:45 तक। तो देर किस बात की, आज ही अपनी पसंदीदा गीत की फरमाइश भेजें और सुने कार्यक्रम इंस्टा फरमाइश।

इस संदेश के बाद श्रोताओं, अब हम आपको सुनवा रहे हैं अरिजीत सिंह की आवाज में फिल्म आशिकी 2 का गीत। गीत और संगीत निर्देशन मिथुन का है।

0: वो अपनापन, वो भरोसा जो सालों साल आपने दिखाया हम पर,
1: उसे और मजबूत बनाने हम ला रहे हैं FM 100.2 MHz पर अपना प्रसारण।
0: साफ और स्पष्ट आवाज अब और भी बेहतर अंदाज में आपके दिलों तक।
1: तो जुड़िए आकाशवाणी अंबिकापुर से और जुड़िए आपके अपनों को।

0: अरिजीत सिंह और पलक मुच्छल की आवाज़ों में अभी आपने सुना फिल्म गब्बर इज बैक का गीत। और अब आइए सुनते हैं ये संदेश।
1: चौपाल में नवा कार्यक्रम शुरू हुई सवे रविवार संझा के ठीक 7:30 बजे से।
2: हाँ, फरमाइशी कार्यक्रम हवे

0: और पलक मुच्छल की आवाज़ों में अभी आपने सुना फिल्म गब्बर इज बैक का गीत। और अब आइए सुनते हैं ये संदेश।
1: चौपाल में नवा कार्यक्रम शुरू हुई सवे रविवार संझा के ठीक 7:30 बजे से।
2: हाँ, फरमाइशी कार्यक्रम हवे, संगी अपन फरमाइश भेजी और हमन गीत बजाबो।
1: कौन सा गीत?
3: सुघर गीत जैसे।

0: बस हमर कार्यक्रम में मेल करी किसानवाणी अंबिकापुर 2026@gmail.com। जुलाई के पहला रविवार से कार्यक्रम शुरू होही।
1: चौपाल फरमाइश।

नए तरानी कार्यक्रम का अगला गीता ये सुनते हैं जावेद अली की आवाज में। फिल्म का नाम है आक्रोश। शब्द इरशाद कामिल के हैं और संगीत निर्देशन प्रीतम का है।

0: चौपाल में नवा कार्यक्रम शुरू हुई सवे रविवार संझा के ठीक 7:30 बजे से।
1: हाँ, फरमाइशी कार्यक्रम हवे, संगी अपन फरमाइश भेजी और हमन गीत बजाबो।
0: कौन सा गीत?
2: सुघर गीत जैसे ए...

0: बस हमर कार्यक्रम में मेल करी किसान वाणी अंबिकापुर 2026@gmail.com। जुलाई के पहला रविवार से कार्यक्रम शुरू हो ही।
1: चौपाल फरमाइश।

0: केके की आवाज में अभी आपने सुना फिल्म राज 3 का गीत। शब्द रचना संजय मासूम की थी और संगीत निर्देशन जीत गांगुली का था। इसी गीत के साथ ही श्रोताओं, नए तराने कार्यक्रम अब समाप्त होता है। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर हम आकाशवाणी के अंबिकापुर केंद्र से बोल रहे हैं। कुछ पलों में हिंदी समाचार हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नीदरलैंड्स की महारानी मैक्सिमा से मुलाकात की। बैठक के दौरान भारत की डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना आधारित क्रांति से अधिक सुलभ और किफायती बन रही वित्तीय सेवाओं पर चर्चा की गई। उन्होंने कहा कि इस प्रयास से जीवन की सुगमता बढ़ रही है और बड़े पैमाने पर लोग सशक्त बन रहे हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि उन्हें नीदरलैंड्स की महारानी मैक्सिमा से मिलकर प्रसन्नता हुई। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत विश्व स्तर पर साझेदार देशों के साथ अपने अनुभव साझा करने के लिए प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री मोदी कल से 29 तारीख तक सेशल्स के राजकीय दौरे पर रहेंगे। वे सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में

0: विशिष्ट अतिथि के रूप में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री ने इससे पहले 2015 में सेशल्स का दौरा किया था। भारतीय रक्षा बलों के एक दल और नौसेना के दो जहाज भी समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रपति डॉ. पैट्रिक हार्मनी से द्विपक्षीय सहयोग के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा करेंगे। वाणिज्य उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने लंदन में ब्रिटेन के व्यापार और उद्योग मंत्री पीटर कायल से बातचीत की है। श्री गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि इस दौरान भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापार और आर्थिक सहयोग बढ़ाने के अवसरों पर चर्चा हुई। श्री गोयल ने बताया कि भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता 15 जुलाई से लागू होगा। गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में आज नई दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की 10वीं शीर्ष स्तरीय बैठक होगी। गृह मंत्रालय ने बताया कि मादक पदार्थ नियंत्रण ब्यूरो एनसीबी द्वारा आयोजित बैठक में केंद्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों और मादक पदार्थों की रोकथाम से जुड़े कानून प्रवर्तन एजेंसियों के प्रतिनिधि देश में मादक पदार्थों की तस्करी और दुरुपयोग से निपटने के प्रयासों को मजबूत करने के उपायों पर चर्चा करेंगे। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज नशा मुक्त भारत के निर्माण के सामूहिक संकल्प को दोहराने का आह्वान किया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री राधाकृष्णन ने इस आंदोलन को सक्रिय रूप से आगे बढ़ाने वाले विश्वविद्यालयों, शिक्षण संस्थाओं और संगठनों की सराहना की। सरकार ने औद्योगिक और वाणिज्यिक एलपीजी उपभोक्ताओं के लिए गैर घरेलू एलपीजी की आपूर्ति पर सभी क्षेत्रीय प्रतिबंध हटा दिए हैं।
1: एलपीजी की आपूर्ति को पश्चिम एशिया संकट से पहले के स्तर पर बहाल कर दिया गया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा कि संकट के दौरान निलंबित थोक एलपीजी की आपूर्ति को पूर्व स्तर से 50% तक बढ़ा दिया गया है। इससे वाणिज्यिक और औद्योगिक उपभोक्ताओं को महत्वपूर्ण राहत मिली है। यह बहाली एलपीजी आपूर्ति की स्थिति में हाल ही में हुए सुधार के बाद की गई है। इस बीच सरकार ने पीएनजी कनेक्टिविटी के विस्तार की प्रतिबद्धता दोहराई है। नीतिका गुप्ता, आकाशवाणी समाचार, नई दिल्ली।
0: अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने कहा है कि ईरान संघर्ष के आर्थिक प्रभाव और ऊर्जा की बढ़ती कीमतों के बावजूद भारत वैश्विक आर्थिक विकास का प्रमुख चालक बना हुआ है।
2: अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की संचार निदेशक जूली कोजेक ने कहा है कि मजबूत घरेलू मांग के समर्थन से भारत की अर्थव्यवस्था अनुकूल बनी हुई है। मुद्रा कोष ने वित्त वर्ष 2026-27 में भारत की अर्थव्यवस्था के 6.5% की वृद्धि दर का अनुमान बरकरार रखा है। ये अनुमान अप्रैल में किए गए संशोधन के अनुरूप है। सुश्री कोजेक ने कहा कि वर्तमान वित्त वर्ष की पहली तिमाही में भारतीय अर्थव्यवस्था ने उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन किया है। उन्होंने कहा कि IMF पश्चिम एशिया युद्ध विराम और होर्मुज जल मध्य के फिर से खुलने को वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए सकारात्मक मानता है। उन्होंने बताया कि तेल की कीमतें अपने उच्चतम स्तर से नीचे आ गई हैं, लेकिन युद्ध से पहले के स्तर से लगभग 10% अधिक हैं। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
0: आज मुहर्रम है। ये दिन पैगंबर मोहम्मद के नवासे हजरत इमाम हुसैन और उनके साथियों की शहादत की याद दिलाता है, जिन्होंने कर्बला में सत्य और न्याय की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। शहीदों की याद में आज ताजिया निकाले जा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा है कि हजरत इमाम हुसैन का बलिदान सत्य और न्याय के मार्ग पर अडिग रहने की प्रेरणा देता है। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि हजरत इमाम हुसैन का बलिदान आज भी लोगों को सत्य और न्याय के लिए डटे रहने की प्रेरणा देता है। T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में भारत की पुरुष टीम आज बेलफास्ट में मेजबान आयरलैंड के साथ पहला मैच खेलेगी। मैच भारतीय समयानुसार शाम 6 बजे से शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: हिंदी समाचार हम आकाशवाणी की दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित कर रहे थे। मीडियम वेव 238.09 मीटर यानी 1260 किलोहर्ट्ज और FM बैंड 100.2 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये अंबिकापुर केंद्र है। सुबह के 11:05 हुए हैं। प्रस्तुत है श्रोताओं के पत्रों और ईमेल पर आधारित कार्यक्रम चिट्ठी पत्री।

नमस्कार श्रोताओं, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके पसंदीदा पत्रों और ईमेल पर आधारित कार्यक्रम चिट्ठी पत्री में। मैं हूं आपकी अपनी रेडियो साथी

0: प्रियंका, श्रोताओं आपके पत्र और ईमेल संदेश हमारे लिए आपके स्नेह और विश्वास की अमूल्य निशानी है। इन्हीं भावनाओं को साझा करने और आपके पत्रों पर चर्चा करने हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं परमेंद्र कुमार जी। बहुत बहुत स्वागत है परमेंद्र जी आपका कार्यक्रम चिट्ठी पत्री में।
1: धन्यवाद प्रियंका, और साथ ही साथ चिट्ठी पत्री सुन रहे हमारे सभी श्रोताओं को मैं नमस्कार करता हूँ। और प्रियंका, देखिए आज एक बेहद खास अवसर पर हम अपने श्रोताओं से इस कार्यक्रम के माध्यम से रूबरू हैं
0: जी।
1: आज मुहर्रम का पावन अवसर है और आकाशवाणी परिवार की ओर से हम सभी श्रोताओं को मुहर्रम के इस अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। आप सभी स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और समाज में प्रेम, शांति तथा सद्भाव बनाए रखने में अपना योगदान देते रहें। और इन्हीं बातों के साथ अब चलते हैं हमारे पत्रों और ईमेल की तरफ
0: जी।
1: तो सबसे पहला पत्र आज आप किनका ले रही हैं
0: जी? ये पहला पत्र है बनियापारा धमतरी छत्तीसगढ़ राज्य से रामचंद्र माखीजा काफिर भाई, श्रीमती सविता माखीजा, बेबी स्वाति माखीजा, महेश कुमार कुकरेजा, संध्या कुकरेजा, माही पूजा छुटकी, शरद कुमार डोडवानी और पूरा माखीजा परिवार
1: जी।
0: आपने लिखा है कि आपका पूरा परिवार आकाशवाणी अंबिकापुर के कार्यक्रम नियमित रूप से सुनता है और सभी प्रसारण आपको बेहद पसंद आते हैं। आपने अपने पत्र में 20 जून को तरुण जी द्वारा प्रस्तुत नमस्कार सरगुजा तथा गुंजन कार्यक्रम की सराहना की है। वहीं 22 जून को पौलमी जी द्वारा प्रस्तुत गुंजन और अक्षय जी द्वारा आपकी बात आपके गीत कार्यक्रम की प्रस्तुति और श्रोताओं से आत्मीय संवाद की आपने प्रशंसा की है। साथ ही कार्यक्रम निर्माण एवं संयोजन के लिए आपने परमेंद्र जी को बधाई लिख भेजी है। इसके अलावा 24 जून को तरुण जी द्वारा प्रस्तुत इंस्टा फरमाइश, ईमेल की गूंज और मनभावन कार्यक्रमों की आपने सराहना लिख भेजी है। इतना लिखते हुए आपने पत्र का समापन किया है।
1: धमतरी से हमारे प्रिय श्रोता रामचंद माखीजा जी, श्रीमती सविता माखीजा जी तथा पूरे माखीजा परिवार को आकाशवाणी अंबिकापुर परिवार की ओर से स्नेह भरा नमस्कार। आपके लगातार प्राप्त होने वाले आत्मीय संदेश हमारे लिए बहुत ही मूल्यवान हैं। जिस बारीकी से आप हमारे कार्यक्रमों को सुनते हैं, उनकी विषय वस्तु, गीतों और प्रस्तुतियों का उल्लेख करते हैं, आपके गहरे जुड़ाव को दर्शाता है। जानकर प्रसन्नता हुई कि नमस्कार सरगुजा, गुंजन, आपकी बात आपके गीत, इंस्टा फरमाइश, ईमेल की गूंज और मनभावन जैसे कार्यक्रम आपको पसंद आए। हमारे सभी कलाकार साथियों के लिए आपने स्नेह भरे शब्द जो लिख भेजे हैं निश्चित रूप से नई ऊर्जा और उत्साह लेकर आएंगे। रेडियो की सबसे बड़ी ताकत यही है कि वह देश के अलग अलग कोनों में बसे श्रोताओं को एक परिवार की तरह जोड़ता है। आपका पूरा परिवार जिस आत्मीयता से हमारे साथ जुड़ा है, हमारे लिए गर्व की बात है। आपका स्नेह, विश्वास और निरंतर प्रोत्साहन हमारे लिए अनमोल है। आगे भी इसी तरह अपने विचार, सुझाव और शुभकामनाएं भेजते रहिए। धमतरी के पूरे माखीजा परिवार को आकाशवाणी अंबिकापुर की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं, स्वस्थ जीवन की मंगल कामनाएं और बहुत बहुत धन्यवाद। और प्रियंका, आप चलते हैं आज के अगले पत्र की ओर।
0: जी, ये अगला पत्र है अड़ार नांदघाट से माखन वर्मा, चांदनी राहुल, गोपी भूपेश और दीपेश वर्मा जी का। आपने राम राम, जय जोहार और नमस्कार लिखा है
1: जी।
0: 24 जून को रात्रि 8 बजे इंस्टा फरमाइश तथा 10 बजे ईमेल की गूंज में श्रोताओं के संदेशों और ईमेल के साथ उनकी पसंद के मधुर गीत सुनवाए गए। दोनों कार्यक्रम आपको बहुत पसंद आए हैं। सुंदर प्रस्तुति के लिए आपने तरुण जी को बधाई लिख भेजी है। 25 जून को प्रातः 9 बजे गुंजन में संविधान की उपयोगी जानकारी, इसके अलावा मदन मोहन और करिश्मा कपूर के जन्मदिवस पर सुनवाए गीत की शानदार प्रस्तुति के लिए आपने विजय जी को बधाई दी है। साथ ही आपने आकाशवाणी परिवार को बधाई लिख भेजी है और इतना लिखते हुए आपने पत्र का समापन किया है।
1: राम राम, जय जोहार और नमस्कार अड़ार नांद घाट के हमारे प्रिय श्रोता परिवार, माखन वर्मा जी, चांदनी जी, राहुल जी, गोपी जी, भूपेश जी, दीपेश वर्मा जी, आप सभी को आकाशवाणी अंबिकापुर परिवार की ओर से स्नेह भरा नमस्कार, अभिवादन। बेहद ही आत्मीय पत्र लिख भेजा है आप सभी ने। 24 जून के इंस्टा फरमाइश और ईमेल की गूंज कार्यक्रमों के बारे में जो आपने प्रेम और सराहना व्यक्त की है, उसके लिए आपका हार्दिक धन्यवाद। जानकर खुशी हुई कि आपको

0: श्रोताओं के संदेशों के साथ साथ प्रस्तुत किए गए मनपसंद गीत अच्छे लगे। 25 जून के कार्यक्रम गुंजन में संविधान से जुड़ी जानकारी और अभिनेत्री करिश्मा कपूर के जन्मदिवस पर आधारित गीतों की प्रस्तुति भी आपको पसंद आई। यह कहीं ना कहीं हम सभी के लिए जो कार्यक्रम निर्माण से और प्रस्तुति से जुड़े हुए साथी हैं उनका निश्चित रूप से उत्साह बढ़ाएगी। आप जैसे नियमित और जागरूक श्रोता ही हमारी सबसे बड़ी प्रेरणा है। आपका स्नेह हमें हर दिन बेहतर कार्यक्रम प्रस्तुत करने का विश्वास देता है। इसी तरह अपने विचार, सुझाव और शुभकामनाएं भेजते रहिए। अड़ार नांद घाट के पूरे श्रोता परिवार को आकाशवाणी अंबिकापुर की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं, स्नेह और बहुत बहुत धन्यवाद।
1: और ये अगला पत्र है रायगढ़ वार्ड क्रमांक 3 से हमारे नियमित श्रोता रोहित जयलक्ष्मी जी का।
0: जी,
1: आपने अपने पत्र में 15 जून को स्वाति उपाध्याय जी द्वारा प्रस्तुत नमस्कार सरगुजा और गुंजन कार्यक्रम की सराहना करते हुए उन्हें बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। इसी दिन दोपहर के प्रसारण में पूनम उपाध्याय जी द्वारा प्रस्तुत आपकी पसंद चयन ईमेल की गूंज और गीत गंधा कार्यक्रमों की भी प्रशंसा की है। और इसी दिन के सांध्यकालीन सभा में मृदुल गुप्ता जी द्वारा प्रस्तुत इंस्टा फरमाइश कार्यक्रम आपको बहुत पसंद आया। इसके बाद आपने 19 और 25 जून को विजय कुमार जी द्वारा प्रस्तुत नमस्कार सरगुजा और गुंजन कार्यक्रम की सुंदर प्रस्तुति की प्रशंसा की है। साथ ही 21 जून को रैना जी द्वारा प्रस्तुत आपकी पसंद सबरंग ईमेल की गूंज और गीत गंधा कार्यक्रमों के गीत संगीत की सराहना करते हुए सभी प्रस्तुतकर्ताओं और आकाशवाणी अंबिकापुर परिवार को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं प्रेषित की हैं और पत्र का समापन किया है।
0: नमस्कार रायगढ़ के हमारे प्रिय श्रोता मित्र रोहित राजलक्ष्मी जी, जयलक्ष्मी जी, आकाशवाणी अंबिकापुर परिवार की ओर से आपको स्नेह भरा नमस्कार और बहुत बहुत धन्यवाद। आपका विस्तृत और बेहद आत्मीय पत्र हमें मिला और जानकर अत्यंत प्रसन्नता हुई कि आपने हमारे विभिन्न कार्यक्रमों को नियमित रूप से सुना, उनकी प्रस्तुति पर आपने विचार हमारे साथ साझा किए। नमस्कार सरगुजा हो, गुंजन, ईमेल की गूंज, आपकी पसंद, चैन, इंस्टा फरमाइश, गीत गंधा और मिश्रित गीत संगीत का कार्यक्रम, सबरंग जैसे कार्यक्रम आपको पसंद आए, ये हमारे लिए खुशी की बात है। आपने हमारे सभी कलाकार साथियों के लिए जो स्नेह और शुभकामनाएँ लिख भेजी है वह निश्चित रूप से सभी तक इस कार्यक्रम के माध्यम से पहुंच रहा है। आप सभी श्रोताओं का विश्वास और अपनापन ही हमारे लिए सबसे बड़ा सम्मान और प्रेरणा है। हमारा प्रयास हमेशा यही रहता है कि जानकारी, मनोरंजन और मधुर संगीतों से भरपूर कार्यक्रम आपके लिए निरंतर हम प्रस्तुत करते रहें। इसी तरह अपने विचार, सुझाव और स्नेह भरे संदेश हमें भेजते रहिए। रायगढ़ के सभी श्रोता मित्रों को आकाशवाणी अंबिकापुर परिवार की ओर से हार्दिक धन्यवाद, शुभकामनाएं, स्नेह। और प्रियंका जी, अब मन कर रहा है कि कुछ गीत संगीत हो जाए, हमारे श्रोताओं को भी हम सुनाते चलें।
1: जी बिल्कुल, तो आइए सुनते हैं बजरंगी भाईजान फिल्म का ये गीत अदनान सामी की आवाज़ में।

0: एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम चिट्ठी पत्री में। और अगला पत्र जो हम ले रहे हैं वो मिला है हमें अनूपपुर मध्य प्रदेश से जयमंत्री केवट जी का। आप लिखती हैं कि आकाशवाणी अंबिकापुर के लगभग सभी कार्यक्रम आप नियमित रूप से सुनती हैं। 19 जून की सुबह में विजय कुमार जी की प्रस्तुति आपने सुनी, साथ ही विचार बिंदु में कल्पना सिन्हा जी का अल्हड़पन विषय पर आलेख आपको पसंद आया। दूसरी सभा में पौलमी जी ने चिट्ठी पत्री में पत्रों का सुंदर व आत्मीय वाचन किया। प्रमेंद्र जी ने श्रोताओं के पत्रों के उत्तर जिस सहजता और सादगी से दिए जो कि आपको बेहद पसंद आया। 20 जून को सुबह तरुण जी की मुस्कान से सजी गुंजन की प्रस्तुति शानदार रही। दोपहर में मृदुल वर्मा जी ने आपकी पसंद और ईमेल की गूंज प्रस्तुत किया जो आपको काबिले तारीफ लगा। शाम को विक्की गुप्ता जी द्वारा प्रस्तुत इंस्टा फरमाइश कार्यक्रम भी आपको पसंद आया। 21 जून को दोपहर में रैना जी के साथ आपकी पसंद और सबरंग कार्यक्रम, साथ ही ईमेल की गूंज में विश्व संगीत दिवस के अवसर पर प्रस्तुत मधुर गीतों ने मन को आनंदित कर दिया। और आपने लिखा है कि उस समय आप काम में व्यस्त थी और इसलिए ईयरफोन लगाकर आपने पूरा कार्यक्रम सुना। 22 जून को सुबह पौलमी जी की प्रस्तुति सुनी, विचार बिंदु में मृदुल वर्मा जी का संघर्ष विषय पर आलेख प्रेरणादायक लगा। आपका प्रिय कार्यक्रम परिक्रमा भी आपने सुना जिसमें अंजनी कुमार पांडे जी की प्रस्तुति को आपने सराहा है। शाम की सभा में शक्ति जी ने इंस्टा फरमाइश ईमेल की गूंज और मन भावन की बेहतरीन प्रस्तुति दी। 23 जून के गुंजन के लिए राजू और इसी दिन दोपहर में आपकी पसंद चयन और ईमेल की गूंज की शानदार प्रस्तुति के लिए शबनम खानम जी को आपने बधाई दी है। 24 जून को सुबह गोपेश जी के नमस्कार सरगुजा में सुनाया गया होली गीत मन को झूमने पर मजबूर कर गया। शाम की सभा में विचार बिंदु में पौलमी जी का आलेख पसंद आया। इसके बाद तरुण कुमार जी की इंस्टा फरमाइश की प्रस्तुति भी आपको पसंद आई है। और आपने लिखा आपने कई कार्यक्रम सुने हैं लेकिन उनका उल्लेख आप पत्र पर नहीं कर पाई हैं और आकाशवाणी परिवार को आप बधाई देते हुए पत्र का समापन करती हैं।
1: अनूपपुर मध्य प्रदेश की हमारे प्रिय श्रोता जयमंत्री केवट जी, आकाशवाणी अंबिकापुर परिवार की ओर से आपको स्नेह भरा नमस्कार। आपने बेहद विस्तृत और आत्मीय पत्र लिख भेजा है और ये सचमुच मन को प्रसन्न करने वाला पत्र लिख भेजा है। जिस बारीकी और अपनत्व के साथ आपने पूरे सप्ताह के कार्यक्रम को सुना, उनकी विषय वस्तु, प्रस्तुतियों और गीत संगीत का उल्लेख किया, आपके गहरे जुड़ाव को दर्शाता है। जानकर विशेष खुशी हुई कि विचार बिंदु, गुंजन, चिट्ठी पत्री, आपकी पसंद, ईमेल की गूंज, इंस्टा फरमाइश, परिक्रमा, चयन और अन्य कार्यक्रमों को आपने सुना और ये कार्यक्रम आपके मन को छुआ। आपने हर प्रस्तोता के प्रयास को जिस आत्मीयता से सराहा है, यकीन मानिए ये हमारे लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है। आपने लिखा कि कई बार व्यस्तता रहने के कारण आप ईयरफोन लगाकर कार्यक्रम सुनती हैं और ये कहीं ना कहीं आपका अपनापन और लगाव को दर्शाता है और ये हमारे लिए किसी सम्मान से कम नहीं है। आपकी शुभकामनाएँ हमारे पूरे परिवार को कार्यक्रम के माध्यम से पहुँच रही हैं। हमारा प्रयास आगे भी यही रहेगा कि ज्ञान, संगीत, साहित्य और संवेदनाओं से भरपूर कार्यक्रम आपके लिए हम लेकर आते रहें। इसी तरह आप अपना स्नेह, सुझाव और विश्वास बनाए रखिए। अनूपपुर के सभी श्रोता साथियों को आकाशवाणी अंबिकापुर परिवार की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं और बहुत बहुत धन्यवाद। और प्रियंका जी, अब चलते हैं आज के अगले पत्र की ओर।
0: जी, अब जो ईमेल पत्र हम ले रहे हैं वो है चांदनी चौक गंडई पंडरिया से। पवन कुमार सेन, प्रभा देवी सेन, लक्की विक्की, नानू रविंद्र और रौनक सेन जी का
1: जी।
0: ये लिखते हैं, कभी कभी कहीं जाना हो और हाथों में मोबाइल हो, उस मोबाइल पर आकाशवाणी अंबिकापुर का प्रसारण सुनने को मिल जाए तो फिर क्या कहने, सफर आनंदमय हो जाता है।

0: और समय कब बीत जाता है पता ही नहीं चलता। ऐसा ही एक सुखद अनुभव आपको 19 जून शुक्रवार को हुआ, जब आप अपने एक मित्र के साथ मोटरसाइकिल से पास के एक गांव जा रहे थे। जैसे ही घड़ी में सुबह 11:05 हुए, आपने मोबाइल पर आकाशवाणी अंबिकापुर का प्रसारण लगाया। उसी समय चिट्ठी पत्री कार्यक्रम का आगाज हो चुका था। कार्यक्रम प्रमुख प्रमेंद्र कुमार जी और पौलमी जी की आत्मीय और मनमोहक प्रस्तुति सुनते सुनते आपका पूरा सफ़र कैसे बीत गया इसका ज़रा भी एहसास नहीं हुआ। लगभग 55 मिनट का रास्ता पलक झपकते ही पूरा हो गया। इसी क्रम में आपकी पसंद गाँव कर गीत, ईमेल की गूंज, आपकी बात, आपके गीत और गुंजन जैसे कार्यक्रमों का भी आपने भरपूर आनंद लिया। आकाशवाणी अंबिकापुर के सभी उद्घोषक साथियों की मधुर और आत्मीय प्रस्तुति सीधे दिल में उतर जाती है। ऐसे सुंदर, बेहतरीन, लाजवाब मनमोहक और सदाबहार कार्यक्रमों के लिए आकाशवाणी अंबिकापुर परिवार को आपने बधाई और शुभकामनाएं दी हैं।
1: चांदनी चौक गंडई पंडरिया के हमारे प्रिय श्रोता परिवार, पवन कुमार सेन जी, प्रभा देवी सेन जी, लक्की, विक्की, नानू, रविंद्र और रौनक सेन जी, आप सभी को सबसे पहले आकाशवाणी अंबिकापुर परिवार की ओर से स्नेह भरा नमस्कार। आपका पत्र पढ़कर ऐसा लगा जैसे हम भी आपके साथ उस मोटरसाइकिल की यात्रा में शामिल हो गए हों। जिस आत्मीयता से आपने लिखा कि सफ़र के दौरान मोबाइल पर आकाशवाणी अंबिकापुर सुनते सुनते 55 मिनट का रास्ता कब पूरा हो गया इसका एहसास ही नहीं हुआ, ये हमारे लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है, बहुत बड़ी प्रेरणा की बात है। और जानकर प्रसन्नता हुई कि चिट्ठी पत्री, आपकी पसंद, गांव कर गीत, ईमेल की गूंज, आपकी बात, आपके गीत और गुंजन जैसे कार्यक्रम ने आपके सफ़र को यादगार बना दिया। आपके स्नेह भरे शब्द हमारे सभी प्रस्तुतकर्ताओं और कार्यक्रम निर्माण से जुड़े साथियों के लिए अमूल्य प्रेरणा है। हमारा प्रयास हमेशा यही रहता है कि चाहे आप घर पर हों या यात्रा में, आकाशवाणी अंबिकापुर का साथ आपको अपनापन, मुस्कान और मधुर संगीत का एहसास कराता रहे। आपका ये प्रेम और विश्वास हमारे लिए सबसे बड़ा सम्मान है। पूरे सेन परिवार को आकाशवाणी अंबिकापुर की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। और इन्हीं बातों के साथ अब चलते हैं आज के अगले पत्र की ओर।
0: जी, ये अगला पत्र है चिरमिरी कुरासिया कालरी से इंद्रभान सिंह, अनुभव सिंह, ऋषभ सिंह, राम सहोदर, नारायण प्रसाद लहरे, दिनेश प्रसाद लहरे और कालिंदरी लहरे का। इन्होंने लिखा है, 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस पर केंद्र से पर्यावरण संरक्षण विषय पर प्रस्तुत चर्चा बहुत रोचक और ज्ञानवर्धक लगी। पर्यावरण को प्रदूषण से बचाने के लिए सभी को अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाने चाहिए। पेड़ों से हरियाली बढ़ती है, वर्षा होती है, जल संरक्षण होता है और खेती किसानी को भी लाभ मिलता है। जल से बिजली उत्पादन और दैनिक जीवन के अनेक कार्य भी सुचारू रूप से चलते हैं, इसलिए पेड़ पौधों का महत्व हम सभी को समझना चाहिए। 14 जून विश्व रक्तदाता दिवस पर रक्तदान के महत्व से जुड़ी जानकारी भी बहुत उपयोगी और प्रेरणादायक लगी। 18 जून रानी लक्ष्मीबाई बलिदान दिवस पर प्रस्तुत जानकारी शिक्षाप्रद लगी। 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर केंद्र तथा आकाशवाणी दिल्ली से प्रसारित विशेष कार्यक्रम भी आपको पसंद आया। योग के महत्व और उसके लाभों पर दी गई जानकारी सराहनीय रही। 24 जून रानी दुर्गावती बलिदान दिवस पर प्रस्तुत विशेष जानकारी भी आपको पसंद आई और आपने इन सबके लिए आकाशवाणी अंबिकापुर परिवार को धन्यवाद किया है और इतना लिखते हुए पत्र का समापन किया है।
1: चिरमिरी कुरासिया कालरी के हमारे प्रिय श्रोता मित्र इंद्रभान सिंह जी, अनुभव सिंह जी, ऋषभ सिंह जी, राम सहोदर जी, नारायण प्रसाद लहरे जी, दिनेश प्रसाद लहरे जी और कालिंद्री लहरे जी, आप सभी को आकाशवाणी अंबिकापुर परिवार की ओर से स्नेह भरा नमस्कार। आपने बड़ा ही विचारपूर्ण और प्रेरणादायक पत्र लिख भेजा है और इसके लिए हम आपको, आप सभी को धन्यवाद देते हैं। खुशी होती है कि आपको हमारे कार्यक्रम और विशेषकर विश्व पर्यावरण दिवस, विश्व रक्तदान दिवस, रानी लक्ष्मीबाई बलिदान दिवस, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस और रानी दुर्गावती बलिदान दिवस जैसे विषयों पर और विशेष अवसरों पर प्रसारित कार्यक्रम आपको उपयोगी, ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक लगे। पर्यावरण संरक्षण के बारे में आपने जो संदेश दिया है वह हम सभी के लिए महत्व

0: महत्वपूर्ण है। अधिक से अधिक पौधे लगाना, प्रकृति के रक्षा करना हम सबकी साझा जिम्मेदारी है। इसी प्रकार रक्तदान, योग और हमारे महान वीरों की जीवन से जुड़ी प्रेरणादायक बातें समाज में सकारात्मकता और जागरूकता बढ़ाती हैं। आप जैसे जागरूक श्रोता हमारे कार्यक्रमों को सार्थक बनाते हैं। आपका स्नेह और प्रोत्साहन हमें जनहित से जुड़े ऐसे ही उपयोगी कार्यक्रमों को प्रस्तुत करने की नई प्रेरणा देती है। चिरमिरी से पूरे श्रोता परिवार को आकाशवाणी अंबिकापुर की ओर से हार्दिक धन्यवाद, शुभकामनाएँ, और यही चाहेंगे कि आप इसी तरह हमारे कार्यक्रमों से जुड़े रहें, सुनते रहें और अपनी बातें लिखते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। और प्रियंका जी, एक बार फिर से समय हो जला है कि कुछ गीत संगीत हो जाए।
1: जी बिल्कुल, तो आइए सुनते हैं दिल आशना है फिल्म का ये गीत, साधना सरगम और सुरेश पाटकर की आवाज़ों में।

0: स्वागत है साथियों, एक बार आप सभी का फिर से कार्यक्रम चिट्ठी पत्री में। मेरे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं परमेंद्र कुमार जी और मैं हूं आपकी रेडियो साथी प्रियंका। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं अगला पत्र। इसे भेजा है हमें डियर पाटन गुजरात से हमारे नियमित श्रोता धीरज वीरबारी जी ने। ये लिखते हैं आकाशवाणी अंबिकापुर परिवार, परमेंद्र जी सभी उद्घोषक और टेक्निकल टीम के साथ साथ सभी श्रोताओं को नमस्कार। बरसात के मौसम में आपने सभी से अनुरोध किया है कि नदी तालाब नहर या बहते पानी में कचरा ना डालें और स्वच्छता बनाए रखने में अपना योगदान दें। आपको पिछले चिट्ठी पत्री कार्यक्रम में मेरे और तरुण जी द्वारा आपके ईमेल का आत्मीयता से उत्तर दिया गया, इसके लिए आपने आभार व्यक्त किया है। आपकी बात आपके गीत कार्यक्रम में शक्ति सिंह जी से बात करने का अवसर मिला, काफ़ी दिनों के प्रयास के बाद फ़ोन लगा जिससे आपको बहुत खुशी हुई। उनकी प्रस्तुति भी आपको पसंद आई। आप नियमित रूप से आकाशवाणी अंबिकापुर के सभी कार्यक्रम सुनते हैं, सभी उद्घोषक की प्रस्तुति हमेशा शानदार रहती है। आपने सभी का हृदय से धन्यवाद करते हुए पत्र का समापन किया है।
1: डियर पाटन गुजरात के हमारे प्रिय श्रोता धीरज वीर अब्बारी जी, आकाशवाणी अंबिकापुर परिवार की ओर से आपको सादर नमस्कार, हार्दिक धन्यवाद। बड़ा ही स्नेह भरा संदेश आपने लिख भेजा है और कहीं ना कहीं हम सभी का मन प्रसन्न हो जाता है जब इस तरह के पत्र ईमेल हमें प्राप्त होते हैं। सबसे पहले वर्षा ऋतु में नदियों तालाबों और नहरों को स्वच्छ रखने का आपका संदेश वास्तव में हम सभी के लिए प्रेरणादायक है। स्वच्छता के प्रति ऐसी जागरूकता समाज के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। यह जानकर खुशी हुई कि चिट्ठी पत्री कार्यक्रम में आपके पत्र का उत्तर आपको पसंद आया, साथ ही आपकी बात आपके गीत कार्यक्रम में आपकी सहभागिता रही और लंबे इंतज़ार के बाद आपका फ़ोन के माध्यम से कार्यक्रम से जुड़ाव हो सका। और यकीन मानिए आपकी इस खुशी में हम सभी सहभागी हैं। हम सभी खुश होते हैं जब हमारे श्रोताओं को हम उनके पसंद के गीत और उनकी सहभागिता को सुनिश्चित कर पाते हैं। आपने हमारे सभी प्रस्तुतकर्ताओं और तकनीकी दल के प्रति जो स्नेह और सम्मान व्यक्त किया है उसके लिए हम हृदय से आभारी हैं। आपके जैसे नियमित और आत्मीय श्रोता ही हमारे कार्यक्रमों की सबसे बड़ी ताकत होते हैं और हमें बेहतर करने के लिए प्रेरित करते हैं। इसी तरह अपना स्नेह, सुझाव और शुभकामनाएँ भेजते रहिए। डियर पाटन गुजरात के सभी श्रोता मित्रों को आकाशवाणी अंबिकापुर परिवार की ओर से हार्दिक शुभकामनाएँ, स्वस्थ जीवन की मंगल कामनाएं और बहुत बहुत धन्यवाद। और प्रियंका जी, अब चलते हैं आज के अगले ईमेल की ओर।
0: जी, ये अगला ईमेल है जेल रोड रायगढ़ छत्तीसगढ़ से नरेंद्र कुमार तिवारी, महेंद्र कुमार तिवारी जी का।
1: जी,
0: ये लिखते हैं बुधवार 25 जून को प्रातः 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक का पूरा प्रसारण सुना। आपकी पसंद चयन और ईमेल की गूंज जैसे सभी कार्यक्रम बेहद रोचक और आनंददायक लगे। इन कार्यक्रमों में एक से बढ़कर एक मधुर गीत सुनने को मिले जिन्होंने मन को प्रसन्नता से भर दिया। इन शानदार प्रस्तुति के लिए आपने पूनम उपाध्याय जी को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। साथ ही 26 जून को प्रसारित विचार बिंदु भी आपने सुना जिसकी प्रस्तुति पूनम उपाध्याय जी ने की। इसका विषय था सपनों से हकीकत। यह आलेख अत्यंत प्रेरणादायक, हृदय स्पर्शी और जीवन की वास्तविकताओं से जुड़ा हुआ लगा। वास्तव में हर व्यक्ति के जीवन में सपने होते हैं लेकिन उन्हें साकार करने के लिए दृढ़ संकल्प, कड़ी मेहनत, लगन और आत्मविश्वास की आवश्यकता होती है। यही संदेश इस सुंदर आलेख के माध्यम से बहुत प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया गया।

0: इतनी सार्थक और प्रेरक प्रस्तुति के लिए पूनम उपाध्याय जी को आपने बधाई दी है और इतना लिखते हुए पत्र का समापन किया है।
1: रायगढ़ के हमारे श्रोता नरेंद्र कुमार तिवारी जी और महेंद्र कुमार तिवारी जी, आप दोनों को आकाशवाणी अंबिकापुर परिवार की ओर से स्नेह भरा नमस्कार। बड़ा ही आत्मीय पत्र, और इस पत्र में 25 जून के दोपहर को प्रसारित आपकी पसंद चयन ईमेल की गूंज कार्यक्रम के बारे में आपने जो स्नेहपूर्ण प्रतिक्रियाएँ लिख भेजी हैं, उसके लिए हम आपका हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। जानकर प्रसन्नता हुई कि गीतों का चयन और उनकी प्रस्तुति आपके मन को आनंद से भर दिया। 26 जून के विचार बिंदु में प्रस्तुत सपनों की हकीकत विषय पर आपके विचार भी अत्यंत प्रेरणादायक हैं। सचमुच सपनों को साकार करने के लिए लगन, मेहनत और आत्मविश्वास सबसे बड़ी पूंजी होते हैं। जानकर खुशी हुई कि यह आलेख आपके मन को स्पर्श कर गया। आपकी शुभकामनाएं और प्रोत्साहन इस कार्यक्रम के माध्यम से, कार्यक्रम प्रसारण और निर्माण से जुड़े सभी हमारे साथियों तक पहुंच रही हैं। आप जैसे जागरूक और नियमित श्रोता ही हमें बेहतर कार्यक्रम प्रस्तुत करने की प्रेरणा देते हैं, तो इसी तरह अपना स्नेह, सुझाव और विश्वास बनाए रखिए। हमें पत्र लिखकर अपनी समीक्षाएं भेजते रहिए। रायगढ़ के पूरे तिवारी परिवार को और हमारे श्रोता साथियों को आकाशवाणी अंबिकापुर की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं और बहुत बहुत धन्यवाद।
0: और अब सुनते हैं एक गीत आशा भोसले और उदित नारायण की आवाज़ों में। फिल्म है प्यार तो होना ही था।

0: कार्यक्रम चिट्ठी पत्री का अगला पत्र है ग्राम पंचायत खोंदला उदयपुर सरगुजा जीव से जीवधन सिंह पैकरा घुरनी पैकरा करिश्मा पैकरा सोमार साय कलेश्वर सिंह सुखराम पैकरा हीरामणि पैकरा और ऐश्वर्या पैकरा का। आप लिखते हैं 20 जून से 25 जून तक प्रसारित सभी कार्यक्रम नियमित रूप से सुने। इसमें आराधना रामचरित विचार बिंदु खेती की बात नमस्कार सरगुजा गूंजे जंगल गुंजन नए तराने आपकी पसंद उमंग ईमेल की गूंज गीत गंधा भजन संध्या गोधुली माधुरी इंस्टा फरमाइश चौपाल मनभावन युववाणी घर आंगन और घर गोसाई जैसे कार्यक्रम आपको बेहद रोचक और ज्ञानवर्धक लगे। सभी कार्यक्रमों की प्रस्तुति बहुत ही सहज आत्मीय और प्रभावशाली रही। गीत संगीत उपयोगी जानकारी और विविध विषयों का सुंदर समावेश सुनकर मन प्रसन्न हो गया। प्रमेंद्र जी तरुण जी और मुझे साथ ही पूनम उपाध्याय स्वाति उपाध्याय विजय कुमार कल्पना सिन्हा जी को और सभी उद्घोषक तथा प्रस्तुताओं को इतनी सुंदर और सराहनीय प्रस्तुति के लिए आपने तहे दिल से हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। और इतना लिखते हुए आपने पत्र का समापन किया है।
1: ग्राम पंचायत खोंदला उदयपुर सरगुजा के हमारे प्रिय श्रोता परिवार जीवधन सिंह पैकरा जी घुरनी पैकरा जी करिश्मा पैकरा जी सोमार साय जी कलेश्वर सिंह जी सुखराम पैकरा जी हीरामणि पैकरा जी और ऐश्वर्या पैकरा जी आप सभी को आकाशवाणी अंबिकापुर परिवार की ओर से स्नेह भरा नमस्कार। आपका पत्र पढ़कर सुनकर ऐसा लगा जैसे आपने पूरे सप्ताह की हमारी प्रसारण यात्रा को अपने शब्दों में सजा दिया हो। 20 जून से 25 जून तक आपने इतने मनोयोग से हमारे कार्यक्रमों को सुना और एक एक कार्यक्रम का स्नेहपूर्ण उल्लेख किया, इसके लिए हम सभी आपके हृदय से आभारी हैं। जानकर खुशी हुई कि आराधना से लेकर मनभावत तक खेती की बात से लेकर युवाणी तक और घर आंगन से लेकर ईमेल की गूंज तक हर कार्यक्रम ने आपके मन को छुआ। आपकी शुभकामनाएं हमारे सभी प्रस्तुतकर्ताओं और कार्यक्रम निर्माण से जुड़े साथियों तक इस कार्यक्रम के माध्यम से पहुंच रही है। रेडियो की असली ताकत उसकी आवाज़ नहीं है, उससे जुड़े श्रोताओं का विश्वास होता है। आप जैसे श्रोता उस विश्वास की सबसे सुंदर पहचान है। जब श्रोता मुस्कुरा कर कहते हैं कार्यक्रम अच्छा लगा, तब हमारी मेहनत सफल हो जाती है। तो इसी स्नेह और अपनत्व के साथ जुड़े रहिए। आकाशवाणी अंबिकापुर परिवार की ओर से आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं और बहुत बहुत धन्यवाद
0: जी। और ये कार्यक्रम का आज आखिरी पत्र मैं ले रही हूँ सुपर स्टार रेडियो श्रोता संघ सारसताल सोनगरा जिला सूरजपुर छत्तीसगढ़ से।

0: प्रेमसाय राजवाड़े, सोमारसाय मीरशाय, श्री भगत हेमंत कुमार, राम खेलावन सिंह पैकरा, देवीगंज रोड अंबिकापुर से राजकुमार नेभवानी, फुलसर कोरबा से नयन दास दीवान। चिट्ठी पत्री प्रस्तुत करने वालों को आपने स्नेह भरा नमस्कार किया है। आकाशवाणी अंबिकापुर से सभी कार्यक्रम आपको अच्छे लगते हैं। 22 जून को कार्यक्रम आपकी बात आपके गीत अच्छा लगा, इसके लिए आपने अक्षय रंजन वर्मा जी को बधाई दी है और इसी के साथ पत्र का समापन किया है।
1: सुपरस्टार रेडियो श्रोता संघ सारसताल सोनगरा जिला सूरजपुर के हमारे सभी श्रोता मित्रों को हम सभी की ओर से स्नेह भरा नमस्कार। आपने बड़ा ही आत्मीय संदेश लिख भेजा है और जानकर खुशी हुई कि 22 जून को प्रसारित आपकी बात आपके गीत कार्यक्रम आपको बेहद पसंद आया। आपने हमारे कलाकार साथी की प्रस्तुति को जिस आत्मीयता से सराहा है उसके लिए हम हृदय से आपको धन्यवाद देते हैं और ये जो आपकी सराहना है, शुभकामनाएँ हैं, इस कार्यक्रम के माध्यम से ही उन तक पहुँच रही है। आप जैसे श्रोता केवल कार्यक्रम नहीं सुनते बल्कि हर प्रस्तुति को अपनापन देते हैं और उसे अपनत्व के साथ अपने आप से जोड़ लेते हैं और यही रिश्ता आकाशवाणी की सबसे बड़ी पूंजी है। रेडियो की तरंगे बेशक दूर तक जाती हैं लेकिन श्रोताओं का स्नेह उससे भी कहीं अधिक दूर तक दिलों में गूंजता है। आपके विश्वास की यही रोशनी हमें हर दिन बेहतर कार्यक्रम बनाने के लिए, बेहतर प्रस्तुति देने के लिए प्रेरित करती हैं। तो इसी तरह अपना प्यार, सुझाव और शुभकामनाएँ भेजते रहिए और रेडियो श्रोता संघ, सुपरस्टार रेडियो श्रोता संघ के सभी साथियों को एक बार पुनः आकाशवाणी अंबिकापुर की ओर से हार्दिक धन्यवाद, शुभकामनाएं और बहुत बहुत धन्यवाद। और प्रियंका जी, आपने बताया कि आज का आखिरी पत्र है
0: जी।
1: तो इससे पहले कि हम चिट्ठी पत्री के आज के अंक से विदा लें, आप हमारे श्रोताओं को पता बता दें
0: जी। श्रोताओं, हमारा पता और ईमेल आईडी नोट कीजिए। कार्यक्रम चिट्ठी पत्री द्वारा केंद्र निदेशक, पोस्ट बॉक्स नंबर 27, आकाशवाणी अंबिकापुर, जिला सरगुजा, छत्तीसगढ़, पिन 497001।
1: और हमारी ईमेल आईडी है phambikapurair@gmail.com। तो इन दोनों माध्यमों का उपयोग करिए और अपनी बातें, कार्यक्रमों की समीक्षा, सुझाव, तमाम बातें हमें लिखकर भेजिए और आपके सभी पत्रों और ईमेल को लेकर हम अगले शुक्रवार को इसी समय फिर से हाजिर होंगे और आपके भेजी गई बातों पर चर्चा करेंगे। और तब तक के लिए आज के चिट्ठी पत्री के इस अंक से मुझे यानी परमेंद्र कुमार को
0: और मुझे यानी प्रियंका को
1: दीजिए इजाजत।
0: नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम चिट्ठी पत्री, मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये अंबिकापुर केंद्र है। सुबह के 11:55 होने को हैं। कुछ ही पलों में प्रादेशिक समाचार हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे।

ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शशिकांत यादव। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने औद्योगिक और वाणिज्यिक उपभोक्ताओं के लिए एलपीजी की आपूर्ति पर लगे सभी क्षेत्रीय प्रतिबंध को हटा दिया है। प्रदेश में परिवहन विभाग ने सभी बसों में वाहन लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस लगाना अनिवार्य किया और आज देश के विभिन्न भागों में मुहर्रम श्रद्धा और आस्था के साथ मनाया जा रहा है। अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने औद्योगिक और वाणिज्यिक एलपीजी उपभोक्ताओं को बड़ी राहत प्रदान करते हुए गैर घरेलू पैक्ड एलपीजी की आपूर्ति पर सभी क्षेत्रीय प्रतिबंध को हटा दिया है। इस तरह से पश्चिम एशिया संकट से पूर्व की आपूर्ति स्थिति बहाल कर दी गई है। इसके अलावा एलपीजी की विशाल आपूर्ति से संकट की शुरुआत में निलंबित कर दिया गया था को संकट पूर्व खपत स्तरों के 50% तक बहाल किया गया है। यह बहाली हाल ही में एलपीजी आपूर्ति की स्थिति में हुए सुधार को देखते हुए की गई है। सरकार ने पासपोर्ट आवेदन शुल्क में वृद्धि की है। 36 पृष्ठों वाले नए पासपोर्ट या पासपोर्ट को फिर से जारी करने के लिए अब 2500

0: रुपये शुल्क देना होगा। नई दरें 1 जुलाई से प्रभावी होंगी। नई शुल्क संरचना के अंतर्गत तत्काल श्रेणी में 36 पृष्ठों वाले नए पासपोर्ट या पासपोर्ट को फिर से जारी करने की लागत 5,000 रुपये होगी। पासपोर्ट की अन्य श्रेणियों में भी शुल्क में वृद्धि की गई है। छत्तीसगढ़ में नगरीय प्रशासन और विकास विभाग ने प्रदेश के विभिन्न नगरीय निकायों के लिए एल्डरमैन की नियुक्ति की है। विभाग द्वारा सरगुजा और रायपुर संभाग के 9 जिलों के 62 नगरीय निकायों में 252 एल्डरमैन नियुक्त किए हैं। नगरीय निकायों में एल्डरमैन मनोनीत पार्षद के रूप में कार्य करते हैं। वे निकाय की बैठकों में भाग लेकर स्थानीय समस्याओं और विकास कार्यों पर सुझाव देते हैं। छत्तीसगढ़ में यात्री बसों की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए परिवहन विभाग ने सभी बसों में वाहन लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस यानी VLTD लगाना अनिवार्य किया है। परिवहन सचिव ने बस संचालकों को 15 दिन के भीतर बिना VLTD वाली बसों में उपकरण लगाने और बंद उपकरणों को चालू करने के निर्देश दिए हैं। नियमों का पालन नहीं करने वाले संचालकों पर मोटरयान अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी। छत्तीसगढ़ गृह निर्माण और अधोसंरचना विकास मंडल द्वारा आयोजित राज्य स्तरीय आवास मेला के अंतर्गत लकी ड्रॉ के विजेता हितग्राहियों को आज रायपुर में आयोजित एक समारोह में पुरस्कार दिए जाएंगे। इस समारोह में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और आवास मंत्री OP चौधरी मौजूद रहेंगे। इस मौके पर मंडल द्वारा आयोजित नवीन लोगो डिजाइन प्रतियोगिता के विजेता रचनाकार को 2.5 लाख रुपये की पुरस्कार राशि भी प्रदान की जाएगी। छत्तीसगढ़ के निजी विश्वविद्यालयों में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों और अभिभावकों के लिए निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग ने दिशा निर्देश जारी किए हैं। आयोग ने विद्यार्थियों और अभिभावकों से कहा है कि दाखिले से पहले विश्वविद्यालय की मान्यता, राजपत्र में प्रकाशन, संबद्धता और पाठ्यक्रम की मंजूरी की जाँच अवश्य कर ले। रेलवे द्वारा भुवनेश्वर और मुंबई के लोकमान्य तिलक टर्मिनस स्टेशन के बीच एक फेरे के लिए आज स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी। यह ट्रेन आज भुवनेश्वर से रवाना होगी, जो 28 जून को लोकमान्य तिलक टर्मिनस स्टेशन पहुंचेगी। इस ट्रेन का स्टॉपेज रायपुर और दुर्ग स्टेशन में दिया गया है। एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने बिलासपुर के रतनपुर तहसील के लालपुर हलका के पटवारी को 25,000 रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। आरोप है कि पटवारी नक्शा बटांकन के लिए रिश्वत मांग रहा था। इसके अलावा बिलासपुर के ही मस्तूरी में ही एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने छापा मारकर बिजली विभाग के क्लर्क को 10,000 रुपये की रिश्वत लेते पकड़ा है। आरोप है कि यह क्लर्क बिजली का खंभा लगाने के लिए रिश्वत मांग रहा था। आज देश के विभिन्न भागों में मुहर्रम श्रद्धा और आस्था के साथ मनाया जा रहा है। करबला में सत्य और न्याय की रक्षा के लिए पैगंबर मोहम्मद के नवासे हजरत इमाम हुसैन और उनके साथियों की शहादत की याद में मुहर्रम मनाया जाता है। इस मौके पर ताजिया निकाले जाते हैं और करबला के शहीदों के सर्वोच्च बलिदान की याद में मजलिसों का आयोजन किया जाता है। इधर छत्तीसगढ़ में भी मुहर्रम के मौके पर राजधानी रायपुर सहित कई शहरों में ताजिए निकाले जाएंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने औद्योगिक और वाणिज्यिक उपभोक्ताओं के लिए LPG की आपूर्ति पर लगे सभी क्षेत्रीय प्रतिबंध को हटा दिया है। प्रदेश में परिवहन विभाग ने सभी बसों में वाहन लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस लगाना अनिवार्य किया और आज देश के विभिन्न भागों में मुहर्रम श्रद्धा और आस्था के साथ मनाया जा रहा है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन छत्तीसगढ़ी में होगा, जिसे 6:10 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।
1: प्रादेशिक समाचार हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से अनुप्रसारित कर रहे थे। मीडियम वेव 1260 किलोहर्ट्ज़ और FM बैंड 100.2 MHz पर आकाशवाणी का ये अंबिकापुर केंद्र है। दोपहर के 12 बजे हैं। प्रस्तुत है NCERT और CIET द्वारा प्रायोजित शैक्षणिक कार्यक्रम उमंग

0: जिस विचार को हमें भेजा है पोटियाकला दुर्ग से संजय कुमार साहू और सुजाता साहू जी ने। लिखते हैं, हम हर आने वाले दिन को आज के दिन से बेहतर बना सकते हैं, बस सकारात्मक रवैया चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद इतने सुंदर विचार के लिए। और आइए अब सुनते हैं पिछले दिनों हमें संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है नगर कोहरा जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से बबलू साहू, जामुन देवी साहू, समीक्षा और बेबी आराध्या साहू। गांव फरांसी जिला हिसार से राजकुमार डूडी, आर्यनगर कोहका भिलाई से उत्तम सिंह जंघेल, मोरस जंघेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष जंघेल और नंदिनी जंघेल। ग्राम पुतकी कला कवर्धा छत्तीसगढ़ से राधेश्याम पांडे, वीणा पांडे, विनय शंकर पांडे, नयन पांडे और सोमांशु पांडे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद इन संदेशों के लिए। अब एक बार फिर से आप सबका स्वागत है श्रृंखला ये भी जानिए की अगली कड़ी में। श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं इन दिनों हम बात कर रहे हैं भारत की अनेक उन गुफाओं के बारे में जो अपने आप में अनूठी हैं, प्रकृति का चमत्कार हैं। ये भारत की सबसे पुरानी लंबी गुफाओं में से एक मानी जाती है। जी हाँ श्रोताओं, इन गुफाओं को प्रकृति ने बनाया है। आज हम चलेंगे भारत के मेघालय में गारो हिल्स के रमणीय वातावरण में स्थित सिजू गुफाओं की ओर, जो प्रकृति की कलात्मकता और भूवैज्ञानिक चमत्कारों का अद्भुत उदाहरण है। तो श्रोताओं, आपको बता दें कि मेघालय राज्य में स्थित ये गुफाएं अपनी रोचक बनावट और विशाल चट्टानी कक्षों के लिए प्रसिद्ध हैं। इन कक्षों को एयरक्राफ्ट हैंगर भी कहते हैं। चूना पत्थर के ये हॉल नुमा कक्ष देखने में एयरक्राफ्ट हैंगर की तरह दिखाई पड़ते हैं। ये प्रकृति प्रेमियों को बहुत आकर्षित करते हैं। श्रोताओं, सिजू गुफाओं में विविध प्रकार की दुर्लभ वनस्पतियां और जीवों की प्रजातियां पाई जाती हैं। ये गुफाएं लगभग 40 करोड़ साल पुरानी हैं। इन गुफाओं में वैज्ञानिकों को कई विलुप्त जीव प्रजातियों के जीवाश्म भी मिले हैं, जिनसे पता चलता है कि आज से लाखों साल पहले का जीव जगत कैसा था। एक और रोचक बात मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूं कि इन गुफाओं को बैट केव्स या चमगादड़ों की गुफाएं भी कहते हैं, क्योंकि यहां घोर अंधकार रहता है और इसके कारण हजारों की संख्या में यहाँ पर चमगादड़ मिलते हैं। श्रोताओं, ये गुफाएं अंधेरे नम वातावरण के अनुकूल ढल चुकी अनूठी प्रजातियों के लिए आवास प्रदान करती हैं, जिनमें विभिन्न प्रकार के चमगादड़ और गुफाओं में रहने वाले कीड़े भी शामिल हैं। लाखों वर्षों से पीढ़ी दर पीढ़ी घोर अंधकार में रहने के कारण यहाँ के बहुत से जीवों की आँखें अभी तक अविकसित हैं। सिजू गांव के पास स्थित होने के कारण ये गुफाएं सिजू गुफाएं कहलाती हैं, जो एक विशाल गुफा प्रणाली का हिस्सा हैं। ये गारो पहाड़ियों में गहराई तक फैली हुई हैं। श्रोताओं, सिजू गुफाओं के मुख्य आकर्षणों में टूथ पैसेज विशेष रूप से जाना जाता है। आइए अब जानते हैं इसका नाम टूथ पैसेज क्यों पड़ा। इसका नाम टूथ पैसेज इसलिए पड़ा कि यहाँ चट्टानों की बनावट ऐसी है कि वे मनुष्य के दांतों की श्रृंखला जैसी दिखाई पड़ती हैं। एक और अनूठी बात आपसे साझा करना चाहते हैं और वो ये है कि यहाँ का स्थानीय गारो जनजातीय समुदाय इन गुफाओं को अलौकिक शक्तियों का निवास स्थान मानता है और समय समय पर इन गुफाओं में आकर अपने पूर्वजों के प्रति अनुष्ठान भी करता है। समृद्ध जैव विविधता के कारण ये स्थान पक्षी और जीव विज्ञानियों के लिए एक आदर्श स्थान है, क्योंकि यहाँ उन्हें गुफा में रहने वाले दुर्लभ जीवों का अध्ययन करने का अवसर मिलता है। गुफा के अंदर टपकते पानी की गूंज और कभी कभार चमगादड़ों के पंखों की फड़फड़ाहट एक अलौकिक वातावरण का निर्माण करती है। यही कारण है कि सिजू गुफाओं को स्थानीय गारो भाषा में डोवाकोल भी कहा जाता है, जिसका अर्थ है चमगादड़ों का घर। इन गुफाओं की एक विशेषता है और वो ये है कि अन्य कुछ गुफाओं की तरह इसकी खोज किसी एक व्यक्ति ने नहीं की। स्थानीय जनजाति के लोग इसे हजारों वर्षों से जानते आए हैं। वैज्ञानिक अन्वेषण बाद में हुए, तब कहीं जाकर इसकी विचित्रता का पता दुनिया को चला। तो श्रोताओं, ये थी हमारी आज की जानकारी। अब सुनिए आज का प्रश्न। सिजू की गुफा में एक पैसेज है जिसे टूथ पैसेज कहते हैं, क्यों? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए। सिजू की गुफा में एक पैसेज है जिसे टूथ पैसेज कहते हैं, क्यों? 8800440559 है हमारा IBRS नंबर और audio@ciet.nic.in है हमारे ईमेल का पता। आप इन पतों पर प्रश्नों के उत्तर और अपने संदेश भेज सकते हैं। जी हाँ, एक्स, इंस्टा, फेसबुक और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT को फॉलो कर सकते हैं। और अब बारी है हमारे आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। तो आज का हमारा पहला कार्यक्रम है स्टीफन हॉकिंग। इस कार्यक्रम में प्रख्यात भौतिक विज्ञानी स्टीफन हॉकिंग के जीवन और भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में उनकी महत्वपूर्ण खोजों के बारे में जानकारी दी गई है।
1: मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, कहे कबीर हरिपाइये, मन ही की परतीत।

0: आपने संत कबीर की इन पंक्तियों को अवश्य सुना होगा। इन पंक्तियों का आशय है, जीवन में जय और पराजय केवल मन के भाव हैं।
1: आज हम एक ऐसी महान विभूति की बात करेंगे जिन्होंने इन पंक्तियों को शत प्रतिशत अपने जीवन में चरितार्थ किया।
0: उस महान शख्सियत का नाम है स्टीफन विलियम हॉकिंग। उनका नाम 20वीं सदी के महानतम भौतिक विज्ञानी अल्बर्ट आइंस्टाइन के साथ बड़े आदर से लिया जाता है। स्टीफन हॉकिंग का जन्म 8 जनवरी 1942 को ऑक्सफोर्डशायर ब्रिटेन में हुआ था। उनके पिता का नाम फ्रैंक और माता का नाम इजाबेल हॉकिंग था।
1: ये भी एक विचित्र संयोग ही था कि इस महान खगोल वैज्ञानिक का जन्म महान खगोल वैज्ञानिक गैलीलियो की मृत्यु के ठीक 300 वर्षों बाद हुआ था। स्टीफन हॉकिंग का जन्म 8 जनवरी 1942 को हुआ था और गैलीलियो की मृत्यु 8 जनवरी 1642 को हुई थी।
0: उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा ऑक्सफोर्ड के निकट सेंट एल्बान में ही पूरी की। स्कूली शिक्षा समाप्त करने के बाद उन्होंने ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में दाखिला लिया।
1: ऑक्सफोर्ड से भौतिकी में वो प्रथम श्रेणी में प्रतिष्ठा यानी ऑनर्स के साथ उत्तीर्ण हुए। अध्ययन पूरा करने के बाद कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से उन्होंने अनुप्रयुक्त गणित और सैद्धांतिक भौतिकी यानी अप्लाइड मैथमेटिक्स एंड थियोरिटिकल फिजिक्स विषय लेकर ब्रह्मांड विज्ञान यानी कॉस्मोलॉजी पर गहन अध्ययन और शोध किया। प्रोफेसर और छात्र उन्हें प्यार से जूनियर आइंस्टाइन कहकर बुलाते थे।
0: फिर आया 1963 का साल। दिन था 8 जनवरी यानी उनका 21वां जन्मदिन। वे छुट्टियों में अपने घर आए।
2: Stephen, happy birthday to you!
3: Happy birthday to you, Stephen!
4: Thank you. How are you?
5: Happy birthday, Stephen!
4: Thank you,
5: congratulations!
4: Thank you, Dom. Thank you so very much. Hi, Martin. How are you?
2: Oh, fine.
4: Thanks for coming in. Please come in. Please.
3: Oh, sure. Yes. Why not?
2: Come. Yay.
3: Come.
2: John, please come here.
3: Oh, sure.

0: जन्मदिन की पार्टी बहुत अच्छी रही, लेकिन दूसरे ही दिन जो हुआ उसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। हुआ यूं कि वे अपने घर की सीढ़ियों से नीचे उतर रहे थे कि तभी
1: Oh

0: अचानक उनके शरीर की सारी मांसपेशियां बुरी तरह से अकड़ गईं और वे अचेत होकर गिर पड़े। उन्हें डॉक्टर के पास ले जाया गया। डॉक्टर ने कुछ दवाएं देकर और इसे सामान्य कमजोरी बताकर उन्हें घर भेज दिया।
1: लेकिन ये क्या?
0: जब स्टीफन को ऐसे दौरे बार बार पड़ने लगे तो उन्हें लंदन के एक नामी अस्पताल में ले जाया गया। जांच के बाद डॉक्टर ने स्टीफन के माता पिता को बुलाया।
2: मिस्टर फ्रैंक, मैंने आपके बेटे के बारे में एक खास जानकारी देने के लिए आपको यहाँ बुलाया है।
3: सब कुछ ठीक तो है ना?
2: देखिए, मैं आपको अंधेरे में नहीं रखना चाहता हूँ।
3: जी।
2: आपके बेटे को मोटर न्यूरॉन डिजीज है।
3: मोटर न्यूरॉन डिजीज?
2: जी हाँ। और

0: इसका अभी तक कोई इलाज संभव नहीं है।
1: डॉक्टर साहब, इस बीमारी में क्या होता है?
0: इस बीमारी में मस्तिष्क का सिग्नल मांसपेशियों को नहीं मिल पाता है, इसलिए शरीर के सारे अंग धीरे धीरे काम करना बंद कर देते हैं। बोलने और चलने फिरने में परेशानी होती है।
1: नहीं, नहीं।
0: देखिए, आप धीरज रखें, मैं ताकत की कुछ दवाइयां लिख देता हूँ, क्या पता कोई चमत्कार हो जाए।
1: ओह गॉड।

0: लेकिन कोई चमत्कार नहीं हुआ। स्टीफन की बीमारी बढ़ती ही चली गई। उन्हें बोलने में बहुत परेशानी होने लगी थी। एक बार जब तबीयत बहुत खराब हुई तो उनके मित्र उन्हें डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने कह दिया कि वे अब अधिक से अधिक 2 वर्ष ही जी पाएंगे।
1: डॉक्टर के क्लिनिक से जब वे बाहर आए तो आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरे पर था एक असाधारण संकल्प का भाव। उन्होंने कहा,
2: मैं जीना चाहता हूं, तो 2 साल नहीं, 20 साल भी नहीं, पूरे 50 साल और जीऊंगा।
1: उस समय सबने उनका मन रखने के लिए, दिलासा देने के लिए हाँ में हाँ मिला दी थी, पर आज पूरा विश्व जानता है कि जो कुछ उन्होंने कहा था वो अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति से उन्होंने कर दिखाया।
0: उनकी बीमारी बढ़ती ही जा रही थी, लेकिन इस हालत में भी सन 1965 में उन्होंने सर्वाधिक अंक लेकर कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से अपनी पीएचडी की डिग्री प्राप्त की।
3: साथियों, हम बड़े हर्ष के साथ घोषणा करते हैं कि स्टीफन हॉकिंग ने बेहद अच्छे अंकों से अपना शोध पूरा कर लिया है। उनके शोध का विषय था प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सपेंडिंग यूनिवर्स, यानी विस्तारित ब्रह्मांड की विशेषता। मेरा अनुरोध है कि वो सामने आकर सम्मान ग्रहण करें।

0: विश्वविद्यालय में वे एक चलता फिरता आश्चर्य माने जाते थे। जब उनसे ये पूछा गया कि वे इतनी कठिनाइयों के बीच अपना शोध और अध्ययन का काम कैसे कर लेते हैं, तो उन्होंने उत्तर दिया,
1: मेरी क्षमता, मेरी दिव्यांगता से अधिक मजबूत है। दिव्यांगता शरीर से अधिक मन में होती है।
2: जनवरी 1965 में ही नए साल के जश्न में स्टीफन हॉकिंग की मुलाकात मिस जेन वाइल्ड से हुई। वे अंग्रेजी साहित्य की प्रख्यात लेखिका और शिक्षिका थीं। मिस जेन वाइल्ड स्टीफन के खुशदिल स्वभाव, बुद्धिमत्ता और दृढ़ संकल्प शक्ति से बहुत प्रभावित हुईं।
0: वे जानती थीं कि भविष्य में स्टीफन का स्वास्थ्य बिगड़ता चला जाएगा, लेकिन उन्होंने स्टीफन का साथ नहीं छोड़ा और वे

0: विवाह बंधन में बंध गए। उनकी 3 संतानें हुईं। ५८ में उनकी आवाज खो गई। अब बोलना उनके लिए असंभव हो चुका था। उनके सभी अंग धीरे धीरे स्थिर होने लगे थे, इसलिए स्वीडन में उनके लिए एक स्मार्ट व्हीलचेयर बनाई गई जिसमें कई प्रकार के उपकरण लगे हुए थे।
1: इस चेयर में एक विशेष उपकरण था जिसे स्पीच सिंथेसाइजर कहा जाता था। कीबोर्ड की सहायता से वे जो जो टाइप करते थे, स्पीच सिंथेसाइजर उन्हें शब्दों में बदल देता था।
0: इसी के जरिए वे पूरी दुनिया से बात करते थे और भौतिकी पर दुनिया भर के विश्वविद्यालयों में व्याख्यान देते थे। लेकिन वे बोलते कैसे थे, ये जानना दिलचस्प होगा।
1: दरअसल उन्हें आवाज दी थी प्रोफेसर डेनिस एच क्लैट ने, जो संभाषण और श्रवण विज्ञान में एक अमरीकी शोधकर्ता थे। आइए प्रोफेसर डेनिस क्लैट से बात करके जानते हैं कि प्रोफेसर हॉकिंग का ये स्पीच सिंथेसाइजर काम कैसे करता था।
2: प्रोफेसर डेनिस
3: जी,
2: स्पीच सिंथेसाइजर काम कैसे करता है, आपने इसका विकास कैसे किया?
3: देखिए, प्रोफेसर स्टीफन हॉकिंग के व्याख्यानों को भाषा में बदलने के लिए हमने सबसे पहले स्पीच सिंथेसाइजर के कंप्यूटर को कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा उनकी सारी भाषा सिखाई।
2: ओह।
3: और फिर विज्ञान से संबंधित सारे तकनीकी शब्द भी कंप्यूटर की स्मृति में डाल दिए।
2: ग्रेट, धन्यवाद सर, ये तो सचमुच बहुत रोचक है। यानी प्रोफेसर स्टीफन हॉकिंग के व्याख्यान हमने आपकी आवाज में सुने?
3: जी।
2: अद्भुत, इट्स रियली वंडरफुल। तो सुनाइए ना प्रोफेसर हॉकिंग को आपकी आवाज में।
3: तो लीजिए सुनिए।
4: Technology has transformed the outlook for the disabled. People like me can now move around independently, and they can communicate.
1: उन्होंने कुल 29 रचनाएं की, जिनमें पुस्तकें, शोध प्रबंध और विज्ञान लेख शामिल हैं। उनसे अंतरिक्ष समय, भारहीनता, शून्य गुरुत्वाकर्षण जैसे अंतरिक्ष के अनेक रहस्यों से पर्दा उठ गया और अनेक शोधों को गति मिली।
0: सापेक्षता का सिद्धांत, क्वांटम यांत्रिकी और अंतरिक्ष समय यानी स्पेस टाइम पर उनका काम हमेशा याद रखा जाएगा।
1: उनके सभी शोधों की ये विशेषता है कि ब्रह्मांड की व्याख्या के साथ साथ उन्होंने इसे विश्व पारिस्थितिकी, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन से भी जोड़ा है।
0: उन्होंने न्यूयॉर्क पोस्ट पत्रिका में अपने विचार व्यक्त करते हुए लिखा था,
5: यदि पर्यावरण का ध्यान नहीं रखा गया तो 600 वर्षों के अंदर ये पृथ्वी आग का गोला बन जाएगी। जनसंख्या बढ़ने के कारण धरती पर ऊर्जा की खपत बहुत ज्यादा हो जाने की वजह से धरती का तापमान असीमित रूप से बढ़ेगा और धरती गर्म होकर लाल हो जाएगी।
1: उनके द्वारा लिखित किताब अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम उस समय की सबसे ज्यादा समय तक बिकने वाली किताब बनी। तब इस किताब की बिक्री लगभग रिकॉर्ड 237 हफ्तों तक चली। एक और पुस्तक थ्योरी ऑफ एवरीथिंग भी बहुत प्रसिद्ध हुई। उन्हें राष्ट्रपति का मेडल ऑफ फ्रीडम सम्मान भी दिया गया था, जो संयुक्त राज्य अमेरिका का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है।
0: विद्यार्थियों और शोध करने वालों को वे अक्सर कहते थे,
6: ऊपर सितारों की तरफ देखो, अपने पैरों के नीचे नहीं, जो भी देखते हो उसका

0: अर्थ जानने की कोशिश करो, आश्चर्य करो, उत्सुक रहो और प्रश्न करो।
1: जनवरी 2001 में अग्रणी ब्रिटिश भौतिक विज्ञानी स्टीफन हॉकिंग जब भारत आए थे, उन्होंने कहा था,
2: इंडियंस आर सो गुड इन मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स।
3: विश्व के दिव्यांग समुदाय के लिए प्रोफेसर हॉकिंग का अंतिम संदेश था,
4: यदि आप शारीरिक रूप से दिव्यांग हैं तो मन को दिव्यांग न होने दें।
1: चौदह मार्च 2018 को 76 वर्ष की आयु में ब्रिटेन के कैम्ब्रिज में उनका देहांत हो गया। अपनी मृत्यु के समय वे सैद्धांतिक ब्रह्मांड विज्ञान केंद्र में अनुसंधान के निदेशक थे। दाह संस्कार के बाद लंदन के वेस्टमिंस्टर एबी चर्च में उनकी राख को चर्च के साइंटिस्ट कॉर्नर में सर आइजैक न्यूटन और चार्ल्स डार्विन की कब्रों के बीच दफनाया गया।
3: उनके स्मारक पत्थर पर ये शब्द अंकित हैं, यहाँ स्टीफन हॉकिंग के पार्थिव अवशेष दफन हैं। उस पत्थर पर उनका एक प्रिय समीकरण भी अंकित है, जिसका उपयोग उन्होंने दुनिया को ब्लैक होल के बारे में सिखाने के लिए किया था।
1: दिव्यांगता के खिलाफ अदम्य इच्छा शक्ति की ऐसी जंग छेड़कर अंतरिक्ष विज्ञान में सितारों की बुलंदियों को छूने वाले प्रोफेसर स्टीफन हॉकिंग, आपको हमारा नमन।
5: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम स्टीफन हॉकिंग, और आइए इस कार्यक्रम के बाद आप सुनते हैं कार्यक्रम आग का गोला। इस पहली नुमा कार्यक्रम में सूर्य और सौर मंडल के बारे में मनोरंजक जानकारी दी गई है।
6: चलो बच्चों आ जाओ, पहली टाइम, आ जाओ आ जाओ, सब लोग आ जाओ। तो अब बिना देर करे शुरू करें पहेली।
7: हाँ।
6: गुड़िया गौरव सब तैयार?
8: हाँ, हम तैयार हैं।
6: वेरी गुड, तो ठीक है, ध्यान से सुनो आज की पहेली। मैं आग का गोला लेकिन फिर भी जीवन दाता हूँ।
9: आग का गोला?
6: हाँ, मैं आग का गोला लेकिन फिर भी जीवन दाता हूँ। दूजे काटे चक्कर मेरे लगे, मैं चलता जाता हूँ। सर्दी गर्मी बनती मुझसे, मैं दिन रात बनाता हूँ। दू प्रकाश पर नहीं हूँ दीपक, बोलो क्या कहलाता हूँ?
7: सूरज।
6: ओ सूरज, वाह एकदम ठीक भाई, तुम सब लोग तो बहुत होशियार हो।
10: बहुत आसान पूछते हो।
6: ओफो क्या करूं, मुझे मुश्किल वाली आती ही नहीं
10: है। अगली बार में बहुत मुश्किल।
6: हाँ मैंने सोचा तो था, लेकिन क्या करूं, मैंने अपना पिटारा खोला पहेलियों का, उसमें से एक पहेली देखी फिर दूसरी देखी, कोई मुश्किल वाली मिली नहीं मुझे। मुश्किल वाली पहेलियां तुम्हारे पास होती है ना?
7: हाँ।
6: कितनी भी मुश्किल पहेली ले आऊंगी, तुम सब तो जल्दी से जवाब बता ही दोगे मुझे, है ना?
10: मुझे पता है, सूरज आग का गोला होता है।
6: बिल्कुल ठीक, सूरज आग का गोला होता है।
11: वो तारा होता है।
6: हाँ ये भी बिल्कुल ठीक।
12: वो रात और दिन भी बनाता है।
6: एकदम सही, एकदम सही।
13: वो हमें धूप भी देता है।
6: बिल्कुल धूप भी देता है, सर्दियों में तो धूप अच्छी लगती है।
10: धूप से इतना अच्छी बात भी होती है।
6: हाँ हमें क्या मिलता है पता है उससे?
10: विटामिन डी।
6: वेरी गुड, बहुत समझदार हो तुम तो, विटामिन डी मिलता है। अरे तुम्हें पता है, तुम बहुत अच्छे, शाबाश, बहुत
13: अच्छे। अगर सूरज की रोशनी नहीं होती तो हमारा बिल नहीं बचता।

0: हाँ बिल्कुल,
1: पेड़ों को खाना भी देता है।
0: बिल्कुल एकदम ठीक कहा, एकदम ठीक कहा। इतने होशियार बच्चे मैंने कहीं नहीं देखे।
1: धीरे धीरे रात घूमते जब भी सुबह रात होती जाती है।
0: हाँ बिल्कुल, ये जो हमारा सौर मंडल है ना, इसके ग्रह सूरज के चक्कर काटते हैं। और लगता क्या है, जैसे सूरज चलता है पूर्व से पश्चिम की ओर, है ना?
1: हाँ।
2: जब ही तो सूरज सुबह पूर्व में आता है।
0: हाँ, हमें ऐसा लगता है ना कि सूरज चल रहा है धरती के चारों ओर, हाँ। इसलिए दिन और रात हो रहे, लेकिन असल बात क्या है, धरती सूरज के चक्कर काट रही है।
1: मौसी, जब मैं मम्मी के साथ घूमने जाती हूँ, जब मुझे लगता है चंदा मेरे साथ चल रहा है।
0: हाय हाय, क्या बात है, चंदा मामा तुम्हारे साथ चल रहा है। और कभी कभी जब हम ट्रेन से बाहर देखते हैं, चलती हुई ट्रेन से, तो लगता है ना पेड़ भी हमारे साथ साथ चल रहे हैं। लगता है ना
1: वो तेज चलती है, ऐसा लगता है वो भी तेज चल रही है।
3: और जब हम लोग चलते हैं तो हमें लगता है कि हमारा सूरज भी हमारे साथ साथ चल रहा है
0: ना।
3: गर्मी में तो मुझे सूरज बहुत गंदा लगता है।
0: हाँ, और सर्दियों में अच्छा लगता। तो बच्चों, सूरज नहीं चलता है ना, वो पृथ्वी के घूमने के कारण हमें चलता दिखाई देता है। जैसे जैसे मैंने अभी कहा कि अगर हम ट्रेन में से देखते हैं तो हमें पेड़ चलते हुए नजर आते हैं, है ना?
1: वो बहुत बड़ा भी होता है।
0: बहुत बड़ा होता है
3: पर हमें छोटा लगता है आसमान।
0: हम क्योंकि कहीं
1: दूर होता है, इसलिए
0: हम बहुत दूर है ना सूरज से, इसलिए हमें लगता है ऊपर है। और कभी कभी मन करता है कि शायद इसको छू के देखें।
1: हमें सबसे छोटे इसलिए लगता है क्योंकि वो बहुत दूर है।
0: हाँ,
3: वो चांद से भी ऊपर होते हैं।
0: अरे वाह भाई, ये तो मुझे भी नहीं पता था। अच्छा एक बात और, धरती का जो भाग सूरज के पास होता है वहाँ गर्मी होती है, और जो दूर वहाँ
4: सर्दी।
0: ऐसी वाली सर्दी ना। अच्छी लगती है सर्दी।
1: पर सर्दी में ठंड बहुत लगती है।
0: हाँ शुक्र है गर्मी में नहीं लगती है। सूरज आग का गोला, लेकिन
4: सूरज आग का गोला लेकिन
0: फिर भी जीवन दाता है।
4: फिर भी जीवन दाता है।
0: धरती काटे चक्कर इसके।
4: धरती काटे चक्कर इसके।
0: लगे ये चलता जाता है।
4: लगे ये चलता जाता है।
0: सर्दी गर्मी बनते इससे।
4: सर्दी गर्मी बनते इससे।
0: ये दिन रात बनाता है।
4: ये दिन रात बनाता है।
0: दे प्रकाश पर नहीं है दीपक।
4: दे प्रकाश पर नहीं है दीपक।
0: सूरज ये
4: कहलाता है।
0: शाबाश, सूरज ये कहलाता है। सूरज ये कहलाता है। चलो अब अगली बार के लिए अगली पहेली लेकर मैं फिर आऊंगी।
1: मौसी एक और पहेली आज ही बता दो।
0: आज नहीं, अब मुझे देर हो रही है। ठीक है,
3: जल्दी आना मौसी।
0: बिल्कुल जल्दी आऊंगी बेटा।
1: हमने देर की तो फिर हम मुश्किल पहेली पूछ लेंगे आपसे।
0: मैं तो डर रही हूँ भाई। मैं तो लाऊं कि नहीं आऊं।
1: वो भी दस पूछेंगे।
0: दस दस पहेलियाँ। अच्छा चलो, मैं भी फिर तैयारी करके आऊंगी ना।
1: डर जाती है। और आपके कोई मिला के 70 हो जाएंगे।
0: 70 हो जाएंगे? वो 10 से एकदम 70
3: नहीं, 80 हो जाएंगे।
0: फिर 100 हो जाएंगे, फिर 200। ओके, इससे पहले कि ये 500 तक पहुंचे मैं जा रही हूँ। टाटा बाय बाय।
5: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आग का गोला, और अब इसी कार्यक्रम के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ अगले सप्ताह तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
6: उमंग उमंग उमंग उमंग।
7: अभी आप सुन रहे थे NCERT और CIET द्वारा प्रायोजित शैक्षणिक कार्यक्रम उमंग। मीडियम वेव 238.09 मीटर यानी 1260 किलोहर्ट्ज़ और FM बैंड 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये अंबिकापुर केंद्र है। दोपहर के 12:30 हुए हैं। लीजिए सुनिए एक ही शीर्षक पर आधारित कार्यक्रम चयन।

स्वागत है सभी साथियों का कार्यक्रम चयन में। मैं हूं आपकी अपनी रेडियो साथी प्रियंका। साथियों, कार्यक्रम चयन में आज का शीर्षक है चूड़ी। जी हां, चूड़ी। चूड़ी सुनते ही कानों में एक मधुर खनक गूंज उठती है। यह खनक केवल कांच या धातु की नहीं बल्कि भावनाओं, परंपराओं और रिश्तों की होती है। भारतीय संस्कृति में जुड़ी केवल एक इसे आभूषण नहीं माना गया है बल्कि इसे सौंदर्य, सौभाग्य, प्रेम, उल्लास और जीवन की मधुरता का प्रतीक समझा गया है। जब किसी बेटी के हाथों में पहली बार रंग बिरंगी चूड़ियां सजती हैं तो उसके चेहरे पर खिली मुस्कान पूरे घर को रोशन कर देती हैं, और जब किसी नववधु की चूड़ियां खनकती हैं तो ऐसा लगता है मानो उसके सपने भी संगीत बनकर गूंज रहे हों। चूड़ियां मौसम के साथ रंग बदलती हैं, त्योहारों के साथ सजती हैं और हर उम्र की अपनी अलग कहानी कहती हैं। कभी सावन की हरियाली में हरी चूड़ियां, कभी तीज की लाल चूड़ियां, तो कभी मेले की रंग बिरंगी चूड़ियां। हर रंग अपने साथ एक नई भावना लेकर आता है। तो आइए चूड़ियों की इसी मधुर खनक और अनगिनत यादों के साथ शुरू करते हैं आज का ये संगीतमय सफ़र।

अभी आपने सुना सनम बेवफा फिल्म का गीत लता मंगेशकर की आवाज़ में। गीतकार थे सावन कुमार और संगीत निर्देशन था किशोर और महेश शर्मा का। साथियों, चूड़ियों की सबसे बड़ी खूबसूरती उनकी खनक में नहीं बल्कि उनसे जुड़ी यादों में होती है। बचपन में मेले से खरीदी गई चूड़ियाँ, माँ की अलमारी में सजी कांच की चूड़ियाँ, बहन की पसंदीदा रंगीन चूड़ियाँ, ये सब केवल आभूषण नहीं बल्कि जीवन के खूबसूरत पलों की निशानियाँ हैं। चूड़ियाँ हमें यह सिखाती हैं कि जीवन में रंगों की तरह रिश्तों का भी अपना महत्व होता है। जब रिश्तों में अपनापन और स्नेह बना रहे तब जीवन भी चूड़ियों की तरह मधुर स्वर में गूंजता रहता है। इन्हीं प्यारे एहसासों के साथ आइए सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत, फिल्म

0: अभी आपने सुना लम्हे फिल्म का गीत ईला अरुण और लता मंगेशकर की आवाजों में। गीतकार थे आनंद बख्शी और संगीत निर्देशन था शिव हरि का। आइए सुनते हैं संदेश।
1: राहुल, तुम्हारी नई दुकान का कलेक्शन तो जबरदस्त है, पर दुकान में सन्नाटा क्यों है?
2: वही तो परेशानी है रिया, कपड़े तो बेस्ट हैं, पर पूरे अंबिकापुर को पता कैसे चले?
1: अरे तो शहर के सबसे बड़े लाउड स्पीकर का इस्तेमाल करो ना, 230-600।
2: क्या 230-600?
1: हाँ, आकाशवाणी अंबिकापुर, यहाँ एक विज्ञापन और तुम्हारी दुकान पर ग्राहकों की लाइन।
2: पक्का?
1: हाँ, बस कोड लगाओ 077774 और मिला दो 230-600। अब अपनी दुकान को बनाओ शहर की शान।
3: आकाशवाणी अंबिकापुर, सफलता की पक्की गूंज।
0: मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी के अंबिकापुर केंद्र से आप सुन रहे हैं एक ही शीर्षक पर आधारित कार्यक्रम चयन। कार्यक्रम में हम आज चर्चा कर रहे हैं चूड़ी पर। साथियों, भारत के अलग अलग राज्यों में चूड़ियों की अपनी अलग पहचान है। कहीं लाख की चूड़ियां प्रसिद्ध है, कहीं कांच की, तो कहीं धातु और चांदी की चूड़ियां अपनी विशेष कला के लिए जानी जाती हैं। लेकिन चाहे उनका रूप कोई भी हो, उनका संदेश हमेशा एक ही रहता है, खुशियां बांटिए, रिश्तों को संजोइए और जीवन को प्रेम के रंगों से सजाइए। यही कारण है कि चूड़ियां पीढ़ियों से हमारी संस्कृति का अभिन्न हिस्सा बनी हुई है। इसी भावना के साथ सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत। फिल्म है आज का अर्जुन, गायक कलाकार हैं लता मंगेशकर और शब्बीर कुमार, गीतकार हैं अनजान।

साथियों, चूड़ियों की खनक कभी कभी बिना कुछ कहे भी बहुत कुछ कह जाती है। घर में जब किसी बेटी या बहू की चूड़ियाँ खनकती हैं तो लगता है जैसे घर में रौनक उतर आई हो। उनकी आवाज़ में अपनापन है, स्नेह है और एक ऐसी मिठास है जो पूरे वातावरण को जीवंत बना देती है। यही वजह है कि कवियों ने अपनी कविताओं में और गीतकारों ने अपने गीतों में चूड़ियों की खनक को प्रेम और खुशी का प्रतीक बनाया है। तो आइए इस मधुर एहसास के साथ सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत, अलका याग्निक और उदित नारायण की आवाज़ों में। फिल्म है यस बॉस।

साथियों, समय बदलता है, फैशन बदलते हैं, लेकिन चूड़ियों का आकर्षण कभी कम नहीं होता। आज भी जब किसी त्योहार, शादी या मेले में रंग बिरंगी चूड़ियों की दुकान सजती है तो अनायास ही कदम उसकी ओर बढ़ जाते हैं। उन रंगों में जैसे बचपन की यादें, युवावस्था के सपने और जीवन की मुस्कान एक साथ दिखाई देने लगती है। शायद यही कारण है कि चूड़ियाँ कभी पुरानी नहीं होती, वे हर दौर में नई लगती है। और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम का ये आखिरी गीत फिल्म जानी दुश्मन से। गायक कलाकार है आशा भोसले और मोहम्मद रफी।

साथियों, चूड़ी शीर्षक पर आधारित कार्यक्रम चयन का ये संगीतमय सफर अब यहीं विराम लेता है। आशा है कि आज चूड़ियों की मधुर खनक के साथ जुड़ी यादों, परंपराओं और भावनाओं ने आपके मन को अवश्य स्पर्श किया होगा। जाते जाते बस यही कामना है कि आपके जीवन में खुशियों की खनक कभी फीकी ना पड़े, रिश्तों की मिठास हमेशा बनी रहे और हर दिन नए रंगों से सजा रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मुझे यानी अपनी रेडियो साथी प्रियंका को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम चयन, मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये अंबिकापुर केंद्र है। दोपहर के 1 बजने वाले हैं कुछ ही पलों में हिंदी समाचार हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। गृहमंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की 10वीं शीर्ष स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने कहा कि नशा मुक्त भारत तैयार करना हम सबकी जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि नशे के खिलाफ हमें लड़ाई लड़नी है और इसे जीतनी भी है। गृहमंत्री ने कहा कि हमें ड्रग्स के व्यापारियों के प्रति सख्त रवैया अपनाना होगा। उन्होंने कहा कि ड्रग्स का इस्तेमाल करने वाले युवाओं के प्रति संवेदनशील रवैया अपनाना होगा।
2: ड्रग तस्करी, संगठित अपराध, नार्को टेरर फाइनेंस और सीमा पार के आतंकी नेटवर्क के वित्त पोषण, एक इस प्रकार से इवॉल्विंग नार्को टेररिज्म इकोसिस्टम भी बन चुकी है। तो हमारी देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए, हमारे देश के अर्थतंत्र की सुरक्षा के लिए और हमारे देश की युवा पीढ़ी के भविष्य के लिए ये हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हम इस पर संपूर्ण विजय प्राप्त करें।
1: अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्ति दिवस के अवसर पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने नशा मुक्त भारत के निर्माण के सामूहिक संकल्प को दोहराने का आह्वान किया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री राधाकृष्णन ने इस आंदोलन को सक्रिय रूप से आगे बढ़ाने वाले विश्वविद्यालयों, शिक्षण संस्थानों और संगठनों की सराहना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल से 29 तारीख तक सेशल्स के राजकीय दौरे पर रहेंगे। वे सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री ने इससे पहले 2015 में सेशल्स का दौरा किया था। भारतीय रक्षा बलों का एक दल और नौसेना के 2 जहाज भी समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रपति डॉ पैट्रिक हरमनी से द्विपक्षीय सहयोग के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने लंदन में ब्रिटेन के व्यापार और उद्योग मंत्री पीटर काइल से बातचीत की है। श्री गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया

0: कि इस दौरान भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापार और आर्थिक सहयोग बढ़ाने के अवसरों पर चर्चा हुई। श्री गोयल ने बताया कि भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता 15 जुलाई से लागू होगा। भारत ने किर्गिस्तान के बिश्केक में आयोजित शंघाई सहयोग संगठन SCO महिला फोरम 2026 में महिला नेतृत्व वाले विकास के प्रति प्रतिबद्धता को दोहराया। आज वर्चुअल माध्यम से इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि महिलाएं न केवल विकास की लाभार्थी हैं बल्कि 2047 तक विकसित भारत की सबसे शक्तिशाली प्रेरक शक्ति भी हैं। भारत ने जर्मनी के राजदूत फिलिप एकरमैन ने कहा है कि भारत नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में वैश्विक नेतृत्व की भूमिका निभा रहा है। एक समाचार एजेंसी से बातचीत में उन्होंने कहा कि भारत और जर्मनी के बीच हरित और सतत विकास की साझेदारी सफल रही है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच व्यापार, राजनीति और रणनीतिक क्षेत्रों में सहयोग लगातार मजबूत हो रहा है। भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते पर राजदूत एकरमैन ने आशा व्यक्त की है कि इस पर जल्द सहमति बनेगी। अमेरिका में आयोजित दूसरे पैक्स सिलिका शिखर सम्मेलन में कल भारत ने 34 अन्य देशों के साथ मिलकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रौद्योगिकी को सशक्त बनाने के लिए अमेरिका के नेतृत्व वाली एक पहल पर हस्ताक्षर किए। अमेरिका के आर्थिक मामलों के विदेश मंत्री जेकब हेलबर्ग ने कहा कि AI अवसर पर शामिल होने वाले देशों ने AI युग के लिए विकसित विकास समर्थक और नवाचार समर्थक नियामक दृष्टिकोण का समर्थन किया है। आज मुहर्रम है। ये दिन पैगंबर मोहम्मद के नवासे हजरत इमाम हुसैन और उनके साथियों की शहादत की याद दिलाता है जिन्होंने कर्बला में सत्य और न्याय की रक्षा के लिए प्राणों की आहुति दी। शहीदों की याद में आज ताजिए निकाले जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हजरत इमाम हुसैन का बलिदान सत्य और न्याय के मार्ग पर अडिग रहने की प्रेरणा देता है। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि हजरत इमाम हुसैन का बलिदान आज भी लोगों को सत्य और न्याय के लिए डटे रहने की प्रेरणा देता है। भारत आज बेलफास्ट में आयरलैंड के साथ 2 मैचों की T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट श्रृंखला का पहला मैच खेलेगा। मैच शाम 6 बजे से शुरू होगा। भारतीय टीम की कप्तानी श्रेयस अय्यर करेंगे। टीम में 15-वर्षीय बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी भी शामिल हैं। आयरलैंड के कप्तान लोरकान टकर होंगे। श्रृंखला का दूसरा और अंतिम T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच रविवार को खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हिंदी समाचार हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित कर रहे थे। मीडियम वेव 1260 किलोहर्ट्ज़ और FM बैंड 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये अंबिकापुर केंद्र है। दोपहर के 1:05 हुए हैं। लीजिए सुनिए कार्यक्रम खेती की बात का पुनः प्रसारण। विषय है उन्नत बीजों का चुनाव कैसे।
2: खेती की बात में आज हम बात करेंगे उन्नत बीजों का चुनाव कैसे करें इस विषय पर। किसान भाइयों, सबसे पहले हमको यह ध्यान रखना पड़ता है कि हमारा जो बीज जिसका उपयोग हम अपनी खेतों में करने वाले हैं वह अत्यधिक लाभदायी हो। तो उन्नत बीजों का चुनाव करते समय कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना पड़ता है, जैसे बीज की गुणवत्ता। बीज अन्य फसल के बीजों और खरपतवारों के बीजों से पूर्णतया मुक्त होना चाहिए। फसल के बीजों में अन्य फसल के बीज अगर मिल जाएं तो उनके वृद्धि करने का ढंग, खाद और पानी आदि की आवश्यकता अलग होती है। उनके पकने और काटने का समय भी अलग हो सकता है। अतः अंत तक भूमि से मुख्यतः पोषक तत्वों और नमी आदि के लिए अन्य फसलों के पौधे मुख्य फसलों के साथ प्रतियोगिता करने लगते हैं और इस प्रकार मुख्य फसलों के पौधों की उपज कम करते हैं। इसी प्रकार खरपतवार के पौधों मुख्य फसल की उपज कम करते हैं और साथ ही साथ उनके गुणों को भी कम करते हैं। बीज में नमी का प्रतिशत। बीजों की अंकुरण क्षमता का बीज में उपस्थित नमी की मात्रा से सीधा संबंध होता है। बीज अगर अधिक सूखे हैं तो बीज के अंदर उपस्थित भ्रूण की मृत्यु हो सकती है और अगर अधिक नमी है तो बीज पर अनेक फंगस रोगों के लगने से उनकी अंकुरण क्षमता नष्ट हो सकती है। बीजों को भंडार में रखते समय 10-15% तक नमी रहना चाहिए। बीज की परिपक्वता। किसान भाइयों, खेत से फसल जब दूधिया या मुलायम गुम्फावस्था में काटी जाती है तो उससे प्राप्त होने वाले बीज पूर्णतः परिपक्व

0: नहीं होते हैं। जो फसल सख्त गुंबावस्था में काटी जाती है उससे प्राप्त बीज परिपक्व होते हैं। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि बीज आवश्यकता से अधिक परिपक्व न हो, क्योंकि इस कारण बीजों में अंकुरण कम होता है। बीज की अंकुरण क्षमता। किसान भाइयों, बीज की मात्रा प्रति इकाई क्षेत्र निश्चित करने के लिए यह आवश्यक है कि कृषक को यह ज्ञात हो कि जो बीज वह बोने वाला है उसकी अंकुरण क्षमता क्या है। कृषक यदि बीजों की अंकुरण क्षमता ज्ञात किए बिना ही बीज खेत में बो रहे हैं तो उन्हें यह निश्चित नहीं होता कि बीजों का अंकुरण खेत में कैसे होगा। अतः बीज की अंकुरण क्षमता के आधार पर ही बीज बोने की मात्रा निर्धारित की जाती है। बीजों की अंकुरण क्षमता बढ़ाने के लिए बीज की प्रसुप्ति अवस्था को कुछ इस प्रकार नष्ट कर सकते हैं। बीजों के आवरण को खुरच कर। बीजों के कठोर आवरण को खुरच कर नष्ट करने से पारगम्यता बढ़ जाती है। आलू के बीजों को रेत में डालकर हिलाने, अम्ल या अल्कोहल के हल्के घोल से उपचारित करने से बीजों का आवरण कमजोर हो जाता है, जिससे बीजों में वायु और पानी का प्रवेश सुगमता पूर्वक होता है। प्रकाश उपचार। कुछ बीजों के अंकुरण के लिए प्रकाश की आवश्यकता होती है। प्रकाश की लाल किरणों से बीजों के अंकुरण में सहायता मिलती है। अतः जिन बीजों के अंकुरण के लिए प्रकाश आवश्यक हो उसको प्रकाश का उपचार देना आवश्यक है। तापमान उपचार। किसान भाइयों, बीजों का अंकुरण बढ़ाने के लिए बीजों को कभी कभी न्यूनतम और अधिक ताप पर रखना पड़ता है। इस प्रकार से बीजों की प्रसुप्ति अवस्था नष्ट हो जाती है। तापमान का उपचार करते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि तापमान का अंतर 15 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक नहीं हो। दबाव उपचार। किसान भाइयों, कुछ बीजों का अंकुरण अधिक दबाव का उपचार देकर भी बढ़ा सकते हैं। उदाहरण के लिए सुसर्ण में बीजों पर 8 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान में जलीय दबाव की सहायता से 2000 वायुमंडल के बराबर दबाव डालने पर काफी सीमा तक अंकुरण बढ़ाया जा सकता है। रासायनिक उपचार। किसान भाइयों, विभिन्न रसायनों जैसे पोटेशियम नाइट्रेट के 0.1% के घोल में, गंधक और नमक के अम्ल हल्के घोल में या जिब्रेलिक अम्ल के घोल के उपचार से भी बीजों की प्रसुप्ति अवस्था को नष्ट कर सकते हैं। आलू में प्रसुप्ति अवस्था तोड़ने के लिए इसके कंदों को बोने से पूर्व इथाइलिन डाइक्लोराइड या थायो यूरिया के घोल में डुबाना पड़ता है। किसान भाइयों, इस तरह से कुछ छोटे छोटे बातों का ध्यान रखकर हम अपनी आमदनी बढ़ा सकते हैं।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम खेती की बात का पुनः प्रसारण। विषय था उन्नत बीजों का चुनाव कैसे। मीडियम वेव और FM बैंड पर हम आकाशवाणी के अंबिकापुर केंद्र से बोल रहे हैं। दोपहर के 1:10 हुए हैं। प्रस्तुत है महिलाओं का कार्यक्रम घर गोसाई।

घर गोसाइन कार्यक्रम सुनने वाला जम्मू बहनी मनला संगी मनला किस्मतिया बहन के राम राम जय जोहार। उम्मीद करत हूँ आप मन बने बने होइया। अभी मौसम पानी हर बदलता है तो भाई अपन स्वास्थ्य के तैयारी भी जरूर करिए। बहनी हो, आज मुहर्रम के त्यौहार मनाल जाता है। हमार मुस्लिम भैया बहनी मनकर ये पवित्र त्यौहार है। मुहर्रम इस्लाम धर्म के सबले पवित्र महीना में ले एक ठना है और ये इस्लामी नवा साल के पहली महीना होते। ये महीना के 10वीं तारीख जिनला आसूर कहे जाते ओकर खास महत्व होते। ये दिन इमाम हुसैन और उनकर साथी मन के बलिदान ला याद करल जाए। उमन सत्य न्याय और धर्म के रक्षा पर कारबेला जगह में लड़त लड़त शहीद हो गए रहन। मुहर्रम के जो अवसर रहे ये समय में लोग बागमन हमारे जो मुस्लिम भैया बहनी मना है उमन दुआ करते हैं, इबादत करते हैं, गरीब और ज़रूरतमंद के मदद घलो करते हैं। कई जगह जुलूस भी निकाले जाते और तजिया भी घुमाए जाते। कोई जन कोई कोई जो भैया बहनी मन है ते मन रोजा घला रखते हैं। और ये महीना जो है जो रहे

0: में हमन ला सच्चाई, धीरज, त्याग और इंसाफ और मानवता भर के राह में चले के जो है ये हमला सीख दिया थे। मुहर्रम के जो त्यौहार रहे ले खुशी के नहीं बल्कि श्रद्धा, सम्मान और बलिदान ला याद करे के अवसर माने जाते। तो देखिए कोई भी हमर कोई भी धर्म रहे लेकिन हर धर्म में जो हमर जो धर्म गुरु मना है चाहे जो कोई भी ऐसा है वो हमला यही सीख दे ऐसा है। कोई भी संत है वो आके हमला यही सीख देना है कि हमला सच्चाई के रास्ता में चलना है और आपसी भाईचारा और देश भर अपन धर्म भर जो है शहीद और बलिदान देकर ये जो है सीख हमला देना है। तो देखिए आज मुहर्रम त्यौहार जो है हमारे मुस्लिम भैया बहनी मन मनाता है और मैं यूँ कहना चाहूँ कि संगे संगे हमला एक चीज़ और ध्यान में रखना है कि कोई भी धर्म रहे सब धर्म में समान रूप से एक शिक्षा दिया गई सा है कि हमला भाईचारा के साथ एक दूसर के सम्मान करना है, एक दूसर कर कहना चाहिए कि उनका धर्म के भी मामला रखना है और भगवान एक ठना है और जो ईश्वर एक ठो है जो पूरा सृष्टि ला बनाई सा है ओकर सम्मान में हमला हमेशा नतमस्तक रहना चाहिए और उनका सीख ला लेके और समाज में जो है एक अच्छा अपन जो है स्थान बनाना चाहिए। तो भाई आज मुहर्रम का त्यौहार हमार भैया बहनी मन सब जन मनाता है और हमला भी एकर से प्रेरणा लेना है और मन के जो बलिदान दिवस है ये कर भी हमला भी सम्मान करना है। बहनी हो संगे संगे देखी नकदी कन गोट बात भी आज लेके आए हो आप मन पर भाई हमन अभी चर्चा करबो कि भाई आज विश्व नशा निरोधक दिवस भी आया है इला भी मनाल जाता है कहे कि देखी जो नशा है एकर चपेट में हमार पूरा विश्व कहना चाहिए कि आएगी सा है हर जगह हर देश में कुछ ना कुछ जो है नशा करके जो हमारी युवा पीढ़ी है वो नाश होता है ओकरे लिए 26 जून के विश्व नशा निरोधक दिवस जो है ओला मनाल जाए। ये कहना चाहिए कि भाई जो एक नशा जो है ना ये पूरा देश का जो है वो बर्बाद करता है तो ये दिन का मुख्य उद्देश्य यही होना चाहिए कि नशा कर जो नुकसान है उसके बारे में जागरूकता फैलाना है, समाज ला नशा मुक्त बनाए बर प्रेरित करना है कि भाई कैसे जो है हमारे जो युवा पीढ़ी है वो जो नशा करती जाता है और ओकर से फिर अपराध करती बढ़ता है ओकर से वो बांच सके। देखिए जो नशा रहना एक आदमी ला नहीं बल्कि ओकर परिवार, समाज और पूरा देश ला प्रभावित करते हैं। नशा से स्वास्थ्य बिगड़ते, पढ़ाई लिखाई और कामकाज में भी बाधा आते, परिवार में भी तनाव बढ़ते और रिकिम रिकिम के अपराध घला होता है। एकर से सबों की जिम्मेदारी है कि अपन गांव, घर और समाज ला नशा मुक्त बनाए बर मिलजुल के काम करना है और हमार जो युवा पीढ़ी है जो हमार देश के भविष्य है तेकर से युवा मनला खेलकूद, पढ़ाई, संस्कृति और रचनात्मक क्षेत्र में मतलब अच्छा कार्य करे के क्षेत्र में आगे बढ़ाए बर प्रोत्साहित करना है। अगर कोनो व्यक्ति नशा करत भी है ना तो ओकर जो और मान ला छोड़े के प्रयास करत है वो नहीं कर पाते हैं तो वो अगर समस्या से जूझता है तो ओकर मजाक नहीं बनाना है बल्कि ओकर मदद करना है, समाज कर सब मन से मन मिलकर ओकर मदद करना ताकि ओकर सही इलाज हो पाए और वो नशाला छोड़ सके। और देखिए संकल्प लेना है आज ये विश्व नशा निरोधक दिवस के अवसर पर कि ना हमन खुद कोई नशा करब और ना बाकी झनला करे देब और दूसर कोई ला भी नशा छोड़े पर प्रेरित जरूर करब। तो अपन गांव, अपन समाज और अपन छत्तीसगढ़ ला स्वस्थ और सुरक्षित और नशा मुक्त बनाए बर सबो मिलकर के काम ला जरूर करब। देखिए आओ गुड बात करूँ लेकिन चटिक संदेश है वो लागू सुन ले हथी।
1: असली नोट से क्यों खेल रहा है
2: ब्रो? ये फटा है।
3: सुन, कते फटे हैं पुराने नोट को?
4: बैंक ब्रांच में एक्सचेंज कर सकते हैं।
2: वाओ, नया नोट मिलेगा?
3: हाँ, जिससे तू हमें पिज़्ज़ा पार्टी देगा।
4: आरबीआई कहता है स्मार्ट बनो, कूल रहो।
0: हाँ तो देखिए अब मुझे लगता है कि आप मुल्ला को ठन गीत ला भी सुनवाना चाहिए तो भाई चलिए एक ठन गीत ला सुन लेती तेकर गोट करबो।

हाँ तो देखिए गुलाब सिंह पैकरा कर गाल सुगर कन छत्तीसगढ़ी गीत ला भी सुनें बहनी हो। देखिए गोट करते हैं हमन की आज नशा निरोधक दिवस भी है और हमन ला पूरा प्रयास करना है कि हमर समाज से ये नशा जो है वो दूर हो जाए। लेकिन एक शुरुआत सबले पहले हमर गांव घर के बहनी मन ला अपन घर से ही करना है। घर में अगर कोई व्यक्ति नशा पत्ती करता है तो ला छुड़ाए के पूरा प्रयास करी और संगे संगे देखिए बहुत तीहा जतन करना पड़ी कि जो हमर लड़का मना है एमन नशा के चपेट में झीना है। कहे कि देखिए घर के सियान मन ला चाहे रोड मन ला नशा पत्ती करते देख करके लड़का मन भी उमन में भी उत्सुकता लगेल कि एकर से का होएल कैसा लगेल महू कर देखते हैं टाइप के है नहीं। तो अगर उमन खाते हैं और अगर लड़का मन ला जंगा ही तो भाई उमन तो नहीं न मानी।

मन्नत लगी कि जरूर अच्छा चीज़ है, तभी तो हमारे सियान मन रोट मन खाते हैं। तो कोई भी चीज़ की अगर शुरुआत करना है तो अपन आप से पहले करी, अपन आपला सुधार ली तब लैका मनला बोलना है। और आज के समय में तो मैं देखती हूँ कि भाई गांव में छोटे छोटे लैका मन आए थे मन माखोर गुड़ा खू बीड़ी और वो रिकिम रिकिम के पाउच मनला खात रहते हैं। और मनला भाई देखी पता नहीं रहे, लेकिन अगर घर के लोग मन उमनला बताएं तो भाई उमन जान सकता है कि ये चीज़ अच्छा नहीं है और ओला छोड़ा के भी प्रयास करना चाहिए। देखिए छोटा छोटा चीज़ में लेकर मन जब नशा करे पर शुरू करी ना, पहले माखुर खाही गुड़ाखू खाही फिर उमन ला कर लत लग जाए, और जब लत लगे तो वो चीज़ की पूर्ति पर घर से पैसा चुराए पर भी शुरू करी, नहीं दिया तो बाहरे भी चोरी करी, छोटा छोटा सामान मनला बेची, और ये सब के जो आदत जब हो जाए ना तो वही एक छोटा छोटा अपराध करते थे एक दिन समाज में बड़ा अपराधी के रूप में सामने आ जाते हैं। आज बहुत सारा अपराध जो है ओकर एकमात्र कारण है, और दुर्घटना कर भी मैं कहूँ कि एकमात्र कारण है नशा। नशा करके गाड़ी घोड़ा चलाए से भी देखी एक्सीडेंट होल और जीव भर चल जाए, वो समय आदमी नहीं सोचल, उसमें बड़ा मजा लगे कि भाई नशा करे के बाद अपन आपला हवा में उड़े पर सोचते हैं, लेकिन जे घनी जीव भर चल जाए तो हमेशा के लिए उड़ जाते ना, तो ये चीज़ के हमला ध्यान रखना है। दूसरी चीज़ यह है कि लेका मल्ला जैसे कि मैं कहता हूँ कि उमन भी मैं देखता हूँ कि भाई नशापत्ती कर आदत हो जाता है, तो आप मल्ला तन चटी बहनी मल्ला ध्यान दिया करना है, और घर के जो लोग मना है उमनला भी नशापत्ती से दूर रहना है। भाई हमारे सरगुजा तो इसने कही है कि बदनामा है कि सूरज जस्त और सरगुजा मस्त, यानी आदमी दिए काम बूता करिए और सांझ जुआर जो है अपन थकान हटाए बर जो है नशा करते हैं। अगर नशा करे के बजाय अगर अच्छा अपन खान पान लग कर लिया, मेहनत मजदूरी करके पैसा कमा था, वो पैसा ला नशा में उड़ाए के बजाय यदि अच्छा खाना पीना अपन कर लिए, कुछ अच्छा चीज़ खरीद के ले जाइए जेकर से लेकर घर परिवार सब बढ़िया कर रहे हैं, तो देखिए एकर से अपन स्वास्थ्य भी अच्छा रही, और जो बीमारी हो के मरिया चाहे कोई भी रिकिम रिकिम की बीमारी है जहर हो जाए नशा करे से ओकर से बाँचे भी रही है, घर परिवार में भी एक लंबा जीवन जी सका था। दूसरी चीज़ यह है कि नशा करे के बाद जो है घर परिवार में जो कलह की स्थिति उत्पन्न हो जाए, घर के आर्थिक स्थिति जो खराब हो ओकर से भी बचे रही है। भाई नशा करे के बाद आदमी लग खुदे पता नहीं रहे कि का बोलत ही काकर से का बोलना है, और लैका मन से कैसा व्यवहार करना है, सियान मन से कैसा गोट करना है, सब चीज़ आदमी हर भुला जाए, कहे कि वो समय ओकर अंदर के नशा हर बोले वो आदमी हर नहीं बोले है नहीं, और जब उतर जाए तब पछताएल का फ़ायदा है। और अगर कला हुआ थे तो देखिए लैका मन रहते तेहू मन सुनत रहते कि भाई कैसे कैसे गोट हुआ थे घर में, लड़ाई झगड़ा बाँचते हैं गाली देता है सब लैका मन देखते हैं, और उमन सीखत जाते हैं। फिर आगू जी है तेकर लैका मन ला जंग गई है कि यार गंदा आदत सीख ले सा है, यार गाली दे है, यार ऐसा कर, तो कहाँ से सीखीस, कहीं ना कहीं ओकर जिम्मेदार हम ही मन घर परिवार वाला मन है। लैका हर बहरे बाद में सीखेल, सबसे पहले अपन घर से सीखेल, तो घर के वातावरण जैसा रही लैका कर विकास वैसने हो जाए। तो बहनी हूँ बहुत ध्यान देना है और प्रयास यही करना है कि अपन अपन घर जो है वो नशा मुक्त घर रहे, और लैका मन कर पढ़ाई लिखाई, और हमारे जो सियान मना है उमन के स्वास्थ्य के तिया जरूर करी। लेकिन चलिए एक ठन गीत लाओ सुना थी।

हाँ तो देखिए हीराचंद पटेल कर गाल भोजपुरी गीत ला भी सुने। और देखिए आज शुभ दिन है और आप मन मरलांथन हमन छोटा छोटा लोक कथा कहनी जेहर की भी शिक्षा प्रद कहनी रहल और इसने आप मन बराज में लेके आए हूँ कथा कहनी कार्यक्रम के अंतर्गत हरपाल सिंह की पांच बातें। तो लेगी चली ये कहानी आप मन में सुनात हूँ। एक ठन युवक रहीस, बचपन से ही ओकर माँ गुजर गए रहीस और सौतेली महारोला पोसिस पाले रहीस। तो भाई जब वो ओला पालत पोसत रहीस तो बढ़िया ओकर से व्यवहार नहीं करे, बहुत प्रयास करे। ओकर नाम हरपाल सिंह रहीस और वो बहुत प्रयास करे कि अपन माँ ला खुश रख सके लेकिन नहीं रखे पाइस। एक जब धीरे धीरे बड़ा हुई युवावस्था में आइस तो ओके लगे लगीस कि ऐसा जीवन जिए से अच्छा है कि मैं घर दुराला छोड़ के कहूँ जग चल जाऊँ। और एक दिन मन बनाए रहीस हो और घर ला छोड़ के निकल गईस। ओकर आदत रहीस घर से थोड़ा दूरी पर एक ठन बुजुर्ग क्रिश्चियन रहीस, ओहर काकरों से कम बात गोट करे लेकिन पूजा पाठ में रहत रहीस। तो जब भी कोई समस्या हुए तो वो बुजुर्ग जग जाए के ओकर जग जो है सियान जग जाए के अपन समस्या ला बतात रहे और ओला समझाए तब फिर ये समझत रहीस। तो जब वो दिन भी घर छोड़े के विचार बना के जब वो निकलीस तो सोचिस कि एक बार जाके वो बुजुर्ग से जरूर मिल लो। ओकर बाद वो सियान जग गईस तो सियान हर ओकर मुँह ला देख के समझेस, बोले कैसे आज कैसे आए हस। तो ओकर मन कर व्यथा ला सुनिस, फिर कहीस कि तो का विचार करे हस, घर छोड़ के जात हस, घर छोड़ के नहीं जाना चाहिए, तय जा अपन घर में और ओला समझाइस फिर। लेकिन हरपाल सिंह कर दिमाग में रहीस कि नहीं अब मुला यहाँ नहीं रहना है। तो कहीस कि नहीं अब मैं घर छोड़ के जात हूँ और बहरे जाके अपन जीवन यापन करूँ कमाऊँ कहूँ। तो वो सियान हर ओला कहे कि ठीक है लेकिन एक चीज़ ध्यान रख कि तय मोर पाँच ठो बात ला अपन गांठ में बांध के रख ले। सबले पहला ये कि जे कोई तोर मदद करी ओकर तहूँ मदद कर बे, ओकर सेवा कर बे, कोई से भी ओकर दिल दुखाए वाला बात नहीं करना है, अपन हर काम ईमानदारी से करना है और कभी भी योग्य बने बिना दूसर के बराबरी के दावा मत कर बे। और जहाँ भी ज्ञान के दो बात मिली ओला जरूर ध्यान से सुन बे, ऐसा बोलिस। तो बोलिस कि ठीक है और हरपाल सिंह निकल गईस। यहाँ निकल के सीधे गईस, जब राज्य में पहुँचिस तो वहाँ के जो सेनापति रहीस ओकर से मिलिस, ओकर से काम मांगिस, ओला देख जान बुझ के फिर सेनापति जोकर मदद करिस, ओला काम देवाए दिस। राजा यहाँ वो काम बुता करे लगिस, सब काम पूरा वो ईमानदारी से करत रहीस, क्या कि ओकर दिमाग में ये बात रहीस कि भाई मोला बढ़िया से काम बुता करना है। ऐसने काम करत करत एक दिन कर गोटा है राजा कर मन हो इसके वो शहर पे निकले, दूसर गांव कति लंबा दूर मन शहर पे निकलिन। राजा के संगे संगे रिकिम रिकिम के सैनिक मन, नाचे गाए वाला मन, लांग लश्कर सब लेके निकले, अच्छा पूरा लेके निकलिस राजा घूमे भर। सैर करत करत काफ़ी दूर निकल गई, एक ठन गाँव में पहुँची। न भाई वहाँ पहुँची तो अड़बड़ गर्मी रहीस, अब राजा ला प्यास लगीस।

और वहाँ जब पूछें कि भैया प्यास लगे थे पानी की व्यवस्था करो, अब इतना मन से मन रही नौकरन कि भाई पानी की व्यवस्था कहाँ से होए, तो गांव के सरपंच ला पकड़ के बुला गईस, कहल गईस कि भाई तय पानी की व्यवस्था कर, इतना इतना आदमी ला पीना है, हमन प्यासे मरथन। सरपंच रख बकाया गईस, कहीस कि महाराज इतना जन के पानी की व्यवस्था तो नहीं हो पाई, कहे कि अभी ये समय में हमार जग व्यवस्था नहीं है। हाँ, यहाँ पर थोड़ा सा दूरी में ठुबावड़ी है, कुआँ है, जहाँ जग कि पानी भरपूर है, और लेकिन वहाँ कोई जाए बर नहीं करे। तो राजा पूछेस काबर, कहीस कि वहाँ भाई भूत प्रेत मन रहते हैं, तो जेमन जेमन जाते तेमन मर जाते हैं, तो कोई वहाँ नहीं जाए। अब राजा हर पिया से मरत रहे, कहे मैं कुछ नहीं जानू, मोला पानी चाहिए। सेनापति ला बोलीस कि जाओ जाके पानी लान। अब सेनापति सब गोटला सुनत रहीस, तो हरपाल सिंह ला कहीस कि तय जा और वो बावड़ी में जाके पानी लेके आ। हरपाल सिंह के मन में पहला वो बुढ़ऊ के जो रही सोला सियान रही से बात ला बताए रहीस, वो बात हर दिमाग में आईस कि जेहर तोर मदद करी से ओकर मदद तहूँ कर में। तो ओकर दिमाग में जब ये बात हराइस तो तुरंत दूठो घड़ा उठाइस और चले गईस भाई वो बावड़े कति पानी लेहे बर। जब वहाँ जग पहुँचिस तो जैसे वो पानी ला डुमाए के भर के निकलत रहीस, तो ओला खूब जोरदार हंसी की आवाज़ सुनाई देस। ओहर सुनीस और रुक गईस, तो देखीस कि ऊपर चढ़ात रहीस तो जब सीढ़ी पर एक ठो बड़ा भयंकर सा आदमी, बहुत गंदा दिखे वाला डरावना सा आदमी खड़ा रहीस, और वो अपन जोर से पोटार के एक ठो हड्डी के ढांचा ला धरे रहीस। तो हरपाल सिंह ला देखा, तो हरपाल सिंह भी चटिक डराए गईस, खड़ा हो गईस, देखे लगीस ओकर कति। और पूछीस कैसे युवक का ला देखत हस, मोर इतना सुंदर पत्नी ला देखे तहूँ अक बकाए गए। हरपाल सिंह पहले कि कुछ बोले जाए, ओकर मन में तुरंत दूसरा जो सियान के गोठर याद आएगीस कि कोई कर दिल दुखाए वाला बात नहीं करना है। ऐसा सोच के फिर वो तुरंत कही, सच में इतना सुघर भाई मैं तो कोई भी औरत ला नहीं देखी हूँ, बड़ा सुंदर पत्नी है राउर के। तो आदमी हर कहीस कि तैं पहला आदमी हस जे लहर मोला खुश कर दे, बाकी जितना जना थे वो मोला मजाक उड़ात रहन कि तैं हड्डी के ढांचा ला लेके चलत हस। ऐसा बोल करके वो कर से खुश होगी, सब बोलीस कि मैं तो ला पानी ले जाए दे हुए जगले। फिर कहीस कि मैं तोर से बहुत खुश होता, ये बता पहली कि तैं मोर से कुछ मांग ले। एकर से पहले जितना आदमी मन रहीन वो मोर पत्नी ला बदसूरत और हड्डी के ढांचा बोलें तो मैं उमन ला मार दें, अब तय बता मैं तोर से खुश हो तो ला का चाहिए। हरपाल सिंह तुरंत कहीस कि अगर ऐसा है तो तय काम कर भाई, तय जगह ला छोड़ के चल जा यहाँ, और यहाँ के जो गांव बस्ती मन कर लोग हैं उमन ला पानी पिए दे। ओकर बात ला मान लेस और वहाँ से चल गईस। एकर पीछे कर बातें रहीस कि वो आदमी हर अपन जो घर वाली रहीस ओकर से बहुत प्रेम करत रहीस, और जब ओहर मर गईस तब वो लोला लेके भूलत रहीस, और ओकर मानसिकता ऐसे हो गई रहीस कि कोई भी ओकर अगर पत्नी के बुराई कर देत रहीस तो ओला वो जान से मार देत रहीस, जेकर से भ्रम हो गए रहीस कि वहाँ भूत प्रेत रहते। फिर वो आदमी वहाँ से चले गईस। हरपाल सिंह पानी लानीस और जम्मू सैनिक मनला और राजा मनला पानी पियाए, सुमन कर प्यास बुझाइस। राजा एकदम खुश हो गईस और ओला अपन कोषाध्यक्ष बनाए लहीस। अब राजा जब कोषाध्यक्ष बनाए लगीस ओगर काम बूता बढ़िया कन होए लगीस। राजा कर एक ठर भाई रहीस, ओहर राजा से बहुत जलत रहीस। वो सोचिस कि हरपाल सिंह ला अपन में मिराए ले हूँ तो फिर राजा ला मार के ओकर जगह पे मैं बैठ सकत हूँ, राजा बन जाऊँ। बहुत कोशिश करीस हरपाल सिंह ला मनाए बर तो नहीं मानिस। फिर ओला कहीस कि तय अगर मोर संगे मिल जाबे तो मैं राजकुमारी से तोर शादी करवाए दे हूँ। थोड़ा देर बाद हरपाल सिंह के मन हर पीट डोलीस, लेकिन फिर वो कहीस कि ओकर दिमाग में तुरंत जो ओकर सियान कह रही ओकर गोठर याद आईस कि अधिक योग्य बने बिना दूसर के बराबरी के दावा नहीं करना है। मतलब अगर मैं अभी योग्य नहीं हूँ तो मैं राजा बनेकर और राजकुमारी से शादी करके गोठला कैसे सोच सकत हूँ। तो एक चलते जैसे ओकर दिमाग में बात आईस वो मना कर देस। अब राजा कर जो आदमी राजा कर जो भाई रहीस ओहर एकदम जंग आएगीस और सोचिस कि ये मोला मना करत है, तो जाके राजा जब शिकायत कर दहीस। अब राजा भी एकदम ओकर बात में आएगीस और कहीस कि हरपाल सिंह ला सीधे ओकर मृत्युदंड देहत हूँ मैं। तो गईस और जाके बोलीस कि जहाँ जग धर्मशाला बना थे वहाँ खबर पहुँचा दो और ये बात कोई ला नहीं बताना है। तो ला खबर पहुँचाल गईस वहाँ के आदमी मन ला जेमन धर्मशाला बनाते रहन कि अगर कल बिहान एक आदमी आई और कही कि भाई काम कितना बाकी है तो तय ओकर गला ला काट देबे, और बिहाने राजा हरोला जो धर्मपाल रहीस ओला भेज दहीस। अब जब हरपाल वहाँ पहुँची से जाए करके और पूछीस कि भाई मोला का काम बोलना है, तो बोलीस कि भाई जा जाए जा करते पूछ के आबे कि कितना काम बाकी से। हरपाल चले गईस, लेकिन जात जात डगर में एक जगह मंदिर पड़ गईस। अब मंदिर जब मिलीस तो वहाँ भाई सत्संग होत रहीस, तो हरपाल सिंह सोचीस कि भाई सियान कहे रहीस कि जहाँ भी ज्ञान के दो बात मिले वहाँ बैठ के सुनना है, वो बैठ के सत्संग सुने लग गईस। यहाँ राजा के भाई हरक बकाए गईस कि भाई इतना देर हो गई अभी तक कोई खबर नहीं आई सोकर मरे कर, तो खुदे भेष बदल के वहाँ पहुँच गईस और धर्मशाला में जाए कि और पूछे लग गईस कि भाई कत का काम बची सहे आऊ।

और जो वहाँ के आदमी रिश्ते हर सोचे कि यही आदमी है जिला मारना है, और थर्ड ले कर तलवार से जोकर सिरला काट दईस। और राजा के जो भाई होवर मर गईस। बाद में राजा ला सब गोठ हर पता चलीस तो राजा हर हरपाल सिंह से क्षमा मांगिस। फिर हरपाल सिंह ये गोठ ला सोचिस कि आज अगर मैं अपन सियान कर वो पांच ठो सीख रहीस ओला अगर मैं नहीं माने रहते तो आज मोरो जीवर चल जातीस। कहे के मतलब ये है कि कभी भी अगर हमार सियान कोई अच्छा बात ला बताते तो ओला मन में गांठ पार के चलना चाहिए और अच्छा चीज ला हमेशा अपन जीवन में धारण जरूर करना चाहिए। तो देखिए बहनी हो, मोर कहानी हर पोर गईस, साप मन के दाल भात चूर गईस। तो अब देखिए जाए के बेरा भी होगी सा है। तो भई अब किस्मतिया बहन ला दी विदा, आने दिन फिर भेटा हूँ। लेकिन उकर जाए से पहले मैं यही कहना चाहूँ कि अभी देखिए जैसा मैं गोट करत रहें कि हमन ला अपन सियान मन कर गोट बात ला मानना चाहिए, और साथ साथ में ये भी है कि अपन सियान मन के इज्जत भी करना चाहिए। तो आप मन मोर कहानी से जरूर ये कहानी देखिए, हमन जो जितना छोटे छोटे कहानी मन ला हमन अपन समय में पढ़े लिखे हन और अपन सियान मन से जो सुने हन वही छोटा छोटा कहानी अपन मरला। तो ये कहानी कर फरमाइश भी रेस एक श्रोता मोर से करे रहें चिट्ठी में लिख करके कि भाई धौरपुर का श्रोता हैं जो लिख के भेजे रहें कि ये कहानी ला जरूर सुनाप, हमार लड़का मन जो है आप मन कर कथा कहानी सुनते हैं। तो उनका फरमाइश पर मैं आज ये कहानी ला अपन ला सुनाए हो। तो मौके लगे थे कि कहानी अपन ला जरूर पसंद आई सोई। तो देखिए अब बेरा होएगी सा है। तो किस्मतिया बहन ला दी विदा, आने दिन फिर भेटा हूँ। राम राम।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम घर गोसाइन। मीडियम वेव 1260 किलोहर्ट्ज़ और FM बैंड 1260 किलोहर्ट्ज़ और FM बैंड 14.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है।

मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये अंबिकापुर केंद्र है। दोपहर के 1:40 हुए हैं। प्रस्तुत है श्रोताओं के ईमेल पर आधारित फरमाइशी फिल्म संगीत का लोकप्रिय कार्यक्रम ईमेल की गूंज।

नमस्कार श्रोताओं, आकाशवाणी अंबिकापुर के इस मंच पर आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। कहते हैं शब्द जब दिल से लिखे जाएं तो वे केवल पढ़े नहीं जाते बल्कि दिलों को छू जाते हैं, और जब उन शब्दों के साथ जुड़ जाए आपकी पसंद के सुरीले नगमे तो बन जाती है एक ऐसी महफिल जिसका इंतजार हर संगीत प्रेमी को रहता है। तो स्वागत है आपके अपने प्रिय कार्यक्रम ईमेल की गूंज में। मैं हूं आपकी अपनी रेडियो साथी प्रियंका, और आइए अब शुरुआत करते हैं आपके ईमेल पढ़ने का सिलसिला। तो कार्यक्रम के पहले गीत के लिए हमें जो ईमेल मिला है वो है गुजरात गांधीग्राम से प्रवीण सोनी, कलावती सोनी का। आजाद नगर लक्सर हरिद्वार उत्तराखंड से ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही और मेहरा जहां। राजधानी रायपुर से नीलू मेघ नीलम, डॉक्टर वंदना कुमार और बिट्टू कुमार। देवरी भाटापारा से के आर साहू, आकाश कमलेश, गन्नू लाल रजक। न्यू दिल्ली कीर्ति नगर से अनिल मानसी,

कविता, गौरव, अरोरा और परिवार के सभी सदस्य, छत्रपति संभाजी नगर से राजेश साबले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि राजेश और श्रीमती शीतल राजेश, नेहरू चौक पैठड़ से डॉक्टर सुरेश जाधव, अनीता जाधव, आरती पूजा और प्रसाद जाधव, जालना शहर से सोमनाथ जाधव, गीता जाधव, ओम सुभाष, एकनाथ और संगीता जाधव, तेलंगाना निजामाबाद से शेख अल्लाह बख्श बेगम, राबिया शेख, शेख रहीम मुन्ना, दानिश आसिफ शेख, जमानिया गाजीपुर से सुरेश जायसवाल, उर्मिला जायसवाल, दीपक जायसवाल, स्वाति जायसवाल, गम्हरिया जमशेदपुर से रोहन जायसवाल और आर्य जायसवाल। आप सभी सुनना चाहते हैं अहमद हुसैन और मोहम्मद हुसैन की आवाज़ों में वीर ज़ारा फिल्म का ये गीत। गीतकार हैं जावेद अख्तर, संगीत निर्देशन है मदन मोहन कोहली का।

स्वागत है एक बार फिर से ईमेल की गूंज में। उम्मीद है पहला नगमा आपको पसंद आया होगा। आपके भेजे हर ईमेल में अपनापन, स्नेह और संगीत के प्रति आपका प्रेम साफ झलकता है। यही स्नेह हमें हर दिन आपसे जोड़कर रखता है। अब बढ़ते हैं अगले ईमेल और अगली फरमाइश की ओर। अगला ईमेल मिला है हमें बापू कॉलोनी से। बेबी शालिया डावर, बेबी हलीमा डावर, बेबी जिकरा डावर और बेबी आयशा खत्री का। ये श्रोता हमारे खंडवा मध्य प्रदेश से हैं। मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर, रतन माला सुरलकर, आरती कुमारी और ओम कुमार। पाकुड़ झारखंड से उत्तम कुमार भगत, श्वेता भगत की

उम्मीद है पहला नगमा आपको पसंद आया होगा। आपके भेजे हर ईमेल में अपनापन, स्नेह और संगीत के प्रति आपका प्रेम साफ झलकता है। यही स्नेह हमें हर दिन आपसे जोड़कर रखता है। अब बढ़ते हैं अगले ईमेल और अगली फरमाइश की ओर। अगला ईमेल मिला है हमें बापू कॉलोनी से। बेबी शालिया डावर, बेबी हलीमा डावर, बेबी जिकरा डावर और बेबी आयशा खत्री का। ये श्रोता हमारे खंडवा मध्य प्रदेश से हैं। मुताला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर, रतन माला सुरलकर, आरती कुमारी और ओम कुमार। पाकुड़ झारखंड से उत्तम कुमार भगत, श्वेता भगत, किशु दासु, अर्णव आनंद, सत्यम आनंद। बोहड़ा गाछी पश्चिम बंगाल से मुन्ना भगत, गुड्डी भगत। मेहरनगर उमरखेड़ महाराष्ट्र से अभिजीत गवाड़कर, श्रीमती सरिता गवाड़कर, प्रिंस एकांश गवाड़कर, अर्जुन गवाड़कर और टुक टुक। बठेना पाटन जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से बलकरण वर्मा, अंजनी ज्योति वर्मा, निधि निखिल वर्मा। आकोट से विनायक बेंडे, श्रीमती मंगला बेंडे और शुभम बेंडे। कोल्हापुर से संभाजी सुतार, चेतन सुतार और सारिका सुतार। गांव नाईवाला जिला हनुमानगढ़ राजस्थान से वेद मिड्ढा और अलका मिड्ढा। रसेड़ा छत्तीसगढ़ से मुरलीधर साहू, लक्ष्मी देवी, योगेश कुमार, संध्या कीर्ति और डीके साहू। खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा और अंकुश अरोड़ा। जलगांव जंक्शन से दिनेश काले, वंदना काले, आदेश कुमार काले और प्रोफेसर वसुधा वज्रसेन। आप सभी सुनना चाहते हैं दिल आशना है फिल्म का ये नगमा पंकज उधास की आवाज में। गीतकार है मजरूह और संगीत निर्देशन है आनंद मिलिंद का।

मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी के अंबिकापुर केंद्र से आप सुन रहे हैं अपना पसंदीदा कार्यक्रम ईमेल की गूंज। कार्यक्रम में अगले गीत के लिए फरमाइश मिली है हमें भवानीगढ़ संगरूर पंजाब से परमिंदर सिंह रंधावा, लखन पाल रंधावा और सुरेंद्र कौर रंधावा। ग्राम पीपर लोड सरगांव मुंगेली से दीपेश वर्मा, पूनम वर्मा, ज्योति और शिवांश वर्मा। धनौरा बस्तर से वी पूनम नायडू, साजन के, शिवांशु, ऋषु, अक्षय कुमार, अभिषेक नायडू। जिला जालना मराठवाड़ा से सैयद यूनुस, सैयद नोमान, तनवीर मसरत, सैयद निजामुद्दीन और परिवार के सभी सदस्य। संभलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति यादव, ओजस्वी यादव। टैगोर गार्डन नई दिल्ली से रविंद्र सिंह छाबड़ा, इंद्रजीत कौर छाबड़ा और स्वीटी छाबड़ा। सदर बाजार कुरावली से अनिल कुमार वर्मा, माया देवी वर्मा, राहुल, विनीत और सोनम वर्मा। मेन रोड तेलहारा से प्रकाश पोहरकार, नर्मदा पोहरकार और कुमारी सुजाता पोहरकार। जेल रोड रायगढ़ से नरेंद्र कुमार तिवारी, महेंद्र कुमार तिवारी, बेबी जोई यामिनी तिवारी और उमा तिवारी। जालंधर सिटी पंजाब से सोनू, रवि, राज, गुलशन और लक्की। तो आइए सुनते हैं आप सबकी फरमाइश पर साहेब बीवी और गुलाम फिल्म का ये गीत गीता दत्त की आवाज़ में। गीतकार हैं शकील बदायूनी और संगीत

स्वागत है एक बार फिर से आप सभी श्रोताओं का कार्यक्रम ईमेल की गूंज में। अगले गीत के लिए हमें ईमेल मिला है कापस हेड़ा दिल्ली से फिरोज खान, अहमद मोगा, इकबाल मोगा और जलंधर से संदीप जाटव और सुरेश जाटव, मेरठ कैंट से राधिका साक्य और दिव्या अग्रवाल, सिद्धेश्वर नगर यवतमाल से पंजाब रामटेके, यशोधरा रामटेके, श्राव्या रामटेके, बालाजी चौक से ओटी श्रीवास, शेख आजाद और पोपो रानी, अनारकली बाजार जगराव पंजाब से सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका मल्होत्रा, गव्या मल्होत्रा, भाई सुच्चा सिंह पाठक और जयपाल यादव, ताज मंजिल लक्कड़ बाजार खंडवा मध्य प्रदेश से मोहम्मद रफीक पवार, मेनजीर कौसर, मोहम्मद साकी पवार, जेल रोड दिल्ली से लाल बाबू दीवाना, उमा राज और

दिव्या, गुराया जलंधर से संदीप कौर प्रभा कौर और मेरठ बाईपास से राधिका कौर और आरती कौर, बुलढाणा वडसिंगी महाराष्ट्र से अमोल मानकर, शोभा मानकर, दीपाली और श्लोक, रानीगंज बंगाल से रवि और इंदर, अकोला महाराष्ट्र से रमेश कामले, दिव्यानी और गणेश कामले, एकता कॉलोनी रोहतक से सीताराम कांगड़ा, बबीता बोट, निखिल कांगड़ा, मिठू मुड़ा दुर्गा चौक रायगढ़ से गेंदलाल श्रीवास, कृष्ण कुमार यादव, लक्ष्मण वाधवानी और गेंदू भाई। तो आइए सुनते हैं आप सबकी फरमाइश पर तुमसा नहीं देखा फिल्म का ये गीत श्रेया घोषाल और रूप कुमार राठौर की आवाज़ में। गीतकार है समीर और संगीत निर्देशन है नदीम श्रवण का।

0: मुझे इश्क की आग में जलने दो, ये धुआं धुआं सा रहने दो।
1: ये देख रही हैं आप, कुछ कीजिए इस नाटक का, कुछ कीजिए।
2: क्या ये वही लड़की है जिसके बारे में दक्ष ने मुझे बताया था?
1: हाँ जी, ये वही लड़की है। इसका नाम है जिया, एक बियर बार में डांस करती है। अभी कुछ दिन पहले आपका ये आपका पोता मेरी बेटी को छोड़।
3: कार्यक्रम का अगला गीत है फिल्म स्टंट मैन से कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाजों में गीतकार हैं समीर और संगीत निर्देशन है नदीम श्रवण का। इस गीत के लिए हमें ईमेल मिला है दिल्ली से स्वीटी और प्रतिभा का। बोरसरा नैला छत्तीसगढ़ से प्रमोद कुमार साहू, बीमा वैभवी, विनोद विभूति, अंशु बबली और प्रियांशु साहू का। देवीगंज रोड अंबिकापुर से राजकुमार नेभवानी, संगीता आकाश, आयुषी सागर, यशी हनी, पूजा और सीता। राष्ट्रीय दिव्यांग सहयोग संगठन छत्तीसगढ़ से नरेश कुमार, संदीप कुमार पांडे,

कृष्ण कुमार, चितरंजन यादव, सुनील कुमार, तेज कुमार साहू, रविशंकर राजवाड़े और मनीष कुमार साहू। विरमगाम राजकोट से रुचि गुप्ता, ट्विंकल और उमा गुप्ता। बिहार स्टेट डुमराव से राधिका जटोलिया छत्तीसगढ़ से, प्रभा जयपुरिया और गौरैया जालंधर से, अशोक जाटव। सुपरस्टार रेडियो श्रोता संघ सारसताल सोनगरा से प्रेम साय राजवाड़े, सोमार साय, मेर साय, श्री भगत, हेमंत कुमार और राम खिलावन सिंह पैकरा। तो आइए सुनते हैं आप सबकी फरमाइश पर यह प्यारा सा गीत।

कार्यक्रम के आखिरी गीत के लिए हमें ईमेल मिला है करजत मुंबई से आमना अंसारी, जेल रोड दिल्ली से लाल बाबू दीवाना और परिवार के सभी सदस्य, पुराना तालाब डुमराव से वली उल्लाह अंसारी, आसमानाज अंसारी और शबनम, उमर खेड से फरहा खान, आशिया खान और सरोज खान दिल्ली शहर से, आसमा परवीन, आमना परवीन और वली अंसारी। आइए सुनते हैं आप सबकी फरमाइश पर महेंद्र कपूर की आवाज़ में आज की आवाज़ फिल्म का ये गीत।

इसी गीत के साथ आज के ईमेल की गूंज में बस इतना ही। आपने हमें अपना समय दिया, अपने संदेश भेजे और इस संगीत भरे सफर का हिस्सा बने, इसके लिए आपका हार्दिक धन्यवाद। और अब अपनी रेडियो साथी प्रियंका को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम ईमेल की गूंज, मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये अंबिकापुर केंद्र है। दोपहर के 2:15 होने वाले हैं। कुछ ही पलों में दोपहर समाचार हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। गृहमंत्री अमित शाह का मादक पदार्थ के खिलाफ एकजुट होकर लड़ने का आह्वान। कहा, मादक पदार्थ राष्ट्रीय सुरक्षा और युवाओं के भविष्य के लिए गंभीर खतरा। उत्तर प्रदेश पुलिस ने राम मंदिर चढ़ावे में गबन मामले में 8 लोगों को गिरफ्तार किया। भारत ने 34 देशों के साथ मिलकर अमेरिका के नेतृत्व वाली पहल पर हस्ताक्षर किए। इसका उद्देश्य मजबूत AI आपूर्ति श्रृंखलाओं का निर्माण करना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुहर्रम पर हजरत इमाम हुसैन के बलिदान का स्मरण किया। T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में आज शाम भारत का मुकाबला आयरलैंड से। टीम में पदार्पण करने वाले प्रतिभाशाली खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी पर सभी की निगाहें। और फीफा विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया ने ग्रुप डी मुकाबले में पराग्वे के साथ ड्रॉ खेलकर नॉकआउट चरण के लिए क्वालिफाई किया। अब समाचार विस्तार से। गृहमंत्री अमित शाह ने आज नशे के खिलाफ एकजुट होकर लड़ने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि मादक पदार्थों का कारोबार देश की सुरक्षा, सामाजिक व्यवस्था, आर्थिक हितों और युवाओं के भविष्य के लिए खतरा है। उन्होंने आध्यात्मिक नेताओं, युवाओं और माताओं से इस अभियान में मिलकर भाग लेने की अपील की। श्री शाह ने ये बात नई दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर यानी NCORD की 10वीं शीर्ष स्तरीय बैठक को संबोधित करते हुए की।
2: आज हमारा देश नार्कोटिक्स के खिलाफ लड़ाई के ऐसे नाजुक मोड़ पर खड़ा है। आने वाले 3 तय करने वाले हैं कि नशा हम पर विजय प्राप्त करेगा या हम नशे पर विजय। और मेरा आप सबसे विनम्र आग्रह कि देश के आने वाले 100 के भविष्य के लिए ये लड़ाई हमने जीतनी चाहिए, दृढ़ता के साथ जीतनी चाहिए और हमारे संयुक्त प्रयास से जीतनी चाहिए।
1: गृहमंत्री ने कहा कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने मादक पदार्थों से जुड़े अपराधों की जानकारी समय पर साझा करने के लिए कई ऑनलाइन पोर्टल शुरू किए हैं। उन्होंने सभी राज्यों के मुख्य सचिवों और पुलिस महानिदेशकों से इन पोर्टलों पर नशे से जुड़े मामलों की जानकारी तय समय सीमा के भीतर अपलोड करने को कहा।
2: नार्को ऑफेंडर्स आज टेक्नोलॉजी से सक्षम बने हुए हैं, वो नेटवर्क

0: आधारित बन चुके हैं और मल्टी डोमेन अपराध के रूप में भी आज हमारे सामने खड़े हैं। ये सभी चीजें ये लड़ाई को और कठिन बनाती है। इसलिए हमारी प्रतिक्रिया एक रोड मैप आधारित होनी चाहिए और उसमें आधुनिक इंटेलिजेंस लीड बेस्ड प्रतिक्रिया होनी चाहिए, टेक्नोलॉजी ड्रिवन अप्रोच होना चाहिए और नेटवर्क सेंट्रिक लड़ाई हमने करनी पड़ेगी।
1: अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्ति दिवस के अवसर पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने नशा मुक्त भारत के निर्माण के सामूहिक संकल्प को दोहराने का आह्वान किया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री राधाकृष्णन ने इस आंदोलन को सक्रिय रूप से आगे बढ़ाने वाले विश्वविद्यालयों, शिक्षण संस्थानों और संगठनों की सराहना की। उत्तर प्रदेश पुलिस ने श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के चढ़ावे और दान से जुड़े कथित गबन के मामले में दर्ज पहली एफआईआर के 8 नामजद आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ये एफआईआर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर गठित विशेष जांच दल यानी एसआईटी की सिफारिश के बाद श्रीराम जन्मभूमि थाने में दर्ज की गई। शिकायत ट्रस्ट के सदस्य कृष्ण मोहन ने दर्ज कराई थी। एसआईटी ने मंगलवार को अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट सरकार को सौंपी थी, जिसके बाद कल मामला दर्ज किया गया। केंद्र सरकार ने स्वास्थ्य क्षेत्र में जन विश्वास अधिनियम के अंतर्गत सुधार किए हैं। इसके तहत औषधि और सौंदर्य प्रसाधन अधिनियम 1940 और खाद्य सुरक्षा तथा मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत आने वाले छोटे अपराधों को तर्कसंगत बनाया गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने दवा नियमों में संशोधन का मसौदा जारी किया है। इसके अंतर्गत आयात की जाने वाली दवाओं की बची हुई वैधता अवधि यानी शेल्फ लाइफ आयात के समय कम से कम 12 महीने होना अनिवार्य होगा। एक रिपोर्ट।
2: जैविक दवाओं और रेडियो फार्मास्यूटिकल दवाओं के लिए मौजूदा नियम लागू रहेंगे। इनके लिए आयात के समय कम से कम 60% शेल्फ लाइफ होना जरूरी होगा। मंत्रालय के अनुसार इस संशोधन से दवाओं की अनावश्यक बर्बादी कम होगी और दवा भंडार का बेहतर उपयोग हो सकेगा। मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि ये प्रस्ताव केवल आयात के समय दवाओं की बची हुई शेल्फ लाइफ से संबंधित है। अमन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। अमेरिका में आयोजित दूसरे पैक्स सिलिका शिखर सम्मेलन में कल भारत ने 34 अन्य देशों के साथ मिलकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रौद्योगिकी को सशक्त बनाने के लिए अमेरिका के नेतृत्व वाली एक पहल पर हस्ताक्षर किए। अमेरिका के आर्थिक मामलों के उप विदेश मंत्री जैकब हेलबर्ग ने कहा कि एआई अवसर पर शामिल होने वाले देशों ने एआई युग के लिए विकास समर्थक और नवाचार समर्थक नियामक दृष्टिकोण का समर्थन किया है। एक रिपोर्ट।
3: श्री हेलबर्ग ने कहा कि अमेरिका भारत के साथ अपनी साझेदारी को और गहरा करने के लिए उत्साहित है। उन्होंने द्विपक्षीय संबंधों को 21वीं सदी के सबसे महत्वपूर्ण संबंधों में से एक बताया। श्री हेलबर्ग ने कहा कि भारत के साथ द्विपक्षीय आदान प्रदान के प्रमुख मुद्दों पर चर्चा हुई, इनमें क्वाड और ट्रस्ट पहल शामिल है। शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव एस कृष्णन और भारतीय उद्योग के प्रतिनिधियों ने किया। भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने उद्योग जगत के नेताओं के साथ सेमीकंडक्टर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और लचीली प्रौद्योगिकी आपूर्ति श्रृंखलाओं में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की। समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
1: विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने अपनी 2 दिन की दक्षिण कोरिया यात्रा के दौरान विदेश मंत्री चो ह्यून के साथ द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने पर व्यापक चर्चा की। दोनों नेताओं ने व्यापार और निवेश, वित्तीय सहयोग, जहाज निर्माण, रक्षा और सुरक्षा, उभरती तकनीकों, स्टार्टअप, संस्कृति, शिक्षा तथा लोगों के बीच संपर्क जैसी कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सहयोग की समीक्षा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल से 29 तारीख तक सेशल्स के दौरे पर रहेंगे। वे सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री ने इससे पहले 2015 में सेशल्स का दौरा किया था। भारतीय रक्षा बलों का एक दल और नौसेना के 2 जहाज भी समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रपति डॉ पैट्रिक हरमिनी से द्विपक्षीय सहयोग के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने लंदन में ब्रिटेन के व्यापार और उद्योग मंत्री पीटर काइल से बातचीत की है। श्री गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि इस दौरान भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापार और आर्थिक सहयोग बढ़ाने के अवसरों पर चर्चा हुई। श्री गोयल ने बताया कि भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता 15 जुलाई से लागू होगा। भारत में जर्मनी के राजदूत फिलिप एकरमैन ने कहा है कि भारत नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में वैश्विक नेतृत्व की भूमिका निभा रहा है। एक समाचार एजेंसी से बातचीत में उन्होंने कहा कि भारत और जर्मनी के बीच व्यापार

0: राजनीति और रणनीतिक क्षेत्रों में सहयोग लगातार मजबूत हो रहा है। भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते पर राजदूत एकरमैन ने आशा व्यक्त की कि इस पर जल्द सहमति बनेगी।
1: For our business, FTA हमारे व्यवसाय के लिए भारत में नए अवसर लेकर आएगा। मेरा मानना है कि इससे भारत में जर्मनी का निवेश बढ़ेगा, क्योंकि निवेश करना अधिक आसान हो जाएगा। रक्षा क्षेत्र में भी भारत जर्मनी सहयोग तेजी से आगे बढ़ रहा है। हमें पनडुब्बियों से जुड़े समझौते पर हस्ताक्षर होने का इंतजार है, जो एक महत्वपूर्ण कदम होगा।
0: जर्मन राजदूत ने कहा कि जर्मनी में रह रहे भारतीय समुदाय दोनों देशों की मित्रता का मजबूत आधार है।
1: जर्मनी में भारतीय मूल के करीब 60,000 छात्र पढ़ाई कर रहे हैं। अगर वे सही विश्वविद्यालय का चयन करते हैं तो उनके पास अच्छी नौकरी पाने के बेहतर अवसर होते हैं। जर्मनी में भारतीय समुदाय की बढ़ती मौजूदगी से दोनों देशों के बीच लोगों के आपसी संबंध और मजबूत होंगे।
0: भारत ने किर्गिस्तान के बिश्केक में आयोजित शंघाई सहयोग संगठन SCO महिला फोरम में महिला नेतृत्व वाले विकास के प्रति प्रतिबद्धता को दोहराया। आज वर्चुअल माध्यम से इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि महिलाएं न केवल विकास की लाभार्थी हैं, बल्कि 2047 तक विकसित भारत की सबसे शक्तिशाली प्रेरक शक्ति भी हैं। जापान की प्रधानमंत्री साने ताकाइची 1 जुलाई से 3 जुलाई तक भारत यात्रा पर रहेंगी। वे नई दिल्ली में होने वाले 16वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगी। विदेश मंत्रालय ने बताया कि इस शिखर सम्मेलन में दोनों देश अपने द्विपक्षीय सहयोग के सभी क्षेत्रों की समीक्षा करेंगे और उसे और मजबूत करने के उपायों पर चर्चा करेंगे। इसके साथ ही दोनों नेता आपसी हितों से जुड़े क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी विचारों का आदान प्रदान करेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @EIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। आज आशुराए मुहर्रम है। ये दिन पैगंबर मोहम्मद के नवासे हजरत इमाम हुसैन की शहादत का प्रतीक है। हजरत इमाम हुसैन और उनके साथियों ने कर्बला में सत्य और न्याय की रक्षा के लिए प्राणों की आहुति दी थी। आज के दिन शहीदों की याद में ताजिए निकाले जा रहे हैं। दिल्ली यातायात पुलिस ने ताजिया जुलूसों के संबंध में यातायात संबंधी चेतावनी जारी की है। इसके मद्देनजर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। इस बीच दिल्ली यातायात पुलिस के अनुसार नेताजी सुभाष मार्ग से जामा मस्जिद की ओर आने वाले वाहनों को प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। भीड़भाड़ से बचने और मुहर्रम के जुलूस के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने के लिए यातायात को नेताजी सुभाष मार्ग से होकर अन्य मार्गों पर जोड़ा जाएगा। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने कहा है कि मोहम्मद हजरत इमाम हुसैन के बलिदान, साहस, करुणा, सत्य तथा न्याय के प्रति अटूट प्रतिबद्धता जैसे शाश्वत मूल्यों की याद दिलाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुहर्रम पर हजरत इमाम हुसैन के बलिदान का स्मरण किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि हजरत इमाम हुसैन का बलिदान सत्य और न्याय के मार्ग पर अडिग रहने की प्रेरणा देता है। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि हजरत इमाम हुसैन का बलिदान आज भी लोगों को सत्य और न्याय के लिए डटे रहने की प्रेरणा देता है। पश्चिम बंगाल में साहित्य सम्राट बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की 188वीं जयंती मनाई जा रही है। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का जन्म आज ही के दिन 1838 को पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले के नेहाची के काठलापारा में हुआ था। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने राष्ट्रगान वंदे मातरम की रचना की, जिसने स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान स्वतंत्रता सेनानियों को प्रेरित किया। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कोलकाता में बंकिम चंद स्मृति ग्रंथागार में बंकिम चंद्र की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने आज ऑपरेशन अमिस्ताद की घोषणा की। इसके अंतर्गत भूकंप के बाद राहत और बचाव कार्यों में सहायता के लिए भारतीय वायुसेना की 2 MCC C-17 विमान वेनेजुएला के लिए रवाना हो गए हैं। डॉक्टर जयशंकर ने सोशल मीडिया पर बताया कि अस्तिदाद का अर्थ स्पेनिश भाषा में मित्रता होता है। उन्होंने कहा कि इस अभियान के अंतर्गत भारतीय सेना की फील्ड अस्पताल इकाई और 35 टन से अधिक राहत सामग्री, दवाएं और चिकित्सा उपकरण भेजे जा रहे हैं। इनमें 2 भीष्म क्यूब भी शामिल हैं। विदेश मंत्री ने कहा कि भारत इस कठिन समय में वेनेजुएला की सरकार और वहाँ के लोगों के साथ खड़ा है और हर संभव सहायता देने के लिए प्रतिबद्ध है। और अब खेल खबरों के साथ है आनंद पाठक।
2: भारत आज बेलफास्ट में आयरलैंड के खिलाफ 2 मैचों की T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट श्रृंखला का

0: का पहला मुकाबला खेलेगा। ये मैच शाम 6 बजे से शुरू होगा। भारतीय टीम की कप्तानी श्रेयस अय्यर करेंगे। टीम में 15 वर्षीय बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी भी शामिल हैं। फीफा विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया ने ग्रुप डी के अपने अंतिम मैच में पैराग्वे के साथ ड्रॉ खेलकर नॉकआउट चरण में जगह बना ली है। ग्रुप डी के एक अन्य मुकाबले में तुर्की ने अमरीका को 3-2 से हराकर टूर्नामेंट में अपने अभियान का जीत के साथ समापन किया। जापान और स्वीडन का मुकाबला 1-1 की बराबरी पर समाप्त हुआ। दोनों टीमों ने अंतिम 32 में जगह बना ली है। अगले दौर में जापान का मुकाबला 5 बार के चैंपियन ब्राजील से होगा। वहीं ग्रुप ई के मैच में इक्वाडोर ने जर्मनी को 2-1 से हराकर नॉकआउट चरण में प्रवेश किया। एक अन्य मुकाबले में कोट डी आइवर ने कुरासाओ को 2-0 से हराकर पहली बार नॉकआउट चरण के लिए क्वालिफाई किया। हॉकी में लंदन में आयोजित FIH प्रो लीग में आज शाम भारत का मुकाबला पाकिस्तान से होगा। मैच रात 10:30 बजे से शुरू होगा। इससे पहले हुए मुकाबले में भारत ने पाकिस्तान को 4-3 से हराया था।
1: मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र, सिक्किम, बिहार, तटीय आंध्र प्रदेश, तटीय कर्नाटक, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में अगले 3 से 4 दिन में दक्षिण पश्चिम मानसून के आगे बढ़ने की परिस्थितियाँ अनुकूल हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। गृह मंत्री अमित शाह का मादक पदार्थ के खिलाफ एकजुट होकर लड़ने का आह्वान। कहा, मादक पदार्थ राष्ट्रीय सुरक्षा, युवाओं के भविष्य के लिए गंभीर खतरा। उत्तर प्रदेश पुलिस ने राम मंदिर चढ़ावे में गबन मामले में 8 लोगों को गिरफ्तार किया। भारत ने 34 देशों के साथ मिलकर अमेरिका के नेतृत्व वाली पहल पर हस्ताक्षर किए। इसका उद्देश्य मजबूत AI आपूर्ति श्रृंखलाओं का निर्माण करना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुहर्रम पर हजरत इमाम हुसैन के बलिदान का स्मरण किया। T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में आज शाम भारत का मुकाबला आयरलैंड से। टीम में पदार्पण करने वाले प्रतिभाशाली खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी पर सभी की निगाहें। और फीफा विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया ने ग्रुप डी के एक मुकाबले में पराग्वे के साथ ड्रॉ खेलकर नॉकआउट चरण के लिए क्वालिफाई किया।

दोपहर समाचार हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित कर रहे थे। मीडियम वेव 238.09 मीटर यानी 1260 किलोहर्ट्ज़ और एफएम बैंड 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। दोपहर के 2:30 हुए हैं। पेश है गैर फिल्मी गीतों और गज़लों का कार्यक्रम गीत गंधा।

मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी के अंबिकापुर केंद्र से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गीत गंधा। कार्यक्रम में पेश है आगम कुमार निगम की आवाज में ये गीत। संगीत निर्देशन है निखिल का और गीतकार हैं प्रशांत।

इसी गीत के साथ कार्यक्रम गीत गंधा का आज का ये अंक यहीं समाप्त होता है। मीडियम वेव 238.09 मीटर यानी 1260 किलोहर्ट्ज और एफएम बैंड 100.2 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। दोपहर के 3 बजे हैं। आइए एक नज़र डालें हमारे केंद्र से आज के प्रसारित और अनुप्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा पर।

सांध्यकालीन सभा की शुरुआत होगी। शाम 5 बजे प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोठ से गैर फिल्मी और फिल्मी भजन पर आधारित कार्यक्रम भजन संध्या का आनंद आप लेंगे शाम 5:05 पर। युवा श्रोताओं का पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी हम लेकर आएंगे शाम 5:30 पर। कार्यक्रम विचार बिंदु का पुनः प्रसारण आप सुनेंगे शाम 6:05 पर। लोक संगीत के कार्यक्रम गोधूली का समय होगा शाम 6:20 पर। इसमें आप सुनेंगे कुछ सादरी और सरगुजिहा लोकगीत। फिल्म संगीत का कार्यक्रम माधुरी हम लेकर आएंगे आपके लिए शाम 6:30 पर। शाम 7:05 पर सुगम संगीत का कार्यक्रम रजनीगंधा हम पेश करेंगे। शाम 7:20 पर हम लेकर आएंगे ग्रामीण श्रोताओं का पसंदीदा कार्यक्रम चौपाल। इसमें सामायिक चर्चा का विषय होगा ग्रीन इंडिया मिशन, नशा नाश की जड़, और क्रम होगा आजकल लोकगीत, स्मार्ट कृषि, श्री अन्न, मंडी भाव, मौसम की जानकारी। सोशल मीडिया पर आधारित फरमाइशी कार्यक्रम इंस्टा फरमाइश हम लेकर आएंगे रात 8 बजे। रात 9:15 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम चित्रपट संगीत। रात 9:30 पर श्रोताओं का पसंदीदा कार्यक्रम ईमेल की गूंज का समय होगा। रात 10 बजे हम ले

कर आएंगे शास्त्रीय रागों पर आधारित कार्यक्रम राग प्रधान और रात 10:30 पर पत्रों पर आधारित लोकप्रिय कार्यक्रम मन भावन का प्रसारण समय होगा। ये थे हमारे केंद्र से आज के प्रसारित और अनुप्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा। मीडियम वेव 238.09 मीटर अर्थात 1260 किलोहर्ट्ज़ और एफएम बैंड 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। दोपहर के 3:04 हुए हैं। मीडियम वेव पर हमारी ये सभा यहीं संपन्न होती है। इस दौरान एफएम बैंड 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल का प्रसारण जारी रहेगा। मीडियम वेव 1260 किलोहर्ट्ज़ और एफएम बैंड 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर सांध्यकालीन सभा के कार्यक्रमों के साथ शाम 5 बजे से आपकी सेवा में हम पुनः हाजिर होंगे।

मीडियम वेव 238.09 मीटर यानी 1260 किलोहर्ट्स और FM बैंड 100.2 मेगाहर्ट्स पर ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। शाम के 5 बजे हैं। श्रोताओं, इसी के साथ हमारी आज की सांझेकालीन सभा यहीं प्रारंभ होती है। सभा की शुरुआत में लीजिए प्रस्तुत है प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोठ।

0: हाथी बने गजराज
1: नमस्कार स्वागत है हमर हाथी हमर गोठ कार्यक्रम में मैं अमलेंदु मिश्र। साथियों हाथियों का दल भोजन और पानी की तलाश में गांव की ओर आने लगा है। आइए जानते हैं हाथियों के आज के विचरण क्षेत्रों के बारे में। एलिफेंट रिजर्व सरगुजा के तमोर पिंगला में हाथियों की कुल संख्या 51 है। ये धूरिया अरचोका भेलकक्ष पेंडारी बोदरई शाही डांड के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। सूरजपुर वन मंडल के प्रतापपुर सूरजपुर और रामानुज नगर में हाथियों की कुल संख्या 8 है। ये सरहरी करंजवार सिंगरा कैराडाण गणेशपुर कल्याणपुर कोटबहरा घाघी टिकरा सलका मूड़गांव शिवनगर जनार्दनपुर मेंढरा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। बलरामपुर वन मंडल के रामानुजगंज वाड्रफ नगर रघुनाथ नगर और राजपुर में हाथियों की कुल संख्या 6 है। ये चिनिया महावीरगंज कनकपुर टकिया शिवपुर पेंडारी कोटराही कोल्हुआ नवापारा सोनहत नवगई गैना अखोरा कुंदीकला जामदोहर बदौली के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। सरगुजा वन मंडल के अंबिकापुर लुंड्रा सीतापुर और मैनपाट में हाथियों की कुल संख्या 11 है। ये सकालो किशुनपुर घंघरी कुल्हाड़ी पड़ौली जमीरा मसगा डांडपारा चाउरपानी बांसाझाल आमा पानी घोघरा मानपुर दाती ढाब गढ़गांव बैगहवा चोरकी पानी कंडराजा नर्मदापुर के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। जसपुर वन मंडल के कुनकुरी पत्थलगांव बगीचा और तपकरा में हाथियों की कुल संख्या 31 है। ये नारायणपुर जामचुआ बिलासपुर चरईमारा रानी कोम्बो खड़ामाचा राजा आमा महेशपुर बालाझर सोनगिरसा बीजा घाट सारू ढाब तेलाइन माटी पहाड़ कोल्हेन झरिया के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। धर्मजयगढ़ वन मंडल के छाल धर्मजयगढ़ बोरो बाकारुमा लेलुंगा और कापू में हाथियों की कुल संख्या 108 है। ये कुड़ेकेला पुरुंगा छाल बोजिया औरानारा बेहरामार लोटान कोयलार सागरपुर ढोढ़ा गांव केदा टिकरा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। गढ़घोरा वन मंडल के केंदई जडगा और एतमा नगर में हाथियों की कुल संख्या 50 है। ये लालपुर कोयलार गढ़रा परला चोटिया कापानवापारा घुचापुर बांधापारा लालडी झुनकीडी कुकरी कादर मड़ई कोदवारी कठमोरगा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। रायगढ़ वन मंडल के रायगढ़ घरघोड़ा और खरसिया में हाथियों की कुल संख्या 28 है। ये बंगूरसिया सपनई जोबी बरगढ़ नागदरहा पंडरी पानी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। अचानकमार टाइगर रिजर्व के अचानकमार में हाथियों की कुल संख्या 4 है। ये सरई पानी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। बलौदा बाजार वन मंडल के बार और कोठारी में हाथियों की कुल संख्या 30 है। ये गुड़ागढ़ फुरफुंदी ताल दादर अचानकपुर नवागांव पकरीत तेंदुचुआ के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व के कुल्हाड़ी घाट में हाथियों की कुल संख्या 28 है। ये ओड अमलोर ताराजह डडई पानी

0: बुडार सिंहार छिंदौला लूठापारा नारीपानी डूमरघाट कोदोमाली मासूल खोई के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। दोस्तों, गांव के बाहर या वन क्षेत्रों से लगे एकल कच्चे मिट्टी के मकानों में रात्रि विश्राम बिल्कुल ना करें। आइए सुनते हैं प्रसिद्ध क्रिकेटर और ब्रांड एम्बेसडर अनिल कुंबले जी का ये संदेश।
1: नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल कुंबले बोल रहा हूँ। यदि हाथी गांव के आसपास दिखे तो तत्काल वन विभाग को सूचना दे। जंगल के किनारे एकांत घरों में रहने वाले लोग पक्के स्कूल या पक्के घरों में चले जाएं। हाथियों के लिए जंगल का रास्ता खुला छोड़ दे। हाथियों की जानकारी के लिए सुनते रहे हमर हाथी हमर गोट।
2: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोट, मीडियम वेव 1260 किलोहर्ट्स और एफएम बैंड 100.2 मेगाहर्ट्स पर। ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। शाम के 5:05 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है गैर फिल्मी और फिल्मी भजनों का कार्यक्रम भजन संध्या। श्रोताओं, आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं हरिहरण के स्वर में इस प्यारे से भजन से। संगीत निर्देशन है सुरेंद्र कोहली का, शब्द रचना है उदय शंकर पानी की।

लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का अगला भजन फिल्म करण अर्जुन से। आवाज है कुमार सानू और अलका याग्निक के, संगीत निर्देशन है राजेश रोशन का और सब दृश्य है इंदिवर की।

लीजिए, फिर से फिल्म केदारनाथ से ये प्यारा सा भजन। स्वर और संगीत निर्देशन है अमित त्रिवेदी का, गीतकार हैं अमिताभ भट्टाचार्य।

कार्यक्रम भजन संध्या के अंत में लीजिए पेश है सुरेंद्र कोहली के संगीत निर्देशन में ये प्यारा सा भजन। स्वर है मूसा पैक के और सब दृश्य है उदय शंकर पानी की।

इस प्यारे से भजन के साथ ही गैर फिल्मी और फिल्मी भजनों का कार्यक्रम भजन संध्या यहीं समाप्त होता है। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर हम आकाशवाणी के अंबिकापुर केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 5:30 हुए हैं। लीजिए अब से युवा श्रोताओं के लिए कार्यक्रम यूं वाणी।

0: स्वागत है साथियों, आप सभी का आपके अपने कार्यक्रम युवाणी में। मैं हूं आपका अपना दोस्त घनश्याम। स्वीकार कीजिए मेरा प्यार भरा अभिवादन, नमस्कार। साथियों, बिना किसी देरी के चलते हैं आज के हमारे स्पेशल क्रम हेलो फ्रेंड्स की ओर, जहां होंगे कुछ युवा साथियों से बातचीत और सुनेंगे उनके पसंद के कुछ प्यारे प्यारे से गीत।
1: हेलो फ्रेंड।
2: हेलो फ्रेंड।
1: हेलो फ्रेंड्स।
0: दोस्तों, आप सभी का स्वागत है क्रम हेलो फ्रेंड्स में। तो चलिए शुरू करते हैं बातचीत का सिलसिला और जानते हैं आज के हमारे पहले कॉलर कौन है। हेलो फ्रेंड्स।
3: हेलो फ्रेंड्स
0: जी, कौन और कहां से बोल रहे हैं आप?
3: मैं अंबिकापुर देवीगंज से राजकुमार निभवानी बोल रहा हूं सर।
0: बहुत बहुत स्वागत है निभवानी जी। इस वक्त आप हमें कहां से सुन रहे हैं?
3: आपसे सुना सर, अभी घर से होकर तो सोचे लग गया फोन।
0: तो आज का दिन कैसा रहा आपका?
3: बहुत बढ़िया सर, बस बारिश के इंतजार है, कब बारिश हो, थोड़ा मौसम ठंडा हो सर।
0: ये तो बात सही की आपने। तो आज आपके साथ कुछ ऐसा हुआ जिसके कारण से आज आपका दिन बहुत अच्छा जा रहा है?
3: नहीं नहीं, ऐसा कुछ, सब ठीक ठीक, अभी तक तो ठीक ठाक गुजरा सर।
0: सब ठीक ठाक जा रहा है, अच्छी
3: और आगे भी गुजरेगा बढ़िया सर।
0: जी जरूर जरूर गुजरेगा। तो आप हमारे युवा श्रोता साथियों को क्या संदेश देना चाहेंगे?
3: बस मैं तो ये कहूँगा सर, बस हमेशा रेडियो से जुड़े, रेडियो का कार्यक्रम बराबर सुनते रहें, क्योंकि रेडियो में हमें बहुत कुछ मतलब सुनने को मिलता है सर।
0: जी जी, बहुत अच्छी बात कही।
3: और ये आकाशवाणी अंबिकापुर तो सर देखा जाए तो बहुत अच्छे अच्छे कार्यक्रम पेश करते हैं सर।
0: तो आपको हमारे अंबिकापुर के कौन कौन से जो कार्यक्रम है वो आपको ज्यादा पसंद आते हैं?
3: सभी कार्यक्रम सर, सुबह से लेकर रात तक जितने भी कार्यक्रम है सर, सभी महिलाओं का कार्यक्रम, घर आंगन, जीवाणी चौपाल, सभी कार्यक्रम सुनता हूँ सर। आपकी पसंद, ईमेल की गूंज सब सुनता हूँ।
0: जी ऐसे ही सुनते रहिए,
3: बराबर पत्र और मेल भेजते रहता हूँ सर मैं।
0: जी जी जी। तो आप क्या गाना सुनना चाहेंगे आज?
3: फिल्म सौदागर का है, तेरा मेरा साथ रहा, ये भी लता मंगेशकर ने गाया हुआ है सर।
0: जी निभवानी जी, आपने कॉल किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और सुनिए आपके पसंद का ये गीत।

0: हेलो फ्रेंड्स
1: हाँ भैया, योगेश जांगड़े सिरवा बांधा बेमे तरह से।
0: जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। आज आपका दिन कैसा रहा?
1: बढ़िया है, हमेशा की तरह।
0: आप क्या करते हैं?
1: खेती बाड़ी का हमारा मूल काम है।
0: खेती बाड़ी से याद आया, अभी तो बारिश का मौसम आ रहा है, तो आपने खेतों में बुआई चालू कर दी है कि अभी बाद में करेंगे?
1: नहीं, अभी नहीं हुआ है भैया, अभी तो बारिश की बूंद नहीं हुआ है।
0: बहुत
1: जी
0: महत्वपूर्ण भाग है बारिश उसका।
1: जी
0: तो अभी क्या कर रहे हैं आप?
1: अभी तो बस वही थोड़ा तैयारी है, खेतों की जुताई वगैरह।
0: जी, तो तैयारी पूरी हो गई?
1: जी, हो गया है, बस पानी आए तो नहरी पे काम शुरू करें, ऐसा है।
0: जी, तो पानी गिरने के आसार दिख रहे हैं या फिर नहीं?
1: उम्मीद तो कर रहे हैं भैया।
0: तो आप हमारे युवा श्रोता साथियों को क्या संदेश देना चाहेंगे अपनी तरफ से?
1: तेजी से बरसात का मौसम आ रहा है भैया, और बदलते मौसम में बहुत सारी परेशानियां हुई हैं, जैसे डेंगू मच्छर वगैरह। साफ सफाई का तो इनका विशेष ध्यान है। जी,
0: जी, बहुत अच्छी सोच है। तो आज आप क्या गाना सुनना चाहेंगे?
1: प्यासा सावन से एक गीत है, मेघारे मेघारे।
0: तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमें कॉल करने के लिए।
1: जी, शुक्रिया।
0: सुनिए आपके पसंद का ये गीत।

0: हेलो फ्रेंड।
1: हेलो फ्रेंड
0: जी, कौन और कहां से बोल रहे हैं आप?
1: जी मैं ग्राम पंचायत घेराडी विकास खंड हरिचा डांड से निर्दया गिरी बोल रहा हूं।
0: जी आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। आप क्या करते हैं?
1: मैं तो नेत्रहीन हूं सर, और महामाया मंदिर में भजन कीर्तन के सहारे अपना जीवन यापन चलता है।
0: जी जी जी।
1: और बहुत खुशी की बात है, कहिएगा कि आप कॉल लग गया हमारा हेलो फ्रेंड में।
0: जी तो आप अपने परिवार का फिर ध्यान कैसे रखते हैं?
1: पूरा परिवार का ध्यान अब माता रानी का कृपा है सर, कहिएगा। मेरा दो नाती हैं और बेटा बहुरिया है और धर्म पत्नी है।
0: तो आप खाली समय में क्या क्या करते हैं?
1: खाली समय में बस मैं आकाशवाणी अंबिकापुर के सारे कार्यक्रम सुनता हूँ, कहिएगा। हेलो फ्रेंड हुआ, चौपाल हुआ, गुंजन हुआ, आपका विचार बिंदु हुआ, और प्रादेशिक समाचार को तो मैं कभी मिक्स नहीं करता हूँ।
0: जी जी जी, जी बहुत अच्छी बात है। तो आप इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में हमारे युवा श्रोता साथियों को क्या संदेश देना चाहेंगे?
1: मैं युवा श्रोता साथियों को यही संदेश देना चाहूंगा, खास करके किसान भाइयों का, कि अभी एलियोमी जो है पड़ गया है, कहिएगा, तो दलहन तिलहन के फसल पे हम ध्यान दें, और जहां तक है कोदो कुटकी और बाजरे अरहर के उपयोग करें, मतलब खेती करें, ज्यादा गहरा धान लगा करके ना फंसे, क्योंकि बारिश सभी वैज्ञानिकों के द्वारा बोला जा रहा है कि कम आ रहा है।
0: जी आप कौन सा गाना सुनना चाहेंगे आज?
1: बटवारा फिल्म का तार अलका याग्निक अनुराधा पोडवाल और सविता कृष्ण मूर्ति के आवाज में है। तेरे वास्ते तेरे ढोला नैने मारो जागे रो जागे नैने जागे तू मेरा निकोड़ लागे।

0: हेलो फ्रेंड्स
1: हेलो फ्रेंड, नमस्कार।
0: जी, कौन और कहाँ से बोल रहे हैं?
1: मैं जबलपुर एमपी से अशोक सिंह बोल रहा हूँ।
0: जी अशोक सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में।
1: धन्यवाद सर जी, कैसे
0: तो
1: हैं आप?
0: सब बढ़िया। तो आपके तरफ बारिश हो रही है या अभी उसके लिए
1: नहीं,
0: देरी
1: बारिश
0: है?
1: नहीं हो रही, होने की संभावना है कल तक। देखो, अंबिकापुर में हो रही।
0: अभी माहौल बनाया हुआ है, अभी तो गिर नहीं रहा है। तो आप क्या करते हैं?
1: मैं तो बहुत पुराना श्रोता हूँ आपके, जुड़े रहता हूँ कुछ बात और कुछ गीत में। मैं
0: जीवन,
1: रिटायरमेंट हूँ इनकम टैक्स।
0: अच्छा बहुत अच्छी बात है। हमारे जो युवा श्रोता साथी हैं, तो आप उनको अपनी तरफ से क्या संदेश देना चाहेंगे?
1: युवा साथियों से यही कहेंगे कि अपना सही रेडियो अंबिकापुर तो सुने और अपना अपना ध्यान रखें। गर्मी से आने वाले समय में पेड़ लगाए, जो अपने आस पास साफ सफाई रखे, यही है, पर्यावरण को सुरक्षित रखे। गाना सुनवा दीजिए, फिल्म बेटा का, कोयल सी तेरी बोली।

0: हेलो फ्रेंड्स,
1: हेलो फ्रेंड्स
0: कौन और कहाँ से बोल रहे हैं आप?
1: जी, मैं सत्यम क्लब फुलकोना से अरविंद यादव बोल रहा हूँ सर जी।
0: अरविंद यादव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के कार्यक्रम में।
1: जी सर, शुक्रिया सर।
0: तो आप क्या करते हैं अरविंद जी?
1: हाँ सर, मैं तो फिलहाल अभी मतलब घर पे ही हूँ सर जी। अभी तो तबीयत सही नहीं है इसलिए हम घर पे हैं। और मौसम सर, हमारे ओर में कहना चाहिए तो बारिश बहुत कम हुई है अभी तक में।
0: जी, अभी तो शुरुआत हुई है।
1: इन दिनों में बरसात के टाइम में मान लीजिए आमतौर पे किसानों का काम मेन चीज होता है खेती बाड़ी का काम, तैयारी
0: जी
1: करना
0: जी
1: होता है।
0: जी तो अभी आप खेत में क्या लगाने का प्लान बना रहे हैं?
1: जी, हर किसान अब मतलब तैयारी में है सर जी। कोई विंडा उडा कर चुके हैं, बहुत कोई नहीं कर पाए हैं इसे जी।
0: आपने किया है कि नहीं?
1: नहीं सर
0: तो तैयारी चल रही है।
1: जी। तो
0: जी, आप कौन सा गाना सुनना चाहेंगे?
1: फिल्म का नाम हिम्मतवार और गाने का बोल है आग चाहत की लग जाएगी तेरा दिल भी मचल जाएगा।

0: दोस्तों, यदि आप भी हमसे बात करना चाहते हैं और अपने पसंद के गीत सुनना चाहते हैं, तो आप हमें हर गुरुवार दोपहर 3:30 से 4 बजे तक संपर्क कर सकते हैं। हमारा संपर्क नंबर है 0777-423-1917। हमारा दूसरा संपर्क नंबर है 0777-423-1918। तो इसी के साथ आज का कार्यक्रम हेलो फ्रेंड्स बस यहीं तक।
1: हेलो फ्रेंड,
2: हेलो फ्रेंड,
1: हेलो फ्रेंड्स।
0: दोस्तों, वक्त हो चला है आप सभी से विदा लेने का, तो दीजिए मुझे यानी अपने दोस्त घनश्याम को आज की युवाणी से इजाजत। नमस्कार।

युवा श्रोता भी सुन रहे थे युवावाणी कार्यक्रम मीडियम वेव 1260 किलोहर्ट्ज और एफएम बैंड 100.2 मेगाहर्ट्ज पर। ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। शाम के 6 बजे हैं। अब आप सुनेंगे हिंदी समाचार, जिसे हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। कृपया

0: प्रतीक्षा करें।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। गृह मंत्री अमित शाह ने नशे के खिलाफ एकजुट होकर युद्ध छेड़ने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि मादक पदार्थों का कारोबार देश की सुरक्षा, सामाजिक व्यवस्था, आर्थिक हितों और युवाओं के भविष्य के लिए बड़ा खतरा है। आज नई दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की बैठक में उन्होंने आध्यात्मिक नेताओं, युवाओं और माताओं से इस अभियान में मिलकर शामिल होने की अपील की।
2: आज हमारा देश नार्कोटिक्स के खिलाफ लड़ाई के ऐसे नाजुक मोड़ पर खड़ा है। आने वाले 3 साल तय करने वाले हैं कि नशा हम पर विजय प्राप्त करेगा या हम नशे पर विजय। और मेरा आप सबसे विनम्र आग्रह है कि देश के आने वाले 100 वर्ष के भविष्य के लिए ये लड़ाई हमने जीतनी चाहिए, दृढ़ता के साथ जीतनी चाहिए और हमारे संयुक्त प्रयास से जीतनी चाहिए।
1: श्री शाह ने कहा कि वर्ष 2004 से 2014 के बीच करीब 26 लाख किलो सिंथेटिक मादक पदार्थ जब्त किए गए थे, जबकि 2014 से 2026 के बीच ये मात्रा बढ़कर 1,18,00,000 किलो से अधिक हो गई है। उन्होंने कहा कि ये आंकड़े नशीले पदार्थों की तस्करी के खिलाफ सरकार की लगातार कार्रवाई को दर्शाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नशा मुक्त भारत अभियान जन भागीदारी से प्रेरित एक जन आंदोलन बन गया है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री बीएल वर्मा का एक लेख सोशल मीडिया पर साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने प्रत्येक नागरिक से नशा मुक्त भारत और विकसित भारत के निर्माण के अभियान में शामिल होने का आह्वान किया। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, परमाणु, अंतरिक्ष और क्वांटम प्रौद्योगिकियां भविष्य के विकास और वैश्विक प्रतिस्पर्धा की दिशा तय करेंगी। नई दिल्ली में उन्होंने कहा कि भारत अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में तेजी से एक प्रमुख शक्ति के रूप में उभर रहा है। राष्ट्रीय क्वांटम मिशन का उल्लेख करते हुए श्री सिंह ने कहा कि मिशन ने अपने शुभारंभ के 3 वर्ष में ही अपने आधे से अधिक लक्ष्यों को हासिल कर लिया है। संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने आज कहा कि AI नवाचार, पारदर्शिता और दक्षता को नया रूप दे रही है। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में श्री शेखावत ने कहा कि आधुनिक प्रौद्योगिकी और नवाचार विकसित भारत के संकल्प को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्होंने कहा कि AI विश्व में बदलाव लाने और व्यक्तियों के जीवन को सुगम बनाने के लिए तैयार है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज भूटान के शिक्षा मंत्री यी जांग दे थापा से मुलाकात की। चर्चा शिक्षकों के प्रशिक्षण, कौशल विकास और रोजगार क्षमता, डिजिटल शिक्षा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सतत पर्यटन, पारंपरिक चिकित्सा और समग्र स्वास्थ्य पर केंद्रित रही। श्री प्रधान ने कहा कि दोनों देशों के पास शिक्षा, नवाचार और क्षमता निर्माण के व्यापक मंचों पर सहयोग की अपार संभावनाएं हैं। विद्युत मंत्री मनोहर लाल ने आज नई दिल्ली में सभी राज्य विद्युत नियामक आयोगों और संयुक्त विद्युत नियामक आयोगों के अध्यक्षों के साथ नियामक मंच की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में उन्होंने कहा कि विश्वसनीय, गुणवत्तापूर्ण विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने, शिकायतों का त्वरित निवारण और व्यापार करने में सुगमता तथा जीवन यापन में सुगमता को बढ़ावा देने के लिए एक पारदर्शी, पूर्वानुमानित और उत्तरदायी नियामक ढांचा अत्यंत आवश्यक है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल को लंदन में आयोजित वार्षिक यूके इंडिया पुरस्कार में भारत और ब्रिटेन के संबंधों को उन्नत बनाने में असाधारण नेतृत्व के लिए विशेष पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। श्री गोयल ने कहा कि ये सम्मान सरकारों, व्यवसायों, शिक्षाविदों, संस्कृति और जीवंत प्रवासी समुदाय के उन सभी सेतु निर्माताओं का है जो दोनों देशों के संबंधों को मजबूत करने में निरंतर योगदान दे रहे हैं। श्री गोयल ने कहा कि 15 अगस्त से प्रभावी होने वाला भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता ब्रिटिश संसदीय इतिहास में सबसे तेजी से लागू होने वाला व्यापार समझौता बन जाएगा। कोलकाता के तारातला दुर्घटना में मृतकों की संख्या बढ़कर 15 हो गई है। घायलों का उपचार कोलकाता के SSKM अस्पताल में चल रहा है। पुलिस ने इस मामले में एक सरकारी अधिकारी समेत 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। राज्य सरकार ने घटना की जांच के लिए SIT का गठन किया है। बचाव अभियान जारी है। उत्तर प्रदेश पुलिस ने श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के चढ़ावे और दान से जुड़े कथित गबन के मामले में दर्ज पहली प्राथमिकी में नामजद 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। ये प्राथमिकी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर गठित विशेष जांच दल की सिफारिश के बाद दर्ज की गई थी। बेलफास्ट में 2 मैचों की T20 क्रिकेट मैच भारत और आयरलैंड के बीच खेला जा रहा है। भारत ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: अभी आप सुन रहे थे हिंदी समाचार, जिसे हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित कर रहे थे। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर हम आकाशवाणी के अंबिकापुर केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 6:05 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम विचार बिंदु में आज का विचार, सपनों से हकीकत तक, विषय पर वाचन एवं संकलन है पूनम का।
1: कहा जाता है कि इंसान की असली पहचान उसके आज से नहीं बल्कि उसके सपनों से होती है, क्योंकि हम जो आज हैं वह हमारे बीते हुए कल का परिणाम है, और कल हम क्या बनेंगे यह हमारे आज देखे गए सपनों पर निर्भर करता है। सपने एक छोटा सा शब्द लेकिन अपने भीतर पूरी दुनिया समेटे हुए है। यही सपने कभी आंखों में चमक बनते हैं, कभी दिल की धड़कन बनते हैं, और कभी जीवन जीने की सबसे बड़ी वजह बन जाते हैं। मगर सपने देखना आसान है पर उन्हें सच करना कठिन, और इसी खूबसूरत यात्रा का नाम है सपनों से हकीकत तक। हर व्यक्ति के जीवन में कुछ न कुछ पाने की चाह होती है। बचपन में हम आसमान में उड़ते पक्षियों को देखकर उड़ने का सपना देखते हैं। किताबों में बड़े लोगों की कहानियां पढ़कर कुछ बनने की इच्छा जगती है, और धीरे धीरे यही इच्छाएं हमारे जीवन का लक्ष्य बन जाती हैं। लेकिन सपना केवल इच्छा ही नहीं होता, सपना वह आग है जो इंसान को चैन से बैठने नहीं देती। वह आवाज जो हर दिन यही कहती है, तुम्हें अभी बहुत आगे जाना है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने बहुत सुंदर बात कही थी, सपने वो नहीं जो आप नींद में देखते हैं, सपने वो हैं जो आपको नींद ही नहीं आने देते। यह शब्द केवल प्रेरणा नहीं बल्कि जीवन का सत्य है, क्योंकि जब कोई सपना दिल में उतर जाता है तब वह केवल ख्याल नहीं रहता, वह हमारे अस्तित्व का हिस्सा बन जाता है। लेकिन हर सपना अपने साथ एक संघर्ष लेकर आता है। रास्ते आसान नहीं होते, कभी हालात साथ नहीं देते, कभी कभी खुद ही विश्वास हम खो बैठते हैं। कई बार ऐसा लगने लगता है कि यह सपना सिर्फ सपना ही बनकर रह जाएगा, मगर याद रखिए, जीवन की सबसे बड़ी जीत वही होती है जो सबसे कठिन रास्तों से होकर गुजरती है। सोचिए अगर थॉमस एडिसन हजारों बार असफल होने के बाद हार मान लेते तो शायद दुनिया रोशनी से नहीं जगमगाती। अगर कल्पना चावला ने यह सोच लिया होता कि छोटे शहर की लड़की अंतरिक्ष तक नहीं पहुंच सकती तो करोड़ों बेटियों को सपने देखने की प्रेरणा नहीं मिलती। सपनों को हकीकत में बदलने के लिए सबसे पहले जरूरत होती है खुद पर विश्वास की। दुनिया आपको तभी पहचानती है जब आप खुद को पहचानते हैं। फिर आता है मेहनत का दौर। सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। हर बड़ी उपलब्धि के पीछे अनगिनत रातों की मेहनत, अनदेखे संघर्ष और अनगिनत त्याग छिपे होते हैं। लोग अक्सर सफलता देखते हैं लेकिन उसके पीछे की कहानी नहीं देख पाते। जीवन बिल्कुल एक बीज की तरह है। जब बीज मिट्टी के अंदर दबता है, अंधेरे में रहता है, बारिश सहता है, समय का इंतजार करता है, तब कहीं जाकर एक विशाल वृक्ष बनता है। उसी तरह इंसान भी कठिनाइयों से गुजर कर ही मजबूत बनता है। संघर्ष कभी आपको रोकने नहीं आते बल्कि आपको उस सफलता के लायक बनाने आते हैं जिसकी आपने कल्पना की है। कई बार हम दूसरों को देखकर अपने सपनों को छोटा समझने लगते हैं। हमें लगने लगता है कि शायद हम में वह क्षमता नहीं है। सच्चाई यह है कि हर इंसान के भीतर एक अनोखी शक्ति छिपी होती है। फर्क केवल इतना है कि कोई उसे पहचान लेता है और कोई डर के कारण उसे कभी बाहर ही नहीं आने देता है। सपनों की दुनिया बड़ी खूबसूरत होती है लेकिन उसे हकीकत में बदलने के लिए अनुशासन जरूरी है। हर एक दिन खुद को बेहतर बनाना पड़ता है। हर सुबह एक नए विश्वास के साथ उठना पड़ता है। छोटी छोटी कोशिशों को कभी छोटा मत समझिए, क्योंकि बूंद बूंद से ही सागर बनता है। और जब कभी आपका सपना पूरा होता है, सच होता है, तब उसकी खुशी शब्दों में बयान नहीं की जा सकती। वह सिर्फ आपकी जीत नहीं होती। जब आपने हार कर भी खुद को संभाला था, वह उन आंसुओं की जीत होती है जो आपने चुपचाप बहाए थे। याद रखिए, दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं।
0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम विचार बिंदु, मीडियम वेव और एफएम बैंड पर। यह आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। शाम के 6:10 हुए हैं। अब आप सुनेंगे प्रादेशिक छत्तीसगढ़ी समाचार, जिसे हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से अनुप्रसारित

0: करेंगे।
1: सुनेंगे। ये आकाशवाणी रायपुर है। छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन के संग किरण वर्मा के जय जोहार। अब सुनाओ आज के प्रमुख समाचार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह नशा के खिलाफ एकजुट होके लड़े के आह्वान करें। मुख्यमंत्री ह आज नवा रायपुर में छत्तीसगढ़ गृह निर्माण और अधोसंरचना विकास मंडल के नवा लोगों के विमोचन करें और प्रदेश में यात्री बस के सुरक्षा व्यवस्था ला मजबूत करे बर जम्मू बस में वाहन लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस लगाना अनिवार्य। अब समाचार विस्तार ले। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह नशा के खिलाफ एकजुट होके लड़े के आह्वान करिन हैं। उमन किहिन के मादक पदार्थ के कारोबार देश के सुरक्षा सामाजिक व्यवस्था आर्थिक हित और युवा मन के भविष्य पर खतरा है। उमन आध्यात्मिक नेता युवा और महिला मन ले ए अभियान में मिलके भाग ले के अपील करिन हैं। श्री शाह ए बात आज नई दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेटर सेंटर यानी NCORD के 10वां शीर्ष स्तरीय बैठका ला संबोधित करत किहिन। गृहमंत्री कहिन कि नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो हा मादक पदार्थ ले जुड़े अपराध के जानकारी बेरा में साझा करे बर कई ठिन ऑनलाइन पोर्टल शुरू करे है। ओमन जम्मू राज्य के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक मनला ए पोर्टल में नशा ले जुड़े मामला के जानकारी तय समय सीमा के अंदर अपलोड करे बर कहिन। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज नवा रायपुर में आयोजित एक कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ गृह निर्माण और अधोसंरचना विकास मंडल के नवा लोगों के विमोचन करें। ए मौका में बच्छर 2021 के आवास मेला में मकान बुक करैया हितग्राही मनला लकी ड्रा के माध्यम ले पुरस्कार माटे गिस। ए मौका में मुख्यमंत्री ह लोगो तैयार करने वाला अंशुल कश्यप ला घलो प्रतियोगिता के पुरस्कार राशि के रूप में 2.5 लाख रुपया के चेक दिन। मुख्यमंत्री ह उम्मीद जताइन कि गृह निर्माण मंडल अब अधोसंरचना विकास के क्षेत्र में घलो महत्वपूर्ण भूमिका निभाही जेखर ले प्रदेश के विकास ल नवा गति मिली। ओमन बताइन के पाछू 2 बच्छर में मंडल है लगभग 7388 संपत्ति के विक्रय करके 1532 करोड़ रुपया के राजस्व अर्जित करी से। कार्यक्रम में आवास और पर्यावरण मंत्री OP चौधरी है बताइन कि अब कोनो भी नवा आवासीय परियोजना के निर्माण तभी शुरू होगी जब पर्याप्त बुकिंग सुनिश्चित हो जाही जेखर ले अनावश्यक निर्माण और वित्तीय जोखिम ले बाँचे जा सकी। मंडल के अध्यक्ष अनुराग सिंह देव है बताइन कि भविष्य में मांग आधारित गुणवत्तापूर्ण और वित्तीय रूप ले व्यावहारिक परियोजना ऊपर विशेष जोर दे जाही। प्रदेश में यात्री बस के सुरक्षा व्यवस्था ला मजबूत करे बर परिवहन विभाग जम्मू बस में वाहन लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस यानी VLTD लगाना अनिवार्य कर दे है। परिवहन सचिव है बस संचालक मल्ला 15 दिन के भीतर बिना VLTD वाला बस में उपकरण लगाए और बंद उपकरण मल्ला चालू करे के निर्देश दिन है। नियम के पालन नहीं करैया वाला संचालक मन ऊपर मोटरयान अधिनियम के तहत कार्रवाई करे जाही। केंद्र सरकार है औद्योगिक और वाणिज्यिक LPG उपभोक्ता मल्ला बड़का राहत देवत गैर घरेलू पैक्ड LPG के आपूर्ति में जम्मू क्षेत्रीय प्रतिबंध हटा दे है। ऐसन में अब पश्चिम एशिया संकट ले पहली के जारी आपूर्ति व्यवस्था बहाल कर दे गए है। ये बहाली हाले में LPG आपूर्ति के स्थिति में होवत सुधार ल देखत करे गए है। वित्त मंत्री OP चौधरी है युवा मन ला आह्वान करीन है कि ओमन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI और नवा तकनीक ले डरे के बजाय ओला अपन भविष्य के निर्माण के सबले बड़का अवसर माने। श्री चौधरी है ये बात रायपुर में महाराजा अग्रसेन इंटरनेशनल कॉलेज डहार ले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवसर चुनौती और भविष्य के प्रभाव विषय में आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन में किहिन। उमन किहिन कि आज पूरा दुनिया तेजी ले ज्ञान तकनीक और नवाचार आधारित अर्थव्यवस्था को ती बढ़त है। एकरे सेती युवा मनला बेरा रहत तकनीकी परिवर्तन ला समझ के खुद ला ओखर अनुरूप तैयार करना होही। उमन किहिन कि जौन AI ला अपना ही उही भविष्य के अगुवाई करही। श्री चौधरी है युवा मनले आग्रह करीन कि उमन केवल नौकरी ढूंढे तक सीमित झन रहें बल्कि नवाचार और उद्यमिता के दिशा में घलो आगू बढ़ें। संग्रा विश्व स्तरीय स्टार्टअप और तकनीकी कंपनी बनाए के लक्ष्य रखें। छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन आप मन आकाशवाणी रायपुर ले सुनत हो।
2: छत्तीसगढ़ के खबर ले है आपके वास्ता और खबर के विश्वसनीयता ले है हमार वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के संगे संग हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के संग अपन मोबाइल में घलो सुन सकत हो। आकाशवाणी समाचार फेसबुक ट्विटर और यूट्यूब में घलो हावय।

0: फेसबुक पेज हरे छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारे यूट्यूब चैनल हरे छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के संगे संग आपके मोबाइल के माध्यम ले हम आप तक पहुँचा था छत्तीसगढ़ के हर खबर पर सुनत रहो आकाशवाणी समाचार।
1: अब आगु बढ़बो माचे समाचार कोती। सरकार हा पासपोर्ट आवेदन शुल्क मा बढ़ोतरी कर दे है। आवेदक मन ला नवा पासपोर्ट या नवीनीकरण करे बर अब 2,500 रुपया शुल्क देना होही। नवा दर 1 जुलाई ले लागू होही। नवा शुल्क संरचना के तहत तत्काल श्रेणी में 36 पृष्ठ वाला नवा पासपोर्ट या पासपोर्ट ला फेर जारी करे के लागत 5,000 रुपया होही। पासपोर्ट के दूसर श्रेणी में घलो शुल्क में बढ़ोतरी करे गए है। प्रदेश ले माओवाद के समस्या सिराए के बाद अब सुरक्षा बल के जवान माओवादी मन कोती ले लुकाए गए जीनीस के बरामदगी में लगे हुए है। इही कड़ी में नारायणपुर जिला में टेकला के जंगल ले इंसास SLR 303 राइफल समेत बड़का मात्रा में गोला बारूद और विस्फोटक जीनीस बरामद करे गए है। एकर अलावा छोटे डोंगर के तोयामेटा जंगल पहाड़ी ले घलो माओवादी कोती ले लुकाए गए 24 लाख रुपया नगद राशि बरामद करे गए है। सुनैया मल्ल बता दन कि प्रादेशिक समाचार एकांश के समसामयिक विषय ऊपर आधारित कार्यक्रम बातों बातों में इधरी 1 जुलाई ले लागू होवैया VB Jiramji योजना ऊपर छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री विजय शर्मा ले गए भेंटवार्ता के प्रसारण करे जाही। एक प्रसारण काली 27 जून के आकाशवाणी केंद्र रायपुर डहरले FM और प्राइमरी चैनल में बिहानिया 9 बजे करे जाही। इला छत्तीसगढ़ स्थित आकाशवाणी के जम्मू केंद्र रिले करही। एंटी करप्शन ब्यूरो ACB हा बेमेतरा जिला के थान कमरिया थाना के प्रधान आरक्षक अजय लहरेला 15,000 रुपया के रिश्वत लेवत रंगे हाथ गिरफ्तार करे है। ACB के टीम आरोपी ले पूछताछ करके मामला के जांच में लगे है। उन्हें ACB के टीम हा बिलासपुर में रतनपुर तहसील के लालपुर हल्का के पटवारी लघलो 25,000 रुपया रिश्वत लेवत गिरफ्तार करे है। पटवारी ऊपर नक्शा बटांकन पर रिश्वत लेके आरोप है। आज छत्तीसगढ़ समेत देश के आने आने जगह में मोहर्रम श्रद्धा और आस्था के संग मनाए जाते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है मोहर्रम में संदेश जारी करके हजरत इमाम हुसैन के बलिदान के सुरता करीन है। उमन किहिन कि हजरत इमाम हुसैन के बलिदान सच और न्याय के रद्दा में अटिक रहे के प्रेरणा देते। मोहर्रम के मौका में राजधानी रायपुर समेत प्रदेश के कई ठिन शहर में ताजिया निकाले जाते। रायपुर के करबला में घलो हजरत हुसैन के कुर्बानी ला सुरता करत आज रतिहा मजलिस यानी धार्मिक बैठका के आयोजन करे जाही। अब अप्पे से मौसम के हाल। मौसम विभाग के अनुसार अवैया 2-3 दिन में दक्षिण पश्चिम मानसून के प्रदेश के बाकी हिस्सा में आगू बढ़े बर अनुकूल परिस्थिति बने हुए है। उन्हें काली 27 जून ले राज्य में मानसून के गतिविधि बढ़े के संभावना है। मौसम विभाग अवैया 7 दिन तक प्रदेश के कुछ एक इलाका मन में गाज गिरे के चेतावनी घलो दे है। इही बीच बलरामपुर जिला के कंदरे गांव में गाज के चपेट में आए ले 2 युवक के मौत हो गए। बरसाले बचे खातिर ये युवक मन रुख के नीचे खड़े रहें। नगरीय प्रशासन और विकास विभाग प्रदेश के आने आने नगरीय निकाय पर एल्डरमैन के नियुक्ति करे है। विभाग को तिले रायपुर और सरगुजा संभाग के 9 जिला के 62 नगरीय निकाय में 252 एल्डरमैन नियुक्त करे गए है। नगरीय निकाय में एल्डरमैन मनोनीत पार्षद के रूप में काम करते। उमन निकाय के बैठक में भाग लेके स्थानीय समस्या और विकास कार्य ऊपर सुझाव देते। अब थोरकुन समाचार सार में। शक्ति जिला के जोंगरा गांव में आज 2 अज्ञात मनखे मन एक युवती ला गोली मार दीन जेखर ले ओखर मौत हो गए। घटना के बाद आरोपी फरार हो गिन। पुलिस हा मामला के जांच शुरू कर दे है। बताया जाते कि दोनों युवक मोटरसाइकिल में पहुंचे रहीन और पता पूछे के बहाना युवती ऊपर हमला कर दिस। सुशासन तिहार के दौरान मिले शिकायत ऊपर कार्रवाई करत सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिला कलेक्टर है पटवारी बद्री प्रसाद साहूला निलंबित कर दे है। धमतरी जिला के मगलोर थाना क्षेत्र स्थित कपालफोड़ी गांव में तरिया में नहाए के दौरान डूबे ले 2 नोनी के मौत हो गए। और जिला रोजगार और स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र डहरले काली 27 जून के अंबिकापुर के राजीव गांधी शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में संभाग स्तरीय रोजगार मेला के आयोजन करे जाही। आखिर में प्रमुख समाचार एक गांव फेर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह नशा के खिलाफ एकजुट होकर लड़े के आह्वान करीन। मुख्यमंत्री है आज नवा रायपुर में छत्तीसगढ़ गृह निर्माण और अधोसंरचना विकास मंडल के नवा लोगों के विमोचन करीन। और प्रदेश में यात्री बस के सुरक्षा व्यवस्था ला मजबूत करे बर जम्मू बस में वाहन लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस लगाना अनिवार्य। एकरे संग छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन इहे सिरावत है। जय जोहार।

अभी आप सुन रहे थे प्रादेशिक छत्तीसगढ़ी समाचार, जिसे हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से अनुप्रसारित कर रहे थे। मीडियम वेव 238.09 मीटर यानी 1260 किलोहर्ट्स और FM बैंड 100.2 मेगाहर्ट्स पर ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। शाम के 6:20 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है लोकगीतों का कार्यक्रम गोधुली। कार्यक्रम की शुरुआत में आइए सुनते हैं जोहन लकड़ा और साथियों के स्वर में भजन गीत।

अभी आपने सुना काशीराम राजवाड़े और साथियों के स्वर में ये बायर गीत। इस लोकगीत के साथ ही कार्यक्रम गोधुली यहीं समाप्त हुआ। मीडियम वेव 1260 किलोहर्ट्ज़ और एफएम बैंड

107.2 MHz पर। ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। शाम के 6:30 हुए हैं। लीजिए पे से फिल्म संगीत का कार्यक्रम माधुरी। कार्यक्रम की शुरुआत में ये सुनते हैं फिल्म बुलंदी से ये प्यारा संगीत, जिसमें आनंद बख्शी की शब्द रचना को संगीतबद्ध किया है विजू शाह ने और आवाज़ दी है अनुराधा पौंडवाल, कुमार सानू ने।

कार्यक्रम माधुरी में लीजिए प्रस्तुत है ये प्यारा सा गीत फिल्म खेल से, आवाज है कुमार सानू और कविता कृष्णमूर्ति के, संगीतकार हैं ड्यूट्स, गीतकार हैं फैज अनवर।

शेखर माधुरी के अंत में लिखे फिर से फिल्म वास्तव से यह गीत आवाज सोनू निगम और कविता कृष्णमूर्ति के, धुन दिया है जतिन ललित ने, शब्द रचना है समीर की।

0: आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से रिले करेंगे।
1: अब प्रादेशिक समाचार सुनेंगे।
2: क्या बात है उमेश, आजकल खूब छाए हो अखबार में नई नई रिपोर्टिंग के साथ।
3: हाँ यार, पत्रकार जो हूँ।
2: तो अब अगली रिपोर्टिंग किस पर कर रहे हो?
3: सुधीर, मुझे एक ऐसी 11 साल की लड़की के बारे में पता चला है जिससे एक परिवार वाले घर का सारा काम करवाते हैं और ऊपर से उस पर ज्यादती करते हैं। उसी पर एक स्टोरी बना रहा हूँ।
2: उमेश, स्टोरी बनाते समय इस बात का ध्यान रखना कि पीड़ित बालिका का नाम, पता, फोटो या स्कूल का पता या ऐसी कोई भी जानकारी सामने ना आए जिससे उसकी पहचान होती हो।
3: क्यों?
2: क्योंकि ऐसा करना बाल न्याय तथा बच्चों की देखभाल और उनके संरक्षण संबंधी संवैधानिक अधिनियम 21A का उल्लंघन है और इस बात का ध्यान हमारे सभी प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकारों को भी रखना है।
4: बाल अधिकार हनन से पीड़ित बच्चों की पहचान उजागर करने वाली जानकारी का प्रकाशन या प्रसारण न करें, क्योंकि इससे पीड़ित बच्चों के सामाजिक और मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ सकता है।
5: अरे गोपाल, जा तो सब्जी बाजार से नींबू और मिर्ची लेकर आना।
6: क्या बात है मालिक, आज आप नींबू और मिर्ची क्यों खा रहे हैं?
5: अरे पगले, खाने के लिए नहीं, दुकान में लगाने के लिए मंगवा रहा हूँ। तू तो देख रहा है, दिन भर बैठकर मक्खी मारता हूँ, 10 ग्राहक भी दुकान में नहीं आते।
6: आएंगे कैसे मालिक, हमारी दुकान का ठीक से प्रचार भी तो नहीं हो रहा है। मेरी मानिए तो आप भी अपनी दुकान का प्रचार आकाशवाणी से करवाइए, फिर देखिए हमारी दुकान में भी ग्राहकों की भीड़ लगेगी।
5: गोपाल, आज पहली बार तूने अक्लमंदी की बात की है रे।
6: क्यों नहीं मालिक, रेडियो जो सुनता हूँ।
4: अपनी दुकान, व्यापार या सेवा का प्रचार रेडियो से करवाइए, विज्ञापन बुक करने आकाशवाणी आइए।
7: बधाई हो सेठ जी, आपकी कंपनी की इस नई अगरबत्ती की खुशबू तो लाजवाब है।
6: अरे भाई साहब, आप देखते जाइए, अब तो ये अगरबत्ती घर घर में महकेगी। मैंने पूरे शहर में इसके विज्ञापन बंटवाए हैं।
7: क्यों भाई, सिर्फ शहर में? अरे गांव में नहीं महकेगी क्या?
6: महकना तो गांव में भी चाहिए, मगर गांव के लोगों को हमारी नई अगरबत्ती के बारे में पता कैसे चलेगा?
7: आकाशवाणी से।
4: गांव हो या शहर, अपनी दुकान या उत्पाद की जानकारी पहुंचाइए घर घर, आकाशवाणी आइए और विज्ञापन बुक करवाइए।
8: यह आकाशवाणी रायपुर है, प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शशिकांत यादव। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ में यूसीसी लागू करने के लिए कमेटी का गठन कर लिया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नशे के खिलाफ एकजुट होकर लड़ने का आह्वान किया। प्रदेश में परिवहन विभाग ने सभी बसों में वाहन लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस लगाना अनिवार्य किया और आज छत्तीसगढ़ सहित देश के विभिन्न भागों में मुहर्रम श्रद्धा और आस्था के साथ मनाया जा रहा है। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में समान नागरिक संहिता यूसीसी लागू करने की तैयारियां शुरू हो गई हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बताया कि यूसीसी का प्रारूप तैयार करने के लिए उच्चतम न्यायालय की सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में गठित कमेटी हर वर्ग के बीच जाकर रिपोर्ट तैयार करेगी।
9: यूसीसी लागू होगा हमारे छत्तीसगढ़ में और इसके लिए कमेटी का गठन हो गया है। रिटायर जज मैडम देसाई हैं, उनकी अध्यक्षता में गठन हुआ है। अब वो लोगों के बीच में, हर वर्ग के बीच में जाके अपना रिपोर्ट देंगे और उसके बाद यूसीसी लागू होगा।
8: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नशे के खिलाफ एकजुट होकर लड़ने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि मादक पदार्थों का कारोबार देश की सुरक्षा, सामाजिक व्यवस्था, आर्थिक हितों और युवाओं के भविष्य के लिए खतरा है। उन्होंने आध्यात्मिक नेताओं, युवाओं और महिलाओं से इस अभियान में मिलकर भाग लेने की अपील की। श्री शाह ने यह बात आज नई दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर यानी NCORD की 10वीं शीर्ष स्तरीय बैठक को संबोधित करते हुए कही।
10: आज हमारा देश नार्कोटिक्स के खिलाफ लड़ाई के ऐसे नाजुक मोड़ पर खड़ा है। आने वाले 3 साल तय करने वाले हैं कि नशा हम पर विजय प्राप्त करेगा या हम नशे पर विजय। और मेरा आप सबसे विनम्र आग्रह कि देश के आने वाले 100 वर्ष के भविष्य के लिए ये लड़ाई हमने जीतनी चाहिए, दृढ़ता के साथ जीत।

इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम माधुरी यहीं समाप्त हुआ। मीडियम वेव 1260 किलोहर्ट्ज और एफएम बैंड 110.2 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। शाम के 6:45 हुए हैं। अब आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार, जिसे

0: जीतनी चाहिए और हमारे संयुक्त प्रयास से जीतनी चाहिए।
1: गृह मंत्री ने कहा कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने मादक पदार्थों से जुड़े अपराधों की जानकारी समय पर साझा करने के लिए कई ऑनलाइन पोर्टल शुरू किए हैं। उन्होंने सभी राज्यों के मुख्य सचिवों और पुलिस महानिदेशकों से इन पोर्टलों पर नशे से जुड़े मामलों की जानकारी तय समय सीमा के भीतर अपलोड करने को कहा। केंद्र सरकार ने औद्योगिक और वाणिज्यिक एलपीजी उपभोक्ताओं को बड़ी राहत प्रदान करते हुए गैर घरेलू पैक्ड एलपीजी की आपूर्ति पर सभी क्षेत्रीय प्रतिबंध हटा दिए हैं। इस तरह अब पश्चिम एशिया संकट से पहले जारी आपूर्ति व्यवस्था बहाल कर दी गई है। यह बहाली हाल ही में एलपीजी आपूर्ति की स्थिति में हुए सुधार को देखते हुए की गई है। सरकार ने पासपोर्ट आवेदन शुल्क में वृद्धि कर दिया है। आवेदकों को नए पासपोर्ट या नवीनीकरण के लिए अब 2,500 रुपये शुल्क देना होगा। नई दरें 1 जुलाई से लागू होंगी। नई शुल्क संरचना के तहत तत्काल श्रेणी में 36 पृष्ठों वाले नए पासपोर्ट या पासपोर्ट को फिर से जारी करने की लागत 5,000 रुपये होगी। पासपोर्ट की अन्य श्रेणियों में भी शुल्क में बढ़ोतरी की गई है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय

आवेदकों को नए पासपोर्ट या नवीनीकरण के लिए अब 2,500 रुपये शुल्क देना होगा। नई दरें 1 जुलाई से लागू होंगी। नई शुल्क संरचना के तहत तत्काल श्रेणी में 36 पृष्ठों वाले नए पासपोर्ट या पासपोर्ट को फिर से जारी करने की लागत 5,000 रुपये होगी। पासपोर्ट की अन्य श्रेणियों में भी शुल्क में बढ़ोतरी की गई है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज नवा रायपुर में आयोजित एक कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ गृह निर्माण और अधोसंरचना विकास मंडल के नवीन लोगों का विमोचन किया। इस अवसर पर वर्ष 2025 के आवास मेले में मकान बुक करने वाले हितग्राहियों को लकी ड्रॉ के माध्यम से पुरस्कार वितरित किए गए। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने लोगों तैयार करने वाले अंशुल कश्यप को भी प्रतियोगिता की राशि के रूप में 2.5 लाख रुपये का चेक सौंपा। मुख्यमंत्री ने उम्मीद जताई कि गृह निर्माण मंडल अब अधोसंरचना विकास के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, जिससे प्रदेश के विकास को नई गति मिलेगी। उन्होंने बताया कि पिछले वर्ष 2 वर्षों में मंडल ने लगभग 7,388 संपत्तियों का विक्रय कर 1,532 करोड़ रुपये का राजस्व अर्जित किया है। कार्यक्रम में आवास और पर्यावरण मंत्री ओपी चौधरी ने बताया कि अब किसी भी नई आवासीय परियोजना का निर्माण तभी प्रारंभ होगा जब पर्याप्त बुकिंग सुनिश्चित हो जाएगी, जिससे अनावश्यक निर्माण और वित्तीय जोखिम से बचा जा सके। मंडल के अध्यक्ष अनुराग सिंहदेव ने बताया कि भविष्य में मांग आधारित गुणवत्तापूर्ण और वित्तीय रूप से व्यावहारिक परियोजनाओं पर विशेष जोर दिया जाएगा। नगरीय प्रशासन और विकास विभाग ने प्रदेश के कई विभिन्न नगरीय निकायों के लिए एल्डरमैन की नियुक्ति की है। विभाग की ओर से रायपुर और सरगुजा संभाग के 9 जिलों के 62 नगरीय निकायों में 252 एल्डरमैन नियुक्त किए गए हैं। नगरीय निकायों में एल्डरमैन मनोनीत पार्षद के रूप में कार्य करते हैं। वे निकाय की बैठकों में भाग लेकर स्थानीय समस्याओं और विकास कार्यों पर सुझाव देते हैं। प्रदेश में यात्री बसों की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए परिवहन विभाग ने सभी बसों में वाहन लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस यानी VLTD लगाना अनिवार्य कर दिया है। परिवहन सचिव ने बस संचालकों को 15 दिनों के भीतर बिना VLTD वाली बसों में उपकरण लगाने और बंद उपकरणों को चालू करने के निर्देश दिए हैं। नियम का पालन नहीं करने वाले संचालकों पर मोटरयान अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने युवाओं का आह्वान किया है कि वे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट AI और नई तकनीकों से भयभीत होने के बजाय उन्हें अपने भविष्य के निर्माण का सबसे बड़ा अवसर माने। श्री चौधरी ने यह बात रायपुर में महाराजा अग्रसेन इंटरनेशनल कॉलेज द्वारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवसर चुनौतियाँ और भविष्य का प्रभाव विषय पर आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन में कही। एंटी करप्शन ब्यूरो ACB ने बेमेतरा जिले के थान खमरिया थाने के प्रधान आरक्षक अजय लहरे को 15,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। ACB की टीम आरोपी से पूछताछ कर मामले की जांच में जुटी हुई है। वहीं ACB की टीम ने बिलासपुर में रतनपुर तहसील के लालपुर हरका पटवारी को हुई 25,000 रुपये की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है। पटवारी पर नक्शा बटांकन के लिए रिश्वत लेने का आरोप है। श्रोताओं, प्रादेशिक समाचार एकांश के समसामयिक विषयों पर आधारित कार्यक्रम बातों बातों में इस बार 1 जुलाई से लागू होने वाले VVG Ram Ji योजना पर छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री विजय शर्मा से ली गई भेंटवार्ता का प्रसारण किया जाएगा। इसका प्रसारण कल 27 जून को आकाशवाणी केंद्र रायपुर द्वारा FM और प्राइमरी चैनल पर सुबह 9 बजे से किया जाएगा। इसे छत्तीसगढ़ स्थित आकाशवाणी के सभी केंद्र रिले करेंगे। प्रदेश से माओवाद की समस्या खत्म होने के बाद अब सुरक्षा बल के जवान माओवादियों द्वारा छिपाई गई सामग्रियों की बरामदगी में लगे हुए हैं। इसी कड़ी में नारायणपुर जिले के टेकला के जंगलों से इंसास SLR 303 राइफल समेत भारी मात्रा में गोला बारूद और विस्फोटक सामग्री बरामद की गई है। इसके अलावा छोटे डोंगर के तोयामेटा जंगल पहाड़ी से भी माओवादियों द्वारा छिपाकर रखी गई 24 लाख रुपये नकद राशि बरामद की गई है। आज छत्तीसगढ़ सहित देश के विभिन्न भागों में मुहर्रम श्रद्धा और आस्था के साथ मनाया जा रहा है। करबला में सत्य और न्याय की रक्षा के लिए पैगंबर मोहम्मद के नवासे हजरत इमाम हुसैन और उनके साथियों की शहादत की याद में मुहर्रम मनाया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुहर्रम पर संदेश जारी कर हजरत इमाम हुसैन के बलिदान का स्मरण किया। उन्होंने कहा है कि हजरत इमाम हुसैन का बलिदान सत्य और न्याय के मार्ग पर अडिग रहने की प्रेरणा देता है। मुहर्रम के मौके पर राजधानी रायपुर सहित प्रदेश के कई शहरों में ताजिए निकाले जा रहे हैं। रायपुर के करबला में भी हजरत हुसैन की कुर्बानी को याद करते हुए आज रात मजलिसों यानी धार्मिक बैठकों का आयोजन किया जाएगा। और अब पेश है मौसम का हाल।

0: मौसम विभाग के अनुसार आगामी 2-3 दिनों में दक्षिण पश्चिम मानसून के प्रदेश के बाकी हिस्सों में आगे बढ़ने के लिए अनुकूल परिस्थितियां बनी हुई हैं। वहीं कल 27 जून से राज्य में मानसून की गतिविधियां बढ़ने की संभावना है। मौसम विभाग ने आगामी 7 दिनों तक प्रदेश के कुछ इलाकों में आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी भी दी है। इस बीच बलरामपुर जिले के कंदरी गांव में आकाशीय बिजली की चपेट में आने से 2 युवकों की मौत हो गई। बारिश से बचने के लिए ये युवक पेड़ के नीचे खड़े थे। और अब कुछ समाचार संक्षेप में। पत्र सूचना कार्यालय PIB रायपुर की ओर से कल जगदलपुर में वार्तालाप कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इस कार्यक्रम का विषय सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के 12 वर्ष, नक्सलवाद से विकास और विश्वास की ओर बढ़ता बस्तर रखा गया है। सक्ती जिले के जोंगरा गांव में आज 2 अज्ञात लोगों ने एक युवती को गोली मार दी है, जिससे उनकी मौत हो गई। घटना के बाद आरोपी फरार हो गए। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। बताया जाता है कि दोनों युवक मोटरसाइकिल पर पहुंचे थे और पता पूछने के बहाने युवती पर हमला कर दिया। सुशासन तिहार के दौरान मिली शिकायत पर कार्रवाई करते हुए सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिला कलेक्टर ने पटवारी बद्री प्रसाद साहू को निलंबित कर दिया है। धमतरी जिले के मगरलोड थाना क्षेत्र स्थित कपालफोड़ी गांव में तालाब में नहाने के दौरान डूबने से 2 बच्चियों की मौत हो गई। जांजगीर के प्रकाश इंडस्ट्रीज में काम करने के दौरान ऊंचाई से गिरकर 1 ठेका मजदूर की मौत हो गई। और जिला रोजगार और स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र द्वारा कल 27 जून को अंबिकापुर के राजीव गांधी शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में संभाग स्तरीय रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। इस मेले में निजी कंपनियों द्वारा करीब 2000 रिक्त पदों पर भर्ती की जाएगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ में UCC लागू करने के लिए कमेटी का गठन कर लिया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नशे के खिलाफ एकजुट होकर लड़ने का आह्वान किया। प्रदेश में परिवहन विभाग ने बसों में वाहन लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस लगाना अनिवार्य किया और आज छत्तीसगढ़ सहित देश के विभिन्न भागों में मुहर्रम श्रद्धा और आस्था के साथ मनाया जा रहा है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन हिंदी में कल सुबह 9:55 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।
1: आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए।

अभी प्रादेशिक समाचार का अनुप्रसारण आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से किया जा रहा था। मीडियम वेव 238.09 मीटर यानी 1260 किलोहर्ट्ज़ और एफएम बैंड 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। शाम के 7 बजे हैं। श्रोताओं, ये वक्त है कार्यक्रम विवरण का। आइए आपको आज के मुख्य आकर्षण और कल के प्रातःकालीन सभा के कुछ मुख्य आकर्षणों से अवगत कराते हैं।

अब से कुछ ही देर में आप सुन सकेंगे सुगम संगीत का कार्यक्रम रजनीगंधा, और ग्रामीण श्रोताओं के लिए कार्यक्रम चौपाल आज सजेगा तय समय शाम 7:20 पर। साथ ही सोशल मीडिया आधारित फरमाइशी कार्यक्रम इंस्टा फरमाइश आप सुन सकेंगे आज रात्रि के ठीक 8:00। श्रोताओं की ईमेल पर आधारित कार्यक्रम ईमेल की गूंज और श्रोताओं की फरमाइशों पर आधारित फिल्म संगीत का कार्यक्रम मन भवन का आनंद आप ले सकेंगे रात्रि 9:30 और 10:30 पर। साथ ही कार्यक्रम चित्रपट संगीत आप सुन सकेंगे रात्रि 9:15 पर। शास्त्रीय रागों पर आधारित कार्यक्रम राग प्रधान आप सुन सकेंगे रात्रि के ठीक 10:00। श्रोताओं, ये थे हमारे आज के सांझेकालीन सभा के कुछ मुख्य आकर्षण। आइए आपको कल के प्रातःकालीन सभा के कुछ मुख्य आकर्षणों से अवगत कराते हैं।

कल प्रातः 6:05 पर आप सुन सकेंगे भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना और कार्यक्रम विचार बिंदु आप सुनेंगे प्रातः 6:30 पर। रामचरितमानस के गायन का प्रसारण समय होगा प्रातः 6:35 पर, जिसमें मुख्य गायन स्वर होगा भूपेंद्र सिंह मिताली और बी सिंह का, संगीत संयोजक होंगे सतीश भाटिया। साथ ही कार्यक्रम खेती की बात का प्रसारण समय होगा प्रातः 6:45 पर। जनसंपर्क से प्राप्त समाचार और पुराने फिल्म संगीत का कार्यक्रम नमस्कार सरगुजा आप सुन सकेंगे प्रातः 7:30 पर। साथ ही लोकगीतों का कार्यक्रम गुंजन जंगल का आनंद आप ले सकेंगे कल प्रातः के ठीक 7:00। साथ ही सुगम संगीत का कार्यक्रम आप सुन सकेंगे प्रातः 7:15 पर।

कल सुबह के ठीक 8:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम डॉक्टर की सलाह और सुबह 9 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम बातों बातों में। ये दोनों ही कार्यक्रम हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। साथ ही बातों और गीतों का कार्यक्रम गुंजन का आनंद आप ले सकेंगे कल सुबह 9:15 पर, और नए फिल्मी गीतों का कार्यक्रम नए तराने आप सुन सकेंगे सुबह के ठीक 10 बजे। श्रोताओं, ये थे हमारे कल के प्रातःकालीन सभा के कुछ मुख्य आकर्षण। मीडियम वेव 1260 किलोहर्ट्ज़ और एफएम बैंड 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर, ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। शाम के 7:05 हुए हैं। लीजिए पे से सुगम संगीत का कार्यक्रम रजनीगंधा। श्रोताओं, आइए कार्यक्रम का आगाज करते हैं चंदन दास के स्वर में इस प्यारे से गजल से। संगीत निर्देशन है चंदन दास जयदेव कुमार का, शब्द रचना है रामल सेघल की।

इस गजल के साथ ही सुगम संगीत का कार्यक्रम रजनीगंधा यहीं समाप्त होता है। मीडियम वेव 1260 किलोहर्ट्ज और एफएम बैंड 100.2 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। शाम के 7:20 हुए हैं। लीजिए अपने से ग्रामीण श्रोताओं के लिए कार्यक्रम चौपाल।

जम्मो चौपाल सुनवैया भैया बहनी मन के किसनु भैया कर राम राम। यदि सुनवैया भैया बहनी हो, देखिए मैं तो कहता हूँ नहीं कि दे राउर मन भी दे बरखा कर अगोरा करत हो। बाकी देखिए नहीं, आजकल बरखा कर अगोरा करत करत नहीं लागेल कि दे बरखा हर आही कि नहीं आही। नगरे बात कहब तो भाई एक दो दिन कर आतर पर करके चटिक मटी बरखा हर तो होता है। बाकी देखिए आघू जेन कस बरखा हुए नहीं वो कस बरखा हर नहीं होता है। तो एकस काबर होता है देखी जाने पर तो देखी राउर मन भी जानत रही कि एकस नहीं पेड़ पौधा मन कटी नहीं तो ओकर भी तो कहीं न कहीं देखी हमार जलवायु परिवर्तन ऊपरे असर पड़िस। अब कहते नहीं कि भाई हमन अपने दोषी ही एकर भर चटी को कर तिहा करते नहीं नवा नवा और पेड़ पौधा मन लगाते तो एकस जो कथे नहीं अतिवृष्टि अल्पवृष्टि यदि कहों कहों पानी बरसते कहों नहीं बरसते। अब वो देखिए वो हमन किसान भाई जो आए नहीं किसान भैया बहनी मन तेमन ज़्यादा फिक्राए जाते हैं जेकर पास सिंचाई कर सुविधा नहीं है सुविधा नहीं है जे खाली बरखा कर पानी ऊपर आश्रित रहते नहीं तेमन तो देखिए ढेरे परेशान हो जाते हैं। तो देखिए नहीं एकर में हमार व्यक्तिगत प्रयास बहुत जरूरी है पेड़ पौधा के मन कर रतिहा करे बर पेड़ पौधा मन काटत हैं तेमन ला रोके बर। बाकी एक ठन और देखी हमन प्रयास कर सकते ही पेड़ पौधा मन लगाए के साथ ही साथ देखिए हमार सरकार भी प्रयास करत रहते ऐसने देखिए राउर मन सुने हो नहीं हरित भारत अभियान जिला हमरे दे ग्रीन इंडिया मिशन भी कथी। तो ये जो हरित भारत मिशन है नहीं हमर सरकार कर एक ठन प्रमुख पर्यावरण संरक्षण कर योजना है जिला राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना के अंतर्गत शुरू करल गया रही। देखिए एकर उद्देश्य रही जो हमर देश है एकर वन क्षेत्र में ला बढ़ाना पर्यावरण ला संतुलित करना और जो जलवायु परिवर्तन कर प्रभाव है नहीं ते मन ला कम करना। साथ ही साथ देखिए कह नहीं कि वन क्षेत्र में वृद्धि करना। अब यह कैसे हो सकता है भाई तो नवा पेड़ पौधा लगाना और जो खराब हो चुकी है जंगल तिमन कर पुनरुद्धार करना नवा ढंग लहन उला और पेड़ पौधा मला रोपना बनाना तिहा करना और जो वन क्षेत्र है नहीं होकर गुणवत्ता और हरियाली ला बढ़ाना। देखिए हर देखे में भी अच्छा लगते हैं हमारे आसपास का वातावरण भी एकर से बढ़िया रहते। अब एकर देखिए हमन करब नहीं तो जो जलवायु परिवर्तन कर मैं बात करत रहे नौकर से हमरे मुकाबला कर सकते ही। कैसे नहीं कि यदि पेड़ पौधा मन कार्बन डाइऑक्साइड ला अवशोषित करते हैं एकर से देखिए ग्लोबल वार्मिंग ला कम करे में मदद मिलते। साथ ही साथ देखिए नहीं आगू जेन कस हमर आकाश में रे चिड़ई चुनगुन मन दिखे नहीं आजकल देखिए वो कस कहाँ दिखते हैं। तो जो हमर जैव विविधता है ओकर संरक्षण भी एकर से हो सकता है। जो वन्य जीव हैं ये पेड़ पौधा और प्राकृतिक संसाधन कर हमरे रक्षा करब नहीं तो कहीं न कहीं देखिए एहू मन कर संरक्षण हो ही। अब ये जो बात करत रहे ना अपन भागीदारी कर तो हमर जो ग्राम पंचायत है वन समिति है और जो स्थानीय वहाँ कर रवैया हैं उमन ला देखी ये वन संरक्षण अभियान से जोड़ के ये काम ला और बढ़िया लेहन कर सकते ही। देखिए फलदार पेड़ पौधा मन ला लगा तो लोग मन ला रोजगार और आजीविका कर अवसर भी मिली। जो भूमि सुधार कर हमरे बात करती और हरित आवरण बढ़ाए कर बात करती एकर से देखी जो बंजर भूमियाँ है नदी कर किनारे पहाड़ी क्षेत्र और

की जगह में वृक्षारोपण लग कर सकत है। एकस करब तो हमर जो भूमि सुधार है वह हर चटिक बनी और जो हरित आवरण कर बात करता हूँ यहू क्षेत्र कर वृद्धि होही। अब एक देखी का हो ही नहीं, पहल तो फायदा भेटाही हमर जो आसपास कर वातावरण है पर्यावरण हर शुद्ध होही। जो वर्षा कर चक्र है और जल संरक्षण में सहायता भेटाही। हमर जो मिट्टी कर कटाव है ओहर कम होही और हमर जो ग्रामीण क्षेत्र है नहीं तिहाँ रोजगार कर अवसर भी बढ़ी। साथ ही साथ जो हमर आय वाला पीढ़ी है उमन लाए दे हमन संदेश दे सकबो कि भाई ये जो प्राकृतिक संसाधन है इमन का रक्षा बहुत जरूरी है, तो ये काम ला वह मन आगे बढ़ाही। कुल मिलाए के देखिए हमन कह सकते ही नहीं कि ये जो हरित भारत अभियान है ग्रीन इंडिया मिशन ये प्रकृति जलवायु और जो मनुष्य कर जीवन है एकर बीच में संतुलन बनाए रखे कर एक ठन प्रयास है। इलाहन देखिए सरकार अकेले नहीं कर सकता है, सरकार के साथ ही साथ जो आम नागरिक हैं जो मनुष्यियाँ हैं तिमन कर भागीदारी भी बहुत ज़रूरी है। तभी ये जो हरित भारत अभियान है ग्रीन इंडिया मिशन है यह सफल हुई और आगू बढ़ी। अब एक ठन देखिए गोठे गोठ में मोर मन में एक ठन और बात आई नहीं कि हमारे देखिए किसान भैया बहनी मन इतना मेहनत करते नहीं, नगद मेहनत करते हैं भाई, बरखा आए चाहे बरखा नहीं आए खेती बाड़ी में मेहनत करवेज करते हैं। बाकी देखी नहीं एक ठन कहानी कथे आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया, तो कैसे देखी नहीं खर्चा हर बाढ़ेल नहीं तो पता नहीं चलेल, अब खर्चा हर बाढ़ेल कैसे देखी तो बहुत जे देखी नशा करते हैं। नशा कहे नहीं तो ढेरे चेकन नशा आजकल होएगी ना है जेमन कर देखी हमने नाम उच नहीं सुने ही। तो भाई नशाला तो कहते भाई उसने कहते कि नशा नाश कर जड़ा है और जितना भी नशा कर पदार्थ है मादक पदार्थ चिला कहते हैं ओला देखी छोड़ना पड़ी। और आज देखी नहीं मादक पदार्थ विरोधी अंतर्राष्ट्रीय दिवस भी आया है, देखिए गोटे गोट में ये दिवस ला भी हमरे सुमीर लेहन आज है देखिए 26 जून आज एकर दिन एला मनाते हैं। एकर उद्देश्य है कि लोग मल्ला नशा कर दुष्प्रभाव के प्रति जागरूक करल जाए और जो मादक पदार्थ कर सेवन है और चाहे एकर व्यापार है ये मल्ला रोके बर समाज में जागरूकता फैलाई। अब देखिए नहीं नशा नाश कर जड़ कावर है कैसे नहीं कि यह देखिए हमार शारीरिक स्वास्थ्य हमार मानसिक स्थिति हमार परिवार और समाज पर बहुत गंभीर प्रभाव डालते काबर कि नशा करे वाला मन से जो है नहीं वो देखिए वह तो शांति ले बैठे नहीं इते उते आन तैन गोठिया ही जगर में झगड़ा टंटा भी हो जाते। तो यही नशा कर आदत है नहीं धीरे धीरे मनसे कर सोच ला उकर निर्णय ले कर क्षमता ला और जो जीवन कर उकर दिशा है नहीं तेला आयन तैन कर देते प्रभावित करते थे उकर मन हरीते उते भटके लागते। शरीर कर बात करी नहीं तो जो शरीर का रोग प्रतिरोधक क्षमता है तेहर कम हो जाते। हृदय फेफड़ा यकृत और मस्तिष्क जिला कथे नहीं तेकर ऊपर बहुत खराब असर पड़ते। एकर साथ ही साथ देखिए मानसिक तनाव चिंता अवसाद एक समस्या मन बढ़ जाते हैं। आगू देखिए कहन कि परिवार में कलह बढ़ जाए आर्थिक समस्या हो जाए काबर की खर्चा हर बाढ़ लोही नशापत्ति में ज़्यादा पैसा हर खर्चा हो जाते। लड़का बच्चा जो हैं उमन कर ऊपर देखिए खराब असर पड़ते आगू चल के वह मन वही नशा धैर लेते हैं और नशा करे वाला मन से देखी नहीं अपराध और हिंसा कर तरफ भी बढ़ते तो अपराध और हिंसा कर घटना में भी वृद्धि होते। जो पैर लिखदारी न है तिमन कर शिक्षा और रोजगार प्रभावित होते अगर नशा कर तरफ उमन मुड़ गई तो कहीं दिवस देखी नहीं देखी हमर दिवस कर चर्चा लेकर चल करती नहीं कि

ओकर उद्देश्य ला समझें और ये जो मादक पदार्थ विरोधी अंतर्राष्ट्रीय दिवस है एकर देखिए उद्देश्य ही है कि जो युवा आहें उमला नशा से दूर करे भर प्रेरित करल जाए। मादक पदार्थ जे मना है तेमन कर अवैध व्यापार कर खिलाफ जागरूकता बढ़ाल जाए। नशा पीड़ित जो मनसे हैं तेमन कर पुनर्वास और सहायता ला बढ़ावा दिल जाए और स्वस्थ और नशा मुक्त समाज कर हमरे निर्माण करी। कबर नहीं कि देखी नशा मनसे ला अंदर ले बहुत कमजोर कर ले है और समाज कर विकास में बाधा एहर बन थे, परिवार हमर टूट थे। एकर ले जरूरी है नहीं कि नशा ले दूरी बढ़े। देखिए हमर गोएट तो चलते चढ़ी, मैं कहता हूँ कि एक ठन संदेश है तेला सुनते हैं।

0: संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है।
1: अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं,
2: अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं,
3: क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा।
4: बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा।
5: योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान, अब आपकी है बारी।
4: नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जनसेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण।
5: फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण।
4: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
6: देखिए संदेश लसुन, अब यदि देखिए नहीं खेती बाड़ी कर बात हो जाए तो खेती बाड़ी कर बात करें नहीं तो कहीं फसल रौरे लगाए नहीं, तिमन कर अगर सही प्रबंधन नहीं करब, उन्नत प्रबंधन नहीं करब नहीं तो तेकर फायदा नहीं भेटायल। ऐसने देखिए नहीं गन्ना कर बात करी तो गन्ना हमार महत्वपूर्ण नकदी फसल है, अगर हमारे अधिक उत्पादन और अच्छा गुणवत्ता वाला गन्ना कर फसल ला चाहत ही तो उन्नत गन्ना कर जो फसल प्रबंधन है तेकर में बहुत ध्यान देना पड़ी। और एक तहत देखी खेत कर तैयारी, उन्नत किस्म, सही समय पर बुआई, उकर पोषण, सिंचाई कर बात करी तो सिंचाई, खरपतवार नियंत्रण, रोग और कीट कर प्रबंधन कर ऊपर विशेष ध्यान देना बहुत जरूरी है। अब खेत कर चयन और तैयारी कर बात करी, भूमि का चयन कर बात करी तो गन्ना बड़े जो है नहीं उपजाऊ, गहरी और अच्छा जल निकासी वाला जो दोमट मिट्टियाँ है तेहर सबले बढ़िया मानल जाते हैं। खेत कर तैयारी बड़े देखिए 2-3 बार जुताई करके मिट्टीला बढ़िया भुरभुरा बनाए लें और खेतला समतल करके सिंचाई समान रूप से उकर में करें। जो क्षेत्र है जहां लगाना चाहते हैं तो क्षेत्र और जलवायु के हिसाब से रोग प्रतिरोधी और अधिक उत्पादन देने वाला किस्म का चयन करें। स्वस्थ, रोगमुक्त और अच्छा गुणवत्ता वाला बीज जो है ओला उपयोग में ले आए। बुआई कर प्रबंधन कर बात करी नहीं तो बुआई कर समय देखिए क्षेत्र कर हिसाब ले बदल जाते। सामान्य रूप से देखिए जो शरद कर मौसम होते और बसंत कर जो मौसम होते एकर में बुआई करते हैं कि बहुत लाभदायक होते। 2-3 आँख वाला जो स्वस्थ गन्ना है नहीं तेकर टुकड़ा कर प्रयोग करें तो यह ज़्यादा अच्छा होते। अगर बीज उपचार कर लेता है नहीं तो रोग कर खतरा हर कम हो जाते। खातु और उर्वरक प्रबंधन कर बात करी तो खेत ला बढ़िया लेहन जांच लें तेकर बाद खाद कर उपयोग करें। गोबर कर सड़ल खाद और कंपोस्ट जो है ये माटी कर उपजाऊ क्षमता ला बढ़ाते। नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास कर संतुलित मात्रा में उपयोग करें तो बढ़िया फायदा भेटा ही। अगर लागत है कि सूक्ष्म पोषक तत्व मन कर कमी है तो कमी होए पर मन कर उपयोग करें। गन्ना कर देखिए गन्ना ला पानी कर ज़्यादा जरूरत होते तो ध्यान रखें, जब सिंचाई का जरूरत है तो सिंचाई जरूर करें, समय समय पर सिंचाई करते रहना चाहिए। ड्रिप सिंचाई का उपयोग अगर करता है

0: तो पानी कर बचत हुई और उत्पादन में भी वृद्धि हुई। गन्ना कर फसल में देखिए शुरुआती 60 से 90 दिन फसल पर बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, तो खरपतवार कर ध्यान दें, निराई गुड़ाई समय पर करत रहें और ज़रूरत कर हिसाब से खरपतवार नियंत्रण कर उपाय अपनाएं। ऐसने देखी नहीं किरवा और रोग प्रबंधन कर बात करी तो किरवा मन में तना छेदक, दीमक, पत्ती रोग इमन से बचाव बरे नियमित निगरानी करत रहें और रोगग्रस्त अगर पौधा दिखत है नहीं तेमल्ला हटाए दें। संतुलित पोषण और साफ खेत लागर रखी नहीं तो रोग व्याधर कम लगते। एकर में देखिए सह फसली खेती भी कर सकते हैं। शुरुआती अवस्था में गन्ना कर साथ में दलहन या सब्जी कर सह फसली खेती करके अतिरिक्त आमदनी भी प्राप्त कर सकते हैं। गन्ना कर कटाई देखिए सही और परिपक्व अवस्था में करें। कटाई कर बाद में जल्दी पिराई करे से जो शर्करा होते ओकर में ओकर गुणवत्ता हर बने रहते। कुल मिलाए कि नहीं हमरे कही तो उन्नत किस्म, वैज्ञानिक खेती पद्धति, संतुलित खाद, सही सिंचाई और समय समय पर रोग और कीट नियंत्रण अगर हमन करत ही तो गन्ना कर उपज और हमरे किसान भाई मन कर आए दोनों हर बैठ सकता है। तो अगर बढ़िया लेहन गन्ना कर खेती करी एक ठन और संदेश है तेला सुन लेते हैं।
1: प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना मिले।

0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित
1: और 60 वर्ष की आयु से 3000 रुपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित।
0: 55 रुपए से 200 रुपए की मासिक किश्त देकर प्रवेश कर सकते हैं 18 से 40 वर्ष तक के किसान।
1: इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान।
0: सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं
1: और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं।
0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर।
2: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: देखिए, खेती बाड़ी कर बात हुए और गीत गान कर बात नहीं हुए, यह तो हो ही नहीं सके। और वहू में हमारे किसान भाई मन, तो देखिए एक ठन गीत है, नागर जोते जाबो, ये लगाई न है प्रभुनाथ वैष्णव और उनका संगता, तो ये गीत ला सुना थी।

देखिए ये गीत लतो सुनें भाई, बाकी नहीं देखिए जम्मूच मेहनत करे कर बाद में, खेती बाड़ी करे कर बाद में कभू कभू उपज हर बढ़िया नहीं भेटा है, ते घनी कहीं सहयोग कर देखिए जरूरत पड़ते, लगते नहीं कि कहीं ले इधे ऋण कर सुविधा भेटाए जातीस तो हमार खेती बाड़ी में चटिक मदद मिल जातीस, तो हमर किसान भैया बहनी मन ला मिले वाला ऋण सुविधा लाभ और ओकर उपयोगिता विषय पर जो है नहीं, यदि हमर परसु भैया गोइट बात करीना है श्रीकांत चंद्राकर जी से, यहाँ मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित सरगुजाकर, तो इनकर ले जो गोइट हुई सा है किसान क्रेडिट कार्ड, किसान भैया बहनी मन ला मिले वाला ऋण सुविधा ओकर लाभ और उपयोगिता कैसे कर सकते ही ते गोइटला सुनी।

0: राहुरमनकर, हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ में हैं श्री श्रीकांत चंद्राकर जी, मुख्य कार्यपालन अधिकारी हैं और जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित सरगुजा में पदस्थ। राहुल के बहुत बहुत स्वागत है चंद्राकर जी।
1: आप मन के भी बहुत बहुत स्वागत है।
0: और बड़ा अच्छा विषय हमन आज चुने हैं राहुल से बात करे पर, किसान क्रेडिट कार्ड जो किसान मन ला मिलेल, ओकर कैसे कैसे सुविधा ओमन ले सकते हैं, एकर अंदर कौन कौन सा प्रावधान है, एकर बारे में राउर से जानब। कार्यक्रम में हमन राउर के स्वागत करे हन। हमला बताइए कि किसान क्रेडिट कार्ड मूल रूप से का हवे, एकर से का फायदा मिलेल?
1: मुख्य रूप से किसान क्रेडिट कार्ड है वो सुविधा हावे जो भारत सरकार देत हावे और छत्तीसगढ़ शासन देत हावे। तो भारत सरकार के दिशा निर्देश अनुसार हर किसान जो पात्र हावे ओला ये सुविधा दिए जा सकत है और ऋण के जो सुविधा है वो किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से ही मिल सकत हावे। एमा हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ शासन में कोऑपरेटिव बैंक ला ये सुविधा दिए गए है कि आप नगद ऋण भी ले सकत हो और खाद और बीज के रूप में भी लोन ले सकत हावो। और छत्तीसगढ़ शासन विशेष रूप से किसान हितैषी हावे, एकर बा 0% ब्याज पर ये लोन वो मतलब मिल सकत हावे। एकर बा सहकारी समिति मोल केवल एक आवेदन देना रही थे, 105 रुपया देना है हावे, दो ठो फोटो, आधार कार्ड अगर

0: पैन कार्ड हावे तो बहुत अच्छा बात हावे, और साथ में आपके नक्शा खसरा विवरण और ऋण पुस्तिका के एक पैत कॉपी देहे पड़ी, उकर बाद उमन जीवन भर के लिए लोन ले सकत हावे और पटा सकत हावे। जो भी लोन उमन ला मिलते वह एक साल भर रही और एक साल के भीतर लोन लो और पटा दो, उमा एक रुपया भी ब्याज नहीं लगे। और अगर कोई डिफॉल्ट कर देता हावे तो उमा फिर 3% एक्स्ट्रा ब्याज लगत हावे, तो 13% के आसपास लगी। तो जहाँ तक हो सके वही टाइम में उमन ला पटा देना हावे, तो एक भी रुपया के ब्याज नहीं।
1: बड़ा बढ़िया सुविधा है। और हमारे जो सरगुजा संभाग क्षेत्र में कितना किसान हो लगभग?
0: हमारे यहाँ वैसे तो 2,10,000 किसान हावे, लेकिन उमा से 1,38,000 किसान ऋण लेते हमारे बैंक से।
1: 50% से ज्यादा है मतलब?
0: बिल्कुल,
1: ये संख्या बहुत बढ़िया है,
0: बहुत बड़े संख्या हावे। और हाँ। सब किसान ला हमन निर्विवाद रूप से ऋण की सुविधा उपलब्ध कराते
1: और सब बढ़िया पटाते हैं वापस कर,
0: बहुत बढ़िया पटाते हैं। हमारे यहाँ पिछले बार 3,68,00,00,000 के ऋण वितरण हो रही से, जेमा लगभग 94% के आसपास के वसूली आगे हावे। ओमन किसान मन एमन फिर लोन ले है तैयार हो गए हावे।
1: अगर एक साल के अंदर कोई बढ़िया किसान पटाए देते हैं, समय पर पटाए देते हैं अपन किस्त ला, तो ओकर ला कौन कौन सा सुविधा मिले?
0: जैसे कोनो किसान अपन टाइम में पटा देत हावे तो ए लोन के कृषि ऋण के साथ साथ वह मत्स्य पालन ऋण भी ले सकत हावे, वह गोपालन ऋण भी ले सकत हावे। और दूसर भी पात्रता अगर ओकर हावे, जमीन हावे बढ़िया उपजाऊ हावे, तो मन उद्यानिकी के भी लोन ले सकत हावे।
1: जिला में कहाँ पर एक आवेदन देना पड़े, और ग्रामीण ब्लॉक स्तर पर ग्रामीण क्षेत्र में कोई दूरस्थ गाँव में है वो कैसे कहाँ आवेदन दे?
0: हमारे यहाँ जितका भी चारों पांचों जिला हवे उमा ब्लॉक मुख्यालय में हमार ब्रांच हवे, ब्रांच से संबंधित सहकारी समिति हवे। हमार कुल 33 ब्रांच हवे, उमा 153 सहकारी समिति हवे, उमा 33 सहकारी समिति और नवा बन गया हवे। तो जितका अच्छा। भी किसान दूरस्थ हवे उमन सहकारी समिति में सीधा आवेदन कर सकते हैं, ओला ब्रांच आए के जरूरत नहीं हवे, ओला मुख्यालय आए के जरूरत नहीं हवे। तो निकटतम सहकारी समिति में जाए, जहाँ वो धान बेचे जाते वहीं वो आवेदन कर देवे और जितका भी दस्तावेज है जमा कर देवे तो मतलब ऋण मिल जाही।
1: एक चीज हमन देखें कि जैसे आवेदन करीस किसान, तो ओमे प्रक्रिया में कितना समय लगे?
0: ओमा आवेदन करे में प्रक्रिया में उतका ज्यादा समय नहीं लागे, लेकिन तभो उमला चेक करे पड़ते कि जो भी किसान आवेदन करे हावे वो कहीं के डिफाल्टर तो नहीं हावे। अगर डिफाल्टर हावे तो मैं परेशानी होते, डिफाल्टर नहीं है तो जल्दी से जल्दी हमारे यहाँ समिति के बोर्ड रहते वो बोर्ड में डाल देते और वहाँ प्रस्ताव पारित हो जाते कि एक किसान हमारे यहाँ सदस्य बन गया हावे, इला लोन दिए जा सकते है। ओकर पूरा दस्तावेज ओकर प्रारूप बना के उमन शाखा भेज देते, शाखा में 2 दिन लगते, वो 2 दिन में हमारे यहाँ प्रधान कार्यालय बमुश्किल 7 से 10 दिन के भीतर पहली बार अगर लोन ले तो लगते।
1: 7 से 10 दिन, ये तो सामान्य बात हो गई, इतना तो लगना ही चाहिए कम से कम। और मैं पूछना चाहते रहे, जैसे को किसान पंजीकृत किसान है ओमन ला मिलेल या गैर पंजीकृत है ओमन ला भी मिलेल?
0: गैर पंजीकृत किसान ला 7 से 10 दिन लगी, और पंजीकृत किसान है तो कंटिन्यू अगर वह डिफाल्टर नहीं हावे और लोन लेत हावे तो ला 3 से 4 दिन 5 दिन। मुख्य रूप से हमार सर्विस एरिया बहुत बड़े हावे, तो ओमा वो समिति से हमार प्रधान कार्यालय में जो टाइम लगते वही टाइम लगते, बाकी हमार यहाँ शाखा में प्रधान कार्यालय में वो स्वीकृति में ज्यादा समय नहीं लगे।
1: किसान के पास अगर जमीन नहीं है, बटाईदार है, सीमांत किसान है, तो ये अलग अलग कौन कौन सा श्रेणी है? अगर भूमिहीन है तो नहीं मिल रही?
0: नहीं, भूमिहीन किसान भी हावे तो मतलब ऋण मिल सकत हावे, बस ये है कि उकर सुख अन्य स्रोत के कोई व्यवस्था हावे आय के, जैसे गो पालन करत है, मछली वछली पालन करते, उद्यानिकी के काम करत हावे कहीं से लीज वीज लेके, तब वो हमें लोन की सुविधा मतलब दे सकत हन, बस बसरते वह लोन ला पटा देवे अपन टाइम और हर साल लोन ले सकत हावे।
1: राउर शायद बताए ना मनला, लेकिन अगर वो खेती किसानी नहीं करते हैं, केसीसी के लाभ मिल सकत है? पशुपालन सिर्फ अगर करत है, गाय पालन करत है,
0: बिल्कुल भूमिहीन किसान ला भी हम दे देते हैं गोपालन, बस 3 लाख तक के मैक्सिमम हवे उमा। तो पात्रता ये रखते कि कतका के वो काम करत है, जैसे मान लो उमन पहली से गोपालन के काम करत हावे, 8-10 गाय हावे, 4-6 गाय हावे, तो उकर जतका भी पात्रता बनते 3800 रुपया प्रति लीटर के हिसाब से उमन ला पात्रता बनते, तो जतका भी गाय है उत्पादन देते दूध ओकर हिसाब से लोन के पात्रता बन जाये और लोन ले सकत हावे।
1: ये 3800 रुपए
0: प्रति लीटर,
1: प्रति लीटर
0: जी। अच्छा। जैसे वो 2-3 लीटर के वो हावे देते तो ओकर हिसाब से ओकर पात्रता बन जाते।
1: अच्छा अच्छा अच्छा।
0: और उसका गाय हो गए जैसे, तो उमा उमला लोन लेके पात्रता बन जाए।
1: एक बात अक्सर रहेल, और किसान जो हमर क्षेत्र कर भी है और पूरा देश में स्थिति, अगर प्राकृतिक आपदा आ गई से

0: ओकर खेती नहीं हो पा रही से, नुकसान हो गई से, और केसीसी में अपन लोन नहीं पटाए पा रही से, तब कर का स्थिति कोई राहत कर स्थिति है?
1: भारत सरकार ह प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लागू करे हवय, ओकर हिसाब से जो भी किसान हवय ऐसे लगथे कि ओकर यहाँ कुछ घटना घट सकत है तो बिल्कुल मिनिमम दर पे फसल बीमा के सुविधा ले सकत है, और फसल बीमा के सुविधा के बाद क्षतिपूर्ति भी भारत सरकार देते ओमे,
0: बीमा कर लाभ हमन ला
1: बीमा
0: मिली,
1: के लाभ मिल
0: लेकिन
1: सकत हवय।
0: केसीसी में ओकर कोई लाभ नहीं।
1: नहीं वही में हवय वो, हाँ
0: अच्छा
1: फसल बीमा जो हवे वो फसल ऋण में ही है, केसीसी में ही हवे वो सुविधा
0: अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा
1: जी।
0: तो ओकर फायदा इमें

0: का लाभ हमें लग
1: बीमा
0: गया,
1: के लाभ मिल सका
0: लेकिन
1: था वह
0: केसीसी में ओकर कोई लाभ नहीं।
1: नहीं वही महावे वो हाँ फसल बीमा जो हावे वो फसल ऋण में ही है, केसीसी में ही हावे वो सुविधा।
0: अच्छा,
1: जी
0: तो ओकर फायदा एमे मिल जाए,
1: एमा मिल जाए वो।
0: अधिकतम एमे कितना ब्याज है?
1: ब्याज तो एमा कुछ नहीं हावे, मुख्य रूप से एमा ये है कि अगर आप डिफॉल्ट करा था तो 13% लगी, नहीं तो 0%, 100 रुपया लो 100 रुपया पटा दो एक साल के भीतर।
0: अच्छा,
1: जी
0: और एक साल पटाए के बाद वो लोन ला बढ़ाए सकत है?
1: बिल्कुल बढ़ सका था।
0: कितना बढ़ाए कर का सीमा क्या प्रक्रिया है?
1: एमा ऐसे हवा है कि हर साल जो राज्य स्तर के तकनीकी समूह होते ओमा बड़े बड़े वैज्ञानिक मन बड़े बड़े अधिकारी मन बैठते और हर साल लगभग 8 से 9% के आसपास के जो हमारे ऋण मान हवे फसल मन में ओला बढ़ा देते, तो हर साल यह फसल भी बढ़ते। ये पहली का होत रही से कि 60% नगद ले सकत रही से किसान मन और 40% खाद बीज ले सकत रही से, तो ये छत्तीसगढ़ शासन विशेष किसान हितैषी होए के कारण 70% नगद कर दिए और 30% खाद बीज कर दिया हवे, तब औ अधिक मात्रा में नगद ले सकत हावे। तो ये पैत लगभग 55,000 के हमार सिंचित के हो गए हावे और 44,000 के आसपास के हमार अभी असिंचित धान के हावे।
0: ये साल कर अगर हमने बात करी खरीफ में, तो खाद बीज और बाकी जो सुविधा है ओकर बर केसीसी के माध्यम से किसान मन ला मिल ही व्यवस्था हो
1: मिल सकत हावे अभी। हाँ लगभग हमार मूर्ख सेवा क्षेत्र में 96,000 टन के लक्ष्य दिए गए है, जिसमें से 54,000 टन के खाद के भंडारण अभी तक हो चुके हैं, उमा से वो किसान मन लगभग 9,500 टन के खाद ला अपन घर में ले जा चुके हैं खेती बाड़ी पर।
0: चंद्राकर जी बहुत बढ़िया हमन के जानकारी आज केसीसी के बारे में मिली से, और जितना शंका मोर मन में रही सो तो मैं पूछें, और बहुत बढ़िया बात ये रही कि राउर सरगुजिया और छत्तीसगढ़ी में हमन ला बात करें और बढ़िया बताएं, तो बहुत अच्छा लगी राउर ला, बहुत बहुत धन्यवाद।
1: जी जी बहुत बहुत धन्यवाद।

देखिए, गोइठे गोइठ में हमन सुनती नहीं एक ठन शब्द जो है माइक्रो इरिगेशन, एला देखी कथें सूक्ष्म सिंचाई। एकर मतलब है ऐसन सिंचाई पद्धति जेकर में कम मात्रा में पानी ला सीधे पौधा कर जड़ तक पहुँचाए के ज़्यादा उत्पादन प्राप्त करल जा सकता है। कम पानी में अधिक उत्पादन कर मतलब है कि पानी कर बचत करते हुए फसल कर जरूरत कर हिसाब से सही मात्रा में वाला जल उपलब्ध कराए के उपज कर वृद्धि और उकर गुणवत्ता बढ़ाना। अब देखिए नहीं, जो पारंपरिक जो सिंचाई थे, पारंपरिक रूप से जो सिंचाई करत आत हैं, तेकर में बहुत पानी हर व्यर्थ चले जाते। तो एकर जगह में देखी जो ड्रिप सिंचाई पद्धतियाँ है, चाहे स्प्रिंकलर सिंचाई पद्धतियाँ है, ये तकनीक का उपयोग करके नहीं पानी कर खपतला कम कर सकता है। और पौधा ला नहीं देखी एकर से समय पर और जरूरत कर हिसाब से जरूरत कर मात्रा में पानी मिल ही, और एकर से उपज हर बाढ़ी बढ़िया वृद्धि फसल कर हो ही, उत्पादन और फसल कर गुणवत्ता में सुधार हो ही। ड्रिप सिंचाई कर बात करी नहीं, जिला टपक सिंचाई करते हैं, तेकर में पानी बूंद बूंद करके पौधा कर जड़ तक पहुँचते, और एला कहते हैं कि फल सब्जी गन्ना कपास जैसन फसल भरे उपयोगी मानल जाते। वैसने स्प्रिंकलर सिंचाई जिला फव्वारा विधि कहते हैं, इलाहन पानी ये जो पानियाँ हैं तेला बारिश के तरह से खेत में फैलाएल जाएल, जो हल्का मिट्टी होते नहीं और बड़खा क्षेत्र है खेत कर तिमन बरे हर उपयोगी है। एकर अगर उपयोग करी नहीं तो 30 से 70% तक पानी कर हमरे बचत कर सकता है। खातू और उर्वरक कर एकर से बेहतर उपयोग हो सकता है, खरपतवार कम होते हैं, मजदूरी और लागत में भी बहुत कमी आते, और जो सूखा क्षेत्र है नहीं ओकर में भी खेतीला बढ़ावा मिलते। तो ये जो सूक्ष्म सिंचाई तकनीक है, ये जो जल संकट का क्षेत्र है ओकर में खेतीला टिकाऊ बनाते और कम संसाधन में ज़्यादा से ज़्यादा लाभ भेटाते। एकर से कथे नहीं कि कम पानी में अधिक उत्पादन, माने कि हर बूंद पानी का सही उपयोग करके ज़्यादा से ज़्यादा

फसल पैदा करना। देखिए बेरा होता है मंडी भाव और मौसम कर, तो आजकल मंडी भाव में बता दूं नहीं, आजकल मंडी भाव में राम तिल है 6000 रुपया प्रति क्विंटल, धान 2190, कोदो 3250, गेहूं 3350 रुपया। मौसम की बात करी तो आज का अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस रही और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस। इसने काल कर उम्मीद है कि अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस रही और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री रही। हमारे देखिए इतना बेरा बाचिस है कि एक ठन चलते चलते और बढ़िया लेहन गीत सुन ली, तो पुरवैया संग आवत है, गीत है, लगाइन है गुलाब सिंह मैकरा और उनका संगता, तो लेगी सुनी।

ग्रामीण श्रोता अभी सुन रहे थे चौपाल कार्यक्रम। मीडियम वेव 238.09 मीटर यानी 1260 किलोहर्ट्स और एफएम बैंड 100.2 मेगाहर्ट्स पर ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। रात्रि के 8 बजे हैं। लीजिए फिर से सोशल मीडिया आधारित फरमाइसी कार्यक्रम इंस्टा फरमाइस, और इसे लेकर हाजिर हूँ मैं आपका रेडियो दोस्त विकी गुप्ता। साथियों यूँ सुनते हैं कार्यक्रम इंस्टा फरमाइस की पहली फरमाइश फिल्म आओ प्यार करें से। आवाज़ कुमार सानू की, संगीत निर्देशन है आदेश श्रीवास्तव का और रचनाकार हैं श्यामराज। इस गीत को सुनने के लिए हमें फरमाइश की है नंद कुमार ठाकुर, प्रमिला ठाकुर, खुशबू ज्योति ठाकुर, ग्राम चरौदावार नवापारा अभियान जिला बलौदा बाजार छत्तीसगढ़ से, ग्राम पंचायत खोंदला उदयपुर सरगुजा से जीवधन सिंह पैकरा, घुरनी पैकरा, करिश्मा पैकरा, सुमार सैकलेश्वर सिंह, सुखराम पैकरा, हीरामणि पैकरा और ऐश्वर्या पैकरा। बोड़सला नैला से छत्तीसगढ़ से प्रमोद कुमार साहू, बीमा वैभवी, विनोद विभूति, अंशु बबली और प्रियांशु साहू। ग्राम नाईवाला जिला हनुमानगढ़ राजस्थान से वेद मिड्ढा,

अलका मीठा, देवीगंज रोड अंबिकापुर से राजकुमार ने भवानी, संगीता, आकाश, आयुषी, सागर, यसी, हनी, सीज, पूजा और सीता। सावरगांव महाराष्ट्र से हमें फरमाइश भेजी है रघुनाथ पाटिल नारे, पुष्पाताई नारे। कृष्णा पार्क दिल्ली से सुखविंदर सिंह जौड़ा, सिटी दीवाना। रायगढ़ से रोहित जयलक्ष्मी, स्वरूपानंद सरजाल जोड़ा पीपल अंबिकापुर से। प्रेसक सुपर रेडियो इस्ता श्रोता संघ सारसताल सोनगरा जिला सूरजपुर छत्तीसगढ़ से प्रेम साई राजवाड़े, सुमार साय, मेर साय, श्री भगत, हेमंत कुमार, राम खिलावन सिंह पैकरा। ऊपरकोट मोहल्ला चखुंडी बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगहत परवीन अब्बासी, शाहनवाज अब्बासी, सरफराज अब्बासी, फरदीन अब्बासी, सुहान अब्बासी, अरजान अब्बासी और अबान अब्बासी। ताज मंजिल लकड़ बाजार खंडवा से मोहम्मद रफीक पवार, बेंजिर कौसर मोहम्मद साकिब पवार, अलमास बानो पवार, मोइन छोटू पवार, शंकरलाल गंगरांडे, वनिता गंगरांडे, मोहम्मद हसनैन पवार। विष्णु मिस्किन, ऋतिका मिस्किन, बेटी वाणी, आरव, चंद्रकला, काशीनाथ, गणेश, सोनी, आरोही और प्रियांशी। दयानंद कॉलेज भवानी पेठ सोलापुर महाराष्ट्र से। ग्राम पोस्ट केतका जिला सूरजपुर छत्तीसगढ़ से संजय सिंधराम, टेकराम सिंधराम, विवेक कुमार, उमेश कुमार, अर्जुन सिंह टेकराम, अरविंद सिंह टेकराम। ग्राम थोरा बांधा भाटापारा से प्रमोद साहू, देव कुमार साहू, नवीन साहू, युवराज साहू। आप सभी की फरमाइश पर आइए सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।

कोलकाता उमरिया मध्य प्रदेश से संतोष कुमार राव, भारती राव, बेलाबाई सिंह, विकास सिंह, ओम प्रकाश सिंह, शुभम विश्वकर्मा, अरुण विश्वकर्मा। दिल्ली से लाल बाबू दीवाना, उमाराज गौंडी लोहारा, जिला बालोद छत्तीसगढ़ से डोमेंद्र नेताम, गंगेश्वरी नेताम, चंचल नेताम, कामेश नेताम, माहिर नेताम। पदमपुर जिला श्रीगंगानगर राजस्थान से मेहर अरोड़ा, ममता अरोड़ा, कीर्ति अरोड़ा, भूमिका अरोड़ा। सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह, डॉक्टर अमनदीप कालका से शुभ चंद्र बजाज, साहिल बजाज, भिट्टा बजाज। ग्राम राजापुर जिला सूरजपुर छत्तीसगढ़ से मानिक्राम प्रजापति, श्रीमती सविता प्रजापति, घनश्याम राम, हरिशंकर, रत्नेश कुमार, प्रशांत प्रजापति। दतरंगी भाटापारा छत्तीसगढ़ से हीरामणि वर्मा, पारसमणि वर्मा, पुष्पेनमणि वर्मा, नोखीलाल वर्मा। छत्रपति संभाजीनगर से राजेश सावले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि राजेश, श्रीमती शीतल राजेश। जिला खरगोन सनावद मध्य प्रदेश से मास्टर अशोक वर्मा, अर्चना वर्मा, अनुज वर्मा, आयुषी वर्मा, रमेश चंद्र वर्मा, शेख मूसा भाईजान, भाई राजकुमार बोडाना और सुदामा नगर। खंडवा से लक्ष्मी नंदनी, रोहित, ऋतु, मुकेश जगताप। ग्राम कालापारा सरगुजा से रामचंद्र गुप्ता पांडे, राम राजवाड़े। ग्राम पेपरलोड सरगांव छत्तीसगढ़ से दीपेश वर्मा, पूनम वर्मा, ज्योति और शिवांश वर्मा। पसंद पंचकूला सेक्टर 9 से आसू चौक, अश्वनी चौक, गोविंद चौक, टोनी दीवाना, लव दीवान, राधे भाविक डिंगरा। कुड़ी सेक्टर 5 सूर्य नगरी, जोधपुर राजस्थान से रमेश चंद्र चौहान, मोहिनी चौहान।

लिखे पैसे कार्यक्रम इष्ट फरमाइश की अगली पेशकश। फिल्म प्रेम रतन धन पायो से आवाज है मोहम्मद इरफान, दर्शन रावल, पलक मुच्छल के संगीत निर्देशन है हिमेश रेशमिया का, सब दृश्यां है इरशाद कामिल की। इस गीत को सुनने के लिए हमें फरमाइश की है ग्राम सिद्धमा बाजार पारा जिला बलरामपुर छत्तीसगढ़ से धनेश्वर निषाद, दीपिका निषाद, शिवांश निषाद, राम भरोस पैकरा, नरेश सिंह, कस्बा वराड़ा जिला अंबाराड़ से रवि कुमार राहुल, रणजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका मन्नत, गुरु कीरत राहुल, गुरशब्द सिंह राहुल, ज्योति नगर नोखा राजस्थान से पुखराज बड़गुज्जर, कैलाश मिस्त्री, गोरधनधरा, फरसाराम सोलंकी, श्यामलाल चौहान, घनश्याम भार्गव, बाबू गौरी और हसन सिक्का। चनौरा जिला फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश से बनवारी लाल कुशवाहा, मंजुलता कुशवाहा, राम और श्याम, रवि आर्यन, रंजीत कुशवाहा, रामानंद कुशवाहा और साथी। राष्ट्रीय दिव्यांग सहयोग संगठन छत्तीसगढ़ से नरेश कुमार, संदीप कुमार पांडे, कृष्ण कुमार, चितरंजन यादव, सुनील कुमार, रविशंकर राजवाड़े, मनीष कुमार साहू। अनूपपुर मध्य प्रदेश से अंजलि केवट, रुद्राणी केवट, कृष्णा केवट, चंचल केवट, जयमंत्री केवट। तामसा रोड हदगांव महाराष्ट्र से ओम गायकवाड़, आविष्कार गायकवाड़, परिणीता गायकवाड़, अनामिका गायकवाड़। अनारकली बाजार जगराव पंजाब से सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका मल्होत्रा, गाव्या मल्होत्रा, भाई सुच्छा सिंह पाठक, विनोद पुरी, जयपाल यादव। सादुल शहर राजस्थान से राम कुमार रेवाड़, चंद्रकला रेवाड़। ग्राम खोखरा वाली श्रीगंगानगर से विनोद बारासा, विशाल बारासा, विकास बारासा, रोशनी बारासा और शगुन बारासा। गांव टोरवाल जिला नवांशहर पंजाब से इसी गीत को सुनना चाहा है गगनदीप थांदी, तृप्ता कुमार थांदी, डॉक्टर प्रियंका थांदी, डॉक्टर प्रशांत थांदी, डॉक्टर प्रियम थांदी। मेहरनगर उमरखेड़ महाराष्ट्र से अभिजीत गोहाड़कर राही, श्रीमती सरिता गोहाड़कर, प्रिंस एकांश गोहाड़कर, बदलापुर।

पूर्व मुंबई से प्रणीता गोहाड़कर, सिद्धांत गोहाड़कर, टुक टुक, अभय, तहसील सिल्लोड़ जिला छत्रपति संभाजीनगर औरंगाबाद महाराष्ट्र से, अनिल कुमार घोड़के वैशाली अनिल, प्रजक्ता घोड़के, वैष्णवी घोड़के, गायत्री घोड़के, यज्ञेश घोड़के, छत्तीसगढ़ पथरिया भरेवा से चंदूलाल सिंगरौल, नारायणी सिंगरौल, नोमेश सिंगरौल, नेहा और वान्या सिंगरौल, दरबार कॉलोनी सनावत से इसी गीत को सुनना चाहे किशोर कुमार सावले, रेखा सावले, हिमांशु, अनुराग, सुलोचना चारुई और प्रणव सावले। आप सभी की फरमाइश फरल लीजिए फेस से ये प्यारा सा गीत।

0: इस गीत के साथ ही सोशल मीडिया आधारित फरमाइशी कार्यक्रम इंस्टा फरमाइश यही समाप्त हुआ। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर यह आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। रात्रि के 8:45 हुए हैं। अब आप सुनेंगे समाचार संध्या और इवनिंग न्यूज, जिसे हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। गृहमंत्री अमित शाह ने मादक पदार्थों पर नियंत्रण के लिए 3 साल का विजन डॉक्यूमेंट जारी किया। नशा रोधी अभियान को सशक्त करने के लिए बेहतर समन्वय और तकनीक का प्रयोग करने को कहा। केंद्र सरकार भारत ब्रिटेन व्यापार समझौते से अधिकतम लाभ लेने के लिए देश भर में 1000 सलाहकारों को तैनाती के साथ व्यापार पोर्टल को उन्नत करेगी। वेनेजुएला में भूकंप से मरने वालों की संख्या बढ़कर 589 हुई। भारत ने वायुसेना के 2 जहाजों से आपातकालीन राहत सामग्री भेजी। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा, अमेरिका और ईरान भविष्य में किसी भी टकराव को टालने के लिए सीधा सैन्य संपर्क स्थापित करने पर सहमत। भारतीय निशानेबाज ISSF जूनियर विश्व चैंपियनशिप में 7 स्वर्ण सहित 24 पदक जीतकर शीर्ष स्थान पर रहे।

0: और यूएस ओपन बैडमिंटन में रौनक चौहान, किदांबी श्रीकांत सहित तीन महिला शटलर सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। अब समाचार विस्तार से। गृह मंत्री अमित शाह ने 2026 से 2029 की अवधि के लिए मादक पदार्थों पर नियंत्रण संबंधी विजन डॉक्यूमेंट जारी किया। नई दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की बैठक में उन्होंने मादक पदार्थ निपटारा पखवाड़े की भी शुरुआत की। इसमें करीब 2,10,000 किलो मादक पदार्थ नष्ट किए जाएंगे। इनकी अनुमानित कीमत 6,000 करोड़ रुपये है। गृह मंत्री ने नशे के खिलाफ एकजुट होकर युद्ध छेड़ने का आह्वान किया।
1: मेरा आप सबसे विनम्र आग्रह कि देश के आने वाले 100 वर्ष के भविष्य के लिए सभी सरकारों को एक साथ एक मंच पर आना होगा। सभी विभागों को जनता को गाइड करने वाले संतों को भी जोड़ना पड़ेगा और युवाओं पर घर में अपना रसूख रखने वाली हमारी मातृशक्ति को भी इसमें जोड़ना पड़ेगा, तभी जाकर इस लड़ाई के खिलाफ हम पूर्णतया सफल हो सकते हैं।
0: गृह मंत्री ने कहा कि स्वापक नियंत्रण ब्यूरो ने मादक पदार्थों से जुड़े अपराधों की जानकारी समय पर साझा करने के लिए कई ऑनलाइन पोर्टल शुरू किए हैं। उन्होंने कहा कि मादक पदार्थों और इससे संबंधित तस्करी नेटवर्क के खिलाफ अभियान को सशक्त बनाने के लिए बेहतर समन्वय और तकनीक का प्रयोग आवश्यक है।
1: ड्रोन आधारित ड्रॉप्स, समुद्री मार्गों से कंटेनराइज कार्गो, डार्कनेट, क्रिप्टो पेमेंट, ऑर्डर टू डिलीवरी मॉडल, पार्सलों का उपयोग, ये सब तरीकों से ड्रग के कारोबार करने वालों ने हमारी लड़ाई को और कठिन बनाया। इसलिए हमारी प्रतिक्रिया भी सामूहिक और संगठित होनी चाहिए, एक रोड मैप आधारित होनी चाहिए और उसमें आधुनिक इंटेलिजेंस लीड बेस्ड टेक्नोलॉजी ड्रिवन अप्रोच होना चाहिए।
0: श्री अमित शाह ने कहा कि वर्ष 2004 से 2014 के बीच करीब 26 लाख किलो सिंथेटिक मादक पदार्थ जब्त किए गए थे, जबकि 2014 से 2026 के बीच ये मात्रा बढ़कर 1,18,00,000 किलो से अधिक हो गई है। उन्होंने कहा कि ये आंकड़े नशीले पदार्थों की तस्करी के खिलाफ सरकार की लगातार कार्रवाई को दर्शाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नशा मुक्त भारत अभियान जन भागीदारी से प्रेरित एक जन आंदोलन बन गया है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री बीएल वर्मा का एक लेख सोशल मीडिया पर साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने प्रत्येक नागरिक से नशा मुक्त भारत और विकसित भारत के निर्माण के अभियान में शामिल होने का आह्वान किया। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ब्रिटेन व्यापार समझौते से अधिकतम लाभ लेने के लिए देश भर में 1,000 सलाहकारों की तैनाती के साथ व्यापार पोर्टल को उन्नत किया जाएगा। लंदन में 10वें यूनाइटेड किंगडम भारत सप्ताह में श्री गोयल ने कहा कि भारत ब्रिटेन भागीदारी पारंपरिक व्यापार से आगे बढ़कर तकनीक, AI, महत्वपूर्ण खनिज, रक्षा और स्वच्छ ऊर्जा जैसे रणनीतिक क्षेत्रों तक पहुंच गई है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि समझौते में पात्र भारतीय पेशेवरों को ब्रिटेन में सामाजिक सुरक्षा अंशदान से छूट मिलेगी। श्री गोयल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत फ्रेजाइल 5 से निकलकर विश्व के सर्वाधिक संभावनाओं वाले देश के रूप में सामने आया है। उन्होंने कहा कि भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता दोनों देशों के हितों पर केंद्रित है। इस बीच श्री गोयल ने लंदन में HSBC के ग्लोबल ट्रेड सॉल्यूशंस के प्रमुख विवेक रामचंद्रन से मुलाकात की। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि उन्होंने भारत UK व्यापार आर्थिक और व्यापार समझौते से कारोबारी विस्तार का परिवेश निर्मित करने के बारे में बात की। श्री गोयल ने कहा कि मजबूत व्यापार हित और सीमा पार बैंकिंग व्यवस्था के जरिए नए बाजारों में उद्योगों की मदद करने में वित्तीय संस्थानों की महत्वपूर्ण भूमिका है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। वेनेजुएला में आए 2 शक्तिशाली भूकंपों में मृतकों की संख्या बढ़कर 589 हो गई है। 3,000 से अधिक लोग घायल हुए हैं। कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने भारत की एकजुटता का आभार व्यक्त करते हुए कहा है कि ये मुश्किल समय में दोनों देशों की सहयोग की भावना के अनुरूप है। उन्होंने राहत कार्यों में सहयोग के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया। भारत ने भूकंप प्रभावित वेनेजुएला के लिए ऑपरेशन अमिस्तात के अंतर्गत 35 टन से अधिक राहत सामग्री, दवाएं और चिकित्सा उपकरण वायुसेना के 2 विमानों से भेजे हैं। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने बताया कि अमिस्तात का अर्थ स्पेनिश भाषा में मित्रता होता है। उन्होंने कहा कि इस अभियान के तहत सेना की फील्ड अस्पताल इकाई भी भेजी गई है। अमरीका के उपराष्ट्रपति JD Vance ने कहा है कि

अमेरिका और ईरान के सैन्य प्रतिनिधि संघर्ष टालने के लिए सीधा संपर्क स्थापित करने पर सहमत हुए हैं। इसके अंतर्गत ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर और अमेरिकी सेना के सेंट्रल कमांड के प्रतिनिधि कतर के दोहा में तैनात रहेंगे। इस बीच अमेरिका और खाड़ी सहयोग परिषद ने आज बहरीन के मनामा में एक मंत्रिस्तरीय बैठक में अपनी रणनीतिक साझेदारी की पुष्टि की। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज नई दिल्ली में यूरोपीय देशों के पत्रकारों के समूह से बातचीत की। डॉ. जयशंकर ने भारत में क्रांतिकारी बदलाव और वैश्विक स्थिति तथा भारत और यूरोप के बीच बढ़ते संबंधों का उल्लेख किया। उन्होंने भरोसा जताया कि यूरोपीय पत्रकारों की भारत यात्रा से उनकी भारत और भारत यूरोप भागीदारी की संभावनाओं के बारे में समझ बढ़ेगी। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज भूटान के शिक्षा मंत्री यीजांग दे थापा से मुलाकात की। इस दौरान शिक्षकों के प्रशिक्षण, कौशल विकास और रोजगार क्षमता, डिजिटल शिक्षा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सतत पर्यटन, पारंपरिक चिकित्सा और समग्र स्वास्थ्य पर चर्चा हुई। श्री प्रधान ने कहा कि दोनों देशों के पास शिक्षा, नवाचार

0: समझ बढ़ेगी। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज भूटान के शिक्षा मंत्री यीजांग दे थापा से मुलाकात की। इस दौरान शिक्षकों के प्रशिक्षण, कौशल विकास और रोजगार क्षमता, डिजिटल शिक्षा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सतत पर्यटन, पारंपरिक चिकित्सा और समग्र स्वास्थ्य पर चर्चा हुई। श्री प्रधान ने कहा कि दोनों देशों के पास शिक्षा, नवाचार और क्षमता निर्माण के व्यापक मंचों पर सहयोग की अपार संभावनाएं हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, परमाणु, अंतरिक्ष और क्वांटम प्रौद्योगिकियां भविष्य के विकास और वैश्विक प्रतिस्पर्धा की दिशा तय करेंगी। नई दिल्ली में उन्होंने कहा कि भारत अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में तेजी से एक प्रमुख शक्ति के रूप में उभर रहा है। राष्ट्रीय क्वांटम मिशन का उल्लेख करते हुए श्री सिंह ने कहा कि मिशन ने अपने शुभारंभ के 3 वर्ष में ही आधे से अधिक लक्ष्यों को हासिल कर लिया है। उन्होंने कहा कि इस मिशन की गति भारत की बढ़ती वैज्ञानिक क्षमताओं और उभरती प्रौद्योगिकियों में वैश्विक नेता बनने की उसकी प्रतिबद्धता को दर्शाती है। संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि AI नवाचार, पारदर्शिता और दक्षता को नया रूप दे रही है। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में श्री शेखावत ने कहा कि आधुनिक प्रौद्योगिकी और नवाचार विकसित भारत के संकल्प को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्होंने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विश्व में बदलाव लाने और व्यक्तियों के जीवन को सुगम बनाने के लिए तैयार है।
1: आने वाले समय में टूर ऑपरेटर्स की भूमिका को, ट्रैवल गाइड की भूमिका को, डेस्टिनेशन सिलेक्शन की भूमिका में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अभी से बहुत बड़ा रोल प्ले करने लगी। भारत जैसा देश जिसकी 10,000 साल से भी ज्यादा की पुरानी कंटिन्यूटी की सभ्यता है, हम अपने सभ्यगत यात्रा को दुनिया के पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए AI बेस्ड कंटेंट बना करके उनको आकर्षित कर सकते हैं, उनके बेहतर अनुभव दे सकते हैं।
0: विद्युत मंत्री मनोहर लाल ने आज नई दिल्ली में सभी राज्य विद्युत नियामक आयोगों और संयुक्त विद्युत नियामक आयोगों के अध्यक्षों के साथ नियामक मंच की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में उन्होंने कहा कि विश्वसनीय, गुणवत्तापूर्ण विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने, शिकायतों के त्वरित निवारण और व्यापार में सुगमता तथा जीवन यापन में सुगमता को बढ़ावा देने के लिए एक पारदर्शी, पूर्वानुमानित और उत्तरदायी नियामक ढांचा अत्यंत आवश्यक है। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान 28 जून को नई दिल्ली में राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। 2 दिन के सम्मेलन में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के ग्रामीण विकास मंत्री, वरिष्ठ सरकारी अधिकारी तथा विशेषज्ञ समग्र ग्रामीण विकास पर विचार विमर्श करने के लिए एकत्रित होंगे। बैठक में प्रमुख परियोजनाओं की समीक्षा और ग्रामीण भारत के लिए भविष्य की रूपरेखा तैयार करने पर भी विचार विमर्श किया जाएगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। अयोध्या की एक अदालत ने राम मंदिर दान में कथित अनियमितता बरतने के मामले में सभी गिरफ्तार 8 आरोपियों को आज 29 जून तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया। आरोपियों से 79,85,000 से अधिक रुपए बरामद किए गए हैं। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास के सदस्य कृष्ण मोहन ने कल प्राथमिकी दर्ज कराई थी। कोलकाता के ताराताला दुर्घटना में मृतकों की संख्या बढ़कर 15 हो गई है। घायलों का उपचार कोलकाता के SSKM अस्पताल में चल रहा है। पुलिस ने इस मामले में एक सरकारी अधिकारी समेत 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। राज्य सरकार ने घटना की जाँच के लिए SIT का गठन किया है। बचाव अभियान जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए और घायलों को 1-1 लाख रुपए देने की घोषणा की। राजस्व खुफिया निदेशालय ने मुंबई, बेंगलुरु और विशाखापट्टनम में कई अभियानों में 23 करोड़ रुपये का 15 किलो सोना जब्त किया है। संगठित सोने की तस्करी करने वाले गिरोह से जुड़े इस मामले में 15 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इस दौरान सूरत में 2 किलो कोकेन जब्त कर 1 व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। पिछले महीने से अब तक निदेशालय ने कुल 26 किलो कोकेन जब्त की है और 14 विदेशी नागरिकों सहित 22 लोगों को गिरफ्तार किया है। आज देश भर में आशूराए मुहर्रम पूरे श्रद्धा और सद्भाव के साथ मनाया गया। ये दिन पैगंबर मोहम्मद के पोते हजरत इमाम हुसैन और उनके समर्पित साथियों की शहादत की याद दिलाता है, जिन्होंने कर्बला में सत्य और न्याय की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी थी। इस अवसर पर ताजिया जुलूस निकाले गए, जिन्हें बाद में शाम को निर्धारित स्थानों पर दफनाया गया। मजलिसें या धार्मिक सभाएं भी आयोजित की गईं। इस अवसर पर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए थे।

0: मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 3 से 4 दिनों में दक्षिण पश्चिम मानसून के गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ क्षेत्रों में आगे बढ़ने के लिए अनुकूल परिस्थितियां बनी हुई हैं। पूर्वोत्तर भारत, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में इस सप्ताह मूसलाधार बारिश की संभावना है। एक रिपोर्ट।
1: मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों के दौरान बिहार, छत्तीसगढ़, ओडिशा, तटीय आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, माहे, कोंकण, गोवा, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल और तेलंगाना में भारी वर्षा की संभावना जताई है। वहीं दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, पूर्वी उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तराखंड और लक्षद्वीप के कुछ हिस्सों में सोमवार तक गरज के साथ बारिश और बिजली चमकने की संभावना है। इसके साथ ही मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश के कुछ स्थानों पर रविवार तक लू चलने की संभावना भी व्यक्त की है। यीशु के साथ सौम्या शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: और अब कुछ खेल खबरें। भारतीय निशानेबाजों ने जूनियर विश्व निशानेबाजी चैंपियनशिप में शीर्ष स्थान हासिल कर अपने अभियान का समापन किया। जर्मनी के सुहल में आयोजित इस प्रतियोगिता में भारत ने 7 स्वर्ण, 8 रजत और 9 कांस्य पदक सहित कुल 24 पदक अपने नाम किए। यूएस ओपन बैडमिंटन में किदाम्बी श्रीकांत, रौनक चौहान सहित 3 महिला शटलर सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। पुरुष सिंगल्स में रौनक चौहान ने चीनी ताइपे के चो तियन चेन को और किदाम्बी श्रीकांत ने मलेशिया के ली जी जिया को हराया। वहीं महिला सिंगल्स में तन्वी शर्मा ने चीनी ताइपे की तोंग सियू तोंग को हराया तो रक्षिता ने चेन सू यू को पराजित किया और देविका ने थाईलैंड की टोन रुक साई हिंग को हराया। फीफा फुटबॉल विश्व कप के ग्रुप आई मुकाबले में देर रात नॉर्वे का मुकाबला फ्रांस से होगा। इसी ग्रुप के एक अन्य मुकाबले में इराक और सेनेगल आमने सामने होंगे। दोनों मुकाबले रात 12:30 बजे से खेले जाएंगे। इस बीच इक्वाडोर, आइवरी कोस्ट, नीदरलैंड्स और तुर्की ने अपने अपने मुकाबले जीते हैं। अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। गृह मंत्री अमित शाह ने मादक पदार्थों पर नियंत्रण के लिए 3 साल का विजन डॉक्यूमेंट जारी किया। नशा रोधी अभियान को सशक्त करने के लिए बेहतर समन्वय और तकनीक का प्रयोग करने को कहा। केंद्र सरकार भारत ब्रिटेन व्यापार समझौते से अधिकतम लाभ लेने के लिए देश भर में 1000 सलाहकारों की तैनाती के साथ व्यापार पोर्टल को उन्नत करेगी। वेनेजुएला में भूकंप से मरने वालों की संख्या बढ़कर 589 हुई। भारत ने वायुसेना के 2 जहाजों से आपातकालीन राहत सामग्री भेजी। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा, अमेरिका और ईरान भविष्य में किसी भी टकराव को टालने के लिए सीधा सैन्य संपर्क स्थापित करने पर सहमत। भारतीय निशानेबाज ISSF जूनियर विश्व चैंपियनशिप में 7 स्वर्ण सहित 24 पदक जीतकर शीर्ष स्थान पर रहे और US ओपन बैडमिंटन में रौनक चौहान, किदाम्बी श्रीकांत सहित 3 महिला शटलर सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम शगुन चोपड़ा विद द न्यूज एट 9। The headlines. Home Minister Amit Shah launches 3-year vision document for narcotics control, calls for better coordination and use of technology to strengthen anti-drug campaign. Centre to deploy 1,000 advisory personnel across the country and upgrade trade portal to maximize benefits of India-UK trade agreement. Death toll in Venezuela earthquakes rises to 589. India sends 2 Air Force planes with emergency relief material. US and Iran agree to establish direct military communication channel to reduce risk of further conflict, says US Vice President JD Vance. Indian shooters finish at the top in ISSF Junior World Championship in Germany with 24 medals, including 7 gold. And in US Open Badminton, India's Ronak Chauhan stuns top seed Chou Tin Chen of Chinese Taipei to enter quarterfinals of men's singles. Kidambi Srikanth and 3 women shuttlers also reach the quarters. And now the news in detail. Home Minister Amit Shah today laid a detailed roadmap to achieve the vision of a drug-free India. During a meeting organized by the Narcotics Control Bureau, the Home Minister launched the vision document on narcotics control from 2026 to 2029. Earlier, addressing the 10th apex-level meeting of the Narco Coordination Centre in New Delhi, the Home Minister called for a united war against drugs, saying that the drug menace threatens national security, social stability, economic interests, and the future of youth and the country. He urged spiritual leaders

लीजिए अभी ऐसे कार्यक्रम चित्रपट संगीत की अंतिम पेशकश फिल्म दूत का खर्च से। आवाज है मोहम्मद अजीज की, धुन दिया है अनु मलिक ने, सब दृश्य है आनंद बख्शी की।

इस गीत के साथ ही कार्यक्रम चित्रपट संगीत यहीं समाप्त होता है। मीडियम वेव 1260 किलोहर्ट्ज़ और एफएम बैंड 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के अंबिकापुर केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 9:30 हुए हैं। श्रोताओं, आइए आप सुनते हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम ईमेल की गूंज, और इसे लेकर हाजिर हूं मैं आपका रेडियो साथी विकी गुप्ता। साथियों, आइए कार्यक्रम ईमेल की गूंज की शुरुआत करते हैं फिल्म गुंडा राज के इस प्यारे से गीत से, जिसमें जफर गोरखपुरी की शब्द रचना को संगीतबद्ध किया है अनु मलिक ने और आवाज़ दी है कुमार सानू एलिसा चिनोए ने। इस गीत को सुनने के लिए हमें ईमेल किया है छत्तीसगढ़ से प्रभा जयपुरिया, गौरैया जालंधर से अशोक जाटो, मुंबई से अदीपा नाच, फातिमा नासरीन अंसारी, आलिया और सबा अंसारी, गांव जाखोज राजस्थान से संबुदयाल खटक, विमला देवी, अमरजीत खटक, सुंदरलाल, योगेश कुमार, दीपक कुमार, कुमारी पूजा खटक, मोहम्मद यासीन, अनजान, साइमा नवाज, शरीफ नवाज, ग्रीडी झारखंड से, जल रोड जालंधर से रोशन जहां, मन्नत जहां और सीमांध्र पार्क राजकोट से हेमा गुजराती, परमिला गुजराती, उमरखेड़ से सिराज खान और आमिर खान, छोटी बलिया करजत मुंबई से अब्दुल कलाम राइन, अब्दुल सलाम राइन, उमरखेड़ से भाई सिराज खान, सबाना बेगम और फरदीन खान, हरजिंदर शिंदा, जसवीर जस्सी, सीता और गीता गांव नथाना पंजाब से, कुष्ठा बुजुर्ग अमरावती महाराष्ट्र से, प्रवीण हागोने, पार्थ हागोने, लछनपुर छत्तीसगढ़ से वितनास साहू, पंकज साहू, तिरुपति साहू, जिला किशनगंज बिहार से रविंद्र मोहनदास, आशा देवी,

पीएस नोहारकर, निर्मला नोहारकर, विशाल, सोपान टैडे, नारायण इंगले, आशीष मोहरकर, नलेश्वर नगर, नरवेल, महाराष्ट्र से, बनियापारा धमतरी छत्तीसगढ़ से, रामचंद्र माखीजा, काफिर भाई, श्रीमती सविता माखीजा, बेबी स्वाति माखीजा, महेश कुमार कुकरेजा, संध्या कुकरेजा, माही पूजा, छुटकी शरद, कुमारी डोडवानाई, दिल्ली से रेशमा अंसारी, शकीला अंसारी, निशा और टोंडी लोहार, बालोद छत्तीसगढ़ से प्रभा रानी जगडोलिया, नर्मदा पार्क मंगल वीणा से मास्टर अलीम पटेल, मुजाहिद पटेल और नदीम पटेल, एयरपोर्ट कॉलोनी जराजकोट से अजीता पाटिल, प्रमिला पाटिल, चमन पार्क दिल्ली से डॉक्टर सोनम, डॉक्टर सना, डॉक्टर अदीबा, उत्तम कुमार बघेल, रुकमणी बघेल, साहिल भारती बघेल, पता लगान पंडरिया छत्तीसगढ़ से, गांव कुम्हार हेड़ा सहारनपुर से सैयद मसरूर, साइना हसन इब्राहिम, शास्त्री नगर बीट शहर से किशन सबकाल, आशा सबकाल, सोनिया सबकाल, विशाल सबकाल, बन्ने बुजुर्ग तहसील पलेरा जिला टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से विजेंद्र विश्वकर्मा, आशीष विश्वकर्मा, चंद्रनगर सहारनपुर से कौशल्या जोशी, सुरेश जोशी, प्रभा जोशी, डोंडी से तुषार देव जाटो और राधा जाटो। आप सभी की ईमेल पर आइए सुनते हैं फिल्म शिकारी से ये प्यारा सा गीत। गीत के गीतकार हैं समीर, संगीत निर्देशन है आदेश श्रीवास्तव का, आवाज है कुमार सानू की।

0: राहुल, तुम्हारी नई दुकान का कलेक्शन तो जबरदस्त है, पर दुकान में सन्नाटा क्यों है?
1: वही तो परेशानी है रिया। कपड़े तो बेस्ट हैं, पर पूरे अंबिकापुर को पता कैसे चले?
0: अरे तो शहर के सबसे बड़े लाउड स्पीकर का इस्तेमाल करो ना, 230-600।
1: क्या 230-600?
0: हाँ, आकाशवाणी अंबिकापुर, यहाँ एक विज्ञापन और तुम्हारी दुकान पर ग्राहकों की लाइन।
1: पक्का?
0: हाँ, बस कोड लगाओ 07774 और मिला दो 230-600। अब अपनी दुकान को बनाओ शहर की शान।
1: आकाशवाणी अंबिकापुर, सफलता की पक्की गूंज।
2: आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम ईमेल की गूंज की अगली फरमाइश फिल्म उड़ान से। आवाज है कुमार सानू और अलका याग्निक के, संगीतकार है आनंद मिलिंद। इस गीत को सुनने के लिए हमें ईमेल किया है सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह, डॉक्टर मनदीप, कालका से सुमचंद्र बजाज, साहिल बजाज, बिट्टा बजाज, उत्तम नगर दिल्ली से बोधराज खोलवार, कमला रानी, गीतिका घोरवाल, भानु प्रकाश, ग्राम राजापुर, जिला सूरजपुर छत्तीसगढ़ से मानिकराम प्रजापति, श्रीमती सविता प्रजापति, घनश्याम राम, हरिशंकर, रत्नेश कुमार, प्रशांत प्रजापति, बैला डीला बस्तर छत्तीसगढ़ से शिव कुमार देवदास, मोहित कुमार देवदास, ओमिन उत्तरा, प्रमिला यमुना, जमुना कुमारी, अंजू मंजू और कुमारी, युवती देवसास। बिहार स्टेट डुमराव से इसी गीत को सुनना चाहा है असमा अंसारी, आमना परवीन, टुकटुक अंसारी, लड्डू अंसारी, वलीउल्ला अंसारी, और गाजियाबाद से सीमा गांधी, मनोहर लाल गांधी टोंडी छत्तीसगढ़ से मास्टर शमसुल हक और राधिका पूजा डोमिन। जिला मुरादाबाद, ग्राम दुल्हापुर उत्तर प्रदेश से मोहम्मद फरमान, मोहम्मद सलमान, मोहम्मद इरफान, मोहम्मद इसरार, नरगिस खातून। सरगुजा मैनपाट से अजीत पॉल, प्रभा रानी और प्रियांशी शर्मा, छत्तीसगढ़ से मिश्री देवीर साहू। पानीपत हरियाणा से अनिल कटारिया, मंजू कटारिया, नरेश मल्होत्रा, ज्ञान भूषण शर्मा। ग्राम राजापुर, जिला सूरजपुर छत्तीसगढ़ से चंदेल दास देवांगन, रीता दास, जतिन कुमार, चंद्रावती सिंह मरावी, नूर सहराजवाड़े, समीर सिंह मरावी, सोनू सिंह मरावी। बेताब रेडियो लिसनर्स क्लब पटना बिहार से वसीम अकरम, सलेहा खातून और गुड़िया खातून। आप सभी की मेल पर पेश है ये प्यारा सा गीत।

धाड़ीना नुरा महाराष्ट्र से श्री कृष्ण बाठे संदीप बाठे ऑरेंज सिटी नागपुर से विठल जाधव अनुसैया जाधव पवन राजे धाठो जिला अंबागढ़ चौकी छत्तीसगढ़ से रिजवान खान ऐसा सभी है अनसौर रेहान। जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गगनेजा पूनम विशाल प्रिया दिसानी और नियमित आहूजा। जेल रोड झांसी से नरेंद्र कुमार जाटो संदीप जाटो और कशिश जाटो। गांधी चौक बाड़मेर राज से बबलेश पवार डैनी पवार मनीष पवार। बाजार रोड मुंगिसापुर से मोहम्मद जाकिर मुंसेरी कमरून निशा सविस्ता मोहम्मद नसीब पलक लुबना और यस मंसूरी। नंद कुमार ठाकुर प्रमिला ठाकुर खुशबू ज्योति ठाकुर ग्राम चौरादा बार नवापारा अभियान जिला बलौदा बाजार छत्तीसगढ़ से। बेडी मध्य प्रदेश से हुकुम करमरकर सुनीता करमरकर हार्दिक करमरकर प्राची तनु करमरकर। मेरठ से दिग्दर्शन और कविता गौड़। आप सभी की मेल पर आइए सुनते हैं कार्यक्रम ईमेल की गूंज की अंतिम पेशकश फिल्म विवाह से। आवाज उदित नारायण और श्रेया घोषाल के। संगीत निर्देशन है रविंद्र जैन का। सब दृश्य है रविंद्र जैन की।

इस गीत के साथ ही श्रोताओं के ईमेल पर आधारित फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम ईमेल की गूंज यहीं समाप्त होता है। मीडियम वेव 1260 किलोहर्ट्स और एफएम बैंड 100.2 मेगाहर्ट्स पर ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। रात्रि के 10 बजे हैं। लीजिए प्रस्तुत है शास्त्रीय रागों पर आधारित कार्यक्रम राग प्रधान। कार्यक्रम की शुरुआत में आइए सुनते हैं फिल्म मेरा साया से। यह गीत आवाज है लता मंगेशकर की, संगीत निर्देशन है मदन मोहन का और शब्द रचना है राजा मेहंदी अली खां की। श्रोताओं, यह गीत राग भीम प्लास पर आधारित है। यह राग काफी ठाट से उत्पन्न होता है। इस राग में कोमल गंधार और निषाद का प्रयोग होता है। आरोह में रे और ध स्वर वर्जित हैं। इसकी जातीय औड़ संपूर्ण है। वादी स्वर मध्यम और समवादी स्वर सड़ज है। इस राग का गायन समय दिन का अंतिम पहर है।

लिखे प्रस्तुत है कार्यक्रम राग प्रधान की अगली पेशकश फिल्म आम्रपाली से। आवाज है लता मंगेशकर की, संगीत निर्देशन है शंकर जयकिशन का, रचनाकार है शैलेंद्र। श्रोताओं, यह गीत राग कामोद पर आधारित है। ये कल्याण ठाट का रात्रिकालीन राग है। इसकी जाति संपूर्ण है, यानी इसके उतार चढ़ाव में सभी प्रयोग किए जाते हैं।

लिखे प्रस्तुत है फिल्म तलाश से, यह गीत आवाज हेमन नायडे की, संगीतकार हैं एचडी बर्मन, गीतकार हैं मजरू। श्रोताओं, यह गीत राग खमाश पर आधारित है। ये खमाश ठाट से संबंधित संपूर्ण जाति का रात्रिकालीन राग है। आरोह में ऋषभ वर्चित और शुद्ध निस्साद व्यवहार में लाए जाते हैं। आरोह में कोमलनी का प्रयोग होता है। ये शांत प्रकृति का राग है।

लीजिए पेशे कार्यक्रम राग प्रधान की अगली पेशकश फिल्म गुड्डी से। आवाज है वाणी जयराम का, संगीत निर्देशन है बसंत देसाई का, सब दृश्य है गुलजार की। श्रोताओं, यह गीत राग मियां मल्हार पर आधारित है। मल्हार प्रकार में ये सबसे अधिक प्रचलित तथा सर्वमान राग है। इसमें गंधार और निशा स्वर कोमल हैं। म रे प और नी ध नी ए स्वर संगीत इस राग की जान है। मान्यता है कि ये राग मियां तानसेन के द्वारा प्रयोग में लाया गया था। यह एक रात्रिकालीन राग है।

लीजिए प्रस्तुति कार्यक्रम राग प्रधान की अगली प्रस्तुति फिल्म जाने अनजाने से। आवाज हेमंत नायडे के, संगीत निर्देशन है शंकर जय किशन का, शब्द रचना है एस एच बिहारी की। श्रोताओं, यह गीत राग दरबारी पर आधारित है। यह एक अत्यंत लोकप्रिय राग है। इस राग में अनेक फिल्मी गीतों को स्वरबद्ध किया गया है, अतः इस राग से श्रोता परिचित हैं। इसका गायन समय मध्यरात्रि है। इसका वादी स्वर ऋषभ तथा समवादी स्वर पंचम मानते हैं।

श्रोताओं, आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम राग प्रधान की अंतिम पेशकश फिल्म सांझाओ सवेरा से। स्वर है मोहम्मद रफी की, धुन दिया है जो किसान दया भाई पांचाल ने और सब दृश्य है हसरत जयपुरी की। श्रोताओं, यह गीत राग भैरवी पर आधारित है। भैरवी थाट से संबंधित संपूर्ण जाति का बहुत ही लोकप्रिय राग है। रे, ग, ध और नी इसके कोमल स्वर माने जाते हैं। इसी क्रम में मध्यम और सड़ज वादी समवादी होते हैं। इस राग की प्रकृति चंचल है।

इस गीत के साथ ही शास्त्रीय रागों पर आधारित कार्यक्रम राग प्रधान यही समाप्त होता है। मीडियम वेव 238.09 मीटर यानी 1260 किलोहर्ट्ज़ और एफएम बैंड 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। रात्रि के 10:30 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है श्रोताओं की फरमाइशों पर आधारित फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम मन भावन। श्रोताओं आइए कार्यक्रम का आगाज करते हैं फिल्म बागवान के इस प्यारे से गीत से, जिसमें समीर की शब्द रचना को संगीतबद्ध किया है आदेश श्रीवास्तव ने और आवाज दी है अमिताभ बच्चन और अलका याग्निक ने। इस गीत को सुनने के लिए हमें फरमाइश लिख भेजी है आशा रेडियो श्रोता संघ मेहरनगर उमरखेड़ महाराष्ट्र से अभिजीत गोहाड़कर राही श्रीमती सरिता गोहाड़कर प्रिंस एकांस गोहाड़कर अकार हाइट्स बहादुरा नागपुर से श्रीमती वैशाली शैलेश गोहाड़कर श्वेता सुमित गोहाड़कर कुमारी ध्वनि गोहाड़कर परी बदलापुर मुंबई से सिद्धांत गोहाड़कर प्रणीता गोहाड़कर और टुकटुक गोहाड़कर छत्रपति संभाजी नगर से राजेश साबले पाटिल राजदीप राजेश राशि राजेश श्रीमती शीतल राजेश एरोड्रम थाना वंदना नगर इंदौर मध्य प्रदेश से रेखा संतोष रघुवंशी शोभा भूपेंद्र रघुवंशी बबीता सुरेंद्र रघुवंशी पूजा विक्की रघुवंशी स्वाति प्रयाग चौधरी मालती चौधरी गणेश कार्तिक खर्चे संजना परी खर्चे ललिता नारायण खर्चे। आप सभी की फरमाइश पर आइए सुनते हैं कार्यक्रम मन भावन की पहली पेशकश।

वक्त जैसे ठहर गया है यहीं, हर तरफ एक अजब उदासी है, बेकरारी का एहसास।

छत्तीसगढ़ भाटापारा दतरेंगी से द्वारिका प्रसाद वर्मा किशोर कुमार वर्मा दीपक कुमार वर्मा झावेंद्र कुमार वर्मा महादेव घाट अमलेश्वर से डोमन ठाकुर सुमन ठाकुर मिथिलेश ठाकुर तारनी ठाकुर सूरज ठाकुर सुजला ठाकुर ज्योति ठाकुर रियांश ठाकुर आदर्श नगर मलोट से राज शर्मा मीना शर्मा योगेश शर्मा मैंडी शर्मा सौरभ शर्मा साइना शर्मा निवान शर्मा मैंक रेडियो श्रोता संघ नवागढ़ कटई से नारायण प्रसाद वर्मा चंद्रकांत वर्मा सीमा शारदा दामिनी वर्मा छत्तीसगढ़ से आप सभी की फरमाइश पर आइए सुनते हैं फिल्म चांद के पार चलो से प्यारा सा गीत। आवाज हल्का अग्निक उदित नारायण के संगीत निर्देशन है विष्णु नारायण का सब दृश्य है ऋषि आजाद की।

लुधियाना पंजाब से अमरजीत सोनम कौर, परमजीत अदीपा कौर, बिहारी कॉलोनी महासमुंद से वलीउल्ला फकीर, डब्लूउल्ला फकीर, परवीन आसमा फकीर, बुलंदशहर से बदलू वली अंसारी, फर्जू वली अंसारी, फर्जी वली अंसारी, सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, रितिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह ठाकुर, डॉक्टर अमनदीप, कालका से शुभ चंद्र बजाज, बिट्टा बजाज साहिद, महाराज रेडियो श्रोता संघ जिला खंडवा ग्राम लोहारी से राजेश कुमार धनजे, राहुल कुमार धनजे, विशाल कुमार धनजे, शीला धनजे, गायत्री धनजे, खुर्दी रोड से मानपुर से विजय वैद, रानी वैद, महिमा वैद, नीतू वैद, आप सभी की फरमाइश फराइए सुनते हैं। ये प्यारा सा गीत जिसे फिल्म बेवफा सनम से लिया गया है, आवाज अनुराधा पौड़वाल की, संगीत निर्देशन है अमर उत्पाल का, सब दृश्य है रानी मलिक की।

0: चौपाल में नवा कार्यक्रम शुरू हो सबे रविवार संझा के ठीक 7:30 बजे से।
1: हाँ, फरमाइशी कार्यक्रम हवे, संगी अपन फरमाइश भेजी और हमन गीत बजाबो।
0: कौन सा गीत?
2: सुघर गीत जैसे ए
3: तोरे खोपा मा चंदनी गोंदा।

0: बस हमर कार्यक्रम में मेल करी किसानवाणी अंबिकापुर 2026@gmail.com। जुलाई के पहला रविवार से कार्यक्रम शुरू हो ही।
1: चौपाल फरमाइश।
2: डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला तो, डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला तो, डीजे वाले बाबू
3: बेबी को बेस पसंद है।
4: इंस्टा फरमाइश। आपकी पसंद मनभावन और ईमेल की गूंज के बाद हम आपके लिए लेकर आए हैं फरमाइशी फिल्मी गीतों का एक और कार्यक्रम इंस्टा फरमाइश। इसके लिए आपको करना है ये कि आकाशवाणी अंबिकापुर के इंस्टाग्राम पेज और फेसबुक पेज पर पोस्ट किए गए पोस्टर पर अपनी फरमाइश, नाम और पता कमेंट सेक्शन में लिखना है। बस हो गया आपका काम खत्म और हमारा शुरू। फिर हम शामिल करेंगे आपको कार्यक्रम इंस्टा फरमाइश में, जिसे आप सुनेंगे हर रात 8:00 से 8:45 तक। तो देर किस बात की, आज ही अपने पसंदीदा गीत की फरमाइश भेजें और सुने कार्यक्रम इंस्टा फरमाइश।
3: बेबी को बेस पसंद है।
5: श्रोताओं, ये अब सुनते हैं कार्यक्रम मन भावन की अंतिम पेशकश फिल्म माँ तुझे सलाम से। स्वर है अलका याग्निक, संगीतकार हैं साजिद वाजिद, गीतकार हैं समीर। इस गीत को सुनने के लिए हमें फरमाइश लिख भेजी है दतरंगी से भागवत वर्मा, लवई से गुलाबदास राजादास, देवरी से केआर साहू, धरसीमा से छेदूलाल यादव, श्रीमती सीता यादव, अर्चना अरुणा यादव, अनुराधा अल्पना यादव, दुर्गापारा संतोषी नगर रायपुर से छन्नूलाल यादव, अनुराग अभिषेक अलका अनामिका बलदाऊ यादव, कुमारी रानू खुशी परवीन साहू सी एल यादव, चारमीनार चौक गंडई पंडरिया से दरिया नामल अनिता मोटवानी, राजेश रेशम, अनिल राज मोटवानी, झूलेलाल चौक तिलदा से हरीश कमल, सेतपाल भूमिका और सुशीला। आप सभी की फरमाइश पर भी से कार्यक्रम का अंतिम गीत।

इस प्यारे से गीत के साथ ही कार्यक्रम मन भावन यही समाप्त होता है। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। रात्रि के 11 बजे हैं। अब आप सुनेंगे हिंदी में समाचार और अंग्रेजी में समाचार, जिसे हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

0: स्क्रीन नेटवर्क के विरुद्ध अभियान को सशक्त बनाने के लिए बेहतर समन्वय और तकनीक का प्रयोग आवश्यक है।
1: ड्रोन आधारित ड्रॉप्स, समुद्री मार्गों से कंटेनराइज्ड कार्गो, डार्कनेट, क्रिप्टो पेमेंट, ऑर्डर टू डिलीवरी मॉडल, पार्सलों का उपयोग, ये सब तरीकों से ड्रग के कारोबार करने वालों ने हमारी लड़ाई को और कठिन बनाया। इसलिए हमारी प्रतिक्रिया भी सामूहिक और संगठित होनी चाहिए, एक रोड मैप आधारित होनी चाहिए और उसमें आधुनिक इंटेलिजेंस लीड बेस्ड टेक्नोलॉजी ड्रिवन अप्रोच होना चाहिए।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नशा मुक्त भारत अभियान जन भागीदारी से प्रेरित एक जन आंदोलन बन गया है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री बी एल वर्मा का एक लेख सोशल मीडिया पर साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने ये बात कही। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ब्रिटेन व्यापार समझौते से अधिकतम लाभ लेने के लिए देश भर में 1000 सलाहकारों की तैनाती के साथ व्यापार पोर्टल को उन्नत किया जाएगा। लंदन में 10वें यूनाइटेड किंगडम भारत सप्ताह में श्री गोयल ने कहा कि भारत ब्रिटेन भागीदारी पारंपरिक व्यापार से आगे बढ़कर तकनीक, AI, महत्वपूर्ण खनिज, रक्षा और स्वच्छ ऊर्जा जैसे रणनीतिक क्षेत्रों तक पहुंच गई है। उन्होंने कहा कि भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता दोनों देशों के साझा हितों पर केंद्रित है। वेनेजुएला में आए दो शक्तिशाली भूकंपों में मृतकों की संख्या

बढ़कर 589 हो गई है। 3,000 से अधिक लोग घायल हुए हैं। कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने भारत की एकजुटता का आभार व्यक्त करते हुए कहा है कि ये मुश्किल समय में दोनों देशों की सहयोग की भावना के अनुरूप है। उन्होंने राहत कार्यों में सहयोग के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया। भारत ने भूकंप प्रभावित वेनेजुएला के लिए ऑपरेशन अमिस्ताद के अंतर्गत 35 टन से अधिक राहत सामग्री, दवाएं और चिकित्सा उपकरण वायुसेना के 2 विमानों से भेजे हैं। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा है कि अमेरिका और ईरान के सैन्य प्रतिनिधि संघर्ष टालने के लिए एक सीधा संपर्क स्थापित करने पर सहमत हुए हैं। इसके अंतर्गत ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर यानी IRGC और अमेरिकी सेना के सेंट्रल कमांड के प्रतिनिधि कतर के दोहा में तैनात रहेंगे। आयरलैंड के बेलफास्ट में 2 मैचों की T20 क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच में आयरलैंड ने भारत को 34 रन से हरा दिया है। पहले बल्लेबाजी करते हुए आयरलैंड ने 182 रन बनाए। 183 रन के लक्ष्य के जवाब में भारतीय टीम 148 रन पर सिमट गई। मैथ्यू हॉलैंड को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। श्रृंखला का दूसरा और अंतिम मुकाबला रविवार को खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।